ओम शांति। बाबा ने आकर हमें सहज राजयोग सिखाया है, सबसे बड़ी विद्या दी है जिससे हमारी बुद्धि डिवाइन और रिफाइन हो जाती है। संस्कार बड़े सुखदाई, निर्मल, शक्तिशाली हो जाते हैं। जो राजयोग हमें निर्भय कर देता है, सफलता की ओर ले चलता है, प्रभु मिलन के सुंदर अनुभव कराता है, आत्मा अतीन्द्रिय सुखों में रहने लगती है। आइए हम इस राजयोग को सहज योग बनाएं, कर्म योग बनाएं और विशेष रूप से बाबा से अपनापन फील करें। वो मेरा है। संसार में भी जो अपने होते हैं, जिन संबंधों में बहुत स्वीटनेस और प्यार होता है, उनके साथ रहने में कितना सुख मिलता है। भगवान का नाता, जो प्यार का सागर है, सर्वशक्तिवान है, जो हमें बहुत चाहता है, जो हमारा सम्मान करता है, जो हमें सफलता के आध्यात्म के शिखर पर ले जाना चाहता है, ऐसे बाबा के साथ रहने में कितना सुख मिलेगा। तो आइए हम इस योग का जीवन में परम आनंद लें। यों तो राजयोग संसार की सबसे गुह्य विद्या है, परंतु बाबा ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। जिन्हें योगी बनना है उन्हें इस मेरेपन से मुक्त होना होगा, मेरेपन का त्याग करना होगा, इसकी बलि चढ़ा देनी होगी से ऊपर। इसी की यादगार में भक्ति में लोग बलि चढ़ाते आए सिर की, पर बलि चढ़ानी है बुद्धि के अभिमान की अर्थात मैंपन की। चेक कर लें मेरे अंदर कैसा मैंपन है, मेरापन है। राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो एक है बस, मेरा मेरा मेरा। ये तो संसार में लगा ही हुआ है और इसी से अनेक मनुष्य बहुत दुखी हो रहे हैं। मेरा बच्चा हाय कम पड़ रहा है, हाय मेरा बच्चा बुरी संगत में जा रहा है। यद्यपि माँ बाप को ये चिंता होनी स्वाभाविक है, परंतु यदि मेरेपन का त्याग करके बच्चे को बाबा के अर्पित कर देंगे, ये तेरा बच्चा है, तो वो उसे संभाल लेगा। मेरा मकान, मेरा धन, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये सब मेरेपन जीवन में परेशानी का कारण बनते हैं। ये मेरे हैं तो मेरी बात क्यों नहीं मानते। बस यही सूक्ष्म मैंपन मनुष्य को परेशानियों में डालता है। सोचो अगर बाबा भी यही सोचने लगे, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानते, तो कैसा लगेगा। लेकिन वो ये जानता है कि इनका ड्रामा में जितना पार्ट है, जितना भाग्य ने मुझसे लेना है, कल पहले जितना इन्होंने लिया है उतना ही ले रहे हैं। इसलिए वो साक्षी रहता है। मेरापन होते अपनापन होते भी साक्षी भाव। हम भी इस फीलिंग को बढ़ाएं और चेक कर लें कहां हमारे अंदर मेरापन है। मेरा धन, मेरी ज्वेलरी, मेरे वस्त्र, मेरी पद पोजीशन, मेरा मान शान, मेरी इच्छाएं, मेरी तृष्णाएं, इन सब से परे निकलने वाले श्रेष्ठ त्यागी ही श्रेष्ठ योगी बनते हैं। तो इस पर गहराई से चिंतन करें और आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। परमधाम में बाबा के पास जाकर उन्हें टच करेंगे। मैं आत्मा ब्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, अपने सुंदर स्वरूप को देखें। मैं आत्मा यहां से निकलकर चली ऊपर की ओर परमधाम में
शिव बाबा को टच किया, उसके पास बैठ गई, उसकी एनर्जी मुझ में समाने लगी, उसकी संपूर्ण शक्तियां स्वयं में भरकर मैं आत्मा नीचे उतरी अपनी देह में। फैलने लगी ये शक्तियों की किरणें चारों ओर, ये ऊपर जाने की और वापस देह में आने की ड्रिल आज हर घंटे में 2 बार करेंगे और मेरेपन से मुक्त होने पर ध्यान देंगे। ओम शांति।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन,
2: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, सुप्रभात। दोस्तों, कहा जाता है कि किस्मत का लेखा कोई मिटा नहीं सकता, किस्मत का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, सच बात है, कभी कभी कहते हैं कि होनी को हम टाल नहीं सकते, और उस पर ही मुझे एक बहुत सुंदर कथा याद आती है जो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन यमराज एक लड़के के पास आए और बोले, लड़के आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तो लड़के ने कहा, यमराज मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। यमराज ने कहा, ठीक है, लेकिन सूची में तुम्हारा नाम पहला है। फिर लड़के ने कुछ सोचकर कहा, ओके, फिर क्यों ना हम जाने के पहले साथ में बैठकर चाय पी ले। यमराज मुस्कुराए

0: और कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, और हाँ भरते हुए वो लड़के के साथ चाय पीने गए। लड़के ने चाय में नींद की गोली मिलाकर यमराज को दे दी। जैसे ही यमराज ने चाय खत्म की तो वो गहरी नींद में सो गए। फिर लड़के ने क्या किया कि सूची में उसका नाम जो शुरुआत में था वो हटाकर अंत में लिख दिया। बड़ा खुश हुआ वो। अब जब यमराज को होश आया तो वो लड़के से बोले, लड़के क्योंकि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा इसलिए मैं अब सूची अंत से शुरू करूंगा। कहने का भाव ये है कि आखिर लड़के का नंबर तो लग ही गया। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि हम अपने मर्जी से करेंगे तो फिर उसको हम नहीं टाल सकेंगे, लेकिन भगवान की मर्जी अगर हम पर होगी तो हर बात, मुश्किल बात भी संभव है। आज इसी बात में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आए हैं ज्ञानेश्वर जी। हम पहले उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम।
1: थैंक यू भक्ति जी, और गुड मॉर्निंग टू यू, और गुड मॉर्निंग टू ऑल अवर रेडियो मधुबन लिसनर्स। हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। भक्ति जी, आपने जो कथा सुनाई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे रोचक लगी, और उसमें आपने जो जिस्ट निकाला, मॉरल निकाला, या कथा का सार निकाला, वो ये है कि भगवान की मर्जी वो अगर है, अपनी मर्जी से नहीं होता, भगवान की मर्जी से होता है।
0: जो भगवान चाहता है वो
1: जो भगवान चाहता है वही होता है। मुझे ऐसा भी लगता है, इसमें और भी एक संदेश शायद मिल सकता है हमें, कि वो यमराज जो है वो देवता स्वरूप है, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। यमराज कोई ऐसी साधारण व्यक्ति नहीं है, देवता स्वरूप है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ आप छल कपट करके स्वार्थ भावना से कुछ करते हो तो उसका फल स्वरूप आपको नुकसान ही होता है
0: जी। इसलिए मृत्यु की देवता यमराज को ही कहा जाता है। और कहने का भाव ये भी है कि जैसे आपने कहा छल कपट, तो ज्ञानेश्वर जी हम बात कर रहे थे त्रिशंकु की। जब हम किसी भी बात के लिए बहुत ही जिद करते हैं तो उस समय उसके कुछ न कुछ इस प्रकार के नतीजे हमें भुगतने पड़ते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए त्रिशंकु की जो बात आती है कि सत्ता और धन दोनों उसके पास थे, हजारों सालों से आज मनुष्य जो है ये दो बातों के लिए तरसता है, लेकिन कहा जाता है सत्ता और धन मनुष्य के दिमाग को विकृत करते आए हैं, उसमें अहम भाव भर जाता है। और ऐसा ही एक चरित्र जो आप सुना रहे हैं त्रिशंकु, ज्ञानेश्वर जी मैंने सुना कि उसका असली नाम त्रिशंकु नहीं लेकिन सत्यव्रत था। इतना सुंदर नाम है सत्यव्रत, जिसका व्रत है सत्यता का, या कह सकते हो सत्य ही जीवन में होना चाहिए, ये व्रत जिसने लिया है। तो कहां सत्यव्रत जिस पर प्रभु की असीम कृपा, चारों ओर उसका यश फैला हुआ, लेकिन अचानक जब उसके दिमाग में एक कीड़ा बुलबुलाया और उस कीड़े ने उसको एक ऐसी ख्वाहिश पैदा कर दी कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है, तो फिर आपने जो कथा सुनाई कि जिस प्रकार से ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जो है उनके दोनों के संपर्क में वो आया, आगे क्या होता है और त्रिशंकु को आखिर उसकी जो इच्छा है वो पूरी करने में कौन मदद करता है?
1: देखिए, आपने जो उसका संदर्भ दिया काफी महत्वपूर्ण है यह संदर्भ, और हमारे श्रोतागण के जानकारी के लिए, उन्हें सुना भी होगा क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोतागण जो है वो उसका काफी अभ्यास कर चुके हैं, काफी ज्ञान रखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सत्य व्रत आपने जो नाम बताया
0: जी,
1: देखिए इंसान जो है वो था राजा, सूर्य कुल का राजा था, बहुत बड़ा कुल था, बड़ा खानदान था, राजा भी अच्छा था, राज्य भाग्य उसे मिला था और प्रजा भी सुखी थी, बहुत अच्छा राज्य करता था, सब कुछ ठीक था। उसके जो राज ऋषि जो थे वो वशिष्ठ थे और उनके द्वारा अभी जैसे आप बताया कि एक कीड़ा बुलबुल आया, वो कीड़ा बुलबुल आया कि मैं सदैव स्वर्ग में जाऊं। ये जब घटना मैं देखता हूं या घटने के बारे में चिंतन करता हूं और आज के युग की भेंट में, आज का दौर जो है हमारा उसके भेंट में अगर हम उसका विचार करते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी ही कथा है, इस संसार की ही कथा है, इस कलयुग की ही कथा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है। देखिए ये राजा है, सत्य व्रत है, नाम ही सत्य है और व्रत लेता है सत्यता का, प्रजा सुखी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मन में विचार आ गया, गलत संकल्प आ गया और देखिए कैसे पतन शुरुआत हो गई। एक गलत संकल्प आया, अगर उसी समय रोक लेता था तो शायद इतिहास बदल जाता था, लेकिन वो संभव नहीं था। और ये इतिहास है, कवि कल्पना है या काव्य है, इसके बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये कवि कल्पना है या मुझे अगर इससे कुछ संदेश लेना है ये कथा से, भले हो सत्य हो कवि कल्पना हो, लेकिन मेरे लिए अगर उसमें से कुछ संदेश लेना है तो ये लेना है कि मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसे होता है, हर एक इंसान की जिंदगी में, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं एक गलत संकल्प आता है, मोहवश कर देता है और ये मोह में फंस जाते हैं और फिर हमारी
0: पतन की अवस्था
1: शुरू हो जाती है और उससे हमें संभालना है।
0: बहुत सुंदर। संकल्प जो है वो कर्म में जब उतर जाता है तब गलत संकल्प का कर्म भी गलत होता है, इतना ही नहीं उसके अनेक प्रकार के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है और उसमें कई व्यक्तियां भी शामिल हो जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है त्रिशंकु की। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी का दरअसल आज के जीवन में किस प्रकार से बहुत मेल जोल है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब समय है ब्रेक का। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद सबका स्वागत है अमृतधारा प्रोग्राम में और हम बात कर रहे हैं त्रिशंकु के। असली नाम सत्यव्रत था और अपनी अजीब सी जिद के कारण उसको त्रिशंकु नाम दिया गया। गणेश्वर जी, मुझे लगता है त्रिशंकु का जो अर्थ अगर सही कहा जाए तो वो है निराधार लटकते रहना। आज विज्ञान का युग चल रहा है, हम बात कर रहे हैं कि ये जो कहानियां हैं वो कहानियां आज के ज़माने में कैसे हम उसको ठीक तरह से समझे और उसका जो सार है वो जीवन में अच्छी तरह से समझकर उसकी जो भूले हैं वो न करें। तो कई बार मुझे लगता है कि आज ज़माने में कई ऐसे परिवार होते हैं जिन परिवारों में पिता और माता, पेरेंट्स जो है वो होते हैं पहले ज़माने को फॉलो करने वाले या थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हम कह सकते हैं, और उनके बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल मॉडर्न होते हैं। और फिर बच्चों की परवरिश में कुछ ना कुछ ऐसी उनकी अपनी मतें होती है और बच्चे आगे जाकर त्रिशंकु की अवस्था में रहते हैं। आपको क्या लगता है?
2: बिल्कुल सही कहा आपने। ये त्रिशंकु की अवस्था जो है, आपने जो उसका परिणाम बताया या परिभाषा बताई वो भी सही है कि वो बच्चे जो है, आपने बताया कि वो कौन सी दिशा में जाऊं, ये निर्णय करने में असमर्थ है या संभ्रमित अवस्था हो जाती है। आजकल के ज़माने की अगर हम बात करें तो हम अक्सर पढ़ते हैं, कभी कभी अखबारों में पढ़ते हैं, जब हमारा इलेक्शन हो जाती है, चुनाव हो जाता है और मतदान जो है, मतदाता संभ्रम

0: अमित अवस्था में है या किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, ऐसे कई अगर परिस्थिति आ जाती है तो उसे भी हम कहते हैं विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसे त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा ऐसे कहते हैं
1: जी।
0: इंग्लिश में उसे कहते हैं हंग पार्लियामेंट।
1: अच्छा,
0: हंग मींस बीच में लटकता हुआ,
1: राइट।
0: और इसके लिए मुझे लगता है कि ये जब हंग पार्लियामेंट की स्थिति आती है या त्रिशंकु की स्थिति आ जाती है तब वो स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती
1: जी, क्योंकि ऐसे होता है कि मुझे आगे जाना है तो मैं आगे भी नहीं जा सकती, हाँ मुझे अगर पीछे लौटना है तो मैं पीछे भी नहीं लौट सकती, तो जाओ तो कहाँ जाओ। और ऐसे समय कई बार बोलने में आता है कि मेरी अवस्था तो बिल्कुल त्रिशंकु जैसी हो गई।
0: और ये त्रिशंकु अवस्था जो है वो प्रगति के लिए बाध्य है। अगर तरक्की करनी है, समाज की तरक्की करनी है, हमें कुछ इप्सित साध्य करना है, अगर हमें कुछ लक्ष्य हासिल करना है तो ये त्रिशंकु अवस्था जो है वो हमारे लिए बाधा या रुकावट पैदा कर देती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि उस समय ऐसे होता है कि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता और हम बेचैनी का अनुभव करते हैं, मैं समझती हूँ ज्ञानेश्वर जी। और ऐसे समय आदमी जो है वो घबराता है, ऐसे समय कई बार उसे मंजिल की भी फिक्र रहती है और फिर वो कहता है कि मैं क्या करूँ। इसलिए कहा जाता है कि हर घड़ी शुभ घड़ी है, ऐसे समझकर अगर आप निर्णय लेंगे तो फिर आपकी अवस्था जो है वो त्रिशंकु नहीं होगी, अन्यथा कुछ बातों में उलझने के कारण ये अवस्था हो सकती है। तो बात हो रही थी राजा सत्यव्रत की, जिसको त्रिशंकु का श्राप मिला।
0: बिल्कुल सही कहा। और त्रिशंकु के बारे में जब हम चर्चा करते हैं कि जब हमारी अवस्था ये त्रिशंकु अवस्था, हमने विधानसभा लोकसभा इसके बारे में कहा, अभी देखिए अगर लोकसभा हंग पार्लियामेंट होती है या त्रिशंकु हो जाती है तो क्या होगा, वहाँ कुछ अच्छे निर्णय नहीं ले सकते। अगर लोक कल्याण की भावना मन में है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक पक्ष जो है वो राज्य ठीक तरह से नहीं कर सकता। और इसलिए त्रिशंकु अवस्था जो है वो हमेशा कहा जाता है अपने प्रगति के लिए बाधक हो जाती है। और ये बाधकता जो है वो अगर हमें निकालनी है तो हमें एक सही दिशा में जाना पड़ेगा। और ये सही दिशा जो है, ये सही दिशा अगर हम ठीक तरह से तय नहीं कर पाते तो भी ये त्रिशंकु अवस्था है। क्योंकि जैसे हम सत्यव्रत की बात करते हैं, वो सत्यव्रत राजा था, जब वो अच्छी तरह से राज करता था, वो पॉजिटिव डायरेक्शन से उसका राज्य चलता था, बहुत कुछ ठीक चलता था। क्या हो गया, एक मन में संकल्प आया कि मैं देह सहित स्वर्ग में जाऊं। अभी देखिए देह सहित स्वर्ग में जाऊं ये अशक्य प्राय चीज है, असंभव है। और ये असंभव चीज जो है, ये असंभव प्राप्त करने के लिए अगर हम कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे तो क्या होगा, उसको वशिष्ठ जी ने समझाया। राजा को, अच्छा राजा था, सूद्य था, विचारी था, सत्यव्रत था, उसको समझाया भी बहुत अच्छी तरह से वशिष्ठ जी ने कि ये आप कर नहीं सकते, ये नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और फिर भी वो मनमानी करने की जिद पे आ रहा था
1: जी।
0: ये क्यों आ गया, क्योंकि मन में उसके इच्छा है, ये विकार हम कहते हैं ना, ये एक विकार है। और ये मन में इच्छा पैदा हो गई कि ऐसे कुछ मैं करूं। और जब किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तब क्या हो गया, वो जो न्याय व्यवस्था है उसको भी मानने के लिए उसने इनकार कर दिया। और फिर उसने सोचा इसमें से कुछ मैं रास्ता निकालूं, और फिर गया विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र जो विश्व का मित्र है, जगन मित्र है, उसे बहुत कुछ समझाया, उसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो कहते हैं ना, क्योंकि क्या हो गया था, वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दिया था और वो श्राप जो है, श्राप की वजह से वो काला बन गया, चंडाल बन गया, ऐसे कहते हैं। मीन्स उसकी जो क्वालिटी जो थी वो नहीं रही, उसका रूप जो था वो पहले जैसे रूप नहीं रहा, और दया बुद्धि पैदा हो ऐसा उनका रूप हो गया।
1: मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी, ये जो श्राप के कारण सत्यव्रत काला बन गया, त्रिशंकु नाम पड़ा, तो ये काला रंग भी एक बात को सूचित करता है। वो ये कि जब हमारे मन में कुछ कालापन आ जाता है, या काला रंग हमेशा प्रतिनिधित्व करता है बुराई का, हमारे मन में जब बुराई आ जाती है, उस बुराई को दर्शाने के लिए कथा में इस प्रकार का वर्णन होगा कि उसका रूप जो है वो काला हो गया। और सिंह की जो बात आप कर रहे हैं, कोई कथा में ऐसा भी है कि उसके बाल जो है वो छोटे बन गए, और किसी किसी कथा में ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसके ऊपर सिंह आ गए। तो कहने का भाव ये है कि बिल्कुल ही विद्रूप, जिसको कहते हैं कुरूप, अति कुरूप रूप। तो हम अगर हमारे मन को टटोले कि जब हमारे मन में बुराई पैदा होती है, जब विकारों की पैदाइश होती है, तो विकारों की पैदाइश हम देखें कैसे, तो अगर उसका चित्र निकालना है तो ये चित्र दिया हुआ है कि ऐसा रूप बन जाता है, क्योंकि ऐसा रूप देखने के बाद किसी को भी डर लगेगा। तो हमारे पूर्वजों का ये कहने का भाव होगा या ये दर्शाने का भाव होगा कि जब आप किसी गलत चीज़ को पकड़ के बैठते हो, किसी अवगुण को मन में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करते हुए उसको सिद्ध करने का यत्न करते हो, प्रयास करते हो, तब इस प्रकार का भयानक रूप बन जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। ये काला रंग जो आपने बताया बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि शायद हमारे श्रोतागण के मन में या किसी के भी मन में ये शंका आशंका उत्पन्न हो सकती है कि कहीं ये वर्ण द्वेष तो नहीं है, कहीं ये वर्ण भेद तो नहीं है गोरा और काला। लेकिन इसमें मुझे ये लगता है गोरा ये जो है शुभ और काला जो है वो अशुभ माना जाता है, और इसलिए रात को हम अशुभ मानते हैं और दिन को हम शुभ मानते हैं। तो ये काला रंग जो है इसका ही मेरे ख्याल से वर्णन होगा, या उसका ही वो अशुभ समझ के ही ये काला रंग का उन्होंने उदाहरण दिया होगा
1: जी,
0: ऐसा मुझे लगता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, आपको भी अगर इस कथा को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको भी समझेगा ये कथा का भाव कोई डराना नहीं है, ये कथा का भाव है हमारे अंदर की जो बुराइयां है उस बुराई को संपूर्णतः निकालना। उस बुराई को हम अगर देखना चाहते हैं तो कितना उसका भयानक रूप दिखता है ये हमारे अंदर महसूसता की शक्ति जगाना। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं। तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है अमृतधारा प्रोग्राम में और हम बात कर रहे हैं वरदान या श्राप, जो आज तक हमने कई जगह कथाओं में सुन रखा है। फिर आम आदमी के मन में विचार पैदा होता है कि ये श्राप, ये वरदान क्या झंझट है इसका, और कैसे हम अगर अच्छाई करते हैं तो फिर वरदान मिलता है, बुराई करते हैं तो श्राप मिलता है, ये क्या नियम है, ये सृष्टि के विरुद्ध है या सही है। दोस्तों, इस बात की चर्चा हम इस कहानी के जरिए कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं और उस प्रकृति के नियमों का, सृष्टि के नियमों का अनुकूल जो है वो वरदान होता है और प्रतिकूल जो है वो श्राप होता है। और अक्सर करके हमने पुराणों में, कथाओं में सुना हुआ है कि ऋषि मुनि जो है वो बहुत तप करते थे और उस तप से उनको भगवान प्रसन्न होते थे, ज़्यादातर शिव जी के बारे में ही वर्णन होता है, और उन्हें वरदान देते थे या फिर अगर उनसे कुछ भूल हो गई तो श्राप मिलता था। ज्ञानेश्वर जी, कई बार मन में विचार पैदा होता है कि ये वरदान, ये श्राप, ये क्या सचमुच होते हैं और इन वरदान और श्राप का संकल्प की शक्ति से संबंध क्या है। आपने बात कही कि संकल्प एक शक्ति है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाएंगे तो मैं समझती हूँ कि हमारे कुछ दोस्तों के मन में अगर वरदान या श्राप के प्रति कुछ संदेह हो तो वो संदेह भी मिट सकता है।
3: देखिए, ये संकल्प शक्ति आपने बात कही और फिर जो कथा का हम वर्णन कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी जगह हमारा संदर्भ है या संकेत मिलते हैं कि वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दिया, फिर विश्वामित्र जी ने उसे श्राप दिया या वरदान दिया, ऐसे कुछ, कोई वरदान देता है कोई श्राप देता है। अगर हम ऐसी कथा के ऊपर गौर करें तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो तप करते हैं, जंगलों में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, तप करते हैं और प्रसन्न किसको करते हैं,
2: शिव जी को
3: प्रसन्न करते हैं, या कई कहते हैं विष्णु जी को प्रसन्न किया, लेकिन ज्यादातर अगर हमने जो पढ़ा है वो है शिव जी को प्रसन्न कर देते हैं। शिवजी परमात्मा शक्ति है और परमात्मा शक्ति अथाह है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये वरदान प्राप्त करना इसका मतलब है कि मुझे ये शक्ति हासिल करना। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो मेरी मोबाइल की बैटरी है, मेरी मोबाइल की बैटरी अगर मैं चार्ज कर रहा हूं और मेरी बैटरी फुल हो जाती है तब क्या हो गया, वरदान प्राप्त हो गया, मीन्स कुछ मिल गया, तो इसे वरदान कहते हैं। अभी मुझे अगर श्राप किसी को देना है तो वो भी शक्ति है, वरदान जो है वो पॉजिटिव शक्ति है, श्राप जो है वो निगेटिव शक्ति है। और अगर मुझे किसी को श्राप देना है तो जो मेरे पास शक्ति का संचय है उसे ही मुझे यूज करना है, उसका ही मुझे इस्तेमाल करना है। और जब मैं इस्तेमाल करूं तो वो खर्च हो गया और मेरे पास कुछ नहीं बचा। और बहुत बार ऐसे हमने देखा है कि जब भी कोई ऋषि मुनि बहुत सारी तप करते हैं, बहुत सारी तपस्या करते हैं और बड़े परिश्रम से वो वरदान प्राप्त कर देते हैं और उसका उपयोग जो है वो लोक कल्याण के लिए ना करते हुए स्व कल्याण के लिए या खुद की
2: स्वार्थ के लिए,
3: स्वार्थ के, स्वार्थ भावना से करते हैं, खुद के कल्याण से, ईर्ष्या भाव से या अच्छे भाव से नहीं करते।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: फिर उससे शक्ति खर्च हो जाती है और फिर वो शक्तिहीन बन जाते हैं।
2: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि कई बार जब मैं भी बचपन में दादी माँ से कथा सुनती थी या पढ़ती थी तब मन में संदेह होता था कि अगर हमें वरदान चाहिए तो हमें तप करना चाहिए, और अगर हमारे तप करने में कहो या कुछ हमारे कर्म में ऐसी गड़बड़ी हो गई तो फिर हो सकता है कि हमें श्राप मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ जो आपने कहा वो बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से समझा, हमारे श्रोतागण ने भी उसको सही तरीके से समझा होगा कि वरदान मिलने के लिए तप करना ये बात नहीं होती, लेकिन जब हमारे कर्म जो है वो अच्छे होते हैं, लोगों के प्रति हमारा भाव जब शुभ रहता है, विश्व कल्याण की हमारी मन में ख्वाहिश रहती है, भावना रहती है, तो उस भावना का जो फल है वो फल जिसको कहा जाता है वरदान। और क्योंकि हम देते रहते हैं, हम दानी बनते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ अपने मन से भी क्यों न सही लेकिन शुभ संकल्पों की एक अपने मन को आदत डालते हैं तो वो हो जाता है वरदान। और अगर हम अपने लिए सिर्फ नहीं लेकिन उसमें भी अगर बहुत ज्यादा ईर्ष्या समाई हुई हो या ऐसी बात हो जिसमें हमारा अहंकार जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, हद से बाहर हो जाता है, तब फिर हमारे ही कर्म गलत हो जाते हैं और उसको ही हम कहेंगे कि श्राप।
3: बिल्कुल सही कहा। और ये श्राप जब हम देते हैं तब नुकसान किसको होता है? दूसरे को। जिसको श्राप देते हैं उसका तो नुकसान हो ही जाता है, लेकिन जो श्राप देता है उसका भी नुकसान होता है
2: जी,
3: क्योंकि उसकी शक्ति खर्च हो जाती है और फिर उसे तपस्या करनी पड़ती है शक्ति जमा करने के लिए। इसकी भेंट में मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पैसा है, धन है, और धन है अगर वो गलत कार्य के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो श्राप है, और वही धन अगर सही कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए अगर यूज कर रहा है, इस्तेमाल हो रहा है तो वो संत सज्जन कहा जाता है। ऐसे कई संस्था ये है जो लोक कल्याण के लिए धन खर्चा करते हैं, फिर क्या होता है लोगों से उन्हें दुआ मिल जाती है और वो जो दुआ लोगों से मिलती है उससे उनकी तरक्की हो जाती है। और कई ऐसी संस्थाएं हो या कई ऐसे लोग हम देखते हैं कि उनके पास धन बहुत है लेकिन वो गलत कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते, गलत कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए लोगों से दुआ मिलने के बजाय लोगों से बददुआ मिल जाती, जिसे हम श्राप भी कह सकते हैं।
2: जी बिल्कुल सही।
3: और ये बददुआ जो है वो नुकसान कर देती है, क्योंकि ये संकल्प में शक्ति जो है वो अच्छा भी कर सकते हैं या बुरा भी कर सकते हैं, और इसलिए संकल्प करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं
2: जी,
3: किसके बारे में सोच रहे हैं। और ये जब हम सोचेंगे, समझेंगे, तो यही संकल्प हमारे लिए अपने निजी जिंदगी में काम में आ जाएंगे।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वरदान मतलब हमारे ही दूसरों के देने की जो वृत्ति है, जो भावना है, उसका हमें रिटर्न मिला। और श्राप अर्थात मुझे लगता है कि बद दुआ, कभी कभी हम कह देते हैं कि ऐसा कम से कम आप दुआओं को नहीं ले सकते तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन बद्दुआ तो मत लो। तो ये बद्दुआ लेना यही श्राप के बराबर है, क्योंकि आखिर संकल्प एक शक्ति है। ऐसे अगर हमने माना तो कईयों की संकल्पों की शक्ति मिलकर ही पूरा का पूरा ये विश्व का निर्माण है, ऐसे मुझे लगता है।
3: ये संकल्प भी एक एनर्जी है, संकल्प भी शक्ति जो बोलते हैं, शक्ति जो एनर्जी है, और ये पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी, और उसका इस्तेमाल हमें बड़े सावधानी से करना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका इस्तेमाल हमें सावधानी से करना चाहिए। और फिर से बात आती है कर्मों पर, क्योंकि हर बात का जो इम्प्रेशन है वो कर्मों के द्वारा ही हमारी भविष्य पर होता है, या हमारा नसीब जिसको हम कहते हैं वो होता है। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी बात नहीं है दोस्तों। आप सोच के कारण इतने बोझिल होने की भी ज़रूरत नहीं, बस यही मन में बहुत अच्छी तरह से ठान लेना है कि मेरे कर्म ऐसे हो जो सर्व को सुखदायी हो। और ये तो हर एक समझ सकता है कि कौन से कर्म सुखदायी होते हैं। तो इस बात की चर्चा करने के लिए हम फिर से मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: अरे रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों ब्रेक के बाद सबका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं श्राप और वरदान के ऊपर। ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि महाभारत हो या फिर रामायण, ज्यादातर ग्रंथों में ऋषि महर्षियों के क्रोध को श्राप का रूप दिया गया है। तो क्रोध एक अग्नि है और दरअसल जो भी श्राप है, कई जगह हम देखते हैं कि उस श्राप का वर्णन जो होता है कि देवताएं जो है या अच्छे जो इंसान है वो श्राप के कारण कोई या तो फिर जानवर बनते हैं या पशु बनते हैं इस प्रकार से, या कुरूप बनते हैं। तो मुझे लगता है कि श्राप का अर्थ ये है कि आपकी जो स्टेज है, जो मानसिक अवस्था जो है, वो बिल्कुल ही बदतर बन जाती है। ये भी भावार्थ उसका हो सकता है।
4: देखिए उसमें मुझे ये लगता है कि नुकसान कैसे होता है, श्राप से नुकसान कैसे होता है। श्राप देखो, अगर कोई व्यक्ति है वो बड़ी खुश है और बड़ी खुश है तो दूसरे को भी मुस्कुराती है तो दूसरों को भी खुश कर देती है। अगर उसकी अवस्था अच्छी है, वो मुस्कुराती है, खुशी है उसके चेहरे पे, तो वो देखने के बाद दूसरी व्यक्ति जो उसे देख रही है वो भी खुश हो जाती है। तो एक तरह से वो वरदान है, जो मुस्कुराती हुई व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को वरदान दे रही।
3: या मुस्कुराने के बाद जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है, वातावरण जो है वो बहुत अच्छा बनता है, तो वो अपने आप ही अच्छाई को अच्छाई खींचती है, उस प्रकार से उनके जीवन में वरदान मिलता है।
4: जैसे आपने कहा अभी, जैसे ये वो खुशी थी, अभी क्या हो गया, अचानक वो व्यक्ति के मन में कुछ क्रोध उत्पन्न हो गया, ऐसे गलत संकल्प आ गए और वो डिस्टर्ब हो गई और क्रोधित हो गई। क्या हो गया, वातावरण बदल गया। वो वातावरण बदल गया, उसके चेहरे में बदलाव आ गया और उसके इर्द गिर्द जो व्यक्ति थे उनके मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आ गया, उनकी स्थिति भी डाउन हो गई। तो जो हम सोचते हैं, विशेष करके अगर हम एक्सट्रीम सोचते हैं, बहुत ही खुशी है तो भी खुशी का माहौल हो जाता है, बहुत ही दुखी है तो दुख का माहौल हो जाता है, बहुत ही संतप्त है तो क्रोध का माहौल हो जाता है। ऐसे बहुत बार हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, हमारे श्रोतागण ने भी देखा होगा कि कई कई पब्लिक प्लेसेस में, लोकल ट्रेन में समझो, ट्रेन में है, बस में है, दो आपस में व्यक्तियाँ लड़ते रहते हैं। पहले बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे को कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, गाली गलौच हो जाती है और फिर हाथापाई हो जाती है। उसके बाद ये पूरा वातावरण जो है वो बिगड़ जाता है और वहाँ की पब्लिक देखने वाली है वो भी परेशान हो जाती है, वो दोनों तो है ही परेशान। बाई चांस कोई व्यक्ति आ जाता है और फिर उसने अगर उसमें समझौता कर दिया, फिर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो दोनों हंसने लगते हैं, आपस में गले मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं, चलो हो गया, भूल जाओ, अभी से हम दोस्त हैं। क्या हो गया,
3: वातावरण हल्का हो गया,
4: वातावरण हल्का हो गया,
3: सब लोगों ने भी थोड़ा सा तसल्ली मिली सबको।
4: बिल्कुल, वो जो पब्लिक देखने वाली है वो भी, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, देखो अभी ये झगड़ा खत्म, ये दोनों दोस्त बन गए। वही खाली संकल्प चेंज हो गए, उनके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा भाव था, संताप था, क्रोध था, उसके बदले प्यार का निर्माण हो गया और ये प्यार का निर्माण होने के बाद पूरा वातावरण बदल गया।
3: और दरअसल ज्ञानेश्वर जी, हमेशा देखा गया है जो व्यक्ति जोर से बोलने लगते हैं, जब संताप आता है, क्रोध आता है, तो वो जोर से बोलने लगते हैं, और जब एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह होता है तो शब्द जो है वो इतने जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं। अर्थात जब क्रोध आता है तो दो दिल जो है वो बिछड़ जाते हैं,
4: दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाने के बाद उन्हें लगता है कि शायद मैं जो कह रहा हूँ वो उनको पता नहीं सुनाई देगा या नहीं देगा, इसलिए वो जोर से बोलते हैं। और जब प्यार हो जाता है तब उन्हें मालूम है ये तो मेरे बिल्कुल पास है, और वो मुस्कुराहट होती है, बिल्कुल धीमे शब्द होते हैं और वो आनंददायक होते हैं, सुखदायी होते। तो हमारे बोल ऐसे चाहिए, सुखदायी हो, दूसरों के लिए सुखद पैदा करने वाले हो, और ये अगर हम बोल ऐसे बोलते हैं, मीठे शब्द बोल देते हैं, तो फिर मीठा वातावरण पैदा होता है, निर्माण होता है। वो मीठे शब्द बोलने के लिए हमें क्या होना चाहिए, मन में संकल्प अच्छे आने चाहिए, और बाय चांस कभी गलत संकल्प आ गया, क्रोध का संकल्प आ गया, तो उसे तुरंत हमें दूसरा संकल्प का निर्माण करना चाहिए। अगर हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो उछाल के ऊपर आ जाता है, और इसका उदाहरण जैसे हमने चर्चा कर रहे थे हम त्रिशंकु की, और उसमें ऐसे दिखाया गया कि उनको बहुत मोह पैदा हो गया था, विकार पैदा हो गया था, और फिर वो वशिष्ठ मुनि ने उसे श्राप दे दिया और वो चंडाल बन गए और काला वर्ण, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो मुझे ये लगता है कि देखिए किसी का चेहरा वो कैसा है, काला है, गोरा है, नाटा है, कैसा है, वो मायना नहीं रखता। कोई भी चेहरा हो अगर वो मुस्कुराता है तो देखो कितना प्रसन्न हो जाता है।
3: बिल्कुल सही, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं और हम देखते हैं तो कभी भी किसी का भी दृष्टिकोण या किसी की भी नज़र उस छोटे से बच्चे के चेहरे के कलर पर नहीं जाती, रंग पर नहीं जाती, परंतु उसकी जो हंसी है वो हंसी देखकर ही हम उसको बहुत मीठा बोलते हैं।
4: अभी देखिए दो बच्चे हैं, एक झोपड़ी में रहने वाला है, गरीब है, वो बच्चा छोटा बच्चा 2 महीने का 3 महीने का 4 महीने का, और एक महलों में रहने वाला बच्चा, इन दोनों को अगर आप पास पास रखे तो दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है।
3: और अचरज की बात तो यह है दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें इन बातों का पता नहीं है।
4: बिल्कुल, देखिए वो जो गरीब बच्चा है झोपड़ी में रहने वाला है, उसे कोई दुख नहीं है कि वो झोपड़ी में रहता है, वो दुख से परे है, वो खुशी में है। और जो महलों में रहने वाला है उसे कोई अहंकार नहीं है कि वो महलों में रह रहा है, तो ये विकारों से बिल्कुल मुक्त, ऐसे बचपन होता है, ऐसी निस्वार्थ भावना होती है, ऐसी निरागसता होती है, ऐसा इनोसेंस होता है, और वो कहीं ना कहीं दिल को छू लेता है। तो ये इनोसेंस जो है वो कब आएगा हमारे मन में, जब हमारे मन में अच्छे संकल्प आएंगे, दूसरे के प्रति प्यार आएगा, और इसलिए शायद भगवान को भी हम कहते हैं तू प्यार का सागर है। हम आपस में दुजा भाव करेंगे लेकिन भगवान नहीं करता, और इसलिए वशिष्ठ तपस्या करते हैं तो भी वो प्रसन्न होता है, विश्वामित्र प्रसन्न तपस्या करते हैं तो भी वो प्रसन्न होता है, वाल्या कोड़ी जो है वो भी तपस्या करता है तो भी वो प्रसन्न सिर्फ नहीं होता, उनको वाल्मीकि ऋषि का दर्जा मिल जाता है, मान मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। तो ये भगवान जो है वो सागर जैसा है, वो शक्ति का स्रोत है, सोर्स ऑफ द एनर्जी, और उससे जितना हम चाहे उतना ले सकते हैं, और वरदान देना और उसके पास से जो शक्ति लेंगे वो कैसे यूज करना है वो हमारे ऊपर है, चाहे वो वरदान हो या श्राप हो।
3: बहुत अच्छी बात आपने कही वरदान के बारे में, श्राप के बारे में, और मैं समझती हूँ हमारे श्रोताओं को बड़ी अच्छी लगी होगी, सहज लगी होगी, क्योंकि कई बार इन दो शब्दों से लेकर लोगों के मन में कुछ संदेह, कुछ डर और कुछ संभ्रम निर्माण होता है। तो दोस्तों, हम जब हमारे अंदर अच्छे संकल्पों का निर्माण करते हैं तो वो अच्छे संकल्प ही हमारी जीवन की अच्छाई के बीज जो है वो बोते हैं, और उसी के फलस्वरूप हमें हमारी जिंदगी का, जैसे कि हर बात का वरदान प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर हमारे संकल्पों में कुछ कालापन है, बुराइयां है, ईर्ष्या द्वेष नफरत से भरे हुए संकल्प है, तो वो संकल्प जो खराब बीज है तो उसका वृक्ष भी हमें श्राप के रूप में हमारी जिंदगी में भुगतना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है, इनसे डरिएगा नहीं, लेकिन हमारे कर्मों को सुधारने के लिए बहुत अच्छे संकल्पों का निर्माण करना, वो आदत डालना, यही सबसे बड़ी कला है। और इस कला को आप अमृत धारा के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कला को दूसरों को भी सिखाना है और खुद भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। अब समय है वाणी को विराम देने का। अमृत धारा के द्वारा आपसे मुलाकात होती ही रहेगी। अब दीजिए इजाजत। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम ले आने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति हमारी सही समझ को बेहतर करना है। हम पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य से जुड़े हुए अनेक चीजों को जानते आए हैं, मगर जितना जितना ज्यादा हम प्रगतिशील होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम वैज्ञानिक और एक विज्ञान से ओतप्रोत सोच से गुजर रहे हैं, जितने आसानी से हमारे हाथों में टेक्नोलॉजी और जानकारी आती जा रही है, उसके कारण हम प्रायः इंटरनेट पे जिन चीजों को देख लेते हैं उन्हें ही सत्य मान लेते हैं। जो सोची समझी चीजें थी, जो सदियों से हम करते आ रहे थे, या परंपरागत चिकित्सा की जो हमारी विधियां थी उसकी जो समझ थी, वो भी हम खोते चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, व्यक्ति मुझे कितने बजे खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए क्या नित्य कर्म करने चाहिए, इस पर भी लोगों की समझ दिनों दिन घटती चली गई है। और हर चीज के लिए हम या तो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, या फिर किसी भी जानकारी को जब हम डॉक्टर्स या किसी चिकित्सा कर्मी से सुनते भी हैं, तो भी उसे हम इंटरनेट पर सर्च करके उसे रीवेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसे सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जो भी जानकारी हम इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं वो संपूर्ण नहीं हो सकती है। जब आप एक चिकित्सकीय सलाह ले रहे हैं तो उस सलाह को सही अर्थों में समझने का प्रयास करने की भी जरूरत है। शरीर में जब भी कोई व्याधियां आती हैं या कोई ऐसी बीमारी आती है तो उसका कारण यही होता है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण वो व्याधि के रूप में शरीर में प्रस्तुत होती है। आइए स्वास्थ्य जगत के ही कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि रोग क्यों हो रहे हैं और उनसे निदान पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य जगत से एक ऐसे ही एक्सपर्ट जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है और आज भी स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो इसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, हम हमेशा स्वास्थ्य के प्रति क्या इतने इग्नोरेंट रहे हैं या बेसमझ रहे हैं, या पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ कुछ चीजें स्वास्थ्य संबंधी मिलती आई हैं, एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो जानकारियां पहुंचाते आए हैं लोग, मगर आज यकायक क्या हम इन चीजों से दूर हो गए, या कोई कारण रहा है जिसके कारण हम आज ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? प्रायः लोग ये उदाहरण देते हैं कि हमारे दादाजी के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी, वो लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे जितने हम पड़ रहे हैं। ये चीज अक्सर सुनने को मिलती है। आप एक चिकित्सकीय दृष्टि से इस चीज को कैसे देखते हैं?
1: अब हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसके लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, दूसरा हमारी जनसंख्या बहुत हो गई है, और तीसरा हमारा भोजन पूरा गड़बड़ हो गया है, और शारीरिक श्रम जो है हमारा वो कम होता चला जा रहा है। श्री भैया के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने अपना बचपन एक ऐसी जगह बिताया जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, वो एक फैक्ट्री या एक ऐसे परिसर में रहे, और बातचीत में भैया ने बताया कि 2 मंजिले और 3 मंजिले तक वहां पे घर था। और मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूं कि मेरे शहर में भी जब विश्वविद्यालय बना था तो वहां पर 2 मंजिला इमारतें बनी थी लोगों को रखने के लिए, जो मेडिकल कॉलेज बना था वो 2 मंजिला बना था। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मेरे पूरे शहर में लिफ्ट जो थी वो सिर्फ फर्टिलाइजर फैक्ट्री में लगी थी, वो भी चिमनी में ऊपर जाने के लिए, और वो लिफ्ट लिफ्ट नहीं था, एक लोहे का जाल था से घिरा हुआ एक ट्रे थी जिसमें खड़े होकर आप ऊपर जा सकते हैं। और हम लोग बड़े खुश होते थे जब छोटे थे तो फैक्ट्री विजिट में वो आपको ऊपर ले जाते थे और वहां से पूरा शहर दिखता था। आज अमूमन बहुत सारे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में लोग रहने लगे हैं, वहां लिफ्ट लग गई है, लोग जो है वो सीढ़ी चढ़ना को अवॉइड करने लगे हैं, फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करने लगे हैं। पहले ऋतु अनुसार ही फल मिलता था, जब ठंडक थी तब सेब मिलता था, गर्मी थी तो आम मिलता था, और फल देख के हम लोग समझने लगते थे कि हाँ हाँ ऋतु में परिवर्तन आ गया है। पहले बहुत सारे लोगों के घर में सिर्फ पंखा था, और जो निम्न वर्गीय परिवार थे उनके यहाँ पंखा भी नहीं था। जो श्रोतागण जिनकी उम्र आज 40 से ऊपर होगी, उन्होंने बचपन में हाथ से झलने वाला पंखा देखा होगा, आज वो कहीं नहीं दिखता है। अमूमन सबके घर में जो एक लालटेन और एक हाथ से झरने वाला पंखा, ये दोनों चीजें गायब हो गई हैं, क्योंकि अब लालटेन की जगह टॉर्च आ गया है, इन्वर्टर आ गया है, हमारी बिजली की सप्लाई अच्छी हो गई है, और जो पंखा है वो मैकेनिकल पंखे की जगह अब मोटराइज्ड पंखे सबके घर में लग चुके हैं। और पंखा छोड़िए, अब तो बहुत सारे लोगों के घर में एसी लग गया है। पहले गर्म पानी नहाने के लिए करना पड़ता था, गैस के ऊपर गर्म पानी होता था। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में एक पीतल का बहुत बड़ा सा ड्रम था, उसके बीच में एक लोहे का पाइप डला हुआ था, उस लोहे के पाइप में कोयला जलता था, और उससे लोग गर्म पानी जो था वो इस्तेमाल करते थे। अमूमन चिकित्सालय के कमरों में भी गीजर नहीं लगा था। तो हम पहले उस वातावरण में थे जहां हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ठंडा हो या गर्म, वो झेल ले रहे थे। हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे थे, और हम ऋतु के अनुसार भोजन कर रहे थे, और हम बीमार कम पड़ रहे थे। और उसका एक और बड़ा रीजन कि पर्यावरण बहुत शुद्ध था। हम लोग ने कभी ये बात नहीं करी कि पॉल्यूशन है, या नदी पॉल्यूटेड है, या वातावरण में पॉल्यूशन है। जो तो अक्सर हम लोग जब बातचीत करते हैं सुनते हैं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि स्मॉग बन गया है, ये चीजें हम लोग ने सुनी ही नहीं थी बचपन में। हम लोग सिर्फ कोहरा जानते थे कि कोहरा बहुत हो गया, कैसे निकलेंगे। हम लोग पॉल्यूशन के बारे में कभी ये नहीं सुने थे कि पॉल्यूशन इतना आ जाएगा कि हम लोग देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हमारा जो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाएगा। हम लोग ने भैया बचपन में पानी हैंडपंप से पिया है, नलों से पिया है। आज आप देखिए कि व्यक्ति बोतलों में पानी पी रहा है। आज बच्चे जो है वो, उनको ये बात मालूम ही नहीं है कि ट्रेन में जब चला करते थे तो पानी का बड़ा वाला कैंपर लेके चला जाता था, उसमें भर, क्योंकि पानी कभी बोतलों में बिकता ही नहीं था। तो समय के साथ पर्यावरण में कमी आई, हमारे रहन-सहन जो है गड़बड़ हुआ, हमारा एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, वो चीजें कम हुई। अच्छा, हम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग कहेंगे अरे हम पहले तो व्यायाम करते नहीं थे, देखिए अब तो मैं आधी घंटा कर रहा हूं, पर पहले हम जाने अनजाने में बहुत व्यायाम कर रहे थे। हम साइकिल चला रहे थे, हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हम बाजार से सब्जी लेने जा रहे थे। इतनी हमारे पास संसाधन ही नहीं थे कि हम रोज रोज बाहर का खा पाएं। तो अब चीजें सुलभ हो गई हैं, चीजें जल्दी मिल पा रही हैं, बहुत ज्यादा मिल पा रही हैं। तो इसका जो असर है वो हमारे शरीर पे दिखने लगा है।
0: ये सारी चीजें जब हम देखते हैं कि कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो बदलाव के कारण हम अपने रहन-सहन को, अपने खान-पान को बदलते आ रहे हैं, हमारे आहार विहार में जो परिवर्तन आता जा रहा है, शारीरिक श्रम की कमी, ये सारी चीजों की वजह से आज स्वास्थ्य में और बढ़ती हुई आबादी के कारण भी हम ये चीजें ज्यादा देखते हैं कि भाई व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और इस बीमारी के लिए वजह हम स्वयं हैं और हमारी जीवन शैली है ज्यादातर। अब जब हम पिछले दिनों बातचीत कर रहे थे तो एक ऐसी चीज जिसके बारे में व्यक्ति अक्सर बातचीत करने से शर्माता है वो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या, यानी कब्ज की समस्याएं। और कब्ज के बारे में आप ये बात बता रहे थे कि अगर हम अपने भोजन पर ही ध्यान दें तो फिर कब्ज की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। प्रायः ये चीज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मीटिंग में बैठा हुआ है या फिर ऑफिस के काम में लगा हुआ है, या कोई ऐसे जगह पर है जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पा रहा है या समय पर भोजन नहीं कर पा रहा है। कई लोग शौचालय साफ सुथरे नहीं मिलेंगे या घर के बाहर शौच पर जाना मुश्किल है, इसलिए वो अपने जो नेचुरल कॉल है जब उन्हें शौच में जाने जैसा लगता भी है तो उसे रोक लेते हैं। तो ये सारी चीजें कारण बन रही हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, ये बात समझ में आती है। अब प्रश्न उठता है कि कब्ज आखिर कब तक, मतलब कब तक अगर मैं इस चीज को बिना ट्रीट किए हुए, इग्नोर करते हुए अगर ऐसे ही चलता रहूं तो फिर क्या होगा? क्योंकि प्राय लोग कह देते हैं अरे कोई बात नहीं, चल तो रहा है ना गाड़ी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 2-3 दिन में एक बार पेट साफ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो रहा है, उसे भी एक नया नॉर्मल, एक न्यू नॉर्मल समझ के लोग चलते हैं। तो क्या ऐसे चलना सही है? अगर हम कब्ज जैसी चीज को इग्नोर करते जाते हैं तो आगे क्या समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं?
1: हमारी बड़ी आंत में बहुत बड़ी ताकत है पानी को सोखने की। और एक चीज समझिए कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा मल है, वो पेट से, जब पेट से निकल के छोटी आंत में जाता है तो उससे सारे न्यूट्रिएंट या जो ताकत की चीजें वो सोख ली जाती हैं। और जब वो बड़ी आंत में जाता है तब उससे पानी सोखा जाता है। और आप सोचिए कि जो क्रिया 12-14 घंटे में सोखने की होती है, वो जब आप उसी क्रिया को 24 घंटे 48 घंटे करवाइएगा तो वो ज्यादा पानी सोख लेगा। और इससे जो हमारी जो मल है वो इतना कड़ा हो जाएगा कि उससे निकालने में हमें ताकत लगानी पड़ेगी। और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की खराबी ये है कि वो आपके पाचन तंत्र में जो गंदगी है उसे लंबे समय तक रहने देगा, वो निकल नहीं पा रही है। और कब्ज में जब वो लंबे समय तक रहेगी तो पानी के बाद जो टॉक्सिन्स है उनको भी खींच लेगा और हमारे शरीर में जो चीज हमें नहीं चाहिए वो मिलती चली जाएगी। ये तो हुआ शरीर के ऊपर नुकसान। जो फिजिकल नुकसान है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज से, वो है बवासीर, आप जिसको अंग्रेजी में हिमरॉइड या पाइल्स भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग नर्व्स अपने कब्ज के बारे में बात करते हैं

0: डॉक्टर क्लेम करते हैं वो लोग इसका इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने दीवार पर इसके बारे में इश्तेहार देखे होंगे कि मिलिए इनसे और ये आपका बवासीर ठीक कर देंगे। तो ये क्रॉनिक कब्ज के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिसको हो सकती है व्यक्ति को, वो है बवासीर या हेमोराइड्स। आदमी अपना पेट साफ होने की तो बात ही नहीं कर पा रहा है और उसके बाद नीचे से कोई और मस्सा निकल गया तो उसके बारे में कहां बात करेगा। तो पता चलता है कि समस्या जो एक बड़ी हो गई थी कब से, वो महा बड़ी समस्या के रूप में आदमी उसको उससे परेशान हो चुका है और वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है।
1: बात न करने की जब ये चीज सुनते हैं तो समझ में आता है कि लोग इन चीजों से थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं या कभी कभार वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि ये चीज हम किसके सामने बोलें और बोलेंगे तो क्या समझा जाएगा हमारे बारे में। और जैसे आपने कहा कि भाई कॉन्स्टिपेशन ही जब क्रोनिक फॉर्म में बढ़ जाता है, वो उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप हो जाता है, तो आगे बवासीर और पाइल्स जो आप बात कह रहे थे वहां तक बात पहुंच जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते करते यहां तक पहुंचे हैं, तो ये बीमार हो रहे हैं, ये कैसे अपने आप को समझा जाए, कैसे देखा जाए कि हाँ मेरे को ये तकलीफ हो रही है और कब हमें एक चिकित्सीय सलाह लेने की जरूरत है।
0: सबसे पहली बात, बवासीर कोई रोग नहीं है, ये एक रोग का लक्षण है। पहले हम ये समझें कि बवासीर हो क्यों सकता है। एक जैसा हम और आपने बात की कि क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक अगर आपको पेट नहीं साफ हो रहा है तो आपको बवासीर हो सकता है। आप लंबे समय तक आपको अगर डायरिया भी चल रहा है, आपका पेट बह रहा है, तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो आपका नीचे जो गुदा द्वार बंद होता है वो ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है। आप बहुत लंबा समय बैठते हैं, अगर अपने काम में आप बैठे ही रहते हैं, आप बहुत मोटे व्यक्ति हैं, क्योंकि मोटापा जो है, जो हमने सबसे बड़ी बीमारी, देखिए हमने पहली जो जिस बीमारी को हमने डिस्कस किया वो मोटापा ही थी, क्योंकि मांसपेशियों के बीच में जो फैट सेल्स हमारे मोटापे की कोशिकाएं हैं वो जमा होने लगती हैं और वो उस मांसपेशी की ताकत को कमजोर करती चली जाती हैं। तो अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको उससे भी परेशानी होगी। महिलाओं में जब उनको प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारी महिलाओं को बवासीर की समस्या प्रेगनेंसी के समय होती है और उम्र के साथ जब हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तब भी उनको पाइल्स या बवासीर हो सकता है। ये बवासीर क्या है, सबसे एक समझ लीजिए कि हमारा जो गुदा द्वार है वहां रक्त की कुछ कोशिकाएं हैं और ये मेरे अंदर भी है और जितने लोग सुन रहे हैं सबके अंदर ये कोशिकाएं हैं, किसी कोई नई चीज नहीं है, और ये मांसपेशी के बीच में है। ये जब ताकत इनमें रहती है, ये मजबूत रहती हैं, ये इन कोशिकाओं को, ये जो गुदा द्वार है इसके त्वचा के अंदर रखी रहती हैं। और जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है या आप मोटापा होता है या आप प्रेगनेंसी होती है तो ये मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, तो ये रक्त कोशिकाएं जो है वो एक मस्से के रूप में जो है गुदा द्वार के पास आ जाती हैं। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। मेरे पास एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो कि बहुत बड़ी एक कंपनी में काम करते थे, वो आरोग्य मंदिर में आए और उन्होंने जो कंप्लेन की वो ये थी कि उनको थकान हो रही है। उम्र उनकी करीब 48 साल थी और वो सिर्फ ये बोलते थे कि मैं बहुत अच्छा खाता हूं, मैं बहुत अच्छा भोजन करता हूं, मुझे कभी कभार कॉन्स्टिपेशन होता है और मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लगाता हूं, मैं बहुत उच्च पद पे आसीन हूं तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो मुझे थकान लगती है। और तब भी वो हमारे चिकित्सालय में अपनी समस्याएं बता नहीं रहे थे,

0: और मुझे बहुत थकान हो रही थी, बहुत थकान हो रही थी। तो ऐसे डॉक्टर, उनके पास कोई ब्लड रिपोर्ट भी नहीं थी, कोई खून की जांचें भी नहीं थी, तो हम लोग ने कहा कि एक जांच करा लिया जाए, कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। हाँ, और हम लोग सोच रहे थे कि उनको कोई बड़ी समस्या निकलेगी, तो मालूम चला कि उनका हीमोग्लोबिन जो है, जो लाल रक्त कोशिकाओं वाला हीमोग्लोबिन है, वो करीब जो नॉर्मली 11 से 14 के बीच में होना चाहिए, वो सिर्फ 7 था। और जैसे ही रिपोर्ट आई और जब उनसे मिला गया, तो उनसे पूछा गया, क्या आपके जो मल है उसमें खून तो नहीं आता है? तो उन्होंने संकुचाते हुए बोला, हाँ आता तो है, पर हम किसी को बताए नहीं। तो सोचिए, ये व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, उच्च पद पे आसीन है, वो अपनी समस्या नहीं बता पा रहा है, तो हम और लोगों से क्या सोचें? तो आप यदि अपनी समस्या की बात नहीं करेंगे, तो उसका निवारण नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको बवासीर की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो किसी भी डॉक्टर से या कोई भी जो हेल्थ प्रोफेशनल है जिसको आप मानते हैं, उससे सलाह जरूर लीजिए। लोग इसके बारे में, भैया जो बहुत भारी काम करते हैं, बहुत भारी सामान उठाते हैं, उनको भी इसकी समस्या होती है, और वो ये सोच लेते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमको हो रहा है। या आपको अपनी जो चीजें नॉर्मल नहीं है और आपको अगर हो रही हैं, तो उसके बारे में आपको जरूर बात करनी चाहिए। यदि आपको थकान लग रही है, आपके मल रास्ते से खून आ रहा है, आपको भयंकर कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है, आपको रेगुलर डायरिया हो रहा है, या आपको ऐसा काम करते हैं जो आप बहुत मोटे हैं, आप भारी वजन उठाने का काम करते हैं, तो आपको अपनी समस्या के बारे में जरूर बताना चाहिए कि आपको थकान लग रही है। अच्छा, लोग भैया जैसे श्री भैया बुखार होता है तो आदमी तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है, बड़ा छोटी समस्या है, तब भी वो तुरंत दौड़ के जाता है कि अरे डॉक्टर साहब एक बार देख तो लेंगे, और डॉक्टर साहब उसको अब छू के, थर्मामीटर डाल के, या तुरंत उसकी नब्ज चेक करके देख लेते हैं, तेज तो नहीं चल रही है, छूते ही मालूम चल जाता है। इस समस्या जब पूरी विकराल रूप ले लेती है, तब वो जाता है। और तब भी मानव, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा, क्यों मैंने कहा कि हम लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि अरे हमें कोई पहचान तो नहीं लेगा हम कौन है, लोग छुपते हैं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो हम लोग सर्जरी के ओपीडी या जनरल मेडिसिन के ओपीडी में जब पेशेंट आता था, तो वो कान के पास आके बोलना चाहता था, हम लोग उससे बोलते दूर होके बोलो, हम और तुम ही हैं कमरे में, बाकी कोई नहीं है मत, पर वो वहां भी खुल के नहीं बोलना चाह रहा था कि क्या समस्या है। तो यदि आपको भयंकर कब्ज है, आपको मसा कोई नीचे महसूस हो रहा है आपको, या खून आ रहा है, तो कृपा करके तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाइए।
1: जैसे आप ये बात बता रहे थे तो मैं समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति का असहज होना या शर्मिंदगी महसूस करना या उसके अंदर हिचकिचाहट होना इस बीमारी को और ही बढ़ा सकता है, इसकी समस्या को और बढ़ा सकता है, और समय पर इलाज न लेने से वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से इस समस्या से लंबे समय तक जूझता रहेगा, और जो चीज़ आसानी से ठीक की जा सकती थी वो चीज़ ठीक करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर समय इशारा करता है कि यहाँ रुकना होगा। मगर आज आपने जो जानकारी दी है कि व्यक्ति सही जानकारी को न जानने के कारण और कभी-कभार पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपने शरीर के बेसिक स्वास्थ्य संबंधी चीजों के बारे में सजग न होने के कारण अपने आप को बीमारियों की तरफ आगे ले जाता है। कब्ज को अगर आप सही समय पर ठीक नहीं करते तो फिर बवासीर जैसी समस्याएं भी आपके लिए शारीरिक व्याधि के रूप में आ सकती हैं। इन चीजों के बारे में जानकारी आज हासिल हुई है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर हमें सही जानकारी मुहैया कराई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में ये चीज समझ में आई है कि हमारे शरीर का ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। अगर हम इस जिम्मेदारी को न निभाएं, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों या छोटी मोटी समस्याओं को अगर हम दरकिनार कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं या मैं काम बहुत ज्यादा कर रहा हूं या मेरे पास समय नहीं है या मैं डॉक्टर से मिल नहीं सकता, तब तक मैं इन चीजों को टालते रहूं जब तक वो हमें पीड़ा देने वाले या बहुत ज्यादा समस्या का विकराल रूप धारण करने तक रुकते रहें, तो फिर उसके इलाज में भी लंबा समय और ज्यादा व्याधि हमें महसूस करनी पड़ सकती है। इसलिए जब भी समस्याएं आपके शरीर में दिखें तो तुरंत ही चिकित्सीय सलाह देखने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स के पास जाकर मिलकर सही राय करना बहुत आवश्यक है और साथ साथ अपने खान पान, भोजन इत्यादि आहार विहारों पर भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक चीज है। आज के सेहत स्वास्थ्य में रुकते हैं, रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हु एम आई, ये सवाल हमें कब से परेशान कर रहा था और अब फाइनली लगता है कि हमें जवाब मिलता जा रहा है। जहां हमने सोल कॉन्शियसनेस की बात की थी, ये जानने की कोशिश की थी कि मैं वो प्यार करने वाली शांत आत्मा हूँ, उसे एक्सपीरियंस करने के कुछ स्टेप्स हमने पिछली कड़ी में सीखे थे, उसे अपनाया भी होगा, जरूर अपनाया होगा क्योंकि मैंने अपनाया होगा। एक बार फिर उस जो तीन स्टेप्स थे उन्हें छोटा छोटा याद कर लेते हैं। पहले वो शब्द सुनना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फिर उस थॉट को, उस विचार को क्रिएट करना और फिर बाकी सभी विचारों को आते जाते रहकर उस एक विचार पर कुछ देर के लिए कंसंट्रेट करना। यहाँ से शुरू होता है हमारा ये सफर। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं सफर को और हर बार की तरह बातचीत के लिए हमें इस सफर में हमारी हम सफर बनी है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि अभी हमने बात की कि इस एहसास को जो हम अब एक विचार की बात कर रहे हैं कि मैं वो शांत स्वरूप प्यार करने वाली आत्मा हूं, उसको हमने अपने साथ रखा, दिन भर रखा। बहुत से लोगों का एक सवाल आ रहा है, शायद मैं भी कहीं जानना चाहती हूँ, इससे होगा क्या?
1: अच्छा
0: सोल कॉन्शियसनेस को अगर मैं कर भी लूंगी, मैं समझ रही हूँ कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, जैसे कि आपने कहा था कि आई फील रियली हैप्पी, अगर एक मिनट भी अगर मैं खुश रह पाती हूँ, वो एक मिनट की भी खुशी आगे कन्वर्ट होती जाएगी खुशी में। वन इज वेरी अपेरेंट कि मैं खुश रहूंगी, आगे और भी कई तरह के परिवर्तन होंगे, क्योंकि अगर ये परिवर्तन मुझ में होते दिख रहे हैं, मुझे या दर्शकों को दिख रहे हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं।
1: बिल्कुल नहीं, परिवर्तन होंगे बट एंड परिवर्तन इमिजिएटली शुरू हो जाएंगे, लेकिन विद अटेंशन। यू नो इट वॉन्ट बी कि आपने एक बार कह दिया सुबह कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और सारा दिन परिवर्तन हो गया है। इट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बी इन माई होल थिंकिंग प्रोसेस, माई होल बिलीफ सिस्टम। माई एंटायर ओल्ड बिलीफ सिस्टम कोलैप्सेस नाउ। यू नो सारे जो बिलीव्स लेकर मैं चल रही थी वो सारे फिनिश्ड हो गए हैं, तो तुरंत परिवर्तन है। बिकॉज देन इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑल टूगेदर, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। जो आज तक हम सुनते आए कि सारी दुनिया एक मिथ्या है, दुनिया मिथ्या नहीं है, लेकिन हमने जो थॉट क्रिएट कर दिया था कि हम सत्यता से परे हट गए थे, जो सच है उसको कहीं छुप गया था वो, और बाकी सारी चीजों को हम सत्य समझ लिया। अब जो आपने कहा, जो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन या सबसे पहला जो परिवर्तन आएगा वो है जब हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं इटर्नल हूँ। सबसे पहली बात, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मृत्यु का भय, मेरी मृत्यु नहीं होती है। तो मृत्यु का भय धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे फिनिश हो जाता है, क्योंकि मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं कौन हूँ। हम सारा दिन एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अवेयर तो है ना कि ये कॉस्ट्यूम है, भले वो सारा दिन हमारे ऊपर ओढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस है कि ये कॉस्ट्यूम है, इसको मैंने पहना हुआ है, कल हम कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे। तो मैं आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियसनेस जब ये एक सत्य बन जाएगा तो भय खत्म होने लगेगा जीवन से, कोई भी भय नहीं रहेगा। हम अपनी खुशी के लिए बाहर किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज नाउ वी अंडरस्टूड हैप्पीनेस इज मी, सो नो सेंस ऑर्गन से आई नीड हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड। तो धीरे धीरे मेरी डिपेंडेंसीज खत्म, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अ पोजिशन, अ पर्सन। तो डिपेंडेंसीज जहां खत्म होने लगती है, एडिक्शंस भी खत्म होने लगती है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस इज आई एम। एडिक्शन भी हम क्यों करते हैं? कोई भी चीज वो हमें खुशी देती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी अपना सारा काम करना बंद कर देंगे, लेकिन इट्स वर्क दैट आई एम डूइंग, इट्स एक्टिविटी दैट आई एम डूइंग, इट इज आई एम डूइंग दिस सो दैट आई कैन गिव टू पीपल।
0: यू नो, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव दिस नोशन कि जो ज़ील फॉर वर्क है ना, वर्क ही मेरी जिंदगी है, काम मेरी पूजा है, वो खत्म हो जाएगा। बट
1: वो खत्म नहीं होगा, उल्टा वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप उसको इंजॉय करना शुरू करेंगे। सी द डिफरेंस इज, आप ये करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, ठीक है? अभी का बिलीफ सिस्टम ये है, अब हमारा ये चेंज हो गया कि मैं ऑलरेडी खुश हूं, अब मैं खुशी से ये करना चाहती हूं, सो टू थिंग्स इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. एक है कि मैं ये करूंगी तो खुशी मिलेगी, तो हो सकता है वो मिले भी, हो सकता है नहीं मिले भी. एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज सेइंग सैटिस्फैक्शन नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं है. दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, कि व्हाट इज दैट सैटिस्फैक्शन यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज दे डूइंग एवरीथिंग एंड थिंकिंग कि ये करने के बाद मुझे वो एक्सपीरियंस होगा. बट वो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस बाहर से नहीं आने वाला है. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, तो आई एम हैप्पीली गोइंग टू डू दिस. तो फर्क ये हो गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं करते हुए खुशी अनुभव कर रहे हैं, वो काम अच्छा ही होगा. खुशी खुशी आप जो काम करोगे वो काम गलत हो ही नहीं सकता. फिर भी अगर 1% चांस कि उस कर्म का जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो वैसा नहीं हुआ जैसा आपको चाहिए था, फिर भी खुशी तो फिर भी आपको मिली. सो योर खुशी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग आउटसाइड, एंड अगेन इट विल बिकम योर इंजॉइंग और योर हैप्पी थ्रू द जर्नी, नॉट एट द डेस्टिनेशन. जो हमने सबसे पहले लिया था कि खुशी उस यात्रा के दौरान है, आपके परिवार को संभालने के दौरान खुशी है, ये नहीं कि वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी. नो, द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग दम ग्रो इज फन, इट्स इंजॉयबल. तो दैट होल बिलीफ सिस्टम विल चेंज कि दीज क्वालिटीज ये मेरे अंदर हैं, अब मैं इनको अंदर से बाहर एक्सप्रेस करना शुरू कर देती हूँ. तो क्या होगा, सैटिस्फैक्शन जो हम ढूंढ रहे हैं बाहर वो मेरी इनहेरेंट नेचर बन जाएगी. यू विल रिमेन स्टेबल, यू आर हैप्पी विद द वे थिंग्स आर आउटसाइड बिकॉज यू आर हैप्पी इनसाइड. आप बाहर नहीं ढूंढ रहे. उससे क्या होगा, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं सारी, अभी क्या होता है स्पेशली बहुत सारे बच्चे जो हमें ईमेल लिखते हैं या फोन करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, यू नो, एंड दे आर सफरिंग इनसाइड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स. यू नो, सम पीपल राइट, मैं सबके सामने बोल नहीं पाता हूँ, या मैं स्टेज पे बोल नहीं पाता हूँ, या मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटर नहीं हूँ, या मेरी फ्रेंड बहुत स्मार्ट है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ. You know, all these things, ये एक inferiority complex create कर रहे हैं. जब हमें ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो फिर ये सब चीज़ें matter नहीं करेंगी, क्योंकि सबसे important है कि वो positivity मेरे अंदर भर जाएगी, self-esteem जो हमने बात की. I know my value, I know what I'm worth. My worth is not dependent कि मैं सबके सामने स्मार्टली बोल सकूं या नहीं बोल सकूं. दैट डज नॉट डिसाइड व्हाट आई एम वैल्यूड.
0: इनफैक्ट आई थिंक ग्रेजुअली जो सक्सेस और फेलियर की प्रॉब्लम है, सक्सेस गिव्स मी, मेक्स मी रियली फील गुड, यूफोरिया होता है, एंड फेलियर मेक्स मी गो सो डिप्रेस. वो दोनों का बीच का बैलेंस आ जाएगा.
1: एब्सोल्युटली, बिकॉज आई एम स्टेबल ना, स्टेबिलिटी आ जाएगी. और ये सब सी दैट्स व्हाट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी आर ह्यूमन बीइंग्स नॉट ह्यूमन डूइंग्स. अभी हम ह्यूमन डूइंग्स बन गए, ये करूं तो अच्छा होगा, ये करूं तो अच्छा. ये पहले बनो, यू बी दिस एंड देन यू डू वट एवर यू हैव टू डू. तो उससे क्या होगा, वट एवर यू हैव बिकम इनसाइड, वो एनर्जी आपकी फ्लो करेगी उसमें. अब आप लोगों से मिलते हैं, हो सकता है कि हम बहुत स्मार्टली बात नहीं कर सकते. समबडी सेज आई कैन नॉट टॉक नाइसली, इट डजेंट मैटर. बट इफ यू आर सो पीसफुल इनसाइड, यू आर सो प्योर इनसाइड, यू आर सो पॉजिटिव इनसाइड, बात भी करने की जरूरत नहीं है. पीपल विल जस्ट वॉन्ट टू कम एंड सिट विद यू, क्योंकि आपके पास बैठते ही उनको ऐसी इतनी अच्छी आपसे फील आएगी, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आएगी. आप बहुत अच्छी लैंग्वेज ना बोले उससे मैटर नहीं करेगा, आपके बोल कितने मीठे होंगे, उसमें इतनी पवित्रता होगी, वो किसी को भी अच्छी लगेगी,
0: कंफर्ट लेवल आ जाएगा,
1: कंफर्ट लेवल आ जाएगा. तो यू नो, एक्सटर्नल चीजों से जो हमारी बहुत सारी, क्योंकि हर एक के पास हर चीज नहीं हो सकती है बाहर. Somebody can be very beautiful in the physical sense, somebody may be not. But it's more important ki I'm beautiful inside. And wonderful baat ye hai ki everybody can be that.
0: Achha, ek aur baat sister Shivani yahan janna chahenge ki aajkal ek shabd, kai sare fads jo hai na, wo itne ghul mil gaye hain. Aajkal har level par baat ho rahi hai, jaise hum adhyatmikta ki baat karte hain, ki spirituality. Similarly, there's one word which is like spread all over the world, I think, और वो है spiritual intelligence.
1: Right.
0: You know, आपकी आध्यात्मिक बुद्धिमता कहा जाए या जो भी बात कही जाए, exactly what it is. ये क्या है?
1: Spiritual और intelligence. Spiritual मतलब ये स्मृति आ गई कि I am that pure conscient being. मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं शरीर नहीं और लेबल्स नहीं. Intelligence, कि आपको पता तो चल गया, यू नो व्हाट इज इंटेलिजेंस, अ वेरी डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज कि टू यूज व्हाट यू नो इन द राइट वे एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस एंड विद द राइट इंटेंशन. आपको बहुत कुछ पता है वो काफी नहीं है, लेकिन आपको जो पता है उसको सही समय पर सही तरीके से यूज करना, तब कहेंगे ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है,
0: बुद्धिमान है.
1: या तो कहेंगे इनको सब कुछ आता है लेकिन ये इसको समय पर यूज नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट इंटेलिजेंट. अब हमें स्मृति है, अब मुझे ज्ञान है, अब मुझे पता भी चल गया कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. नाउ इंटेलिजेंट, I will be intelligent when I use that in the right way, at the right place, at the right time. How? कि now I have no fear. अब अगर मेरी कोई चीज गुम हो जाती है, बहुत valuable चीज गुम हो जाती है, मुझे पता है कि वो मेरी चीज थी, वो मैं नहीं हूँ, गुम हो गई, कोई बात नहीं, no disturbance, intelligent. नॉलेज है, उसको यूज किया, intelligent. आप आए, आपने आकर मुझे criticize कर दिया, कुछ कह दिया, बहुत बुरा भला कह दिया, मुझे पता है आपके मन में मेरे प्रति कोई इमेज है, आप उस इमेज के साथ खुश नहीं है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप मुझे नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे तो देख ही नहीं सकते. यू डोंट नो मी स्टिल, आई नो माई सेल्फ नाउ, सो आई विल नॉट गेट हर्ट.
0: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली.
1: आई विल नॉट गेट हर्ट, दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. If I know कि I am a peaceful soul, and जैसे आपने आकर कुछ कह दिया and I get hurt, then I'm not intelligent. So knowledge है, लेकिन knowledge को सही समय पर सही तरीके से use नहीं किया तो हम कहेंगे ज्ञान होने का फायदा क्या फिर आपके पास. हर step पर उस, इसीलिए जो आपने कहा ना soul consciousness को use करना, सिर्फ knowledge is of no use. या morning में बैठ के 5 मिनट कर लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सबसे पहले तो भय खत्म हो जाएगा, दूसरा रिलेशनशिप्स. अब अपने ऊपर तो स्टेबल रख पा रहे हैं कि ठीक है अब गुस्सा नहीं आता बहुत ज्यादा, लेकिन आप आए, आपने सडनली बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए या कुछ कहने लग गए, अब मेरी थिंकिंग आपके प्रति कैसे चलनी चाहिए. पहले थी ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मुझे ऐसे बोल दिया, अच्छा बोल दिया, अब मैं चुप क्यों रहूं, मुझे भी दबा, यू नो दोज ओल्ड थिंकिंग पैटर्न. इंटेलिजेंट, कोई बात नहीं, ये भी तो एक शांत स्वरूप आत्मा है ना, अभी थोड़ा सा क्रोध के वश है, लेकिन ये है कौन, क्योंकि आई एम इन दैट स्टेट, सो आई एम एबल टू लुक एट यू इन दैट स्टेट. अब क्या होगा, मेरा रिस्पॉन्स आपके प्रति चेंज हो जाएगा. पहले गुस्से का रिस्पॉन्स गुस्सा था, धीरे धीरे सेकेंड स्टेज आएगी, आप गुस्सा कर रहे हैं, आई एम एबल टू रिमेन स्टेबल. तीसरी स्टेज आएगी, आई एम एबल टू रिमेन स्टेबल लेकिन आपके प्रति शुभ भावना, आपके प्रति भी कोई अंदर से थोड़ा सा भी द्वेष
0: नहीं,
1: थोड़ा सा भी नेगेटिविटी नहीं, तो उससे क्या होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू कम डाउन जो भी सामने हमारे होगा. तो फिर उससे क्या होगा, हम चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो सामने वाला व्यक्ति भी चेंज होने लगता,
0: वातावरण बदलने लगता है,
1: बदलने लगता है. तो दैट ऑल हैपनिंग विद दैट वन रिमेम्बरेंस कि मैं कौन हूँ. और धीरे धीरे ये भी होने लगता है कि जैसे हमें कई फोन कॉल्स ये आते हैं कि पेरेंट्स फोन करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत टेंस्ड हैं, हम उनको क्या करें. अब आपको अगर दूसरे को एम्पावर करना है, लेकिन उसके लिए पहले
0: खुद तो
1: खुद शक्तिशाली होना पड़ेगा. तो हमारे पास अगर कोई आ रहा है, हमें उसकी मदद करनी है, पहले वो शक्ति मेरे अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए. सो फॉर अ पेरेंट, फॉर अ टीचर, ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस शक्ति से भरपूर हो, क्योंकि आपका रोल है.
0: एक्चुअली हमने जो पहले भी एक बार ये बात की थी कि जो सेंसिटिविटी को हम अपनी ताकत मान रहे थे कि मैं रो सकती हूँ, रो पाने की क्षमता है मुझ में, तो ये मेरी ताकत है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि वो रोना जो है वो भी एक नेगेटिव एनर्जी.
1: हाँ, बिकॉज यू नो द मदर शी वाज सेइंग कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है तो मैं क्या करूँ. आई सेड आप पहले तो एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर लो, कुछ भी गलत नहीं है, वो पढ़ेगा. बट एक शीसिंग पर मैं क्रिएट ही नहीं कर सकती हूँ पॉजिटिव, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो नहीं पढ़ता. सो देन आई जस्ट आस्क्ड हर, जो चीज आप थॉट में नहीं क्रिएट कर पा रहे हो,
0: होगा कैसे
1: वो प्रैक्टिकल में वो नहीं कर पा रहा है, फिर देन एक्सेप्ट इट, यू नो, देन व्हाई आर यू फोर्सफुली ट्राइंग टू चेंज हिम. आप थॉट भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, वो प्रैक्टिकल कैसे करेगा, मतलब हम इतने कमजोर हैं, तो वो भी कमजोर है फिर. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तो आप अपनी थिंकिंग पे उसको शुरू करो, फिर वो एनर्जी उस तक वो पहुंचेगी. फिर जब आप बोलोगे उसको कि पढ़ ले, इट विल बी विद पॉजिटिव एनर्जी. इट विल नॉट बी ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो ऐसा है, यू नो, वो नेगेटिव एनर्जी तो ट्रांसमिट करते हैं.
0: एक्चुअली होता यही है कि पहले ही मन में माना हुआ होता है कि पढ़ेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं बात, तो फिर कहोगे कि पढ़ो.
1: Yes.
0: कि मैं कह रही हूँ ना, नहीं मानोगे तुम, पढ़ लो. सो देन आई कैन अंडरस्टैंड.
1: ये जो हमने यू नो एक बार कई क्वेश्चन हमें ये भी आए कि लोगों ने, हमने कहा था कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर फर्स्ट. सो पीपल सेड, यू नो, हाउ डू यू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, देन दे विल नॉट चेंज. आप जैसे हैं पहले उसको स्वीकार करना, मतलब पॉजिटिविटी. जैसे ही मैंने कहा इनको ऐसे होना चाहिए था, इनको ऐसे नहीं होना, मतलब नेगेटिव थिंकिंग आपके प्रति मेरा चलना शुरू हो गया. अब भले मैं मुख से आपको अच्छे बोल बोलूं कि आप तो कर लेंगे, लेकिन अंदर सोच रहे हो ये तो नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी कौन सी ट्रैवल कर रही है, नेगेटिव, तो आप नहीं करेंगे. तो एक्सेप्ट करना मतलब सबसे पहले आप जो हैं जैसे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो रिस्पेक्ट, बिकॉज आई सी द सोल. यू नो एक्सेप्ट करना भी कब इजी हो जाएगा, व्हेन आई सी द सोल, नॉट यू नो, दैट्स व्हाई एवरीथिंग गेट्स इंटरकनेक्टेड नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड कि जब मैं देखूं कि ये भी एक पवित्र आत्मा है, भले छोटे छोटे अभी दाग लगे हैं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस मतलब उस प्योरिटी को देखना, वो आत्मा पहले ओरिजिनली कैसे थी उसको देखना. तो एक्सेप्ट करना, भले आप कितना भी गुस्सा कर रहे हैं आज, एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा. आपके प्रति थॉट्स कैसे चलेंगे, ये भी प्योर सोल है. वाइब्रेशन आपको कैसी मिलेगी, ट्रांसफॉर्म होना, बिकॉज ट्रांसफॉर्म होने के लिए एनर्जी चाहिए. सब लोग चेंज होना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर वो शक्ति नहीं है. आप जब किसी के लिए इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, निमित्त बनते हैं, आप उनसे बात करते करते अगर उनको वो शक्ति भी दे पाते हैं, देन टू ट्रांसफॉर्म इज वेरी इजी. So that will play a very important role.
0: I think the दोनों journey, दोनों consciousness साथ साथ चलनी चाहिए कि मैं भी वो प्योर सोल हूँ, सामने वाले जितने भी लोग हैं वो भी,
1: वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा.
0: ओके,
1: वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. एंड एक्चुअली दैट्स द जर्नी, यू नो, कि सारा दिन हमें इसको प्रैक्टिस कैसे करना है कि मैं आत्मा हूँ. इसको सारा दिन, एक तो हुआ हमने मॉर्निंग में बैठ के किया, जो वो सारे स्टेप्स 5, 10, 15 मिनट जितनी देर भी इजिली कर बैठे, फिर उसके बाद सारा दिन में एक अभ्यास करना है, अटेंशन रखनी है, हर थोड़ी देर बाद बार बार अपने आप को याद दिलाना है, जो हमने शुरू से कहा हर एक घंटे के बाद एक मिनट स्टॉप ब्रेक टू डू व्हाट, स्टॉप चेक व्हाट वाज माय थॉट एंड अगेन रिमाइंड हु एम आई, दैट्स इट, आई एम अ पीसफुल सोल, गो बैक टू वर्क, यू नो. तो इसलिए कोई भी थोड़ी सी भी ट्रेस अगर आई थी कोई और चीज की, इट फिनिशेस. एंड दूसरा, जब हम किसी से मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थॉट प्योर सोल. वी कॉन्शियसली मेक दिस एफर्ट. किसी को पता नहीं चलेगा, बोलना नहीं है, बहुत दूर का ऐसे करके देखना नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली क्रिएट अ थॉट, आई एम मीटिंग अ प्योर सोल. तो फर्स्ट वाइब्रेशन जो उनको आपसे मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी, दैट विल बी वेरी प्योर. धीरे धीरे, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाएगा कि हाँ, हम किसी के फिजिकल फॉर्म या स्टेटस या इससे यू नो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम उनको रियलिटी में जानने लग गए हैं. तो जैसे ही हम आपको उस कॉन्शियसनेस से देखेंगे, तो हमारी आपके प्रति जो थॉट्स होंगे वो सारी चेंज हो जाएंगे, तो व्यवहार चेंज हो जाएगा. और अगर हमारा व्यवहार चेंज हुआ, आपका व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. जर्नी बिगिंस फॉर एवरीबडी.
0: वंडरफुल. अब कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि मॉर्निंग में हमने शुरू किया, ये जो हमने चार स्टेप्स की बात की है, बहुत से लोगों के सवाल ये हैं कि कैसे बैठना है, क्या यू नो नहाना या सब कुछ आप साफ करके या नहा धो के आप बैठेंगे, पूजा की तरह बैठना है, कहाँ बैठना है, रेगुलर उसी वक्त पर करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि मेडिटेशन से जुड़ी ये कई सारी जो बातें हैं जो क्लैरिटी चाह रहे हैं.
1: मेडिटेशन एक आंतरिक यात्रा है, ये एक इनर जर्नी है, और राजयोगा मेडिटेशन 24 घंटे चलता है, यू नो, बिकॉज इट्स जस्ट अ थॉट पैटर्न. ये अभी तो फर्स्ट स्टेज है, फिर जो हमने पहले भी देखा कि परमात्मा से संबंध जोड़ना, परमात्मा को याद करना, उससे बातें करना, इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ टाइम ड्यूरेशन कि आपको 10 मिनट करना है, या इट्स समथिंग जो हम सारा दिन करते हैं. लेकिन क्योंकि सारा दिन हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं, तो हम कॉन्शियसली थोड़ा समय सुबह निकालते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए. तो वो समय हर एक अपने लिए चूज करे, द अर्लियर द बेटर. जितना सुबह आप जल्दी करते हैं उतना अच्छा होगा, क्योंकि उस समय वायुमंडल बहुत पीसफुल होता है. इट्स लाइक अगर गुड़गांव से आई थिंक ऑफ ड्राइविंग टू दिल्ली, तो आई से लेट्स लीव अर्ली, नो ट्रैफिक. तो अगर कोई ट्रैफिक नहीं होगा तो आप बहुत स्मूथ, बहुत कम टाइम में और कहीं अटके बिना अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं. जितना लोग उठते जाते हैं उतना नेगेटिव एनर्जीज वायुमंडल में फैलती जाती हैं, क्योंकि हर माइंड जो जागृत अवस्था में आ गया, उठ गया, हलचल शुरू हो गई, अभी क्या करना है, कितने बजे जाना है. फिजिकल नॉइज तो है ही है घर के अंदर, लेकिन मेंटल नॉइज, द होल टर्मोइल इन द हाउस बिगिंस. तो आइडियली डू इट व्हेन एवरीवन इज स्लीपिंग. तो यू नो वो टाइम थोड़ा सा, और वैसे भी बिफोर योर डेली रूटीन स्टार्ट्स, तो उससे पहले शुरू कर लें. और इसलिए जो आपने कहा कि जरूरी है कि नहा धो के ही सब कुछ करना है, पर्सनल चॉइस हर एक की, दिस विल ऑल्सो बी पर्सनल चॉइस. लेकिन वही होता है कि जब अगर हम वो सब कुछ करने में लग जाते हैं तो शायद फिर वो बहुत लेट हो जाता है, और तब तक फिर बहुत एक्टिविटी में आ जाती है और माइंड में भी बहुत कुछ आ गया होता है तब तक. तो आइडियली बस उठकर फ्रेश होकर आप बैठ जाओ, यू नो, ताकि माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो जाए, क्योंकि दिस शुड बी योर फाउंडेशन फॉर द डे. अगर एक, क्योंकि वो जो हम कह रहे हैं ना, आने जाने वाली थॉट्स को, जब हम सवेरे जस्ट उठते हैं तो वो आने जाने वाली थॉट्स बहुत कम है, लेकिन एक एक घंटा जो पास होता जाएगा बहुत सारी होंगी. तो जितना जल्दी करेंगे एफर्ट कम, रिजल्ट ज्यादा. तो सुबह बस फ्रेश होकर अपना एक स्थान बना लें, प्रेफरेबली नॉट ऑन योर बेड, बिकॉज आप सो जाएंगे शायद फिर से. तो एक अलग स्थान जहाँ वाइब्रेशन अच्छा हो, प्रेफरेबली नॉट इन द टीवी रूम, बिकॉज टीवी रूम में भी वाइब्रेशंस बहुत अलग तरह के होते हैं. ओपन में भी कर सकते हैं, किसी बालकनी में, टेरेस पे, या फिर एक कोई भी आप स्थान लेकर आराम से बैठ जाए. और ट्राई कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो कि रोज उसी स्थान पर बैठे, और अगर ये संभव हो तो आइडियली अप्रोक्सीमेटली उसी समय पर भी बैठे. तो माइंड को भी जैसे एक आदत पड़ जाती है वो करने की. और पोस्चर की जहां तक बात है, तो यस, जो क्रॉस लेग्ड पोस्चर है आप बैठते हैं, ये डेफिनेटली हाईएस्ट अटेंशन वाला पोस्चर होता है बेसिकली. सो दैट्स द ओनली रीजन. बट अदरवाइज आप कंफर्टेबल होकर, हम जैसे अभी बैठे हैं हम बैठ सकते हैं, जैसा कंफर्टेबल लगे. जर्नी अंदर है, राजयोग फिजिकल या शारीरिक पोस्चर के ऊपर नहीं कंसंट्रेट करती है, वो हमारी आंतरिक यात्रा है, आत्मा का परमात्मा से संबंध है. और जहाँ समय और स्थान, और क्या आपने पूछा था, आंखें, हम बहुत इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखते हैं कि हम आंखें खुली रख कर बैठते हैं. क्यों? जो अब आपने देखा कि सोल कॉन्शियसनेस कितनी देर प्रैक्टिस करनी है. यू नो व्हाट एम आई डूइंग इन मेडिटेशन, आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग हु एम आई, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई डोंट नीड टू क्लोज माई आईज फॉर दैट.
2: आई विल
1: बी डूइंग दिस द होल डे. तो सिर्फ अपने को याद रखना है और उस परमात्म शक्ति को याद करना है. हम सारी दुनिया को आंखें खोल कर ही याद करते हैं, किसी को भी याद करने के लिए आंखें बंद नहीं करते हैं. तो फिर परमात्मा को याद करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत क्यों है? आंखें बंद करने से क्या होता है, नींद आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, और आंखें बंद करने से कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली कम होती है. आंखें जब खुली रहती हैं हम अटेंशन पर एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, आंखें जब बंद होती हैं बहुत सारे सीन्स आते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सारा दिन करना है. तो हम अगर आंखें बंद करके करने का अभ्यास हो जाए तो फिर हम उसको सारा दिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसा कंफर्टेबल हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे. बट ideally remember that you have to do it the whole day. मैं कौन हूँ ये सारा दिन याद रखना है.
2: कई बार वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए, जॉगिंग करते हुए कहा जाता है कि मेडिटेट नहीं कर सकते या कर सकते हैं. सो लाइक जब हम 24 घंटे
1: सब कुछ करते हुए करना है, उल्टा हम तो अभ्यास ये करते हैं कि जितना ज्यादा परसेंटेज उसको बढ़ा सके, जो ऐसी स्टेज तक पहुंच सके जो सोल कॉन्शियसनेस 24 आवर्स है, बिकॉज दैट इज दैट परफेक्ट प्योरिटी ऑफ 100% प्योर स्टेज. जब आप बिल्कुल ईगो से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जिस क्षण आपको याद है मैं आत्मा हूँ, आप उस प्योरिटी की स्टेज में, जिस क्षण भूल गया तो आप ईगो की स्टेज में, तो अब आप ड्राइव करते हुए, वॉक करते हुए, इस सब में भी तो ईगोलेस बनना चाहेंगे ना. तो इट्स थ्रू आउट एक्टिविटी करते हुए भी उल्टा अभ्यास करना चाहिए, करना ही चाहिए. हम लोग कॉन्स्टेंटली वो ट्राई करते हैं कि सब कुछ करते हुए प्रैक्टिस करें कि आई एम अ सोल हु इज डूइंग दिस, आई एम अ प्योर सोल. तो क्या होगा, वॉक करते हुए भी आप वो वाइब्रेशंस, नहीं तो कुछ तो सोचेंगे, इधर उधर का सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, वो वाइब्रेशंस फैलाएंगे. आर वाइब्रेशंस क्रिएट एटमोस्फेयर. तो जितनी देर वो प्योर थॉट्स क्रिएट करेंगे, यू आर क्रिएटिंग द एटमोस्फेयर अराउंड.
2: वंडरफुल. एंड वी कैन क्रिएट, एक्चुअली
1: वी आर क्रिएटिंग.
2: थॉट्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय अस. अनकॉन्शियसली जब हम कर रहे होते हैं तो कुछ भी आ रहा होता है.
1: उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों किया, यू नो वी आर वॉकिंग, वॉक करते हुए तो सारे दिन के थॉट्स आते हैं उसके अंदर.
2: तो सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे हम आए और सोल कॉन्शियसनेस का जो एक पूरा प्रोसेस है उसको 24 घंटे तक, एक मिनट से शुरू करके 24 घंटे तक लेकर जाना, ये एक चैलेंज नहीं मैं कहूंगी, एक परिचय है एक्चुअली, यू नो. और ये जिंदगी का एक तरीका बन जाए तो आई थिंक दैट विल बी द आइडियल सिचुएशन. बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. सोल कॉन्शियसनेस के इस पूरे एस्पेक्ट को हमने समझा, कैसे हम शुरुआत करेंगे दिन की, और ये छोटी छोटी बातें कि जब हम मेडिटेट कर रहे हैं तो कुछ बातें अगर हम रेगुलराइज कर लें तो हमारी जिंदगी के लिए भी, कहा जाता है कि वो सही होती हैं. तो जब एक ही जगह पर बैठकर उसी वक्त अगर कोशिश करें कि जो 5 मिनट 10 मिनट हमने देने हैं, जो हमने अपने आप से वादा किया है कि ये वक्त तो थोड़ा हम गुजारेंगे अपने साथ, उसके बाद 24 घंटे हमारे अपने हैं, कितना अपने साथ तारुफ करना चाहेंगे, कितना हर बार अपने आप को ये याद दिलाना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो मेरे आसपास है वो कौन है. इस पूरी अवेयरनेस के साथ अगर जिंदगी जी ली जाए तो सचमुच जिंदगी खूबसूरत हो जाती है. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे फोन नंबर्स और हमारा ईमेल आईडी आपके पास है, लेकिन एक बार फिर याद दिला देते हैं. 9999 3 4 4 5 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अब वक्त है इजाजत लेने का. आपको बता दें कि आज हमने थोड़ा सा ये जाना कि मेडिटेट कैसे करना है, लेकिन और गहराई से जानेंगे अपनी अगली कड़ी में और किस तरह से हमारे हर पल को और बेहतर बना देगा मेडिटेशन का ये पूरा प्रोसेस, जानेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जिंदगी का खेल, बड़ा ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं। जिंदगी भी एक खेल है, अगर हम खेल समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और अगर खेल नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में हर व्यक्ति को जिंदगी को एक खेल समझ के खेलना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी को रियलिटी समझेंगे तो रियलिटी भी कभी कभी ख़त्म हो जाती है। आपके होने पर आपको लगेगा सब कुछ रियल है, लेकिन आपके चले जाने पर तो इसीलिए कहा जाता है ये जिंदगी का एक खेल है। जब तक आप हों, सांसें चल रही हैं, तो खुशी से रहें और खुशी से जीवन को जिए। और 21 सितंबर 2026 आज का तारीख है, और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय शके 1948 30 गते 5 भाद्रपद सोमवार आज है। विक्रम संवत भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी सोमवार उत्तराषाढ़ा और इस्लामी हिजरी रबीउल पीर बल्दा आज है। इसके साथ ही आज विश्व आभार दिवस है, विश्व अल्जाइमर दिवस है, विश्व शांति दिवस है। तो चलिए, त्योहारों का ये खूबसूरत गुलदस्ता आपके लिए और आपके इस पूरे परिवार के लिए मेरी ओर से विश्व आभार दिवस की और विश्व शांति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा डमरू वाले बाबा तुमको आना पड़ेगा। इस सुंदर गीत के साथ आप सबका दिन खुशियों से भरपूर हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ। हर हर महादेव।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशा करूंगा कि आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और हेल्दी भी होंगे। और आज सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आइए आप सभी को ले चलते हैं, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें करते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार। क्या आपने हमारा दिल खुश कर दिया है, बात मत पूछो। आपने जी गाने सुना दिए हैं, एक के नहीं सबके भी खुश हो गए, इसलिए मेरा भी एक भजन इसके साथ में थोड़ा नहीं कर देना सर। बोले बाबा रूट गए, कैसे मनाऊं।
0: जी जी जी जी,
1: हाँ ये गाना सुना गया सर, हमारा भी दिल खुश हो जाएगा। हमारे पड़ोसी है, वो भी खुश हो जाएंगे
0: जी।
1: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुरेश भाई है, बुराराम जी है, मयूर भाई है, कोचिले सुरेश भाई है, और वो क्या नाम महाराष्ट्र वाले सुभाष भाई उनकी छोटी छोटी भाषा ऐसी लगती है मेरे को, कहीं दिल खुश हो जाता मेरा। धन्यवाद सर।
0: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी को याद करने के लिए। सुभाष जी, सुरेश जी और मदन जी, बुराराम जी और कंचन भाई, सभी को याद करने के लिए। कुपराम जी का फ़ोन नहीं आ रहा है, शायद बीमार हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ने कहा था कि वो बीमार हैं और उसके बाद उनसे कभी बात ही नहीं हो पाई है। तो अगर आपका फ़ोन लग जाता है तो मुझे बताइएगा क्या सिचुएशन है उनका। और आइए विश्व शांति दिवस के बारे में बातें करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ये दिवस सभी देशों और लोगों के बीच में आज़ादी, शांति और खुशी का एक आदर्श माना जाता है। विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। शांति सभी को प्यारी होती है, इसकी खोज में मनुष्य अपना अधिकांश जीवन निछावर कर देता है, किंतु ये काफ़ी निराशाजनक है कि आज इंसान दिन प्रतिदिन इस शांति से दूर होता जा रहा है। आज चारों तरफ फैले बाजारवाद ने शांति को व्यक्ति से और भी दूर कर दिया है। पृथ्वी, आकाश व सागर सभी अशांत है। स्वार्थ और गुनाह ने मानव समाज को विखंडित कर दिया है। यूं तो विश्व शांति का संदेश हर युग और हर दौर में दिया गया है, लेकिन इसको अमल में लाने वालों की संख्या बेहद कम रही है। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो जी, नमस्कार। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, बताइए कैसे हैं आप?
2: सर आनंद मंगल है अभी, भैया खेत में है अभी, और खेत का काम चल रहा है अभी।
0: जी जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
2: विक्रम कुशवाहा बोल रहा हूँ भैया, इंदौर मध्य प्रदेश, राजपुर जिला।
0: क्या बात विक्रम जी, वहाँ पर भी आप रेडियो सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं, मोबाइल से
2: सुन रहे हैं ना भैया?
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया,
2: बहुत अच्छी आवाज आ रही है, क्लियर एकदम। और अभी गणपति जी के दिन चल रहे हैं तो एक गीत सुनना चाहूंगा।
0: जी बताइए।
2: गणपति आयो रे बाबा, रिद्धि सिद्धि लायो,
0: ठीक है
2: आयो। और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी जी जी, चलिए विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आइए, ये थे विक्रम जी जो अपनी भावनाएं, विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे, और गणपति बप्पा का ये गीत वो सुनना चाहते हैं, गणपति बप्पा आयो रे, रिद्धि सिद्धि लायो रे। चलिए आपको इस गीत की तरफ ले चलता हूँ, और उसके साथ में विश्व शांति दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं का साथ लेते हुए आप सभी को फिर एक बार याद करते हुए आइए सोमवार के इस खूबसूरत दिन को विश्व शांति दिवस की और आभार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिल से धन्यवाद रेडियो सुनने के लिए और सुनाने के लिए। सुनी विक्रम जी के बाद हमारे सुरेश जी पिंडवाड़ा से, उन्होंने भी याद किया और तेजा जी का गीत सुनना चाहते हैं। और इसके साथ में मदन जी ने भी फ़ोन करके याद किया कि भाई आजकल हमारे यहाँ जो लॉक लग गया है, यानी फ़ोन को हमेशा काम पर जाते हैं तो काम के अंदर गेट से एंट्री होते हैं फ़ोन बंद करना होता है, ये नियम लागू किया क्योंकि लोग काम करते हुए फ़ोन चलाते हैं जिसके कारण कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, ऐसे में दिक्कतें हो सकती है, इसके लिए ये विशेष रूप से काम किया गया है। तो इसलिए उन्होंने याद किया है आप सभी को और आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं भी दी है। चलिए 8:45 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ विश्व शांति दिवस की शुभकामनाओं के साथ। ये कहना चाहूँगा कि 1982 में इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह सितंबर का तीसरा मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद 2002 में थोड़ा बदल कर 21 दिसंबर का दिन घोषित कर दिया गया और 2012 में विश्व शांति दिवस की थीम रखी गई थी धरणीय भविष्य के लिए, धरणीय शांति। तो इस तरह से हर साल अलग अलग थीम लेकर यह दिन मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र मुख्य लक्ष्य होता है कि संपूर्ण विश्व में शांति कायम रहे और अमन चमन के साथ लोग जिए। तो ये है इसकी भावना आज के दिन की। तो आइए आज तेजा जी को याद करते हैं, वीर तेजा जी को। आपके लिए उनका एक गीत सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं। आज का खूबसूरत दिन आपके लिए फिर से खुशियां लेकर आए और आप सभी खुशी से झूमे नाचे गाए। अन्य विश्व आभार दिवस भी आज है, वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे के रूप में भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन हमें उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करने का मौका देता है जिन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने में अपना योगदान दिया है। विश्व भर में ये दिन मनाया जाता है। विश्व आभार दिवस निजी और संस्थागत दोनों तौर पर मनाया जा सकता है। हर कोई चाहता है कि उसके काम की तारीफ हो, ऐसे में विश्व आभार दिवस से अच्छा दिन नहीं हो सकता। इसीलिए 1965 में अमेरिका के हवाई राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समूह जमा हुआ था और वहाँ इस बात को उस जमावड़े में एक बात प्रस्ताव में रख दिया गया कि हर साल एक ऐसा दिन रखा जाए जो लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान आभार व्यक्त कर सके, अपने आप को और दूसरों को धन्यवाद दे सके। तो 21 दिसंबर का ये दिन था और उसी दिन को उन्होंने चुना और अपने अपने देश वापस गए। तो 1966 से लेकर 21 सितंबर को विश्व आभार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हो गई और तेजी से इस चीज को देखा गया और लोगों ने इसे मनाना शुरू कर दिया। और कैसे करें, आप अपने रिश्तेदारों को, माता पिता, दोस्तों को, सभी को फ़ोन करके आभार व्यक्त कर सकते हैं जिन्होंने आपको जीवन दिया है। घरों में अक्सर फालतू जानवर रखते हैं, वो हमारे मनोरंजन का साधन होता है, साथ ही हमारे घर के रखवाले भी करता है। हमें 21 सितंबर को उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहिए ताकि पर्यावरण जो हमको मिल रहा है, जो एक केयरिंग मिल रहा है पशुओं की तरफ से, उनके लिए भी धन्यवाद और पर्यावरण जो हमें हवा पानी सब कुछ दे रहा है उसके लिए भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। तो ये है धन्यवाद करने का तरीका। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, राम सिया राम, बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत भजन आप सुन रहे थे। जिस तरह से शब्दों का चयन किया गया है, इसमें हर शब्द के साथ आपको एक मोटिवेशन मिलता, आभार व्यक्त करने का भाव आता है, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव निकल कर आता है। तो निश्चित तौर पर ये दिन सार्थक होगा अगर आप इस भजन के साथ ईश्वर का और आपके आसपास में जितने भी लोग हैं उनका धन्यवाद करें। आभार और धन्यवाद पर विश्व के सबसे बड़े शोधकर्ता रॉबर्ट इमंस का मानना है कि हर मनुष्य चाहता है कि उसके काम और मेहनत के बदले लोग उसकी तारीफ करें और उसको धन्यवाद कहें। रॉबर्ट बताते हैं कि जब आप किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो वो मनुष्य मानसिक तनाव से मुक्त होता है, उसे अच्छी नींद आती है, साथ ही शारीरिक परेशानियों से वो दूर रहता है। इन वजह से वो डॉक्टर के पास भी बहुत कम जाता है। आभार प्रकट करने से मनुष्य के अंदर आत्मबल आता है। आप भी आज के दिन अपने तमाम चाहने वालों का ज़रूर आभार व्यक्त करें, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दें। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए साथियों, अभी आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। आप अपने ही परिवार में जिनके साथ भी हो, उनको दिल से मन से धन्यवाद करें और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के दिन की शुरुआत करें। देखिएगा, पूरा दिन आपको जो है एक अलग फीलिंग आएगा, एक अलग अनुभव आप करेंगे और रात को नींद भी आपको बहुत अच्छा आएगा। अगर अच्छी नींद आ जाती है तो अपने आप को फिर से सुबह उठ के धन्यवाद करें कि आज अच्छी नींद आ गई ईश्वर, और मेरे साथ जो भी मेरे साथी है, सहयोगी है, उन सभी का दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करते जाए। तो चलिए, वक्त हो गया है समाचारों का। समाचार डाउनलोड हो रहे हैं अभी और सीधे दिल्ली चलते हैं और आपको समाचार सुनाते हैं। अभी सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाली का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
5: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
6: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
5: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
7: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो बढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
5: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
8: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
6: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
9: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
10: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
9: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वाला कारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिगड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
11: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 9:19 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। वो आइए बात करते हैं आज विश्व आभार दिवस की, विश्व शांति दिवस की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। तो आइए आज जैसे कि एक और दिन है जिसका नाम है विश्व अल्जाइमर दिवस। जी हाँ, ये एक ऐसा दिन है जहाँ पर अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में लोगों को जागरूक करना। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो उन्हें ये चीज़ों के बारे में जानकारी देना। 2016 में विश्व अल्जाइमर दिवस बनाने का एक अभियान शुरू किया गया। मुझे याद रखें, इस दिन का उद्देश्य विश्व भर के लोगों को डिमेंशिया के लक्षणों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं था, बल्कि इस उद्देश्य डिमेंशिया से पीड़ित रोगियों तथा इस बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त करने वाले रोगियों को भी न भूलना है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाने का एक जो है घोषणा हुई थी। तो आइए, अल्जाइमर या डिमेंशिया है क्या चीज़, उसके बारे में जानते हैं। तब तक आपको मैं सुनाता हूँ एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: से गीत आपराज कपूर पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, दम दम डिगा डिगा मैं तो गिरा गिरा। तो आइए बड़ा ही एक बार सुनने से ये गीत आपको याद हो जाता है, तो शब्द याद हो जाता है लेकिन बड़ा ही रंग बिखेरने वाला ये गीत आपने सुना। अब आइए, इस बीच हमारे कंचन भाई से बातचीत हो रही थी, वो अंबाजी के लिए निकल गए हैं भाद्रपद पूनम के आज के इस शुभ दिन पर, और जो भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनको कॉल करिए कंचन भाई को, और उनके साथ वो भी दर्शन कर सकते हैं अंबाजी का। अंबाजी के आसपास में अगर आप है और उनसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर उनके साथ जाइए और अंबाजी का दर्शन करके अपने दिन को सुंदर और सफल बनाएं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM नई किरण, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग विश्व अल्जाइमर दिवस के बारे में। जी हाँ, एक प्रकार का ये रोग है जो खास करके थोड़ा सा एजेड लोगों को होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सब कुछ भूल जाए, उसे कुछ याद नहीं ना रहा है, तो जाहिर है कि ऐसे में ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। अल्जाइमर रोगी जो है अपने आप को, अपने यादगाश्त को खो देता है, सब कुछ भूल जाता है, उनका नाम तथा भूल जाता है, परिवार भी भूल जाता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों में भूलने की आदत हो जाती है, ऐसे में लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता है, किसी को पहचानने में भी मुश्किल होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग यदि टहल कर भी आते हैं तो उनको अपना घर पहचानने में दिक्कत होती है। समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसे में मानव मन किस कदर जद्दोजहद करता है होगा। इन सारी परेशानियों को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्जाइमर नाम की बीमारी है जिसमें लोग सब कुछ भूलने लगते हैं। और 1906 में जर्मन के न्यूरोलॉजिस्ट अल्जाइमर के बारे में, इस बीमारी के बारे में पता लगाया था, और उन्हीं के नाम से इस बीमारी को अल्जाइमर, एलोस अल्जाइमर उनका नाम था जो इस बीमारी का पता लगा, और बाद में इस बीमारी को ही यह नाम दिया गया ताकि उनका रिसर्च जो है काम आ सके या उन्हें याद रख सके। और दुनिया भर में लोगों को इस भूलने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने का काम भी 21 सितंबर के दिन से शुरू हो गया। आज के दिन विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्मरण शक्ति कमजोर करने वाली ये बीमारी ज़्यादातर बुजुर्गों को होती है, लेकिन कई बार इसके लक्षण कुछ युवाओं में भी पाए जाते हैं, इसलिए जागरूकता और इसका उचित इलाज बेहद आवश्यक है। हालांकि इस बीमारी के लिए कोई प्रॉपर इलाज अब तक विकसित नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए सावधानियां और व्यायाम जरूर है जो इस बीमारी में काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं। हेलो जी, नमस्कार
1: जी। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बोलता
0: हूँ जी। सुरेश जी, स्वागत है आपका, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: जी जी, आपको भी सर, और आज कई सारे अच्छे दिन हैं, आज आभार दिन भी है और शांति दिन भी है और कई सारे कलाकार का जन्मदिन भी है,
0: तो जी जी जी,
1: आपको भी आज के दिन की शुभकामनाएं सर। सोमवार हफ्ते की शुरुआत है और बस थोड़े ही दिनों में नवरात्रि का भी प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन पति का दिन चल रहा है और रामदेव जी का भी जन्मदिन था, और अभी रामदेव जी का भी कल ले जा था, आज लेकर परसों भी हमारे गांव में बड़ा जो शोभा यात्रा निकलती है कृष्ण भगवान की, तो और अंबाजी भी लोग जा रहे हैं पैदल, बोल हमारी अम्बे जय जय अम्बे का नारा बज रहा है। हमारे गांव में से भी दो तीन सिंह जो साथ में इकट्ठे संग जाते हैं, कल भी एक गया, आज भी जाएगा, कल भी जाएगा।
0: जी जी जी,
1: तो कई सारे लोग अभी पैदल भी जा रहे हैं यात्रा पे, तो भक्ति भाव का माहौल चल रहा है पूरा महीना तक ये।
0: बिल्कुल,
1: बस हो जाए अच्छा गाना आपकी तरफ से भोले बाबा का। ठीक है सर, नमस्ते।
0: नमस्ते सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का याद करने, सबको याद करने के लिए, अम्बा जी के बारे में बताने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं, और आप सभी को ले चलते हैं एक और सुंदर गीत, और एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो हेलो चलिए कोई बात नहीं, और आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर किशोरदा का गाया हुआ चंबई दागा पर्वत के पीछे। ये गीत आप सुन रहे थे जो बहुत ही पॉपुलर था उस समय में, और हिमाचल के इस पहाड़ियों के बीच शूट किया गया ये गाना था। आइए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। तो चलिए, आपका फ़ोन शायद टू टू कर रहा है, यानी लगा नहीं, कोई बात नहीं। 9:38 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। चलिए, अल्जाइमर बीमारी के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि क्या होता है। तो ये बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त खो जाने वाली बीमारी, भूलने की बीमारी है, या भूल जाता है व्यक्ति सबको, वो बीमारी है। अब इसका जो है, कैसे इसको फिर से ठीक किया जा सकता है, और अल्जाइमर डॉक्टर ही इस एलोस अल्जाइमर ने इसका पता लगाया। उसके बाद 21 सितंबर को ये दिन बनाने का संकल्प हुआ और घोषणा भी। स्मरण शक्ति कमजोर करने वाली यह बीमारी को विशेष रूप से पहचान दिलाई 1906 में। उसके बाद ऐसा देखा गया कि कई बार युवाओं में भी यह बीमारी होती है, और जागरूकता और इसके उचित इलाज बेहद आवश्यक है। हालांकि इस बीमारी के लिए अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं विकसित किया गया है, लेकिन इसके लिए सावधानियां और व्यायाम जरूर है, जो इस बीमारी में काफ़ी हद तक अच्छा साबित होते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार। मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: जी मदन भाई, बोलिए।
1: नमस्कार करते हैं आपको, रमेश जी को, नवी किरण को, और हमारे सभी शो को, और हमारे सभी दोस्त बंदे सभी को। और बस आज सोमवार है, भोले बाबा का दिन है, तो हमेशा खुश रहना चाहिए, खुशी बांटनी चाहिए, और बहुत सारी। और कल हमारे भी साल का बर्थडे था, तो वो अमेरिका से आए थे, जो उनकी हिंदी में मालूम नहीं पड़ती है। सर बोले थे इंग्लिश बोलो, ये इंग्लिश हमें नहीं आती तो इंग्लिश हमें नहीं आई, फिर हिंदी में बोला, और वो खुश हो गए। आप हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपका मन उदास नहीं होता है, खुश रहते हैं कि हम आपको चैंज करते हैं हमारे यहाँ कंपनी में आए इसलिए। और बहुत सारी बातें हुई और भी, और जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को नमस्कार, ओम शांति। और बस यही कहेंगे, अरे

0: नमस्कार सर, ओम शांति।
1: नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए अब मदन जी को आपने सुना, बहुत ही प्यारा सा गीत भी याद किया। अल्जाइमर बीमारी के बारे में हम बात कर रहे थे और इसकी रोकथाम के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक मनोरंजनात्मक गतिविधियों में स्वयं को व्यस्त रखें, जैसे कि पढ़ना, प्रसन्नता के लिए लेखन करना, संगीतमय वाद्य यंत्र बजाना, शिक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेना, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जैसे कि वर्ग पहेली और शतरंज का खेलना, तैराकी करना, समूह खेल जैसे कि गेंदबाजी करना, घूमना, योग और ध्यान, ये सारी चीज़ें इसमें आपको हेल्प करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 9:41 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आभार दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, वक्त हो गया है आपसे अभी बात करेंगे हम लोग आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में जिनका 21 सितंबर को जन्मदिन है। भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी है दीपिका पल्लिकल। 1991 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर का भी जन्मदिन आज है। 1977 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय राजनीतिक महेंद्र मुंजपारा, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1968 को हुआ। 2012 में जापान के प्रधानमंत्री बने शिंजो आभे, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1954 को हुआ। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता राजनेता आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1939 को हुआ था। भारतीय संगीत के विद्वान थे जितेंद्र अभिषेकी, 1929 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में कार्य किया, नूर जहां, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1926 को हुआ। भारतीय राजनीतिक बिहार के 8वें मुख्यमंत्री, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री, आज ही के दिन इनका जन्म 1914 को हुआ। भारतीय आज़ादी के सेनानी थे जो 1948 से 54 तक सौराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उच्छंग राय नवल शंकर डेभार, 1905 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। हिंदी में शिष्ट हास्य लिखने वाले कलाकारों में अग्रीन लेखक अजर, हिंदी सिनेमा के जानी मानी अभिनेत्री अन्नपूर्णानंद, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1895 को हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आप भी अपने दिल से जो है जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को कीजिए हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए मित्रों, 9:47 हो रहे हैं और आप हमारे साथ करीना कपूर जो है बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। रिंका परिवार में कपूर परिवार में जन्मी करीना ने अभिनय की शुरुआत 2000 में रिलीज हुई फिल्म रेफ्यूजी से शुरू की। इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू यानी उस साल अपने जीवन की शुरुआत करने वाली अभिनेत्रियों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी इनको मिला। साल 2001 में अपनी दूसरी फिल्म मुझे कुछ कहना है रिलीज होने के साथ ही कपूर को अपनी पहली व्यावसायिक सफलता मिली। इसके बाद इसी साल आई करण जौहर की नाटक से भरपूर फिल्म कभी खुशी कभी गम करीना नज़र आई थी और ये फिल्म उस साल विदेशों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और साथ ही करीना के लिए ये तब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक फिल्म हो गई। तो इस तरह से लगातार फिर फिल्मों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक ऐसी भूमिकाओं या टाइपकास्ट से बचने के लिए ज़्यादा मेहनत वाली और कठिन भूमिका लेना शुरू कर दिया। फिल्म चमेली में और लड़की की भूमिका करियर की दिशा बदल दी। इस फिल्म में अपने करियर के लिए उन्हें फिल्मफेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड विशिष्ट प्रदर्शन पुरस्कार मिला। इसके बाद समीक्षा और बहुप्रशंसित फिल्मों में देव ओमकार और अभिनय के लिए फिल्मफेयर समारोह में इनको विशेष सम्मान प्राप्त है। तो इस तरह से जब भी वेट और फिर बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो ये थी कुछ खास बातें करीना जी के बारे में, करीना कपूर के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए एक और ख़ास सितारे के बारे में बात करते हैं, नूरजहां, जिनका जन्मदिन आज है और ये भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्री और पार्श्व गायिका थी। वास्तविक नाम अल्ला वसई था। दक्षिण एशिया में महानतम गायिकाओं में शुमार की जाने वाली मुगले तरन्नुम मल्लिकाए तरन्नुम के नाम से इन्हें जाना जाता था। नूरजहां को लोकप्रिय संगीत में क्रांति लाने और पंजाबी लोकगीतों को नया आयाम देने का श्रेय भी जाता है। उनकी गायकी में वो जादू था कि हर उदयमान गायक के प्रेरणा सूत्र स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने भी की। जब अपने करियर का आगाज किया तो उन पर नूरजहां की गायकी का प्रभाव था। नूरजहां अपनी आवाज़ में नित्य नए प्रयोग किया करती थी और अपनी ही इन्हीं खूबियों की वजह से वे ठुमरी गायकी की महारानी कहलाने लगी थी। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: मैं कनव हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

पिछड़ो। तो आज है वीर तेजा जयंती, तो वीर तेजा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। लोक परंपरा में तेजा जी को वचन निभाने वाले सत्यवादी वीर और सर्पों से जुड़े लोग देवता के रूप में याद किया जाता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, जो कैसे हमारे स्वास्थ्य को ठीक करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जरूर आप घरेलू उपाय सुनेंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: वचन दिया तो प्राण गए, पर वचन ने जाने दिया। गो माता की रक्षा में जीवन अपना भार दिया। शौर्य, सत्य और त्याग की गाथा आज भी गाई जाए। वीर तेजा जी के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाया जाए। वीर तेजा जी के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाया जाए। तो पुनः आप सभी को वीर तेजा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि लोक परंपरा में तेजा जी को वचन निभाने वाले सत्यवादी वीर और सर्पों से जुड़े लोक देवता के रूप में याद किया जाता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार कहानी के साथ करना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, वीर तेजा जी, देखिए पहले तो उनका यही कहना चाहूंगी कि वो साहसिक थे। और वीर तेजा जी पर्वत सर का रहने वाले हैं और पर्वत सर में आज भी बहुत ही मेला लगता है। उनका जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहड़ देव और माता का नाम राम कुमरी बताया जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध, अब मैं लाछा गुजरी के बारे में, सबके बारे में बताऊंगी। तो क्या है, वीर तेजा जी का बचपन में ही शादी कर दी जाती है। पहले तो बाल विवाह होते थे, पहले तो कितनी बार गर्भ में ही, भाई आपके लड़की हुई, हमारे लड़का हुआ, तो अपना संबंध फाइनल, तो इस तरह फाइनल कर दिया जाता था। तो ऐसे ही वीर तेजा जी का भी बचपन में ही, जो उनको याद भी नहीं है कि उनकी कभी शादी भी हुई थी, कुछ भी उनको याद नहीं है, क्योंकि बचपन में बहुत छोटे थे तभी कर दी जाती है उनकी शादी। तो वैसे मैं उनका थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगी कि उनका विवाह पेमल से हुआ था। उनकी धर्मपत्नी का नाम पेमल था, ठीक है। तो वीर तेजा जी धीरे धीरे बड़े हुए। वीर तेजा जी की माँ राम कुंवरी ने पहले से परिवार में कह रखा था कि कोई भी तेजा को नहीं बताएगा कि उसका विवाह हो चुका है, समय आने पर हम खुद बताएंगे। और वीर तेजा के बड़े भाई भी थे, भाभी भी थी घर में। वीर तेजा जी खेतों में काम करते थे, बड़े हो चुके थे, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं कि उनका विवाह हो चुका है। तो वो काम कर रहे थे खेत में, बहुत ज़बरदस्त भूख लगी, बहुत ज़्यादा काम कर दिया, समय का ध्यान नहीं रखा, तो बोले कि अब तेज भूख लग रही, चलो घर पर चलते हैं। घर पर आए तो भाभी को बोला कि भाभी बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है, गर्मा गर्म भोजन पिरस दो। भाभी को उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, भाभी ने खाना नहीं बनाया और भाभी उल्टा ताने मारने लगी। अरे मण पोयो मण पीस्यो का वरते जाओ, मण को तो रांध्यो खाटो खीचड़ो। तब ऐसा बोल बोले तो तेजा जी को लगा कि आज भाभी को क्या हो गया। तो भाभी ने, तेजा जी ने कहा, अरे साची साची बात बता दो भावज मारियो, काई हुओ जो बताव स्या। अरे भाई क्या हुआ, सच जो भी है आप बताओ ना, आज भोजन क्यों नहीं बनाया, रोज आप भोजन पकाती हो, गर्मा गर्म भोजन पिरसती हो, और आज आप इस तरह के बोल बोल रही हो। तो भावज ने कहा, अरे परण्योड़ी पीर बसे ओ कवरते जाओ, वाने लई ने गर आवस्या। अरे भाई आपकी बीनणी तो अपने पीर में मौज कर रही है, अब उनको ले आओ, वो गर्मा गर्म भोजन बना करके पिरसेगी, मैंने बहुत बना दिया। तब तेजा जी को झटका लगा कि अरे भावज, भाभी ये क्या कर रहे हो, राजस्थान में भाभी को भावज कहा जाता है। तो बोले, अरे भाभी कैसी बात कर रहे हो, मेरा विवाह हो गया। हाँ, अरे भाई कहाँ हुआ, अरे पीला पोतड़ा हुआ, ये राजस्थान में ही आता है। तो बोले कि अच्छा, अरे साची साची बात बता दो भावज मारियो, कुण परनाया पीला पोतड़ा। अरे भाई किसने मेरी शादी की? तो भावच कहती है, अरे काको बाबो कीनी सगाई कवरते जाओ, बाबो सा परनाया पीला पोतड़ा। अरे भाई काका बाबा ने तो सगाई की और आपके ही पिताजी और दादाजी ने आपका विवाह किया। तो फिर वो तेजाजी को आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हुआ, माता के पास गए। अरे साची साची बात बता दो माता मारी, ओ कूनी परनाया पीला पोतड़ा। तो माँ ने ये बात सुनी, तेजाजी ने कहा कि सच बताओ मेरी माँ, मेरी शादी पीला पोतड़ा किसने करवाई है? तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, विवाह तो तुम्हारा हो गया लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बोले कि अरे पता तो चलना ही था, किसी से भी चला हो, लेकिन मेरा विवाह हो गया और मुझे पता भी नहीं, मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेने। अरे भादरवा का महीना है। और माँ ने कहा कि नहीं, ये भादरवा महीना तो अशुभ है, नहीं जा सकते हो तुम। मैं नहीं जाने दूंगी। बोले बस अब तो मैं किसी की नहीं सुनूं, मैं तो जाऊंगा और अपनी बिंदनी को लेके आऊंगा, उसी के हाथ का खाना खाऊंगा। भाभी ने मुझे ताना मार दिया है, अब मैं जाऊंगा, मुझे नहीं सुनना है किसी का ताना। माँ मनाती रही, माँ को गुस्सा भी आया बहू पर कि अरे क्यों बताया उसको, समय आने पर वैसे मैं बताने वाली थी। अब तो तेजाजी अपनी घोड़ी पर सवार होकर के चले, लीलन घोड़ी पर, और गए। अब वो जा रहे थे, गुस्से में तो थे और जा रहे थे, तो देखा कि एक सांप है, सर्प है, वो आग में जल

है कि भाई आपके हत्या हो जाएगी तो पाप मुझे लगेगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने बचाने की कोशिश की और आप मुझे डसने चले। बोले कि बिल्कुल, मैं तो तुम्हें डसूंगा। बोले ठीक है नाग देवता, मैं वचन देता हूँ, आप मुझे डसना, लेकिन मेरा विवाह हो चुका है, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से मिलके आऊँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा, आप मुझे डस लेना। सर्प ने कहा, अच्छा बेवकूफ़ बनाता है मुझे, कोई गए हुए वापस आएगा? बोले कि मैं वचन देता हूँ और मैं वचन जो देता हूँ उसको निभाता हूँ, ये मेरा कौल है, याद रखना। बोले ठीक है, तो इंतजार करूँगा तेरा। और वचन दे करके तेजाजी तो गए अपने ससुराल। अब ससुराल गए तो उनके लीलन घोड़ी को देख करके ससुराल वालों की तो गाय भड़कने लगी डर के मारे। तो सास तो बैठी थी बाल खुले हुए चौक के अंदर बैठी थी, पहचाना नहीं जमाई राज को, और बोले अरे कौन आया है तू पापी दुष्ट, मेरे गायों को भड़का दिया तूने। तो बोले कि अरे सासू माँ मैं हूँ। अरे कोई सासू वासू नहीं, अरे सासू माँ मैं हूँ, आपकी बेटी को लेने आया हूँ। अरे कोई सूचना नहीं और मेरी बेटी को लेने आया है, मैं नहीं मानते कि तू मेरा जमाई है, फिर भी अब आए हैं तो कुछ तो बना के खिलाना है। तो ये जो कुरत होते हैं, कुरत की दाल बनाई और ठंडी रोटी जमाई को पिरसी। अच्छा नहीं लगा तेजाजी को, लेकिन क्या करे। और सासू माँ जब तक खाना पकाती रही, पिरसती रही, गालियाँ ही देती रही, बेटी से भी नहीं मिलने दिया, और बोले कि कोई जमाई हमाई नहीं, घर से सूचना आएगी तब देखा जाएगा, जाओ अभी मैंने तो बेटी से मिलना है और ना ही मैं अपनी बेटी को भेजूंगी, मैं तुम्हें नहीं पहचानती तुम कौन हो। तो वो कहते हैं ना कि आकाश से गिरे पेड़ में लटके, या फिर खजूर से गिरे पेड़ में लटके, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब एक तो मौत से बच कर के आए कि कैसे भी करके मैं अपनी पत्नी से मिलूं, और यहाँ पर सासू माँ ऐसा व्यवहार कर रही, तो बड़ा दुख हुआ तेजाजी को। अब वो निकलने लगे, उधर उनकी पत्नी का नाम पेमल था, पेमल को पता चला कि अरे उनके पति उनको लेने आए और माँ ने ऐसा व्यवहार किया तो अच्छा नहीं लगा। तो पेमल ने अपनी सखी लाचा गुजरी को जा कर के बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, कैसे भी करके तो हम दोनों को मिलवा। तो लाचा गुजरी वो वहाँ से ससुराल से निकले तेजाजी, तो लाचा गुजरी रास्ते में आ गई और बोले कि अरे कहाँ जा रहे हो जीजा जी। बोले अच्छा साली जी आप कौन हो? अरे आपने साली जी बोली दिया तो मैं आपकी साली जी हूँ, मैं पेमल की सखी हूँ, आपकी बीननी की सखी हूँ, और पेमल आपका इंतज़ार कर रही है। फिर लाचा गुजरी के घर में दोनों को मिलवाया। फिर बोले कि भाई आए हो तब आपको रात तो रुकना ही पड़ेगा। तो रात थोड़ी से ही अंधेरा हुआ और उधर लाचा गुजरी की गायें चोरी हो गई। अब वो रोती हुई आई, खटखटाया दरवाजा कि अरे भाई मेरी तो गायें चोरी हो गई है, कैसे भी करके मेरी गायों को छुड़वाओ। तो बोले कि ठीक है, तेजाजी तो बहुत ही बहादुर थे, तो वो बोले कि ठीक है मैं लेके आता हूँ, मीणा लेके चले गए थे। तो तेजाजी अपनी घोड़ी पर सवार होकर के गए और बहुत युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ मीणा के साथ। तेजाजी अकेले थे, मीणा बहुत सारे थे, कैसे भी करके सारी गायों को छुड़वा करके लेके आए, पूरे लहू लुहान हो गए थे, और कहा कि ये लो लाचा ये तुम्हारी गाय है। तो लाचा ने देखा सारी गायें तो थी, लेकिन एक अंधा जो गाय का बछड़ा था उसको राजस्थानी में कहते हैं काना केल्डा, वो नहीं मिला। बोले अरे जीजा जी ये क्या किया आपने, मेरे को तो सारी गायें नहीं मिलती तो चलता, लेकिन मेरे को तो वो काना केल्डा ही चाहिए, आपको तो वो लाना पड़ेगा। बोले अरे सारी गायें तो आ गई ना, एक नहीं आई तो क्या फर्क पड़ गया कि नहीं नहीं नहीं नहीं मुझे तो काना केल्डा ही चाहिए। फिर गए, फिर युद्ध किया, बचा कुचा शरीर का हिस्सा भी लहू लुहान हो गया और काना केल्डा भी ला के दिया, और फिर तेजाजी निकल गए। तेजाजी गए कि भाई बस अब ये फर्स्ट एंड लास्ट अपना मिलना हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ, अब मृत्यु मुझे बुला रही है। और गए तेजाजी नाग देवता के पास कि नाग देवता वचन का दिया हुआ मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मुझे अब डस सकते हो। नाग ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि अरे तू तो पूरा लहू लुहान है, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं जो मैं तुझे डसू, कहाँ डसू। फिर तेजाजी ने अपनी जबान को निकाली कि देखो पूरा शरीर लहू लुहान है, घायल है, लेकिन ये मेरी जबान अभी भी अच्छी है, आप इस पर डस सकते हैं। नाग देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि देखो वचन का दिया हुआ मैं डसूंगा जरूर, लेकिन मैं साथ ही साथ आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम्हारी
पूजा होगी और जिसको भी सर

वो दंश होगा, जिसको भी सांप काटेगा तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे देवरे पर, क्योंकि वीर तेजाजी का राजस्थान में जगह जगह देवरा है, मतलब स्थान है, थानक है, तो जो भी तुम्हारे देवरे पर आकर के धोख लगाएगा और तुम्हारे नाम के जो डोरा बांधेगा हाथ में, तो उसको सांप का जहर का असर नहीं होगा, ये मैं वरदान देता हूँ। और जीप पर डस लिया नाग देवता ने और तेजाजी वहीं गिर पड़े, प्राण पंखेरु उड़ गए, वीर गति को प्राप्त कर लिए। लेकिन वचन के दिए हुए वो आगे पीछे नहीं हुए और अपने वचन को निभाया, इसलिए राजस्थान में आज के दिन, आज तेजा दशमी है, दशम के दिन ऐसा हुआ था, इसलिए दशम को तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन इस तरह उनकी मृत्यु हुई थी। तो राजस्थान में उनका जगह जगह स्थान बनाया गया जहाँ देवरा कहते हैं, और आज भी भक्तजन बहुत ही प्यार से, मतलब जब जिनको भी सांप दंश होता है जरूर वो तेजा जी के स्थान पर जाते हैं, बाकी 12 ही महीना उनके भक्त श्रद्धालु पुजारी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका याद करते हैं। तो इस तरह उनका, मतलब उन्होंने वीर गति प्राप्त की और वो राजस्थान के लोक देवता बने। तो ये हुआ आज का विचार हो रहा है। अब सुन लेते हैं फिर से एक गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए।
1: सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। जी हाँ, जो जिसको यद भी कहते हैं, तो ये कौन सी बीमारी को ठीक करता है जानेंगे आप। देखिए, अगर सूजन है, यदि शोथ के कारण कफ दोष हो, तो जौ के बारीक पिसे आटे में अंजीर का रस मिला करके लगाइएगा, ठीक है। यदि शोथ के कारण कफ दोष हो तो जो के बारीक पीसे आटे में अंजीर का रस मिलाकर लगाइएगा। कंठमाला है तो जो के आटे में धनिया की हरी पत्तियों का रस मिलाकर रोगी स्थान पर लगाइएगा, इससे कंठमाला ठीक हो जाती है। कंठमाला है तो जो के आटे में धनिया के हरी पत्तियों का रस मिला करके रोगी स्थान पर लगाइए, इससे कंठमाला ठीक हो जाएगी। मधुमेह माने डायबिटीज की तकलीफ है तो छिलका रहित जौ को भून करके पीसिए, फिर शहद और पानी के साथ सत्तू बना करके खाइएगा। मधुमेह है तो छिलका रहित जौ को भूनिएगा पहले, तो फिर पीसिएगा, फिर इसमें शहद और पानी मिला करके सत्तू बनाकर खाइए, या फिर दूध और घी के साथ दलिया का सेवन करिएगा। जौ का दलिया बना करके आप दूध में ओटा करके घी डाल करके आप खा सकते हैं, तो इससे लगातार रहते मधुमेह की व्याधि से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर जलन है तो गर्मी के कारण कितनी बार जलन होती है शरीर में, ठीक है, तो आग सी निकलती है, तो जौ का सत्तू खाइएगा। ये गर्मी को शांत करके ठंडक पहुंचाता है और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो गर्मी के कारण शरीर में जलन हो रही हो, आग सी निकलती हो, तो जौ का सत्तू खाइएगा। ये गर्मी को शांत करेगा, ठंडक पहुंचाएगा और शरीर को शक्ति प्रदान करेगा। अगर अतिसार है तो जौ तथा मूंग का सूप लीजिएगा, इससे आंतों की गर्मी शांत होगी। अतिसार है तो जौ और मूंग का सूप लीजिएगा, इससे आंतों की गर्मी शांत होगी। और लास्ट उपाय है, गले की सूजन है तो थोड़ा सा जौ कूट करके पानी में भिगो दीजिए, कुछ समय के बाद पानी निथार करके उसे गर्म करके उसके कुल्ले करिएगा, इससे शीघ्र ही गले की सूजन दूर हो जाएगी। गले की सूजन है तो थोड़ा सा जौ कूट करके पानी में भिगो दीजिए, कुछ देर के बाद पानी निथार करके उसको गर्म करिए, फिर उससे कुल्ला करिए, इससे क्या है, शीघ्र ही गले की सूजन ठीक हो जाएगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है जो मैं आपके पूछने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि भाई वीर तेजा जी के सवारी का नाम आप बताइएगा, वीर तेजा जी के सवारी का नाम क्या था। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का विषय है मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जाल में, जितना आदमी उलझता है अपने बुने ख्याल में। मतलब मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने हुए ख्यालों में, क्या कहेंगे आप। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। वीर तेजा जी की सवारी का नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जुड़िएगा जरूर। और बहुत ही सुंदर आज का विषय आपके समक्ष रखा है, उसमें आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं भाई, आज वीर तेजा जयंती है, हमें पता है आप मनाने में व्यस्त होंगे। जगह जगह आज के दिन मेला भी लगता है, तो श्रद्धा से लोग जाते हैं, शीश नमाते हैं, आज तो श्रीफल भी लेके जाते हैं जिसको नारियल कहते हैं, अगरबत्ती, धूप दीप, ये ले जा करके जहाँ तेजा जी का स्थान है वहाँ पर जा करके इस तरह प्रसाद के रूप में नारियल भी बदरते हैं, दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती लगाई जाती है, मन्नतें मानी जाती है, मन्नतें उतारी जाती है, जो मन्नत मांगते हैं वो उतारी जाती है। और जिसका भी सर्पदंश का अगर जैसे कहते हैं ना कि किसी ने बाधा रख ली हो कि भाई तेजा जी महाराज अगर ये सांप के जहर का असर नहीं होगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो फिर

0: वहाँ पर चूरमा भी बनाया जाता है, चूरमा का भोग भी चढ़ाया जाता है और उनकी जेवड़ी भी बांधी जाती है, जो लच्छा होता ना उसको हाथ में बांधते उसको जेवड़ी कहते हैं, जेवड़ी भी बांधी जाती है, जेवड़ी बड़ी की जाती है, जिसने बांध रखी है आज के दिन वहाँ पर खोलते हैं कि भाई ये इतनी दिन की बाधा थी, हमारी बाधा पूरी हो गई, हमारी मन्नत पूरी हो गई, आज हम ये जेवड़ी बड़ी करते हैं, तो उस लच्छे को आज के दिन उतारा भी जाता है। तो इस तरह है। पर चलिए देखिए, मकड़ी नहीं फंसती अपने जाले में, फिर भी इंसान फंसता जाता है अपने बुने ख्यालों में। तो ये सभी आप जानते ही होंगे, ये अपनी कहानी है, दूसरों की नहीं है। मकड़ी भी जाला बना करके उड़ जाती है, वो फंसती नहीं है कि भाई जाले के अंदर ही फंसी रहे और उसी में सिमट करके रह जाए और एक दिन ख़त्म हो जाए, ना बिल्कुल नहीं। लेकिन इंसान का क्या कहना भाई, पहले तो अपना परिवार बसाता है, फिर धीरे धीरे उस मोह में इतना फंसता जाता है कि बात मत पूछिए, क्या सही क्या गलत, अर्थ अनर्थ सब कुछ भूल जाता है। अभी कल ही किसी का फोन आया था, दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है, बच्चे छोटे छोटे पाँच छः साल के बच्चे, वो तो झगड़ेंगे फिर एक होंगे फिर झगड़ेंगे फिर एक होंगे। लेकिन एक बच्चा रोने लगा तो एक पापा ने देख लिया कि मेरा बच्चा रो रहा है, तो जा करके सामने वाले बच्चे के जोरदार चाटा लगा दिया। अब वो बच्चा भी रोने लगा, रोते रोते अपने घर पे गया कि फलाने के पापा ने मुझे मारा है। अब उसके पापा को भी गुस्सा आया कि अरे मेरे बच्चे को कैसे मार दिया। गए, जाते ही सीधी फेंट पकड़ी कि भाई क्या हुआ, क्यों मारा मेरे बच्चे को, ताकत कैसे हुई तुम्हारी हाथ लगाने की मेरे बच्चे को। तो बोला कि तूने मेरे बच्चे तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। अब इसमें दोनों के फाइटिंग हो गई। बोलो, अब बच्चे तो देखे थोड़े दिनों बाद एक भी होंगे, कितना भी आप पकड़ के रखो वो नहीं रुकने वाले। लेकिन बड़ों को पहले तो चाहिए कि वो जिसने देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है तो बच्चे को पूछे क्या हुआ, सामने वाले को भी पूछे क्या हुआ। चलो किसी की भी गलती है तो प्यार से समझाने का होता है ना कि भाई अब हो गया, होना था सो हो गया, अगली बार झगड़ा नहीं करोगे नहीं तो साथ में खेलने नहीं देंगे। तो बच्चे वैसे ही डर जाते हैं कि अरे भाई खेलने नहीं देंगे। हेलो,
1: हेलो दीदी।
0: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सुभाष भाई।
1: नमस्ते। आज के दिन की आपको रेडियो मधुबन परिवार, सभी श्रोते भाई बहने, सभी राजस्थान गुजरात सभी भाई बहनों को, दोस्तों को बधाई और शुभ भावना और प्यार भरा नमस्कार। सुविचार भी बहुत अच्छा था और विषय भी बहुत अच्छा है, लेकिन कल के आपके वंदे मातरम और सलामी जिंदगी ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगे। वो रिपीट होंगे तो श्रोता भाई बहनों ने जरूर सुनना। और विषय के बारे में मैं थोड़े में बोलता हूँ। देखो, मकड़ी भी अपने जाल में फंसती नहीं, पर आदमी क्या करता है, बीच की बातों का ही मंथन करते रहता है, चिंतन करते रहता है, वे सब बातों में उलझा रहता है, नेगेटिव बातों में फालतू चिंता करता है। तो फोकस ऑन प्रेजेंट, फोकस प्रेजेंट पे दो, वर्तमान पर दो, गलतियाँ जो हुई है वो सुधारो, चिंतन मत करो वो सुधारो और आगे बढ़ो। सभी को सहयोग दो, सभी को प्रेम से रहो तो आप कभी भूल जाएंगे नहीं। जितना वो अच्छे विचार करो, अच्छे से कर्म करो तो जाल में फंसोगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति दीदी, ओम शांति।
0: बहुत बहुत आभार सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94 14 15 14 15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। वीर तेजा जी की सवारी का नाम आपको बताना है जो मैं विचार में दे चुकी हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना हो विचार तो उसमें जवाब था, और बाकी आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है। मकड़ी भी अपना जाल बना करके उसमें फंसती नहीं है, लेकिन इंसान अपने ख्यालों में इतना फंस जाता है कि पूछे मत। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दे रही थी कि देखे कैसे वो व्यक्ति छोटी सी बात में बच्चे को मार दिया। पर चाहते तो वो बच्चों को समझा सकते थे और बच्चे समझ भी जाते, लेकिन दोनों के बीच बहुत फाइटिंग हुई, लोगों ने आकर के छुड़ाया, नहीं तो पुलिस तक बात चली जाती। तो क्या फायदा, क्या फायदा, आप इतना फंस रहे हैं कि उसमें इतना स्वार्थी होते जा रहे हैं। बच्चे तो इनोसेंट है, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो क्या हम दूसरों के बच्चे को क्यों आते ही अपने ही बच्चे को मारते कि तू जब आता है तब रोता ही है, क्या हुआ, तू क्यों आया, क्या कारण हुआ। या मारना तो था ही नहीं, वैसे ही समझाना था, प्यार से बात सुननी थी और समझाना था। तो कहाँ जा रहे हैं आजकल लोगों के विचार, कहाँ जा रहे हैं। हेलो,
2: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, नमस्ते।
2: जी जी जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है दीदी, और बहुत अच्छा विचार भी सुना दिया। और ये आपने बताया कि आज दीदी लोग इतने ख्यालों में, इतने विचारों में फंस गए है कि पता नहीं आगे उसका क्या होगा।
0: जी,
2: जैसे जैसे जो कोई चीज बढ़ती रहती है तो इतना अंदर डूबे रहते हैं, अंदर ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं मेरे पास, ये लाएंगे ये लाएंगे, बस पूरा दिन वही ख्यालों में रहता है, दिखता रहता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि भी हम फालतू चीजें की जरूरत नहीं है, और इसे क्यों हम अंदर इसको घुसने दे विचारों को। सभी ऐसे विचारों से डूबा हुआ है आज इंसान, सुबह से शाम तक बस विचारों में ख्याल रखता है। आज इतना खुश रहा है इंसान की पता नहीं, टेंशन देखो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे हो रहे हैं, कोई किसी को टका जाता है, किसी को कोई तुरंत लकवा मार जाता है। तो ये ख्यालों में यदि इतने विचारों में रहते हैं तो ये सभी बीमारियां का भी हमको भय रहता है। तो विचारों को नहीं रखना है। जैसे आपने बताया, जैसे कि बात बताई, दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, वो तो जितने बच्चे हैं लड़ेंगे बाद में इकट्ठा हो जाएंगे। हमारे दिन में बताऊँ तो हमारी भी गुड़िया छोटी से छोटी, दो तीन चार गुड़िया हमारे महल में, तो बहुत चलता ही रहता है गुड़िया को। और ऐसे हम माँ बाप को परेशान करेंगे, माँ बाप को बोलेंगे कैसे कैसे, तो ये नहीं करना चाहिए। अरे बच्चे आज लड़ेंगे खड़े खो जाएंगे, बड़ों को ऐसा नहीं सोचना है और ऐसा विचार नहीं लाना है, सामने वालों को गुस्सा करके मारे।
0: जी
2: चलो,
0: हाँ जी, हाँ जी
2: जी दीदी
0: जी,
2: बस सुझाव तो मैंने आपको दे दिया है।
0: हाँ जी,
2: और कल भी हमने वंदे मातरम सुना था, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा
0: जी।
2: हमारी सभी जो बहनें आती है तो बहुत एक नॉलेज भी मिलता है दीदी सबको, ऐसा नहीं कि बहनों के लिए कार्यक्रम होता है, नहीं, हम भी बड़ों को छोटे को और सभी को भी ये कार्यक्रम एक अच्छा एक नॉलेज दे देता है कि हम इतने ही महिलाओं को परेशानी होती है फिर भी वो इतने कष्ट उठा के आगे जाती है, बच्चों को संभालती है, परिवार के लिए कुछ करती है। तो कई सारी नॉलेज हमको भी मिलती है, पुरुषों को भी मिलती है कि कैसे करने रहना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो आपने जो वंदे मातरम है बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया है, इससे कई बहनों को भी इतना फायदा हो रहा है दीदी की कोई भी कष्ट आए लेकिन पीछे नहीं हटना है।
0: जी जी बिल्कुल, मोटिवेट होते हैं ना एक दूसरे का सुन करके ही, प्रेरणा लेते हैं।
2: कई सारे सीख मिलती है कि इसके पास कुछ नहीं है, डॉक्टर का खाना भी नहीं, उसके बाद फिर भी वो जैसे जैसे करके किसी का काम करती थी, उसके बच्चों को आगे ले जाती है, पढ़ती है, दिखाती है, किसी का काम करती है, फिर भी परिवार संभालती है।
0: जी
2: बिल्कुल, पढ़े लिखे होते हैं फिर भी कई कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो कुछ न कुछ ऐसा काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है।
0: जी जी जी, बिल्कुल, थैंक यू, नमस्ते भैया, नमस्ते। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने भी अपनी बात रखी है। अब हम यहाँ पर एक कल फिर हम लेकर के पुनः लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार नमस्कार बहन जी।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: जय अम्बे जय अम्बे
0: जय अम्बे जय अम्बे।
1: हाँ, कल से भादरवी पूनम का मेला शुरू हो गया है, तो सबको जय अम्बे।
0: जी जी जी, अम्बे माता जी के यहाँ जाना है अम्बा जी।
1: की भाई, जिस हमारे कोई भी दोस्तों को यहाँ आना हो तो मुझे कॉल करे, मैं सभी का वहाँ खास ये है दर्शन वहाँ का दर्शन कराऊंगा, मैं जाऊंगा। हमारे नजदीक पड़ता है बहन जी अम्बा जी।
0: अच्छा, अच्छा।
1: लेकिन कोई दोस्त जो अभी हमारे दोस्त है रेडियो मधुबन के, तो कई दोस्त आते होंगे शायद दर्शन के लिए माता जी के, तो हमें थोड़ा कॉल करे तो मैं पहुंच जाऊंगा और सबको वहाँ का जो स्थल है दिखाऊंगा, साथ में रहूंगा। ठीक है
0: जी जी, रेडियो के जरिए सभी सुन रहे हैं।
1: का जवाब तो मैंने दे दिया। ठीक है
0: जी।
1: और क्या है, आज तो पूरा हो गया?
0: नहीं नहीं, अभी विषय बाकी है। आज का विषय है, मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। क्या कहेंगे आप?
1: ख्यालों में डूबा हुआ है ना, बुरे ख्यालों में मकड़ी।
0: मकड़ी भी झाला बना करके उड़ जाती है, वो फंसती नहीं है कि उसी में फंस करके दम तोड़ दे, वो नहीं होता है। लेकिन इंसान पता नहीं इतना मकड़ी से भी खतरनाक, मतलब रहना घर परिवार में, ऐसे नहीं है कि हमें घर परिवार में नहीं रहना है, लेकिन इतना भी स्वार्थी नहीं हो जाना है कि अहित हित वो सब भूल जाए।
1: ये नहीं कर रहा है
0: जी,
1: हम संसारी है, अर्थ उपार्जन करना है।
0: घर परिवार में रहना भी एक साधना है, लेकिन कैसे रहना है वो आना चाहिए। स्वार्थ के लिए हम दूसरों का अहित करें वो भी तो अच्छी बात नहीं है।
1: नहीं, गलत बात है। स्वार्थ पर अपना स्वार्थ ही दूसरों का ये कर दे, ये नहीं करना चाहिए बहन जी। ठीक
0: जी,
1: क्योंकि कर्म तो सभी को भुगतना पड़ता है। हमें अच्छा लगेगा थोड़ी देर तक, लेकिन क्या है कि गलत है तो गलत ही है, इसका परिणाम हमें भुगतना तो पड़ता ही है। दूसरों को ये करके क्या सुख मिलेगा हमें बहन जी? दिल मिल के रहना चाहिए, सभी को सच्ची राह बतानी चाहिए। ठीक है
0: जी।
1: कई लोग क्या करते हैं कि भी घाटे में आ जाए, कोई ऐसा हो जाए तो हमें ये जमीन दिख दे तो हम ले लेंगे, ऐसा करके गलत रास्ता बता देते, तो ये नहीं करना चाहिए जन जी। ठीक है, सही रास्ता बताना चाहिए। हम भी इसमें से उभरे हैं, बाहर आए हैं, ऐसा करो। ठीक है
0: जी,
1: तो किसी को जाल में फंसाना नहीं चाहिए। सभी दोस्तों को आपको नमस्कार, और जरूर अम्बा जी आओ, सभी दोस्त तो जरूर कॉल करें मुझे।
0: और अम्बा जी के पास ही आबू है, शिव यहाँ है, शक्ति वहाँ है, तो शक्ति से मिलो तो शिव से भी मिलने आ जाओ।
1: भी मेला चालू ही है रामदेवड़ा
0: जी।
1: रामदेवड़ा भी सभी यहाँ से पैदल और साधन बाइक को लेके जा रहे हैं, तो अम्बाजी से ही निकलता है रास्ता हमारे यहाँ से, तो सभी को शुभकामनाएं, देव देव शुभकामनाएं
0: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। इधर आओ तो आबू भी आइएगा।
1: जरूर जरूर बहन जी, जय अम्बे
0: जी, जय अम्बे। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। देखिए, घर गृहस्थी में रहना, घर परिवार में रहना, ये भी बहुत बड़ा तप है, लेकिन रहना आना चाहिए, है ना। जैसे वो दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ, न लेना है न देना है उनको, तो भाई ऐसे भी नहीं कि कोई हिस्सा चाहिए, या वो दूसरे अपार्टमेंट में, वो दूसरे अपार्टमेंट में, बच्चे खेलते हैं इस वजह से, और ऐसे में इतना बखेड़ा हो गया। जो कभी 6 महीने में नजर आते हो या सोसाइटी के प्रोग्राम में नजर आते हो, बाकी एक दूसरे को देखना क्या भी काम नहीं मिलता है, फिर भी झगड़ा। अब रोज साथ में रहते हो, उनकी क्या हालत होती होगी। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते नमस्ते विक्रम भाई, कैसे हैं आप?
2: जयपुर से आता हूँ मैडम जी।
0: अभय सिंह जी, अभय सिंह जी।
2: जी,
0: जी बहुत बहुत स्वागत। और सुनाइए कैसे हो आप?
2: बढ़िया है मैडम जी, प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। मधुबन अच्छा। की पूरी टीम को, आपको, सबको बधाई हो, बड़ों को सादर प्रणाम।
0: थैंक यू जी, आपको भी। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे
2: जी। मैं वो उसका तेजा जी महाराज जी का वाहन पूछा था ना मैडम।
0: हाँ जी हाँ जी,
2: लीलन घोड़ा घोड़ी।
0: अच्छा ठीक है, देखते हैं सही गलत। आप कार्यक्रम सुनिएगा, जरूर जवाब देंगे। और आज का विषय है, देखिए मकड़ी भी जाला बनाती है तो उसमें फंसती नहीं है, लेकिन इंसान इतना फंस जाता है कि पूछिए मत। क्या कहेंगे आप, अपने ही ख्यालों में फंसा रहता है वो।
2: जी मैडम बिल्कुल सही बात है, ये आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीर में हर जगह जकड़ा हुआ रहता है। तो हर चीज के पीछे मैडम जी त्याग जरूरी है
0: जी,
2: और त्याग है वो हमको उसका श्रेय मिलता है त्याग का। लेकिन आदमी को थोड़ा सहनशील रहना चाहिए, उसका फल उसको मिलेगा, बाद में मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और कोई भी चीज है मैडम जी, उसका कोई नुकसान होते तो कोई फायदे भी होते हैं। तो उलझन जो होती है, उलझन का समाधान दूसरे की बात को सुनना और गहनता से उस पे अमल करना, और उसके बाद में उस पे कोई भी चीज आदमी को बोलना चाहिए, और दूसरे को भी सहन करना जरूरी होता है। इन चीजों के पीछे थोड़ा तप त्याग की आवश्यकता है, और हमको तप त्याग में क्या है, आज के समय में थोड़ी गिरावट है, तप त्याग में कमी है मैडम जी, जिसकी वजह से ये उलझने हैं वो मकड़ी की तरह क्या है, वो उलझनों में फंस जाता है इंसान
0: जी। कैसे निकलेंगे, रहना घर परिवार में है लेकिन कैसे हम अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे?
2: बिल्कुल जी मैडम, हर एक चीज है वो जुड़ी हुई है। हम एक मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के हर भाग से, हर तबके से जुड़ा हुआ है, हर रिश्ते नातों में बंधा हुआ है। तो उन चीजों का असर है वो सभी चीजों पे जाता है। तो हमको इन सब चीजों में धैर्य से काम लेना चाहिए, सहन करना चाहिए, और वो चीज जो होती है वो अपने लिए अच्छी होती है, वो उसके परिणाम फ्यूचर में अच्छे मिलेंगे। लेकिन सहन नहीं करते हैं लोग, तो सहन करना चाहिए मैडम जी, सहन
0: जी।
2: करना उसके मतलब उसके प्रति आदमी को दूसरे में पहले जैसे भाव थे वैसे ही भाव रखने चाहिए। स्नेह की भावना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बात भी हो जाती है कोई भी चीज तो सुनो देखो, समझाइश हो सकती है, समझाइश के बाद में फिर पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें पुनरावृत्ति में फिर जो दोषी होता है बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है तो फिर उसको दूसरा जो अपना सामाजिक परिवेश वाला दबाव है वो दबाव भी दिला सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं मैडम जी, जो लगभग 10% के आसपास रेशो चल रहा है उनका, तो वो 10% है उनकी वजह से 90% को शांति भंग नहीं करनी चाहिए
0: जी।
2: 90% को चाहिए कि हम 90 से उसको 95 में बढ़ाने की कोशिश करें, हम उसको 85 में ना लें
0: जी।
2: तो ये थोड़ा सा उतावलापन कह दो या कोई, जैसे आपने बहुत उदाहरण पहले भी सिंपल उदाहरण दिया था कि तुरंत जवाब नहीं उसका, अगले दिन जवाब उठता है, आपने एक कहानी सुनाई थी।
0: जी जी जी,
2: किसी घर का रूल था
0: जी,
2: तो
0: जी
2: वो मुझे बहुत अच्छी लगी प्रेरणा। मैंने उससे मतलब दिल में बैठाया कि बहुत अच्छी बात है, इतना टाइम में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है।
0: बिल्कुल,
2: और वो परिवर्तन है वो एक बहुत अच्छा बदलाव लाता है, ईर्ष्या देश की भावना में गिरावट आती है, समस्या का समाधान हो जाता है। और पहले के जो टीचर्स थे, जो हम उनको आज भी गुरुजी, हमारे दिल में इतनी जगह है उनके प्रति मैडम जी,
0: जी।
2: कि आज भी यदि वो मुझे कोई कोई कभी कभी मिल जाते हैं, जो उस समय थोड़े यंग थे वो
0: जी,
2: तो आज भी मैं उनका बहुत, वो हमारे को बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाना लिखाना छोका पिंदी करते थे। लेकिन क्या है, छोका पिंदी का जवाब ये नहीं है कि हम घर में आके उस चीज को बढ़ावा दे दें। तो माँ बाप को भी चाहिए कि ये चीजें हमारे लिए अच्छी हैं। अभी आज के समय मोबाइल का बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है मैडम जी,
0: जी।
2: बच्चे मोबाइल देखते हैं, घर में मना करते हैं, माँ बाप से ही पंगा हो जाता है
0: जी
2: उनको, तो ये उनमें सहन करने की क्षमता घट जाती है मैडम जी। पहले तो उसको थोड़ा, अब जो आपने बताया कि वो इंसान जकड़ जाता है, तो वो पहले से ही हमारे को किसी भी चीज के प्रति ज्यादा घनिष्ठता, चाहे वो संतान हो मैडम जी या चाहे कोई भी चीज हो, उसमें प्रगाढ़ता उतनी अच्छी रहती है जितना हम, जैसे वो एक मैडम जी ने चाय का नहीं बोला था मैडम जी, चाय पीते ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं
0: जी जी जी,
2: तो चाय में जितना मीठा लाइक जितना चल सकता है उतना डालने तो बढ़िया है, और ज्यादा घनिष्ठता ज्यादा डाल देंगे तो वो फिर वो
0: बेस्वाद हो जाएगी जी।
2: सही है जी मैडम जी, तो वही है हमारे को, हमारे आसपास जो भी परिवेश है उस परिवेश में हमको सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाना हमारी बहुत बड़ी भूमिका है उसके अंदर। और ये भूमिका हमारे जो प्राकृतिक जीव जंतु है ना मैडम जी,
0: जी
2: ये भी हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको, उसके निर्माण में बहुत सहयोग करते हैं, जो ऐसे ऐसे जीव हैं जो उनका, लेकिन वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही ये हमारा जो आसपास का जो माहौल है उसमें, उस पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे को उसमें पूरा सहयोग और त्याग तपस्या की भावना सब कुछ बहुत जरूरी है। और बहुत आदमी मैंने मैडम जी ऐसे भी देखे हैं,
0: बस समय हो रहा है जी,
2: हर एक सिचुएशन में हर एक कंडीशन में वो मदद के लिए तत्पर रहते हैं और वो करते रहते हैं
0: जी जी। चलिए अभय सिंह जी, अभी तो ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, तो बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत आभार आपका।
2: राधे राधे मैडम
0: जी, राधे राधे। और प्रश्न का जवाब देंगे, दे दिया सॉरी, चलिए प्रश्न का जवाब भी दे दिया अभय सिंह जी ने, बहुत ही सुंदर बात बताई है। अब प्रश्न का जवाब सही है गलत है या थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो इस विषय को यही समाप्त करते हैं, कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि देखिए घर परिवार में रहिए, रहना हमें घर परिवार में ही है, लेकिन इतना स्वार्थी नहीं हो जाना है कि हम अच्छा या बुरे का भानी भूल जाए, है ना, अच्छे या बुरे का मतलब ही भूल जाए। जीना है तो भाई सभी के लिए जिए ना, खुद के लिए जीना तो स्वार्थ हो गया, तो सभी की बातों को समझने की कोशिश करिएगा और कहाँ सही कहाँ गलत विवेक शक्ति को बढ़ाइएगा। और बस आइए अब एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
4: ओए इधर इधर इधर, ओए क्या पहुँचा दोगे हैं, ओए कहाँ पहुँचा दोगे, ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं। ओए ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
5: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: है, चाहे चावल हो, खिचड़ी हो, चाहे चपाती हो, तो चपाती बच जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे चपाती बच गई है तो सुबह की चपाती बची है तो आप उसका दोनों हाथों से मसल करके पाउडर कर दीजिए, छोटे छोटे एकदम बारीक हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा बेसन और सारे मसाले मिला करके थोड़ा सा पानी से घोल करके उसके पकौड़े निकाल करके खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है? और अगर खिचड़ी बन जाती है, बच जाती है, चावल बच जाते हैं, तो आप इनके मुट्ठे भी बना सकते हैं, आप इनके थेपले भी बना सकते हैं, आप इनके छोक भी सकते हैं, छोक करके भी खा सकते हैं। टेस्ट चेंज हो जाएगा और चीज़ भी हमारी उठ जाएगी, परिवार में सभी सदस्य प्यार से खाएंगे कि अरे वाह, अगर आप थेपला बनाते तो पता ही नहीं चलेगा कि ये थेपला किसके बने हैं, अगर आप मुठिया बनाते हैं तो और भी रेसिपी चेंज हो जाती है। तो बहुत ही प्यार से खाते हैं, तो मैं फटाफट आपको मुठिया बनाना सिखा देती हूँ। अगर चावल बच गया, खिचड़ी बच गई है, तो आप ले लीजिए चावल या खिचड़ी को, और इसमें आप थोड़ा सा गेहूं का आटा डालिए, बेसन डालिए, मक्की का आटा डालिए और हरी मिर्च अदरक की पेस्ट करके डाल दीजिएगा। घर में लौकी है तो कद्दूकस करके डालिएगा, मेथी की भाजी है तो मेथी के पत्ते भी थोड़े से आप धुलाई करके काट के डाल सकते हैं, और नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़े से आप मिठास के लिए चीनी डाल दीजिएगा, और खटास के लिए आप नींबू निचोड़ दीजिए, भले दही डाल दीजिएगा, और मोहन डालना है। अच्छी तरह इसको गूंद लेना है, गूंदने के बाद मतलब टाइट गूंदना है, और गूंदने के बाद आप लंबे लंबे रोल बना दीजिए। रोल बना करके भाप में इसको बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद आप थोड़े से देर निकाल करके इसको ठंडा होने दीजिए, फिर इसको काट लीजिए। काटने के बाद अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, और आप उसमें तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो राई जीरे का तड़का लगाइए, वही तिल डालिएगा, मुट्ठे के अंदर भी तिल डालना है, तिल का भी तड़का लगाना है, सौंफ भी डालिएगा, हरी मिर्च अदरक की पेस्ट करके और भी आप डाल सकते हैं छोक में, और थोड़ा सा नमक डाल करके फिर ये जो मुट्ठे आपने बनाए हैं वो मुट्ठे इसमें डाल करके अच्छी तरह हिला दीजिएगा। मसाला डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो चलेगा, मुट्ठे में डाल रखा है। और इसको अच्छी तरह हिला करके हरा धनिया डाल दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, बन गया मुट्ठिया। तो रेसिपी भी चेंज हो गई, स्वाद भी चेंज हो गया, बड़े चाव से सभी खाएंगे। ठीक है? तो इस तरह वेस्ट में से बेस्ट बना सकते हैं। अब वेस्ट में से बेस्ट बना रहे इसलिए हम भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई ये एक बार हम लगा चुके हैं इनका, है ना? लेकिन ऐसे आप कर सकते हैं। अब हमारे श्रोता बंधु जुड़े हैं। हेलो,
1: हेलो। आज
0: हाँ जी, नमस्ते बुराराम जी, राम राम।
1: आराम हाँ, मैं वो उसका ये क्या बोले थे, तेजा जी के घोड़ी का नाम बताना का था ना?
0: जी हाँ
1: हाँ,
0: जी,
1: तो लीलन घोड़ी था नाम।
0: अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं, अभी जवाब देने ही जा रहे हम। हाँ हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
1: ओके
0: हाँ जी, तो ये थे भूराराम जी ओर से, और अब विषय को यही समाप्त करते हैं। रेसिपी भी अच्छी सिखा दी है, और साथ ही साथ अब आप सभी से अनुमति भी चाहेंगे, क्योंकि समय हो चला है अगला कार्यक्रम सुनने का। तो आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आप आजमा सकते हैं। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में आपको वेस्ट में से बेस्ट बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि वीर तेजा जी के सवारी का नाम क्या था, तो हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है। नाम लेना चाहूँगी सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, भूराराम जी ओर से, और अलका जी काबरा कप्पासन से, संगीता जी लावटी कप्पासन से, अभय सिंह जी जयपुर से। आप सभी का सही जवाब है, घोड़ी का नाम वीर तेजा जी की सवारी है, घोड़ी जिसका नाम है लीलण। कितने ही जनों ने न बोला है लीलन, लीलन नहीं, लीलण। ठीक है? तो आप सभी का और आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है। जो अपना होता है वो सुख देता है, जरा सोचे क्रोध अपना संस्कार है या कहना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोध से तो दुख ही उत्पन्न होता है। और अब मैं आपको प्यारी सी कविता सुनाऊंगी।

तेजा जी पर आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक सुंदर से प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। राजस्थान की धरती ने एक ऐसा लाल जना, सत्य साहस त्याग का जिसने जग में मान बढ़ा दिया। खरनाल की पावन धरती पर तेजा वीर कहलाए, खरनाल की पावन धरती पर तेजा वीर कहलाए। दीन दुखी की मदद को दौड़े, कभी ने पीछे हट पाए। वचन दिया तो वचन निभाया, चाहे प्राण ही क्यों न जाए। वचन दिया तो वचन निभाया, चाहे प्राण ही क्यों न जाए। गौ माता की रक्षा खातिर रण में वीर लड़ जाए। लाछा की गायों की खातिर, लाछा की गायों की खातिर संकट से टकराए। तन पर चोटे कितनी आई, फिर भी कदम न डगमगाए। तन पर चोटे कितनी आई, फिर भी कदम न डगमगाए। नागदेव से वचन निभाने लौटे वीर तेजाजी, नागदेव से वचन निभाने लौटे वीर तेजाजी। शरीर हुआ था घावों से छलनी, फिर भी बात निभाई। जब डसने को जगह नहीं बची थी, जब डसने को जगह न बची थी, जीप उन्होंने आगे की। सत्य और वचन की खातिर दे दी आहुति जीवन की। आज भी राजस्थान की धरती उनकी गाथा गाती है, आज भी राजस्थान की धरती उनकी गाथा गाती है। तेजा जी की वीर कहानी हर दिल को राह दिखाती है, तेजा जी की वीर कहानी हर दिल को राह दिखाती है। साहस रखो सत्य पर चलो, साहस रखो सत्य पर चलो, सेवा को धर्म बनाओ। वचन निभाने वाले तेजा सा जीवन अपना सजाओ, वचन निभाने वाले तेजा सा जीवन अपना सजाओ। तो वीर तेजा जी महाराज की जय हो। राजस्थान के लोक देवता को शत शत नमन।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ, अब तो बस करो।
0: बहू, क्या सोच रही हो? घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो।
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है, जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाई सा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया, और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
5: मेरा फैसला यह है कि
6: क्या है पापा?
7: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
8: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
9: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
5: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे हैं, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
9: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
10: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
11: शांति, सब ठीक कह रहे हैं। चलो, हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
5: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
12: क्या?
13: क्या?
12: क्या?
13: क्या?
5: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
14: हाँ जमाई सा तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
7: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
10: मैं तो बहुत खुश हूँ।
7: बढ़िया,
14: बहुत अच्छी बात है,
7: सब लोग मिलकर रहेंगे।
15: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
7: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
5: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर है।
16: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
8: माँ, आप क्या चाहती हो?
13: दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके।
15: किशन सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
7: जमाई साहब परिवार के हैं और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
9: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
13: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
17: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
9: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है खुशी न दामाद की।
7: अरे जमाई सा अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
14: वैसे जमाई सा मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
15: अरे राजकुमारी तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
7: अरे माँ खतरा है ना।
16: क्या?
7: राजकुमारी के हाथ का खाना।
11: नहीं नहीं मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
17: क्या करेले के लड्डू
16: या मिर्ची का हलवा?
14: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊं ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
9: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
13: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
18: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
14: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
18: हाँ हाँ वही।
15: हाँ बेटा हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
13: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या? अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है? मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या?
17: वाह वाह वाह वाह
7: वाह वाह। किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
9: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
18: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
9: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
18: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
7: भाई साहब जाने दीजिए ना।
11: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
18: जमाई साहब आपका घर है, आप यहीं रहेंगे और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो, एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
7: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
9: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
14: भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है दिल नहीं।
17: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
13: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
9: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
15: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
5: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
11: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
5: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है। रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
7: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब। हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार। कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन दिल में नहीं।
15: चलिए जमाई साहब, अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
6: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी। ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोलकर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाईसा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
19: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाईसा का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए, उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई साहब को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
20: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. वैसे संगीत का सफर सच में इतना सुहाना होता है कि बाकी सब सफर उसके आगे फीके लगते हैं. एक्चुअली चाहे हम घूमने जाएं या परिवार के साथ समय बिताएं या कहीं अकेले किनारे बैठे हो किसी सोच में डूबे हो, संगीत हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता. इसलिए हम भी उसका साथ नहीं छोड़ते और लेकर आते हैं आपके लिए ये कार्यक्रम जिसमें मिलवाते हैं आपको हर हफ्ते एक नए मेहमान से. लेकिन वो मेहमान होते हैं खास क्योंकि उन्हें होता है संगीत से प्यार. और आज भी हमारे समक्ष एक ऐसी ही आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है निधि अग्रवाल जी, जो कि कवयित्री भी हैं. वो ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट राइटर भी हैं. और साथ साथ उनकी कविताओं का बहुत सुंदर उन्होंने संग्रह भी तैयार किया है. तो आइए निधि जी का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आज. निधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया. और मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं संगीत, जहाँ भी मौका मिले संगीत या गीत, कहीं पर भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो तो जो भी मैं कविताएं लिखती हूँ उनको ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि वो समाज से जुड़ी होती हैं और प्रकृति से भी संबंधित होती हैं, जिससे कि हम लोग अपने समाज में क्या चल रहा है, हमारी प्रकृति में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे हम लोग जुड़े रहें. मैं खुद जुड़े रहती हूँ और इन कविताओं के माध्यम से बस अपना संदेश सबको सुनाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ. इसलिए और मैं बेसिकली यूपी कानपुर की रहने वाली हूँ. और हमारे यहाँ जैसे गंगा नदी है तो वहाँ पे मतलब अभी तो काफ़ी प्रदूषण पे कंट्रोल है, लेकिन एक समय था जब हमारे यहाँ पे गंगा का बहुत ज़्यादा प्रदूषण था, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. पानी हमें साफ नहीं मिल पाता था और हर जगह गंदगी, कचरा, कूड़ा ये सब रहता था. लेकिन अभी सरकार भी बहुत मतलब जागरूक हुई है सबको लेकर, तो अभी साफ सफाई गंगा की करना बहुत हो गया है. और शहर में भी अभी सुंदरीकरण हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा गंदगी और वो प्रदूषण और वो सब रहता था. तो मेरी कविताओं का मतलब, क्योंकि बचपन से ही मुझे संगीत, कविताओं से, गीत से बहुत एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है. और बहुत मतलब एक अंदर से ही एक जैसे एक मुझे रहा है बचपन से कि मैं कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ें करने का मुझे शौक रहा है. तो उसमें कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, जो भी मुझे लगता है समाज में चल रहा है और जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए और तब बच्चों के लिए, जो हम उनको कैसे एक अच्छी सोच दे सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आज है हमारा और बच्चे हमारा कल. तो जब हम अपनी युवा पीढ़ी को सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे बच्चों जी, जी, को जी. तो हमारा भविष्य और आज बहुत सुंदर हो
0: तो
1: सकता.
0: इसलिए आप युवाओं के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी कविताएं लिखते हैं.
1: जी, मैं उनके लिए भी लिखती हूँ. और हमारी जो महिलाएं हैं, जो शक्ति सेना है हमारे देश की, मतलब 50% जो जनसंख्या है हमारी महिलाओं की है, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो, वैसे तो आजकल हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं. बहुत
0: कहां नहीं है महिलाएं, चाहे
1: हर जगह है महिलाएं,
0: चाहे क्रिएटिव फील्ड्स में हो.
1: हाँ, हर फील्ड में आगे हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं. तो उनसे भी संबंधित मैं कविताएं लिखती हूँ, बाकी समाज के लिए लिखती हूँ और प्रकृति से संबंधित. और एक चीज और मेरे विषय में शामिल है, जो है आध्यात्मिकता, जिसकी आज हम सबको बहुत बहुत जरूरत है.
0: बिल्कुल.
1: आजकल के जो हमारा माहौल है, जो हमारी जिंदगी है, उसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं
0: जी, जी,
1: जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम मतलब कभी कभी लो फील करने लगते हैं, हम निराश, हताश होने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती.
0: बहुत सारी परेशानियां,
1: बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं. बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि बहुत सारी परेशानियां भी हैं जीवन में. तो हमें लगता है कि हमें परमात्मा से जुड़ने की और उनकी, उनसे शक्ति लेने की जरूरत है. तो जब हम अध्यात्म को साथ लेके चलेंगे तो हमारा जो जीवन है वो बहुत बेहतर बनेगा. बहुत मतलब हम अच्छे से अपनी सारी समस्याओं का सामना कर पाएंगे
0: जी, जी,
1: और हम अपने हर मतलब हर जो भी हमारे जीवन में हम करना चाहते हैं उसमें हमेशा हमें सफलता मिलेगी.
0: तो बहुत सुंदर विषय हैं आपके, आपने बताए. और मुझे लगता है कि आपके पास शब्दों का बहुत बड़ा खजाना भी होगा, क्योंकि जब कोई लिखते हैं तो वो शब्दकोश भी बहुत बड़ा जरूर होता है उनके पास, क्योंकि हर चीज को व्यक्त कर पाना कई बार लोगों को मुश्किल भी लगता है कि हमने जो सोचा शायद वो वो कहा या नहीं, तो वो भी होता है। निधि जी, मैं आपसे थोड़ा सा और पहले ये जानना चाहूंगी कि कविता लिखना आपने कब शुरू किया, वो कैसा?
1: जी, मैं क्लास 5th या 6th में थी, तो तब से मतलब मैं प्रकृति के शुरू से बहुत करीब रही हूँ। हमारा जो घर भी रहा है वो बहुत मतलब ऐसे, हमने घर में मतलब मेरे माता पिता को भी हरियाली का बहुत शौक रहा, तो हमारे आसपास बहुत पेड़ पौधे रहे, पशु पंछी बहुत मतलब पहले हमारे घर के मतलब घर में भी उनकी बहुत हम आवाज़ सुनते रहे शुरू से ही, और गीत संगीत भी हमने बहुत मतलब करीब से मैंने बचपन से देखा। तो मेरा एक रुझान सा हो गया कि मतलब कि कुछ मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, जो प्रकृति है जो वातावरण है वो हमसे कुछ कहना चाहता है, तो हमें उनकी आवाज को सुनने की कोशिश करना चाहिए, क्या वो हमको संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश अगर मैं समझ पाती हूँ तो वो मैं अगर कविता के माध्यम से दूसरों को भी बताऊं या सुनाऊं, तो मुझे एक बहुत मतलब लगता था कि मैं कुछ सेवा कर रही हूँ प्रकृति की और मतलब अपने समाज की भी। तो जब मैं 5th या 6th क्लास में थी तभी से ये सफर लिखने का शुरू हुआ। तो मैंने पहली बार जो कविता लिखी थी वो एक कुछ चिड़िया पर और प्रकृति पर लिखी थी, और वो हमारे यहाँ पे दैनिक एक वो पत्रिका छपती थी उस समय, अभी भी छप रही है अमर उजाला, तो उसमें प्रकाशित भी हुई थी।
0: क्या बात है।
1: तब से मुझे लगा कि मैं ठीक ठीक लिख सकती हूँ, तो बस वहीं से मैंने शुरुआत की, और फिर जो वो वहां से शुरुआत हुई तो परमात्मा की वो सफर आगे बढ़ता रहा, और मतलब अभी बहुत सारे।
0: तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी आपसे निधि जी कि जैसे आप कविताएं तो लिखते हैं, एक्चुअली मैं जानना तो आपके सफर के बारे में बहुत कुछ हम चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम संगीत का है, ये कार्यक्रम ऐसा है कि जहाँ पे हम जुड़ते हैं कविताओं से गीतों से, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपकी लिखी हुई कोई कविता आप हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं।
1: जी जी जरूर। मेरी एक कविता है जो मैंने लिखी है कि कैसे मतलब अपने मन के जो भाव होते हैं उस पे आधारित है, कि हर इंसान के अंदर मन में कुछ ना कुछ भाव रहते हैं, और उनको मतलब हम कैसे मतलब कभी कभी बहुत गहराई से फील करते हैं, तो वो ही भाव के ऊपर ये कविता है। कि मेनली जैसे शांत एक शांति का एक होती है भाव होता है या एक फीलिंग होती है, तो वो मुझे जब फील हुई होती है तो उसकी मतलब कितनी पावर होती है उसमें, उसी पर आधारित है। खामोशी की जुबान, खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, बिन बोले बहुत कुछ कहती है, मन के अनसुने राज खोलती है, दिल में बस उतर जाती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, जुबान कभी ना जो कर पाती, खामोशी की जुबान वो कर देती है जो सोचा नहीं। खामोशी की जुबान मन का आईना है, खामोशी की जुबान मन का आईना है, हमारे विचारों को देती है आकार, हमारे विचारों को देती है आकार। खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, खामोश रहकर भी अपनेपन का एहसास कराती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह देती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, जीवन में नए रंग भरकर जीवन खूबसूरत बनाती है, जीवन खूबसूरत बनाती है। खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, गहरा असर करती है।
0: क्या बात है, खामोशी को जुबान दे दी आपने, और क्या महसूसता होती है जब कोई इंसान चुप भी होता है तो क्या कह रहा होता है या क्या महसूस कर रहा होता है। आपने एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ देती है खामोशी की जुबान। इसका क्या अभिप्राय था, मतलब ये क्या आपकी भावना थी इसके पीछे?
1: मेरे मन में इसके पीछे यही भावना थी कि जब हम खामोश होते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं हम उनको समझ पाते हैं, अपने मन को समझ पाते हैं, और परमात्मा से जुड़ने के लिए भी हम जितना खामोश रहते हैं उतना ही डीप कनेक्शन परमात्मा से हमारा बन पाता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं तो हम खुद से नहीं जुड़ पाते हैं और परमात्मा से भी हम नहीं जुड़ पाते उतना अच्छे से। लेकिन जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, या हमें क्या करना चाहिए, और परमात्मा से हमारा जो संबंध है उसकी गहरी महसूसता जब हम खामोश होते हैं तभी होती है। और हमारी शक्तियाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हम जब बोल रहे होते हैं तो हम अपनी शक्तियों को भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं।
0: ओके।
1: लेकिन जब खामोश रहते हैं तो हमारी शक्तियाँ कंसंट्रेट हो जाती हैं और बेटर होती हैं। मेरा बस यही अभिप्राय था खामोशी की जुबान के पीछे,
0: बहुत सुंदर।
1: हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, जो भी हमारा दिनचर्या है या जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, तो अपने लिए समय निकालें और उस समय मतलब खामोशी में रहकर बैठें तो हमें बहुत सारा मतलब अपने बारे में जानने को मिलेगा और हमारे जीवन में हमें ज्यादा सफलता मिलेगी और परमात्मा का भी हमारा जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग
0: होता जाएगा। क्या बात है। और जैसा आपने कहा कि आपने फिफ्थ क्लास से आप लिखना शुरू कर दिया था, आप अपना अनुभव सुना रहे थे, तो आपने क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो क्या ये फील्ड आपकी लिखनी से ही शुरू हुई, इसीलिए आपका इंटरेस्ट आया, या कोई और रीज़न था इस करियर के पीछे?
1: एक्चुअली मेरी लेखनी से, वैसे तो मैंने आगे की जो पढ़ाई की वो मतलब अलग फील्ड में की थी, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हमेशा से, क्योंकि मुझे साइंस बहुत पसंद रहा क्योंकि इसमें लॉजिक होता है चीज़ों में, हम मतलब प्रूव कर सकते हैं हर चीज़ को, हमें ऐसे मतलब बिना देखे कोई चीज़ को मानने की, बिना समझ के मानने की ज़रूरत नहीं होती, साइंस हर चीज़ का प्रूफ देती है, लॉजिकल होती है, इसलिए मुझे साइंस फील्ड पसंद थी। तो मैंने साइंस में ही अपनी पढ़ाई आगे की और उसके बाद उस समय क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड वाली फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो मेरे घर वालों ने भी चाहा कि मैं उस फील्ड में कुछ करूँ, तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई उस फील्ड में की, MBA किया, और MBA के बाद मैंने कुछ कॉरपोरेट कंपनीज में, MNCs में भी काम किया, लेकिन अंदर से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा था। लेकिन जो मेरा राइटिंग वर्क था वो मेरा चल रहा था साइड बाय साइड, तो मुझे लगा कि जब मुझे ये प्लेटफॉर्म है जिसमें ज्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ और इससे मैं ज्यादा करीबी फील करती हूँ, क्रिएटिव राइटिंग है, चाहे वो कविताओं के माध्यम से है, लेखों के माध्यम से है, ब्लॉग्स के माध्यम से है, और मैं गीत भी लिखती हूँ तो गीतों के माध्यम से है, तो फिर मुझे लगा कि मैं इसी को अपना फुल टाइम करियर बनाऊँ, क्योंकि मुझे और भी लोगों ने
0: जो, कब लगा आपको मतलब
1: जब मैंने जैसे आपको शेयर किया कि जब मैं MBA करके और कॉरपोरेट कंपनी में काम कर रही थी, उस समय 2-3 साल बीत चुके थे,
0: 3 साल बाद आपको ये लगने लगा,
1: मुझे ये लगने लगा कि मुझे अपना करियर थोड़ा सा मुझे वो करना
0: क्रिएटिव
1: चाहिए, मुझे कुछ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे उतना पैसा मैं कमा रही थी और जॉब भी चल रही थी, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना जो हम कर रहे होते हैं वो मुझे कहीं मिसिंग लग रहा था। बाहरी तौर पे तो मैं कर रही थी, ठीक था सब कुछ, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए बहुत कंटेंटमेंट की, सेटिस्फेक्शन की, वो नहीं आ रही थी। और बाकी जो मैं जैसे फ्रीलांस बेसिस पे काम करती थी तो जो फील्ड से जुड़े, लेखन की फील्ड से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप इस फील्ड में अगर करोगे तो ज्यादा शायद अच्छा रिजल्ट आप दे पाओगे और आप आगे ज्यादा सफल हो पाओगे, और मतलब आपका लगता है कि इसमें ज्यादा अच्छा एप्टीट्यूड है। तो फिर तभी से मतलब मैंने सोचा कि मैं फिर इसी फील्ड में अपने आप को वो करूं, परस्यू करूं इस फील्ड को, और इसी में अपने सफर को आगे बढ़ाऊं।
0: तो बस
1: वहीं से मैंने सोच लिया और वहीं से फिर मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी कर लिया, इसलिए मुझे बोला गया तो BHU से 1 ईयर का, और उसके बाद से पूरी तरह इस फील्ड में
0: आप आ गए। क्या बात है। आपने कहा आप गीत भी लिखते हैं, तो क्या कोई गीत है आपका लिखा हुआ आपको याद, या कुछ आप अगर शेयर करें हमारे श्रोताओं के लिए?
1: एक गीत है तो उसकी कुछ लाइंस मैं गा देती हूँ, क्योंकि मैं कवित्री हूँ बट मैं लिखती हूँ गीत भी। जी, इसका शीर्षक है तुम बिन कोई नहीं, ये परमात्मा को मैंने डेडिकेट या समर्पित किया हुआ है। तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुम

बस तुम ही हो मेरे यहाँ, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम्हें पाकर जैसे आसमां पा लिया। तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है मेरी सारी वफा, तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है सारी वफा।

साथ देते हो मेरा हर दफा, मेरी दुनिया रोशन है तुम्हीं से, मेरी खुशी जिंदा है तुम्हीं से। तुम हो मेरे खुदा, तुम हो मेरे खुदा, रखते हो पलकों पे सदा, रखते हो पलकों पे सदा। कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया, कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया। जन्नत को जैसे जमी पे लाए हो, सुख अपार मुझ पर लुट

0: कमियों से भर दी झोली मेरी, हर कमी को मेरी पूरा किया, हर कमी को मेरी पूरा किया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों को मेरे भिगा दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों को मेरे भिगा दिया, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता मेरा, सदियों से है तुमसे नाता मेरा।
1: ये गीत आपने पूरा परमात्मा को समर्पित किया
0: जी,
1: आपने ऐसा लिखा, वो जो आप फील करते हैं ईश्वर के लिए वो जैसे आपने शब्दों में लिखा। तो जब आप ये गीत लिख रहे थे तो क्या भावना थी, जैसा आपने कहा कि आप वैसे गाते तो नहीं हैं, आप लिखते हैं, तो आपको ये मन में भावना थी कि ये आप किसी को देंगे या गवाएंगे, या आपको लगता था कि ये मैंने अपने लिए लिखा है, क्या सोच के आपने लिखा या क्या महसूस था थी इस गीत के लिए?
0: मेरा मतलब मेन पर्पस था कि ये गीत तो मैं अपने लिए लिखना चाहती, जो मेरा परमात्मा के साथ संबंध जो मैं महसूस करती हूँ, लेकिन जैसे कि मैं चाहती थी कि कोई और की आवाज में ये गीत
1: गाया
0: मतलब
1: जाए।
0: हाँ गाया जाए और सुने सब लोग, ताकि मतलब जैसा मैं महसूस करती हूँ परमात्मा के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो भी ऐसा महसूस करते हैं परमात्मा के लिए, तो एक मतलब उनको भी ये गीत सुनने को मिले तो उनको भी वो खुशी हासिल हो जो मुझे खुशी हासिल हो रही है, तो यही सोच के साथ मैंने ये लिखा था।
1: वंडरफुल। तो डेफिनेटली जब हम कुछ लिखते हैं तो अगर महसूस नहीं करते तो वो लिख नहीं सकते, वो
0: जी
1: कागज और
0: बिल्कुल
1: कलम पे
0: बिल्कुल,
1: नहीं आ सकता। तो
0: जब
1: मैं
0: तक भावनाएं हमारे मन में नहीं होंगी उस विषय के प्रति या उस चीज के प्रति, तब तक वो शब्दों में उस तरह से ढल ही नहीं पाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सच। तो निधि जी एक और बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, कविताएं लिखना और कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी लेखन के भी दो अलग अलग फील्ड्स हैं बहुत,
0: जी
1: तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं, क्या समानता लगती है या कैसा महसूस करते हैं हम दोनों को ही लिखते वक्त?
0: देखिए लेखन का है वो फील्ड एक अलग है, वहां पे हमें बहुत सारा प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ता है, बहुत सारी मतलब भावनाओं के साथ ही हम नहीं हमेशा लेखन कर सकते, हमें जो सच्चाई है समाज की या जो हमारे विषय है उसके ऊपर हमें रिसर्च भी करना पड़ता है, और बहुत सारी लोगों से बातचीत करके हम कोई लेख तैयार करते हैं और फिर वो लिखते हैं, और वो समाज से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे मतलब महिलाओं से रिलेटेड, कोई भी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है लेख हमारा, लेकिन उस पे हमें रिसर्च जरूर करना पड़ेगा, और वो इतना मतलब एक जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी कई बार उसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो कविताएं होती हैं गीत होते हैं ये जो हैं ये सारे बहुत भावनात्मक पहलू से संबंधित होते हैं, जो हम समाज से भी हम चीजें देखते हैं अपने आसपास देखते हैं, मतलब बहुत सारे विषय हैं जो जिन पे आधारित होते हैं, लेकिन मेनली इनमें भावनाएं मेन होती हैं और उन्हीं के आधार पे हम लिखते हैं, इसमें कोई रिसर्च वर्क या कुछ किसी से बातचीत के आधार पे ये चीजें नहीं होती हैं, बट ये है कि दोनों में समानता अगर देखें तो यही होती है कि लेखक जो होता है वो उसके विचार दोनों में ही आ जाते हैं, चाहे वो गीत होंगे कविताएं होंगी या लेखन होगा, तो हमारे विचार तो इनमें आते हैं, हम अपने मन की जो भावना है, लेकिन वो लिखने का जो पैटर्न होता है वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है दोनों में, वो भावनात्मक विषय हमारी फीलिंग्स पे आधारित होते हैं जो गीत और कविताएं हैं, हालांकि वो विषय हम वहीं से उठाएंगे अपने समाज से ही उठाएंगे, पर लेखन में होता है कि हमें खाली अपनी फीलिंग्स नहीं डाल देनी है, वो सच के करीब होने चाहिए, उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको शामिल करना पड़ेगा, लोगों के जो व्यूज हैं वो सारे शामिल करने पड़ेंगे, ये मेन डिफरेंस आ जाता है।
1: तो उसके लिए अगर मान लीजिए कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो क्या स्किल्स होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
0: मेनली अगर कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उनको थोड़ा सा

0: कि मतलब उनकी एक शैली उनको डेवलप करनी पड़ेगी, अगर होती है कुछ लोगों में तो फिर वो लेखन के फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। शब्दकोश अपना अच्छा बनाना पड़ेगा, जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में हमें थोड़ा कमांड होना चाहिए अच्छा, तो फिर इस फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने कोई डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, हालांकि अगर आप प्रोफेशनल एक राइटर बनना चाहते हैं तो वो भी आजकल जरूरी हो गया है कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो, लेकिन अगर आप ऐसे शौकिया तौर पे लेखन करना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं। अगर आपका रुचि है, लेखन में रुचि है, आपका शब्दकोश आप अच्छा रख सकते हैं और आप भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अगर आपका मतलब एक आपके अंदर वो है,
1: काबिलियत है।
0: हाँ एप्टीट्यूड है, तो इस क्षेत्र में आप आके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ये क्षेत्र आपको बहुत
1: बहुत कुछ
0: बहुत कुछ दे
1: देगा
0: सकता है, क्योंकि
1: जी।
0: इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान आप बना सकते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि लेखन के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के दिलों में आ जाते हैं, दिलों में लोग बिठाते हैं और बहुत सम्मान भी हमें मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, वो चीज नहीं है, खाली इस क्षेत्र में सम्मान और एक लोगों का प्यार बहुत
1: बहुत
0: मिलता है,
1: मिलता
0: ये
1: है,
0: मैंने देखा है।
1: क्या बात है, मस्त है। तो कोई और ऐसी कविता निधि जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो या आपको बहुत पसंद हो, या जैसा आपने कहा लोगों का प्यार मिलता हो, जिसे आपको लगा कि
0: जी
1: हाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया ऐसे।
0: जी बिल्कुल, ये कविता है जो हमारे रिश्ते जो हैं उन पर आधारित है, कि आजकल हमारे रिश्तों में मतलब वो जो अपनापन जो खींच है वो थोड़ा कम हो रही है, तो उसको कैसे हम बरकरार रखें, चाहे कोई भी रिश्ते हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्तों के साथ रिश्ता हो, या परमात्मा के साथ हमारे जो संबंध हैं, तो कैसे रिश्तों में एक ताजगी हम रखें, कैसे रिश्तों में प्यार स्नेह रखें, उस पर आधारित है मेरी ये कविता, आपके सामने रख रही हूँ। रिश्तों का सौंधापन, रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्ते तो हमें जोड़ते हैं, हम खुद ही उन्हें तोड़ते हैं। विकारों के वशीभूत होकर रिश्तों को छोड़ते हैं, झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं, झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप, अपनेपन की खाद। प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप, अपनेपन की खाद। मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है, मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है। रिश्ते सहज सरल समरस बन जाते हैं, रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्ते मुरझा ना पाए ध्यान हमें रखना है, रिश्ते मुरझा ना पाए ध्यान हमें रखना है। प्रेम का छिड़काव उन पर करते रहना है, प्रेम का छिड़काव उन पर करते रहना है। मधुरता और अपनत्व की धूप से उनको पोषित करना है, शीतलता की बारिश उन पर करते रहना है। रिश्ते सौंधे और सुंदर बने रहेंगे सदा और सर्वदा, रिश्ते सौंधे और सुंदर बने रहेंगे सदा और सर्वदा। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है, जी भर जीने का मन करता है।
1: बहुत सुंदर, रिश्तों का सौंधापन, मतलब ये कैसे रिलेट किया आपने। हम जानते हैं वो सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है वो तो बहुत आकर्षित करती है, पर रिश्तों का सौंधापन क्या है, थोड़ा अगर आप समझाएंगे मतलब किस चीज़ ने प्रेरित किया आपको ये लिखने के लिए, और रिश्ते आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो भी अगर आप बताएं।
0: ये मैंने जैसे सौंधापन हम देखते हैं ना, बहुत मतलब खुशबू होती है एक बहुत प्यारी सी, तो वही हम खुशबू अपने रिश्तों में भरें तो फिर वो रिश्ते हमारे हमेशा सुंदर बने रहेंगे और हमारे रिश्तों में प्यार हमेशा बना रहेगा। तो वही मैंने कहा कि वो जैसे सौंधापन हमको, चाहे वो बारिश की बूंदें जब पड़ती है मिट्टी पे, तो मिट्टी से एक सौंधेपन की खुशबू आती है। पहले जमाने में वो जो दाल माताएं बनाती थी वो चूल्हे पे, उसमें एक सौंधापन आता था, जो मिट्टी का बर्तन होता था, तो इस तरह हम वो सौंधापन अपने रिश्तों में भी अगर हम लाएं, वो मीठापन, तो हमारे रिश्ते बहुत सुंदर बने रहेंगे, बहुत रिश्तों में हमेशा एक ताजगी बनी रहेगी, एक अपनत्व बना रहेगा, स्नेह भावना बनी रहेगी। और मेरे लिए रिश्ते मेरे जीवन में बहुत बहुत मायने रखते हैं। तो बचपन से ही मैंने अपने रिश्तों को मतलब बहुत महत्व दिया है जीवन में, और चीज़ों से ज़्यादा हमेशा मैंने रिश्तों को महत्व दिया है। तो मैंने देखा है कि बाकी सब चीज़ें मेरे जीवन में हमेशा अच्छी हुई हैं, क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, रिश्ते मेरे मजबूत हैं, तो मेरे मन की स्थिति भी हमेशा अच्छी है, और लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं जब अपने रिश्तों से जुड़ी रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे मुझे सीखने को मिलता है, एक मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहा है, एक बुरे वक्त में साथ मिला है रिश्तों का, अच्छे बुरे वक्त में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते हमेशा अच्छे बना के रखने चाहिए, चाहे वो घर के लोगों से रिश्ते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पे हैं, क्योंकि इन सब की ब्लेसिंग्स और इन सब का साथ जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और परमात्मा से हमारा रिश्ता, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनसे अगर हम अपना रिश्ता अच्छा बनाए रहेंगे, तो बाकी सारे रिश्ते भी कहीं ना कहीं हमारे अच्छे बने रहेंगे। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में रिश्ते। मेरे हिसाब से तो मेरी लाइफ में एक मतलब जो बोलते हैं ना कि लाइफ लाइन है रिश्ते मेरी लाइफ के।
1: क्या बात निधि जी। लेकिन रिश्तों को बरकरार रखने के लिए जो आपने कहा, ये सब पाने के लिए आज की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो चुकी है। सब अपने अपने तरह से जीवन जीना चाहते हैं, जो गलत भी नहीं है, और फिर भी और समय भी बहुत कम होता जा रहा है सभी के पास। तो कैसे, मतलब आपका क्या कोई फॉर्मूला है या कोई चीज़ है जिसने आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम किया, जो आपको लगता है कि दूसरों को भी मदद कर सकती है?
0: हाँ, मुझे लगता है कि आज की लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा, मैं भी मानती हूँ कि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और एक दूसरे के लिए इतना टाइम भी नहीं दे पाते आजकल हम लोग, और मतलब दूरियां भी बढ़ गई हैं, मतलब फिजिकल डिस्टेंस भी हो रहे हैं आजकल, क्योंकि कोई किसी शहर में रह के काम कर रहा है, कोई यहाँ रह के। लेकिन हम मन से तो जुड़े रह सकते हैं ना, तो मन की भावना हम सभी जो हमारे अपने हैं या जो भी लोगों के हम संपर्क में हैं, संबंध में, उनके लिए मन की भावनाएं अच्छे रख सकते हैं, और साथ में हम बीच बीच में उनसे अगर पॉसिबल हो तो उनके साथ कुछ समय बिताएं, कोई ओकेशन है उस समय हम आपस में मिलें, या फिर कभी हम लोग फोन से भी बात कर सकते हैं जिन लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है। और मान लीजिए कि हम किसी को हमारी मदद की जरूरत है, तो उस समय हम उस रिश्ते के साथ जरूर खड़े हों समय निकाल कर उनके सुख दुख में। तो जरूरी नहीं है कि हम उनसे रोज ही मिलें, रोज ही बात करें, या उनको बहुत सारे अच्छे गिफ्ट दें, या फिर मतलब बाहरी जो दिखावे की चीजें वो करें, मगर हम उनका दिल से साथ दें रिश्तों का। और मतलब रिश्तों में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा सहनशील बने, और मतलब जो भी हमारे रिश्ते हैं उनको बरकरार रखने के लिए अगर हमें सैक्रिफाइसेस भी कुछ कुछ करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज बहुत स्मूथ रहती है रिश्तों में। बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी आपस में मतभेद भी हो जाते हैं, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू खत्म करें, रिश्तों में कभी भी मन मुटाव की भावना पैदा नहीं होने दें और अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दें, तो हमारे रिश्ते अच्छे रह सकते हैं और हम लोगों से जुड़े रह सकते हैं जिन लोगों से हम जुड़े रहना चाहते हैं।
1: मतलब माफ कर दें अगर कुछ हो भी जाए तो।
0: जी जी बिल्कुल, माफ कर बैठे उसको लेकर बैठे नहीं, और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा कोशिश करके पॉजिटिव रखें दूसरों के प्रति भी, क्योंकि हो सकता है, देखिए हम सभी अलग अलग जगहों से आए हैं और हमारे संस्कार स्वभाव कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। ये सोचे कि उनका स्वभाव हमसे थोड़ा अलग है, ये नहीं कि मैं ठीक हूँ और वो गलत है, वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, बस हमको तालमेल बिठाने की जरूरत है, एडजस्टमेंट की जरूरत। अगर ये सोच रखेंगे तो हमारे रिश्ते कभी किसी के साथ खराब नहीं हो सकते। और जहाँ अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम थोड़ा सा साइलेंट हो जाए उस समय, और बाद में जो भी बात है वो आपस में बातचीत करके खत्म कर लें, बस
1: कर
0: ये सब चीजें अगर हम अपनी लाइफ में सोच में रखेंगे तो हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे और हमेशा मतलब हमारे बीच जो है प्रेम और स्नेह बना रहेगा रिश्तों में। और मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, रिश्ते तभी खूबसूरत रह सकते हैं, हमारी सोच अच्छी रहेगी तो दूर रहकर भी हमारे रिश्ते आपस में बहुत अच्छे रह सकते हैं।
1: निधि जी, जैसे आपने रिश्तों के बारे में बात की और उससे पहले हमने परमात्मा के साथ जो संबंध की बात की, अब अगर थोड़ा सा प्रकृति पे आए, आपने क्योंकि लिखना जब शुरू किया था तो आपने कहा वो चिड़िया पे है ना, वो पेड़ों को देखा, वो वहां आपने फिफ्थ क्लास में लिखना शुरू किया, तो प्रकृति के लिए भी अगर आपने कोई कविता लिखी हो तो वो हमें जरूर सुनाए हमारे श्रोताओं के लिए। कि हम आबू में रहते हैं और आबू सराबोर है प्रकृति के जैसे वरदानों से ना, बहुत सुंदर प्रकृति का स्थान है ये,
0: बहुत सुंदर ये जगह है। यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे भी बहुत प्रकृति के नजदीक फील होता है और लगता है प्रकृति जो कुछ कहना चाहती है उसे सुनना चाहिए और उसको महसूस करने का बहुत अच्छा एक जरिया है ये आबू। तो मैंने जो मतलब मैं भी प्रकृति के शुरू से बहुत नजदीक रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रकृति के साथ समय बिताना। तो मेरी ये कविता प्रकृति से संबंधित है और समर्पित है। जीवन और प्रकृति, जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, क्या आपने ये बदलाव महसूस किया? जीवन का यह नया अंदाज असाधारण सा, फिर से हम पुराने समय में पहुंच गए हैं, जड़ों से जैसे जुड़ने लगे हैं, प्रकृति के बेहद करीब हो रहे हैं, सब कुछ लग रहा है नया नया। शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, दिल में भरें खुशी और मस्ती के रंग। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच भी कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। ताजी और ठंडी हवा आनंदित कर रही है, धूप गुनगुनी और प्यारी लग रही है, अपनों से समरसता बढ़ रही है, पर क्या अपने अंदर झांक कर देखा है? जरा खुद को टटोलो और पूछो, क्या मानव सृष्टि बदलने वाली है? क्या नई दुनिया आने वाली है? प्रकृति भी इशारा दे रही है, संभल जाओ मानव वरना देर हो जाएगी। पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी, पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी। प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी, प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी, और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी। फिर से ये महफिल ना सच जाएगी, फिर से ये महफिल ना सच पाएगी। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच में कुछ तो अच्छा हो रहा है। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी,
1: जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी। और सच में हमने प्रकृति के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत गलत किया है, प्रकृति का विकराल रूप भी इंसान ने देखा है।
0: हाँ, लेकिन बहुत हमने देखा है, मतलब क्योंकि अब आजकल जो दौर चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि प्रकृति भी अपनी सीमाएं लांघ रही है, बहुत जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत ज्यादा शोषण किया है, प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है मानव दिन पर दिन। तो इसीलिए ये सारी हम देख रहे हैं, प्रकृति भी फिर वो रिएक्शन दे रही है ना हमको जब हम उसका इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी हमारे पास समय है कि हम संभल जाएं वरना फिर हो सकता है बहुत देर हो जाए और फिर विनाश की मतलब एक प्रकृति भी ऐसे रूप में आ जाए,
1: प्रकृति भी अपना विकराल रूप और दिखाए,
0: और ज्यादा विकराल रूप सामने आएगा तो फिर मानव को बहुत ज्यादा उस समय मतलब पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
1: वो कहते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो अब हमें प्रकृति प्रेम को और बढ़ाना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि हम प्रकृति की बात पे आई है, कैसे मतलब प्रकृति के साथ और करीब कैसे खुद को महसूस करें या कैसे वो उस नाते को और स्ट्रॉन्ग किया जाए?
0: हाँ, प्रकृति के साथ हम अपना नाता स्ट्रॉन्ग तभी कर सकते हैं जब हम प्रकृति का संरक्षण करने की दिशा में आगे बढ़े। मतलब पेड़ पौधे, हरियाली है उसको मतलब और हरियाली अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाएं, और मतलब जो हमारे शहरों में जो जहाँ पे भी मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो हम लोग उस चीज को भी देखें कि हम नष्ट नहीं करें पेड़ पौधों को, और जो हमारा जैसे पानी है वो भी एक हमारा प्राकृतिक एक स्रोत है, प्रकृति से जुड़ा हो, तो उसको भी हम मिसयूज नहीं करें, उसको बर्बाद नहीं करें, उसका भी हम संरक्षण करें, तो हम प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं जितना हो सके हम, मतलब पेड़ पौधों का, जल का, इन सब का मतलब हम दुरुपयोग नहीं करें, इसका सदुपयोग जितना जितना हम करते जाएंगे तो हम प्रकृति के और नजदीक आते जाएंगे, और मतलब उनको अपना एक दोस्त समझें, ये नहीं सोचे कि ये तो मतलब पेड़ पौधे हैं, इनका क्या है, इनको कैसे भी इस्तेमाल करो, इनके अंदर तो कोई जान नहीं है, ये तो एक जगह खड़े रहते, निर्जीव नहीं माने, वो सजीव है हमारे जैसे ही, तो अगर हम उनको अपने जैसा ही समझेंगे तो हमारे उनके प्रति भी शुभ भावना रहेगी और हम उनको भी अपना एक सच्चा मित्र मान के चलेंगे, तो कभी हम उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे और हमारा उनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन बनेगा और हम नजदीक रहेंगे, और वो प्रकृति की भी एक भाषा होती है जो अगर हम एक शांति में रहकर अगर उस भाषा को सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें वो भाषा समझ में आएगी कि प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है, तो वो हम सुनने की कोशिश करें कि हमारी प्रकृति हमसे क्या चाहती है, जैसे हम प्रकृति से बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत कुछ प्रकृति हमको दे भी रही है, देती बिल्कुल, रही है सदियों से, लेकिन उसको भी जो हमसे चाहिए वो हम कभी हमने उस चीज के बारे में नहीं सोचा, केवल हमको क्या चाहिए प्रकृति से उसी के बारे में हम सोचते आए सदियों से, तो अब हमें जरूरत है कि हम इसको अपने फोकस को चेंज करें और प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है उसके बारे में भी हम सोचें।
1: ये बात मुझे सच में बहुत अच्छी लगी नीति जी, कि हम देखते हैं हम जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, हम वेकेशंस पे जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं,
0: अगर बहुत अच्छा लगता है, अगर पेड़ पौधे पहाड़ प्रकृति नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, बहुत नीरस हो जाएगा, प्रदूषण कितना हो जाएगा हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, हर जगह, और बारिश जो प्रकृति की देन है हमको वो नहीं हमें मिलेगी, तो सोच लीजिए कैसा जीवन होगा मानव जीवन।
1: सच में जब हम जाते हैं तो हम इतना इंजॉय करते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसी प्रकृति जो हमें हर टेंशन से फ्री करती है, जो हमें खाना देती है, पानी सब कुछ मिलता है, तो हम क्यों ना उसकी आवाज सुने। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोस्तों जब आप भी जाते हैं किसी भी सफर पर या फिर ऐसे यूं ही कुछ वक्त अपने लिए जब आप निकालते हैं तो प्रकृति की आवाज़ सुने, सच में वो हमसे क्या कहना चाहती है, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है, या बहुत सुंदर ये बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, करके देखिएगा ज़रूर, मैं अपने दोस्तों से कहूँगी यहाँ पे। और दीदी जी मैं आपसे जाते जाते एक और प्रश्न ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने महिलाओं की भी बात करी थी, है ना, जिन टॉपिक्स पर आप लिखते हैं उसमें आपने कहा था महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी आप लिखते हैं, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ बताएं कि आपके क्या विचार हैं उस बारे में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो अभी किस प्रकार के सशक्तिकरण की जरूरत है, क्या अभी वो तरीका, मतलब क्या अभी वो नीड बदल गई है या चेंज हो गई है, कौन सा सशक्तिकरण चाहिए, और फिर जाते जाते अगर आप हमें कोई कविता भी आपकी जरूर सुनाएं।
0: महिलाओं को तो देख रहे हैं हम कि आजकल महिलाओं समाज में आगे बढ़ रही हैं, उनको मतलब हर क्षेत्र में महिलाएं अच्छा कर रही हैं, क्योंकि जागरूकता हमारे समाज में बढ़ी है, तो इसी वजह से आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आर्थिक तौर पर इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होना सिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू भी है कि महिलाएं जहां एक और भारी तौर पे तो उनके अंदर सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं, और हमारे संस्कार हैं, वो भी बच्चियों में आजकल के पेरेंट्स को देने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कहीं ना कहीं वो संस्कार और वैल्यूज की मिसिंग भी हो रही है, हमारी जो नारी शक्ति है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे समाज में, हमारे परिवार में उसका बहुत गहरा प्रभाव हो रहा है, कि महिलाएं जहाँ एक और वो आर्थिक तौर पे पावरफुल बन रही हैं, एम्पावर हो रही हैं, और वो इंडिपेंडेंट सोच वाली हो रही हैं, वो होशियार हैं, वो हर क्षेत्र में आगे प्रगति कर रही हैं, लेकिन जो अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए और मतलब सबके आदर सम्मान जो महिलाओं को मतलब करती हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस चीज को नहीं समझती हैं, लेकिन एक समाज में कुछ मतलब बहुत सारी वो भी हो रही है महिलाओं के आर्थिक तौर पे सक्सेसफुल होने के साथ साथ जो वैल्यूज और जो संस्कार हैं उनकी महसूसता मैं यानी वो शक्तियां कम कहीं ना कहीं हो रही है महिलाओं में, जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे तलाक हो रहे हैं हमारे समाज में, मतलब डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं सहन शक्ति जो है जो पहले की माताओं में हुआ करती थी, स्नेह की भावना, स्नेह की शक्ति, प्रेम की शक्ति जिसके माध्यम से वो पूरे परिवार को बांधे रखती थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है आजकल। महिलाएं भी जैसे अपने ही बारे में ज्यादा सोचने लगी हैं आजकल, या अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी हैं बस, या मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम डेवलप होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहे हैं मतलब पति के साथ या हस्बैंड के साथ में, वो महिलाएं उस तरीके से तब अपने परिवार को नहीं साथ लेके चल पा रही हैं जैसे पहले महिलाओं के अंदर ये भी वैल्यूज और संस्कार रहते थे कि वो पूरे परिवार को बांध के चलती थी, परिवार की धुरी बन के चलती थी, भले ही वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आर्थिक तौर पे वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, लेकिन अपने परिवार में वो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी। वो रोल कहीं ना कहीं तो महिलाओं थोड़ा मिसिंग,
1: महिलाओं का मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि अब शायद हम जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हैं, उनको ये भी समझ में आया है या ये भी लगता है कि परिवार को बांधने का कार्य सब मिलकर करें और उसमें पुरुष भी सम्मिलित हों, उसमें ये डिफरेंस ना हो कि ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है, सभी की वो जिम्मेदारी होनी चाहिए।
0: हाँ, होनी चाहिए सबकी, पुरुषों की भी होनी चाहिए महिलाओं के साथ साथ, पर कहीं ना कहीं जो है ना परमात्मा ने भी जो महिलाएं हैं उनको जो शक्तियां दी हुई हैं जैसे स्नेह की, प्रेम की शक्ति, सहन शक्ति, वो पुरुषों से ज्यादा दी हुई है, तो अगर महिलाएं उस शक्ति को यूज करेंगी तो फिर वो ज्यादा मेजर रोल प्ले कर सकती हैं, जैसे पालना की शक्ति है ना, ये महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास ये शक्तियां उतनी नहीं है, तो इसलिए महिलाएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल परिवार को बांधने में कर सकती हैं। पुरुषों का भी रोल होता है और वो उनको निभाना भी चाहिए, पर अगर महिलाएं उनका साथ देंगी पूरी तरीके से, जैसे पुराने जमाने में हमारी माताएं बहनें दिया करती थी, तो परिवार कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से चलते थे और एक साथ रहते थे, कोई तलाक और डाइवोर्स पुराने जमाने में नहीं हुआ करते थे, जबकि पुराने जमाने में बहुत सारी
1: परेशानियां होती थी।
0: लेकिन वो तो हर समय होती है, जरूर हो रहा है कि और महिलाएं मतलब वो भी सहन शक्ति खो रही हैं कहीं ना कि आर्थिक तौर पे वो क्योंकि सशक्त हो रही हैं, तो उनको लगता है कि हमें इतना सहन नहीं करने की जरूरत है, हमें कोई बात किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ मतलब मेरे को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए परिवार में जितना मेरे पति को मिलता है, मैं क्यों झुकूं, मतलब ये सब
1: झुकना तो दोनों को चाहिए, जहां जहां
0: जरूरत है दोनों झुकें, मतलब ये और दोनों मतलब एडजस्ट करके चले
1: जैसा आपने पहले कहा था
0: जी,
1: क्योंकि परिवार की जहां बात होती है
0: मतलब
1: वहां एक दूसरे को माफ करना, सहन करना, हर

0: समाज दी दुनिया रा हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम ने सुनवाला सगला श्रोताओं ने कैसी चिंगर रहा घना घना राम राम गणी खम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुअन कार्यक्रम मायने आपको समाज रे फैलियोड़ी कुरुतियों में बारा में समाज रे लोगों की बात करो हूँ अन्य अलावा अपने समाज रे कई समाज सेवी वे है उन्होंने भी अनुभव अन कार्यक्रम में शेयर करो हूँ अन्य अलावा अपने समाज में कई बुजुर्ग मानस वे है तो एक टॉपिक है तजुर्बा डोकरा मिनखोरा तो उन्हें तहत भी अपो समाज रा जो बंधु है उन्होंने तजुर्बा लो हों और वनौती अपन सीखवान मिले समाज में का बदलाव लाना है और उन्होंने अनुभव सीखवान मिले कि अपो समाज में का अच्छा कार्य करे है को। तो आज अपो डूंगरी गाँव में आया हूँ जो बनास रहे आस पास में है और डूंगरी गाँव में एक महेंद्र जी पुरोहित है वनौती आज आप उन्होंने जीवन रा अनुभव बात तो लई उनारी तो सबसे पहला उनारो आपो परिचय लेवला परिचय ती पहला उनारो आपो स्वागत करो रेडियो मधुबन में। महेंद्र जी आपरो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
1: राम राम सा।
0: महेंद्र जी रे पास में एक उनारे भैसा बेटा है उनारो भी स्वागत करो भाषा आपने रोम रोम है।
2: राम राम राम राम।
0: तो हमें महेंद्र जी रो परिचय ले रहे हो। महेंद्र जी आप डूंगरी गाँव में कतरा साल थे अटे रह रहे हो।
1: 1968 थी मारे जन्म हुआ वनिष्ठ टाइम थी मोटे रह रिया हो ने मारे 1986 में 10वीं मैट्रिक पास करे पे ने मो महाराष्ट्र तरफ प्रस्थान की था। 15 साल बॉम्बे में नौकरी की थी।
0: तो हमें आप बताओ कि आप क्यों मो जन्म थी अटे रह रही हूँ तो अंति पहला आन गाँव में आपरे परिवार थी कौन आया
1: मोरे अणि गाम में चार पेढ़ी रे पहला नानोराड़ा गाम थी उठी मैं अटे डूंगरी गाम में वसिया था।
0: अरे दादाजी आया था आपरे पिताजी आए
1: पर दादा दलाबाजी परिवार।
0: दलाबाजी परिवार मतलब पहला नानरवाड़ा में रहता।
1: नानरवाड़ा में रहता वटाती
0: अटे आवारो कारण कर रही हो
1: अटे मोरे जगह थी जगवण वास्ते एक भाई ने अटे मिल लिया रवण वास्ते ए अटे अपने आया पर दादा।
0: पर दादा आया तो अटे एक इस परिवार आया तो
1: एक इस परिवार
0: आज जो गाँव में मैंने सुनवा में आया तो 40-50 घर है वह सब एक ही परिवार का मेंबर है।
1: 37 घर मोरा परिवार रहा है। हाँ। 3 घर उदेश परिवार है। अच्छा। अलग गोतर है। अच्छा। ने एक घर नहीं रहा है।
0: एक घर नहीं रहा।
1: हाँ जी
0: चलो ठीक है। मतलब एक दादा रा परिवार 37 घर है।
1: 37 घर है।
0: चलो ठीक है। ओ होबली तक अटो जो गाँव है नशा मुक्त गाँव है।
1: हाँ नशा मुक्त है। वो मोरे ब्रह्म धाम आसोत्रा थी जो धनाराम जी महाराज है तुलसा राम जी रे शिष्य वणोई मार्च महीना में आ घोषणा की थी कि पूरा राजपुरोहित समाज नशा मुक्त री घोषणा की थी वन्य सब ये पालना करें ये छाले रिया है। अच्छा। जो पूरा राजपुरोहित समाज जो है यानी अखिल भारतीय अन वास्ते करीबन 5300 आसोत्रा ब्रह्म धाम में वहां पर पूरी सब सदस्य गया था वे सब प्रार्थना करें बाबजी सुगंध हिरावेन भेजिया था वन में आ सब बापसी घोषणा की थी न वह ब्रह्मा जी भगवान ने पार पाड़ी।
0: सिरोही जिला रो पहलो गांव है जो नशा मुक्त है।
1: सिरोही जिला नहीं पूरा राजस्थान रो।
0: अच्छा।
1: पहला घोषणा की थी जिको
0: पूरा राजस्थान में डूंगरी गांव है जो बनास में सिरोही जिला में है वो पूरा नशा मुक्त है। बहुत अच्छी बात है। तो कोई आदमी अटे नशो नहीं करता
1: ठीक है कोई वही तो चुपचाप कोई करता वही।
0: अच्छा।
1: बाकी कोई नहीं है न पूरा प्रयास है की वो मोरे पूरी घोषणा न ब्रह्मधाम के आदेश हुआ बाद में कोई नहीं।
0: चलो ठीक और बातों कर रही हूँ बारे में हमें आप बताओ आपरे पिताजी रो का नाम तो
1: मारे पिताजी नाम गुलाबिंग जी।
0: गुलाबिंग जी। गुलाबिंग जी का काम करता।
1: गुलाबिंग जी खेती बाड़ी करता था। 2014 में वनोर स्वर्गास हुए गयो।
0: महेंद्र जी बचपन रे बारे में आप थोड़ा आपने पूछना चाहूँ आपरो बचपन केरो बीती हो अन्य बारे में थोड़ा सा।
1: मोरो बचपन सा यानी पिताजी खेती बाड़ी करता था बहुत गरीबी थी नमे छह भाई था जी। तो पिताजी जीव करे सबने छह भाइयों ने पढ़ाया।
0: छह भाई में आप रो क्या नंबर
1: मारो चौथा नंबर है सा।
0: चौथा नंबर है। छह भाइयों में आप थोड़ा थोड़ा नाम बताओ एक एक नाम सब।
1: सबसे मोटा हिम्मत भाई। बीजा नंबर किशोर भाई है। हिम्मत जी बॉम्बे सर्विस करे। किशोर भाई बॉम्बे दलाली करे। मगन भाई बॉम्बे सर्विस करे। मो खुद भिवंडी सर्विस करो। माती छोटो प्रकाश वो कलम्बोली नई मुंबई स्टील में नौकरी करे ने माती छोटो है वो हमारे काका जी रे बच्चों आती सर्विस।
0: मतलब छह भाई है सब ज्यादातर बॉम्बे साइड में रहे।
1: सही से बॉम्बे में।
0: आप धंधा में की गन किया, आप पढ़ाई नहीं की थी?
1: पढ़ाई नहीं, पहला मोरे भाई साहब ने बीजा ने सब गियोड़ा था आगे वन जो ताऊजी लड़का ने बीजा ने, तो बॉम्बे में सब गए भाई नवा नवा कपड़ा पहन आवे जो एक बार आप मुंबई जाओ के, तो वे जी दसवीं बारहवीं की दी।
0: अच्छा।
1: सीधा बॉम्बे से किया आई हूँ, वन टाइम मैं तो नहीं है कि भाई मास्टर बने हैं तो अपने आखिर वो कोई दिमाग में नहीं तो क्या चलो बॉम्बे है तो हारे
0: परिवार में पहला कोई गया तो आपने लागो मैंने जानो जी बॉम्बे।
1: हाँ
0: ठीक है।
1: हाँ वन वास्ते ही के भाई ये गियोड़ा है ना सब बॉम्बे में अच्छो अच्छो है न, चलो अपनो जीवन यापन बढ़िया वे रही है।
0: आप कटा हुई पढ़ाई की थी?
1: मैं दसवीं पास मैट्रिक पास 1986 में।
0: आप एडमिशन अटे डूंगरी गांव में पढ़ाई हुई थी स्टार्ट में?
1: मोरे अटे सा अमार 2007 स्कूल पहली थी जो पौसी तक हुई है, वरने पहला अटे स्कूल कोई नहीं थे।
0: आप कटे मनवा जाता?
1: वो आदर्श में आठवीं तक आदर्श की थी, नवीं ने दसवीं कोजरा।
0: ठीक है। आपने जो पढ़ाई हुई तो पढ़ाई रे दौरान बताओ आपने दोस्तों रे बारे में, आपका दोस्त जो टीम थी तो दोस्तों बारे में थोड़ी जानकारी दो, आपका क्या क्या दोस्त था?
1: अरे दोस्त मोरे मैं चार पुरोहितीस था, मैं पहली थी लगाड़ी दसवीं थी हाथी बढ़िया, मैं तीन दोस्त था मो सीताराम और जगदीश, कपड़ा रो काम भिवंडी में जगदीश रहे और सीताराम रहे मिठाई री दुकान है स्वरूपगंज हॉस्पिटल रे बांटे।
0: तीन दोस्त था?
1: तीन।
0: चौथा दोस्त नहीं बनाया?
1: ना तीन था मेरे गाँव में तीन था।
0: चलो अच्छा ठीक है। मैं आप बताओ कि आपने जो दोस्ती है आज भी कायम
1: है? एक दोस्त टूटो ना छोड़े नहीं गियो, थोड़ा मन मोटा वे गया वन वास्ते। हाँ
0: एक बिचारी बात नहीं मोनी,
1: बात नहीं मोनी का
0: अरु नहीं पी दो हाथी
1: नशा मुक्त था अरु साहब ने मैंने ब्लैक मेलिंग की दो।
0: हमें आप बताओ पढ़ाई तो आप क्योंकि दसवीं तक की थी ठीक है, स्कूल में बढ़वा जाता तेरे मार साहब आपने कोई मार साहब वेरे भाई जो आपने खूब लाड करता भाई आपने फेवर करता भाई आपने कोई मतलब प्रेरणा दी थी भाई कि आप बड़े थके बने करो?
1: प्रेरणा तो ठीक है, बाकी पहली बीजी ने तीसरी में जो कोई मन याद आवे वे अपने एक अपने भगवान राम जी मीणा करें था वनोरो मारे माते विशेष यू एक वागेंद्र जी रावल।
0: अच्छा।
1: आदर्श में वनोरो खूब प्यार तो आई के बेटा यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय।
0: चलो अच्छी बात है। तो आज भी आपने मार साहब आपने मले तो आपने केरो लागे
1: खूब एकदम प्रेम थी आदर थी एकदम और भैया तो गुरुजी ने एकदम मोरे टाइम में जो गुरुजी ने जो कोई भावना थी के साइकिल माता हो के एक साइड में रे नमस्कार भैया करना रहता वह आज की स्थिति नहीं है। मार से याद उषा करे ना सोरे याद उषा करे नमस्ते जी का नमस्ते
0: आज
1: रे टाइम में।
0: आज बताओ पहला रो तालमेल और आज रो तालमेल गुरु और शिष्य रो के रो?
1: हाँ मोरे टाइम रो आपने क्यों के ओरिजिनल जो कोई तो वो गुरु शिष्य रो वन टाइम में इस तो हमें तो वो सब का है थे दोस्त ने मेरी दोस्त क्योंकि वह स्थिति रही है नहीं है के छोटे वाजे समसम ने विद्या आवे गम गम वातो वात रही नहीं है कने मास्टर हाथ में लाकड़ी वेती है नहीं है लाकड़ी वे तो सीधा जेल में जानू पड़े सोरा माँ बाप आवे रहो के भाई मोरे सोरन की मारियो।
0: आप बताओ आपरे जीवन में कोई एरो पल बताओ जो आपने याद वे बचपन रो पल कोई एरी घटना वे मने बारा
1: बचपन रो तो पल घना है नदी आवती जी नाना था ने बीजा ने हारे वन वास्ते के कितरी पिताजी डांट पड़ी के रजगो वाड़वो है थोकटे गियो तो के नदी में झिलवार ने बीज ने बारिश रे माई वो ज्यादा अपने हाथी घटना करती खूब ना नावा धोवार ज्यादा तो क्या भाई नदी आई तो झिलवार तो पास हर कोमरू सब डिस्टर्ब हो जाओ
0: बहन बापा रे मदद नहीं की दी
1: ना खूब की दी वन वास्ते डांट पड़ते हैं आज कटे गो तो कणी वाड़ी नहीं थे घास कणी वाड़ी गया।
0: तो श्रोता बंधु अपने मेहमान जो महेंद्र जी है पुरोहित डूंगरी गांव में रह रिया है और पूरा गांव नशा मुक्त है और अनोरो पूरा समाज रो प्रयास है ऑल इंडिया ने जो भी पुरोहित समाज है अनोरो प्रण है कि हर समाज रो बंधु नशा मुक्त हुए। तो अनोरो जो एक गांव है डूंगरी एक दादा रो परिवार है अटेरे पसियो है और पूरा परिवार है जो जितना भी परिवार है सब नशा मुक्त है वास्ते प्रण लीदो है और सब नशा मुक्त एकदम परिवार है और पूरा राजस्थान रो एक नशा मुक्त गांव है तो डूंगरी गांव है तो अच्छी बात है। पर हमें एक छोटो सो ब्रेक लेना चाहूँ ब्रेक थी पहला आप सब थी अपील है कि आपने माइती भी कोई अपना समाज रीति रिवाज अपना अनुभव बतावना चाहे तो रेडियो रे नंबर माते जरूर मैसेज कर जो रेडियो रे नंबर है 94 14 15 14 15 आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: ब्रेक रे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुन वाला सगला श्रोताओं का स्वागत है ना अपने मेहमान महेंद्र जी पुरोहित है उन्होंने भी रेडियो मधुबन में स्वागत है। तो महेंद्र जी आप बताओ स्कूल के बारे में बताया अपना बचपन के बारे में बताया हमें बताओ आपरे शादी क्या सन में हुई।
2: 8 जून 1988 में मारा विवाह हुआ।
1: आपरो विवाह बाल विवाह हुआ तो या नॉर्मल विवाह।
2: 18 साल में हाँ मारे वो 18 हुआ ने नॉर्मल 18 से बात ही नहीं।
1: तो पहला हाटा करता रिश्ता में रिश्ता करता तो आपरे नॉर्मल शादी हुई हाटा की देता
2: हाटा में मारे पति जी दीदी।
1: आज भी आपरे समाज में हाटा वे
2: हाटा रो सिस्टम है इसे
1: हाटा की दौड़ा रिश्ता यू नहीं है कई बार टूट भाग गए एक परेशानी आए तो बीजी घरे आने बेफ्री तेरी परेशानी आप तो नहीं आई
2: ना नहीं कोई नहीं अपने तो कोई नहीं अपने तो कोई नहीं आई
3: बिल्कुल बराबर
2: बराबर रेडी एकदम।
1: चलो अच्छी बात है तो हाटा में देखा मन मल्ले ज्यादातर का भाई टूट भाग वे जाए तो वजह एक आवे घर तो बीजी घरे आवे का एरो वे प्रॉब्लम ठीक है। मैं आप बताओ कि शादी हुई आपने बच्चा कतरा है।
2: 3 बच्ची ने 1 बच्चा।
1: तो बच्चा आप क्या करे
2: बच्चों भिवंडी सर्विस
1: वो भी आप वर्ष ले गया मुंबई बच्चियों ने बनाई आप
2: बच्ची मोटी बच्ची बनी 10वीं पास उन्होंने शादी कराई। हाँ। एक बच्ची है। हाँ। और सेकंड बच्ची 12वीं पास और लास्ट वारी है वा हमार अनी साल फाइनल रे एग्जाम थी।
1: तो आपने समाज में बच्चियों ने आज भी बनावे रही है।
2: हाँ हमार अनी पोजीशन में हमारे सब टॉप एकदम इंजीनियर
1: मतलब कोई मतलब रुकावट नहीं समाज में मतलब
2: कोई रुकावट नहीं 1% ही रुकावट नहीं है 100%
1: बहुत अच्छी बात है। हमें आप बताओ आपने 3 बेटियां हैं तो आपने लागो नहीं कि आज गणित ठुकाने मन कहे कि मारे तो बेटियां हैं मुँह की कन पन्ना हूँ पोता हूँ करूँ तो आपने वो विचार नहीं आया कि मुँह उन्होंने की कन करूँ आजकल मन क्या करे कि बेटियों ने मारे भी गर्भ में कि बेटी की पालन पोषण करूँ तो आपने तो 3 बेटियां आप तीन ही बेटी खुश हो।
2: तीन ही बेटी खुश है मुँह बनाती मुँह खुश हो ने एक लक्ष्मी रो वास है कदी दिमाग में नहीं आई कि मारे बेटी आई वन वास्ते के वहाँ पे कोई दुख के 1% कदी कोई ने बढ़िया कार्यक्रम व्याव हुआ बच्चियों रे बच्चा ही हुआ न कदी कोई माता जी कर पाती कोई ठानी पड़ी हो के अपने
1: रेडियो पर आपने खूब मनक होने रिया है और आपने 3 बेटियां हैं तो आप वे माँ बाप ने आप को कि जो माँ बाप बेटियों ने कोख में मारवा की कोशिश करे बेटी वे तो आप उन्होंने का सीख देनी चाहो।
2: भारत रा प्रधानमंत्री आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रो नारो दीदो है हर परिवार ने हर माँ बाप ने मुँह सजेशन नहीं देखते वन प्रार्थना करे को कि बेटी आपरे घर में है तो लक्ष्मी रो वास है कि बेटी सुख दुख में है ए बेटा बेटा सब ठीक है बढ़िया है एक रहना चीज है बाकी बेटी वास्ते तन मन धन थी आपरे एकदम और आज सरकार पूरा हाथ दे रही है कि जिनने घर में बेटी है वह पूरा सरकार हाथ दे रही है आप खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ वनर भविष्य उज्जवल करो ये हमारी सबकी प्रार्थना है कि बेटी के बारे में कभी कोई गलत नहीं सोचे आज नम्र विनती है ने वन एकदम अर्ज के बढ़िया एकदम के बेटी को खूब पढ़ाओ और लिखाओ

0: पल तो हर समय भगवान इस के खुश रहो तो अपने घर में खुशी से रहे, रोता रहो तो वन में कोई माते हाथ फेरता नहीं है के वहां अपने अपने जो कोई कोई एड़े वे के दुख है तो हमेशा खुशी से रहना चाहिए। एड़ो कोई बंद सब खुशी सुखी रहना आनंद
1: आपको और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो घर में बेटा भी वे शादियों भी हुई वे तो कोई तो एरो पल वे जो आपने ज्यादा खुशी हुई?
0: नहीं, हमारे भी बच्चियों की शादी की दी है, एक बच्ची ने एक बच्चा बाकी है जी। तो खुशी से बढ़िया कोई तकलीफ नहीं है, एकदम आनंद ही आनंद है।
1: चलो आपने जिंदगी में कोई दुख रो पल बताओ जो आप खूब दुखी हुए गया होला।
0: दुख रो पल तो 2014 में हमारे पिताजी ऑफ हुआ ना, और वनोरे थोड़ी बीमारी तकलीफ आई तो वन वास्ते थोड़ा अपसेट हो गया जी। 2-3 महीना हमारी बीमारी रह साहब थी, वो पल मारा तो ये मुझे दुखी रही।
1: सबसे दुख रो पल वो तो आपने पिताजी शरीर छोड़ी जरा आपने खूब दुख लगा।
0: हाँ, वो खूब दुख लगा,
1: अच्छी बात है। और माँ बाप वास्ते तो हर इंसान ने हर बेटा ने दुख मैंने जूझी। ठीक है, हमें आप बताओ आप शादी करने आया तो आपने धर्म पत्नी पढ़ी लिखी थी या
0: अनपढ़?
1: अनपढ़। आपने बच्चा 3-4 ने बनाया हुआ साथ में, आप तो कौन माते रहता बार ने धंधा ऊपर, तो वन की कण मैनेज की था 4 बच्चों ने बनाओ?
0: कुछ तो अपने देखभाल लाई क्या एक अनपढ़ वे तो करते ही 4 बच्चों ने पढ़ाया तो अंतिम मोटा मोड़ा जो साक्षर वारो है उड़न क्यों के अपने बच्चों कभी अनपढ़ नहीं रहे के वन टाइम में यानी मारे अगले पिताजी रे वन टाइम में मोन पढ़ाया तो मम्मी पापा बेबू भिड़ा नहीं था तो ही मोन सबने पढ़ाया 10वीं 12वीं 10वीं 12वीं जो कोई है। तो अभी तो अतरा साक्षर हुआ तो सबने यू के सब ग्रेजुएट वेणो सही है ने अपनो पूरा भारत साक्षर वेणो सही है।
1: आपने धर्म पत्नी आपने जीवन में कतरो साथ दी दो?
0: पूरा साथ एकदम, सुख में दुख में कदी उठानी पड़ी हो के मुका कमाइयो कानी कमाइयो सब रेडी एकदम, कदी अपने मन में यू नहीं आई के भाई थे का की दू।
1: आज आपकी धर्म पत्नी आप रेडियो पर इंटरव्यू होने रही है, आप उन्होंने क्या कहना चाहो?
0: बस जो जिंदगी में मारा साथ दी दो है ये साथ देती रही वो इस मारे तमन्ना है।
1: जन्म में मली भी जन्म
0: हाथे जन्म सातो जन्म
1: वही भगवान ने कहूंगा आप वो जोड़ो जन्म जन्म तक रहती। चलो हमें आप बताओ दुनिया में कई तरह की कुरीतियों समाज में वे है, कनी टुकड़े देखवा मन मले है, सबती मोटी एक बीमारी है जो को एक कुरुति कहो हो। एक तो है लड़की और अनुपात कम हुआ है तो वन्य कारण साटा प्रथा आले रही है या और कोई बीचो कारण?
0: बस जो आप बताइए वो अनुपात कम रहे हिसाब तीस अण वास्ते के भाई वो मारे बच्चों में दीदी ने मारे बच्चों रह जाई तो वन वास्ते के भाई चलो साटा हमण में तो कम तो वही प्रो क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक करोड़पति है, सामान्य घर है गरीबी रू घर है अण वास्ते ओ थोड़ो आले रही हमारे समाज में
1: करने साटो देवा ने नहीं वे तो फसवन कंडीशन में का
0: वे तो भगवान ने हाथ भी राते जो लेख लगी उड़ाए वे सब पार पाड़े वो कोई कुआरो रहे नहीं है, सगे संबंधी भी अपनी सहायता कर ले वे। अच्छा। और जो अपनी धरती माता है वे, वे, वे, वे कोई कोई भाग्य सुनने नहीं वे अपने पत्नी नहीं लगी उड़ी अलग बात है।
1: हाँ तो श्रोता बंधु और भी अपने मेहमान महेंद्र जी पुरोहित है अनोती बातों कर रही, एक छोटो सो ब्रेक लो हो, ब्रेक रहे बाद में फिर आप महेंद्र जी की बातों कर रही हो। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: बाद में अपना समाज कार्यक्रम रमाने रेडियो मधुबन ने सुनवाला सगला श्रोता और स्वागत है। अने अपने मेहमान महेंद्र जी पुरोहित है जो डूंगरी गांव में रह रिया है, उन्होंने भी स्वागत है। तो महेंद्र जी मैं आपने पूछू हूँ, समाज में एक और एक प्रथा एड़ी है कैन मृत्यु भोज और दूसरी प्रथा है गंगा जल प्रथा। तो आपने समाज में मृत्यु भोज कई ठिकाने आज बंद किया पर कोई खातो नहीं है, तो आपने समाज में दो ही प्रथा चालू है और गंगा जल प्रथा रो कारण एरो है कि वन में खूब पिया खर्च हुए अतरा वे आदमी वन खर्चा में डूबे प्रो। तो आपने समाज में प्रथा हले रही है
2: गंगा जल जो आप प्रथा कह रही हो वो बिल्कुल हमारे बंद है,
1: बंद की दिया।
2: बिल्कुल बंद है।
1: मृत्यु भोज
2: में ठीक है का है, सुबह 9 बजे थी लगाड़े हाड़ी दस उमदी कोई आवे जो खरमा ने दाल कोई वे बाकी वो तो कोई नहीं है और लास्ट में हाड़ी दस 11 बजे चाय पिलावे।
1: मतलब पूरे समाज में मतलब गंगा जल प्रथा बिल्कुल बंद की दी और मृत्यु भोज भी मतलब नहीं रहा बराबर है, बस खाली मेहमान खानो खाया सादा खाना,
2: बस सादा खाना एकदम। और वो भी जो भी है जैसे मैं आज मेरा मैं बोलता हूँ कि मो कटे भी लोकाई जाऊ मेरी कोणी जाऊ खानो यानी पौनी तकात नहीं, बहुत से लोग नहीं लेते ये मेरा मैंने मुंह मारू बता रही हो कि मैं नहीं खाता हूँ तो हमारे वो मुंह कोई खाता नहीं है और ज्यादातर लोग कोई खाता नहीं है, हमें सब समझदार रह गया है क्योंकि सब भाई की लोग है नवे आवे ने पचंग पाचा फट जाए पहला जमाना में तो के भाई चलो जाइए उन्हें आवे जितना पूरा दार निकली 2 घंटा
1: में
2: पटे।
1: आपरे डोंगरी गांव में एक ही परिवार पुरोहित परिवार है तो 17% बच्चा साक्षर हुआ है और आप पहला काम बढ़िया आप धंधा करवा बॉम्बे गया। आज जो नवी पीढ़ी है उन्होंने आप पढ़वा वास्ते आपरे समाज रे बच्चों ने का कहना चाह
2: पढ़ाई रो साक्षर में तो मोरे अटे हुई टका है सब बढ़िया एकदम अच्छी साक्षरता है सब रेडी है न सब ने वही सर्ज करो कि भाई थे जितना ज्यादा ज्यादा पढ़े पराने कोई भी ऑफिसर बनो गवर्नमेंट में कर्मचारी बनो और वाइस मारे सबने विनती है ने कि भाई सुझाव है कि आप खूब पढ़ो।
1: बालिका शिक्षा ने बढ़ावा दे वास्ते आपरे समाज में आप भी का योगदान देना चाहो
2: मोरे वेलफेयर ट्रस्ट है राजपुरी समाज रा 2-4 वे हर समय साल में एक बार वणों ने कोई भी पारोतिशी के वणों उत्साह बढ़ावा वाते है। हमारे फिलहाल मोरे ब्रह्मधाम आसोदरा थी ध्यानाराम जी आया था जो ही ग्रेजुएशन हुआ है फर्स्ट क्लास पास हुआ है बच्चियों ने सब ने बैग वितरण प्रमाण पत्र वितरण हर साल कार्यक्रम हर एरिया वाइज ब्रह्मधाम आसोदरा थी है ब्रह्मा जी है वो वेश है।
1: चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब आप समाज रे में आप भी योगदान करो रियावन में और समाज में भी मतलब एक अच्छी सी सब पहले जो बालिका शिक्षा ने महत्व दे रही है और समय समय ऊपर जो छात्र छात्रा सम्मान समारोह रखे रिया है चलो अच्छी बात है। हमें बताओ दहेज प्रथा समाज में एक बहुत बड़ी कुरूति है उड़ावड़ी मची आजकल बच्चियों ने माँ बाप खूब देव रो तो ही वन और पेट नहीं पड़ता है कई बच्चियों वन्नी बलि चढ़ी पड़ी है तो आप समाज में दहेज प्रथा चलन है या नहीं और जर कटे आज समाज में वे रियो है तो वनों ने आपका कहना चाहो दहेज ने बंद करवा सकते
2: मोरे समाज में दहेज प्रथा बिल्कुल बंद है।
1: चलो बहुत बढ़िया बात है।
2: राजपुरी समाज री जो बात आवे वन में लोगों की धारणा है कि ये सब दहेज वाला है जहाँ सिरोही डिस्ट्रिक्ट यानी मोरा जो 3 प्रज्ञा है ना बिल्कुल दहेज नहीं है ने वसलो पटो नौंदरवाड़ा ने खाकरवाड़ा ने वीरवाड़ा से लगा करके आबू रोड अण में मोरा कोई दहेज प्रथा बिल्कुल बंद है कोई डिमांड नहीं है।
1: समाज में बेटियों ने बलि चढ़े रही खूब दहेज रे कारण वेरियो तो दहेज नहीं देवा वास्ते आपका प्रेरणा समाज रा बीजा समाज रा लोगों
2: मो पूरा यानी जो भी है जो दहेज देवा वाला है ने लेवा वाला है के अपनी बच्ची है वणो ने ध्यान वेणो से जगह अपनी बच्ची है थे ले रिया तो थोने देनो है अण वास्ते मो सब ने अरज हाथ जोड़े विनती कर रियो के अणी कुरतीन आप एकदम बिल्कुल बंद करो ने बंद करो।
1: चलो अच्छी बात है। हमें अपने पास में एक महेंद्र जी रे भाई साहब है अनोती भी जानकारी लो हूँ कि कुछ अपने गांव रे बारे में कुछ बताना चाह रही है।
3: मारे गांव डूंगरी रे माए पहला बड़ा हुआ था जो डोकरा था वही खूब प्रेम थी रहता था ने खूब यूं आत्मीयता थी आपस में एक बेचारा दुख सुख बटावता रहता था ने लगभग हम ये मनीष टंकी में रह रिया समय कोई प्रभाव तो रही से थोड़ा थोड़ो तो वो असर रही। बाकी आज मैं प्रेम थी रहनी ढंग थी अने वो जो नशा मुक्त रही अने भाई जो बताड़ियो वाकई सबसे पहला अगर बीड़ो उपाड़ियो तो डूंगरी गोमे उपाड़ियो अने नशा मुक्त रो बीड़ो उपाड़े अने खूब परेशानी आई क्योंकि वो कोई इतना मामूली काम नहीं तू कहने पार पाड़े है को। बाकी को वो कह के हाउ काम उपाड़ो तो एक पग आप मेला तो बीजो पग भगवान मेलावे तो हासी है भगवान के कर मेलावियो आ तो एक मतलब आश्चर्य की बात है क्योंकि मोरे जो ब्रह्मता मासोत्रा है वो मतलब खूब मोटा समाज रो मतलब एक केंद्र बिंदु है ने वटाती आ मोर लागवे के भाई नशा मुक्त अपने पूरा समाज वेवू सही जे ने वो डूंगरी में पहला कीधु ने वटाती मोर लागे मिस वाकई आ भगवान रिस मोर है वो यू मन ही लागू के मतलब हाउ काम करो तो भगवान मदद करे ने वो पार पड़ी ने गाड़ी आज दाड़ हम दिन आज लगभग हिंग ते बनवू ठीक है छोरी छुपे के कोई ले तो वे के कोई आदि वे तो वो तो धीरे धीरे रही धीरे धीरे वही बाकी लगभग समाज में ये मरे बनवू आ एक मोटी प्रभु की कृपा रही है। हमें इन बाद में गाँव रे विकास रे माए लगभग स्वाध्याय थी जुड़ियो रहे अने सबरे घर ने माए जो पौणी आवे वो पौणी जो कोई धोवा धावा झीलवार वे वो पौणी नालियम हिंग ते हर गाँव में यू वे प्रोने गंदगी करे तो स्वाध्याय परिवार वे बात यू लागू कि भाई हिंग ते पौणी रे कमी है तो पौणी रे कमी की कर अपने कम की दी जाए तो विचार की दो कि भाई यू करो कि वो पेज कोई वो पौणी फालतू नालियम जाए वाष्पीकरण वे जाए अने नोपे जितरू जमी थी लियो ने अपने कौन मैं ली दो कि वे को पास होनी माइन दियो तो वो सोखता खड्डो ने रूप में पोतारो जो कोई कौम में लीधो पौणी वे वो सोखता खड्डो ने रूप में हर घर में एरो आपस में मणिन तय कीधु के भाई खादरो खड़े पुरो ने सोखता खड्डा ने पौणी जमी में उतरे तो मैं तो अने हारू कीधु के भाई वो पौणी नीसू उतरी तो ओपरे लेवल बनियोड़ू रही रिचार्ज भी अने साइड इफेक्ट ऑफ हुआ के भाई ये नाली बीजी नहीं बनावी ने गंदगी बन हुए तो बीमारी बन हुई और दवाई बीज लेवा करवारी आई माता फोड़ी मटी मोरे लगभग घना खरा अदरा स्वस्थ थे कई बच्चों तो एरो जो 8-10 साल रो हुए ने जे अस्पताल नहीं गो ये प्रभु की कृपा रही के मोरे माए ये विचार आवना थी अटक गंदगी रो बिल्कुल आप गोमे माए कटे भी कहीं भी गली में जाए देखे आपने कटे गंदगी के नाले नहीं मड़े नाली सेंक्शन हुई तो नाली कैंसिल करावी हो बजट लैप्स करावे पर नाली एक एक कली रमाए कटे नाले आपने नहीं मड़े तो एक तो मैं ओ मोटू कौम हर इन मणे कीधु हमें अन्य बाद में धुआं मुक्त है हर घर में गैस रू कनेक्शन है तो धुआं मुक्त रे रूप में वेवाती सब बैनर जो है वो स्वास्थ्य ठीक रहे क्योंकि धुआं ती मनन पालन नहीं पड़ता। अन्य बाद में हर घर में शौचालय बनावी हो वे पोता रे खर्चा दी बनावी हो गवर्नमेंट आवेन क्योंकि भाई थोड़ा आने थी जो कोई पिया कोई बीज को मड़ी तो क्या हमारे को एक पैसा नहीं देना है लेना है हमने लिख करके दिया और एक पैसा भी शौचालय के नाम के खर्चे का जो भी सरकार से मिलता है वो नहीं लिया वो नहीं ली दू मैं पोता रहे हरेक घरे में शौचालय बनावी हूँ आ सुविधा ही है। अन्य बाद में वृक्षारोपण जो कोई कौम है वही एक को झाड़ घाले ने काल पड़ियो पोता रहे करती गोद ली दू वे जो पानी पाए ने मोटू कीधु ने आज आप जाए देखे हो तो स्कूल में आइए कम से कम हवा हो रहे करीब झाड़ स्कूल में ही वे गोवे वाले गाले मोटो की दो वे तालाब ही मतलब तालाब रे किनारे पर हर 20 फुट रे माते एक कुकू निबड़ा रु झाड़ गाले क्योंकि हिरोई जिला रे में निबड़ा रु झाड़ सरलता थी मोटू प्रवे तो वे गाले प्राणे बेउ तालाब रे किनारे माते निबड़ा रु झाड़ जो है वे मोटो की दो ने आज वे आबादी यूरो मैदान रे आखिरिया चौक में हर ठकोने जितने जरूरी तो वे हाँ झाड़ काले पर उन्हें मोटो की दो क्यों क्योंकि वृक्ष में वासुदेव है आ कल्पना करे पर उन्हें वने रे मैं जीकन भगवान ओपरे जीव रे माता अभिषेक करे जी ओपे उन्हें झाड़न पौनी पाए ने अभिषेक रूप माने पर ने वे झाड़ मोटो की दो ने आज वे बिल्कुल पेट बनियो रहे और वे प्राणवायु रे रूप में कौमे आवे रही है तो वो वृक्षारोपण पर्यावरण रे बनाए गोवे वाले मलन हारी ने वो कौम की दो। बाकी लगभग मैं सब प्रेमती रह रिया हूँ और गौमरु जो है वो दाड़े दाड़े विकास वे रही हूँ कोई पण आवे तो मोरो प्रेम भावने नो विकास देखे ने यू तो मन यू आत्मा थी खुशी वे के भाई ना चलो ठीक कर रिया हूँ।
1: तो श्रोता बंधुओं, आज अपन डोंगरी गांव में महेंद्र जी पुरोहित है अणोती अणोरे जीवन रा विचार लीदा पछे अणोरे गांव रे जो विकास रे बारा में कुछ बातों बताइए। सबसे पहला नंबर वन नशा मुक्त गांव, दूसरो प्रदूषण मुक्त गांव, नाली बिल्कुल नहीं है, नालियां मतलब बिल्कुल मतलब गंदगी नहीं गांव में, मतलब बिल्कुल नाली मुक्त है। हर घर में शौचालय है पर वो भी सरकार पियाती नहीं, स्वयं रा खर्चा ते बनाया पूरा गांव और अन गांव ने मतलब स्वच्छ रखवारी कोशिश की थी। अटारा गांव रे लोगों रो कहनो है कि अन गांव में बच्चों अगर 10 साल तक वे तो बीमार नहीं हुआ, आज तक हॉस्पिटल नहीं गयो, मतलब पूरा गांव में स्वस्थता है। प्रदूषण मुक्त गांव वो है पर्यावरण वन दृष्टि देखो तो अटे उन्होंने कहना है कि हर इंसान एक पेड़ लगाया है, वन पेड़ ने मतलब गोद ली दो है, वन हिसाब से वन पेड़ों ने मतलब पानी दे मोटा किया है, तो एक आबी अणोरे गांव भी अच्छी उपलब्धि है, मतलब एक एरो गांव मतलब आदर्श गांव कहवाए। तो अन आदर्श गांव रे पाक्ति से एक गांव है डूंगरी, तो मने तो खूब अच्छो लागो अन गांव ने आदर्श गांव कहवीजे तो को बहुत बढ़िया लागे। तो अन गांव रे लोगों ने धन्यवाद है और महेंद्र जी है पुरोहित है उन्होंने भी खूब खूब धन्यवाद है कि आज मने अणोरे गांव रे बारा में अणोरे कुदरत जीवन रे बारा में बातों करवा रो मौको मिलियो है। पर महेंद्र जी मु आपने हमें पूछना चाहूँ हूँ कि आज आपने रेडियो पर खूब मनक होने रिया है, आपने केरो लाग रही
2: मारा जीवन रो पहला मैं एक जी न्यूज मारा अटे आया था
1: जी,
2: वन वन टाइम मैं थोड़ो छोटो इंटरव्यू दी दू तो नेशन न्यूज ने
1: हाँ।
2: आज रेडियो माता मारी जिंदगी रो 50 साल रे महाराज कोई है स्वर्ण जयंती कोई के वन में मु मारे ओ मारो खुशी रो है कि मु आज रेडियो माते प्रसारण करे रही हो ने ओ आप रे वो आप रे है कि आप मने वो मौका दी दो अन वास्ते आप रे अन मधुबन ने बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप रे गांव में हमें आप और का विकास वास्ते हो चो रिया हो
2: मोरे अटे जुगोई विकास री जुगोई बात है, सड़क हुआ
1: सब काम हुआ,
2: रोड लाइट हुआ, नल आया जो कोई मार मोरा माती पैसा भी बताया यानी जो हमें मोरे जो कोई जितनी कोशिश रही हाँ। कहीं गौन ने स्वर्ग बनावनो लोग हाँ। देखवा आवे न मोरे यह इच्छा है कि भारत रो प्रधानमंत्री एक बार मोरे गांव में आवे ने लोगों ने प्रेरणा दिए कि गांव बनाओ तो डूंगरी जेड़ू बनावो।
1: डूंगरी आ वास्ते थोड़ो सड़क थोड़ी साफ सुथरी वेजा आजू बाजू ती वहाँ थोड़ी परेशानी है, वहाँ एक कमी है, तो आप गांव वाला फूटे पड़े हो तो लाइटिंग वेजा थोड़ी सी गांव में घुसवा वास्ते और एक 2 किलोमीटर एरियो तो आनंद मस्त अच्छो गांव में आप रहो और मने भी खुशी हुई अन गांव में आवाती अच्छो लागो। पर अन गांव में आवा वास्ते श्रेय जाए मोरे एक लिसनर है कुपाराम जी कोजरा गांव रा निवासी है, वे मारे फूटे पड़िया था घना दिन थी का के आप डूंगरी गांव वालो और वटे इंटरव्यू लेनो महेंद्र जी पुरोहित है तो वनोरे भाई साहब भी है एन वन गांव में जाल हाले एन आप इंटरव्यू लियो, तो आज मु आया हूँ और इंटरव्यू ली दो हूँ, बहुत खुशी की बात है। तो आप सब गांव वाला ने धन्यवाद है। तो 2-4 और भी बंधु बेटा है गांव रहा है तो वनोरे थोड़ा विचार ले लो। सबसे पहला एक बुजुर्ग मानस है अन गांव रहा वनोती बात करना चाहूँ, वनोरा नाम पूछू आप नाम कहीं सा
4: जयराम जी जयराम
1: जयराम जी पुरोहित। जयराम जी आप अपने बारे में थोड़ा सी जानकारी।
4: मोहनी गांव में जन्म हुआ हमारो, हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में था और हम 3 भाई और 2 बहनें हैं और हमारे माँ बहुत देवलोक हुआ और ने बाद में मैं घनी दोरी मुश्किल थी मैं मोटा हुआ मारे पिताजी माते और भार हु खूब और वणी मनो मतलब मारो प्रेम दीदो और बाप रो स्नेह दीदो और बड़ी हाथे थी वणी बाटी के मनो खड़ा बनावे देता और हम धीमे धीमे मोटा हुआ और आज भगवान ने दया थी मैं उन्होंने कृपा थी पिताजी रे मैं आज खुशहाल हूँ। और मारे जो भी भाई है बॉम्बे में अच्छो बिजनेस है मारू बटे बिजनेस है पहला मु रेलवे में तो और रेलवे थी पैसे मु रेलवे मतलब फॉरन में मिली हो और फॉरन में 3 साल रे पर पास आयो पैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट ली दू कुछ साल अटे रियो फिर भाई लोगों की भाई आप ही बटे बॉम्बे बिजनेस में आओ रहा तो मुँह पास बिजनेस में आते कुछ टाइम रियो फिर थोड़ा चुनाव रहा टाइम आई और जिला परिषद रहो तो वन में लोगों आग्रह थी पैसे मैं चुनाव लड़ियो जिला परिषद सदस्य रहो मैंने बाद में जिला प्रमुख एक्सपायर्ड हुआ थी उप जिला प्रमुख तो मुँह जिला प्रमुख रे पद माथे काम की दो और मारो काम ठीक ठाक रही हो
1: नशा मुक्त बनी आपने केरो लग रही है
4: बहुत बढ़िया लागो अंतिम का मैं तो स्टेट थी नशा मुक्ति से हूँ कुछ प्रभु की कृपा थी हमारे नशा मुक्ति हारू खूब जो है मारसा है ये बाबूलाल जी है माधुराम जी स्वयं टीचर हैं और वाकई ये बहुत समर्पित है गाँव में हारू मैं तो अक्सर बाहरी रहो पर कोई भी आवे करे ने मार्गदर्शन लोग दे उससे खुशी की बात है।
1: एक और बेटा है बुजुर्ग मानस वनवाती पूछू हूँ कि भाई के आप नाम बताओ पहला
5: मारो नाम माधुराम माधुराम
1: माधुराम जी पुरोहित आप बताओ कि आप डोंगरी गोमरा निवासी कतरा साल से रहो
5: मो जन्म ती
1: अच्छा माधुराम जी आप बताओ आप जो आपका गांव रे विकास से बारे में बात हुई थी आज तो आपने आप लोग गांव नशा मुक्त है तो आपने केरो फीलिंग में
5: फीलिंग जबरदस्त हुई
1: फीलिंग में
5: हाँ अच्छा ठीक
1: आप मतलब नौकरी करता पहला
5: जी
1: कानी नौकरी करता
5: मैं मास्टर था
1: अच्छा रिटायर हुआ आप लोग जीवन केरो बीते रही सेवानिवृत्त के बाद में
5: मारा जीवन बहुत बढ़िया अच्छा, जी
1: आप लोग गांव में हमें कोई नशा नहीं करे
5: नहीं
1: नाम बोला आप
6: रमेश भाई पुरोहित
1: रमेश जी पुरोहित आप बताओ जो कि भाई के आज आप गांव है नशा मुक्त वो है प्रदूषण मुक्त वो है पर्यावरण दृष्टि थी देखू हूँ आप गांव वाला सब अत्री मेहनत की दी है तो आपने कैरो फीलिंग वेरी और सिरोही जिला में नीन राजस्थान में नंबर वन है नशा मुक्त हूँ तो आपने कैरो महसूस
6: बड़ी खुशी वेरी है हाँ। कि नशा मुक्त है ये पर्यावरण मुक्त है जगह जगह ये पेड़ पौधे लगाए उसके लिए हम बड़ी बड़ी शुभकामनाएं उनकी
1: चलो ठीक है हमें मैंने छुट्टी लेनी पड़ी ला गोमती गोमरा पंचोती और अपने जो महेंद्र जी पुरोहित है उन्होंने छुट्टी लेनी पड़ी ला कि भाई क्या मैं समय देखता खातर अपने महेंद्र जी ने खूब खूब आभार प्रकट करूँ रेडियो मधुबन रे तृप्ति कि आप मैंने आज समय दी दो अपने जीवन रे बारे में गांव रे बारे में जानकारी मिली बहुत अच्छी बात है और मु केसी जिनगर अपनी वाणी ने विराम देव हूँ और जो सबसे मोटो धन्यवाद एक लिसनर है कुप्पा राम जी है उन्होंने मोटो मोटो धन्यवाद है कारण गांव में लेन आया है तो खूब खूब धन्यवाद है कुप्पा राम जी नहीं हूँ केसी जिनगर अपनी वाणी ने विराम देव हूँ आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है आजकल मैं रोज नाचने का अभ्यास करता हूँ। क्या कहा, क्यों? भाई मेरे चाचा जी के बेटे की शादी जो होने वाली है, खूब नाचना है मुझे उसकी शादी में। लो अपनी बातों में मैं आपको मीना से मिलवाना तो भूल ही गया, चलो अब मीना से मिलते हैं। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही अपने घर के बाहर।
1: मीना, मीना ले, तू यहाँ बैठी है। अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है?
2: दादी, कुछ दिनों से बेला दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत उदास रहने लगी है। कल जब मैं उन्हें अपनी कहानी की किताबें देने गई, तो वो कहने लगी कि पता नहीं मीना मैं कब तक हूँ यहाँ।
1: तू चिंता मत कर, मैं कल बेला से खुद बात करूँगी।
0: और जब अगले दिन मीना अपनी दादी को लेके बेला के घर की तरफ गई,
2: दादी वो देखिए, वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठी हुई है बेला दीदी।
1: अरे बेला, तू रो रही है?
3: रो नहीं तो और क्या करूँ दादी, माँ और बाबा ने सुबोध के साथ मेरी शादी तय कर दी है।
1: क्या, वो सुमन के लड़के से?
3: हाँ दादी, अगले महीने की 5 तारीख को। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती दादी, अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ।
1: लेकिन पोंगाराम ऐसा कैसे कर सकता है, अभी तो तू बस 15 साल की है, और वैसे भी 18 साल से पहले लड़की की शादी करना कानूनन अपराध भी है। अच्छा एक बात बता, सुबोध की उम्र कितनी होगी?
3: मुझसे 3 साल बड़ा है वो,
2: यानी 18 साल।
4: 18 साल और अभी से शादी का ख्याल?
1: ये भी गलत है, लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए शादी के वक़्त। तू चिंता मत कर बेला, मैं पोंगाराम से बात करूँगी।
3: बाबा नहीं मानेंगे दादी, माँ ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो सुबोध के पिताजी को जबान दे चुके हैं।
2: दादी कुछ कीजिए ना।
1: वही तो सोच रही हूँ। चल मीना।
2: कहाँ दादी?
1: सुबोध के घर।
0: मीना और उसकी दादी सुबोध से मिलने गए। मीना चुपचाप जाके सुबोध को किसी बहाने से बाहर बुला के ले आई।
1: सुबोध बेटा, ये तू क्या करने जा रहा है?
5: मैं कुछ समझा नहीं दादी।
1: अरे पढ़ा लिखा है, समझदार है, इतना भी नहीं जानता कि लड़की की शादी 18 से पहले और लड़के की शादी 21 साल से पहले करना कानूनन अपराध है, जेल हो सकती है तेरे माँ बाप को।
5: मुझे सब पता है दादी, लेकिन माँ और पिताजी को कौन समझाए?
1: मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो खुद ही समझ जाएंगे। इधर आ।
0: मीना की दादी ने सुबोध और मीना के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो दोनों खुश हो गए। और अगले दिन जब सुबोध अपने माता पिता के साथ खाना खाने लगा,
6: अरे सुबोध ये क्या, तूने आधी रोटी क्यों ली है?
5: आदत डाल रहा हूँ माँ, शादी के बाद तो मुझे आधा ही खाना मिलेगा ना, इसलिए।
7: मतलब क्या है तेरा?
5: देखिए पिताजी, एक तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, और फिर अभी मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ। अब जब शादी के बाद बेला यहाँ आएगी तो उसे खाना तो चाहिए होगा ना, बस अपना आधा खाना दे दूंगा उसे।
7: उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
5: जरूरत पड़ेगी पिताजी, क्योंकि शादी के बाद बेला मेरी जिम्मेदारी होगी।
7: जो जी में आए वो कर।
3: खाना तो खा लीजिए।
7: नहीं खाना मुझे।
2: चाची जी नमस्ते।
8: खुश रहो मीना बेटी, कैसे आना हुआ?
2: सुबोध भैया की किताबें लेने आई थी चाची।
8: किताबें लेने?
5: हाँ माँ, कबाड़ी को बेच रहा हूँ ना अपने स्कूल की किताबें, तो मैंने मीना से कहा था कि अगर उसे कोई किताब चाहिए हो तो ले जाए।
8: क्या, इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया लिखाया, क्या ये सब हमने इसलिए किया था कि तू पढ़ना लिखना बीच में ही छोड़ दे?
5: शादी के बाद पढ़ाई थोड़ी करूँगा, अरे कुछ काम धंधा करके अपनी बीवी का पेट भी तो भरना पड़ेगा।
4: पेट भरना पड़ेगा, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा।
8: अजी सुनते हो?
7: आया।
5: आओ मीना, मैं तुम्हें अपनी किताबें दिखाता हूँ।
2: चलिए भैया।
7: हाँ कहो सुबोध की माँ, क्या हुआ?
8: सुबोध पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा है, कह रहा है शादी के बाद कोई काम धंधा करूँगा।
7: क्या, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता।
8: मैं सच कह रही हूँ जी, कबाड़ी को बेच रहा है अपनी किताबें,
6: सुबोध के पिताजी, कहीं हम इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रहे?
7: तुम शायद ठीक कह रही हो सुबोध की माँ। मैं आज ही पोंगा राम जी से इस बारे में बात करता हूँ।
0: और उसी शाम पोंगा राम चाचा बेला की माँ के साथ सुबोध के घर गए।
7: पोंगा राम जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।
9: जी कहिए भाई साहब।
7: जी वो दरअसल सुबोध की माँ और मैं सोच रहे थे कि बेला और सुबोध दोनों ही अभी छोटे हैं, तो क्या मेरा मतलब है अगर हम इन दोनों की शादी 4-5 साल बाद करें तो?
9: सच मानिए भाई साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हमारी बेला तो आजकल बहुत उदास रहने लगी है, ना किसी से बात करती है ना ही कुछ हंसती बोलती है। उसे सबसे ज्यादा दुख तो अपने स्कूल छोड़ने का है।
6: अपने सुबोध का भी यही हाल है, वो भी यही कहता है कि शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देगा।
7: भाई मुझे तो लगता है कि दोनों बच्चे अभी शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहन जी आपको तो कोई एतराज नहीं है ना?
10: नहीं नहीं भाई साहब, जैसा आप लोग और बेला के बाबा ठीक समझे वैसे एक तरह से देखा जाए तो बात ठीक भी है। कल मीना की दादी जी मिली थी, वो बता रही थी कि 18 से पहले लड़की की शादी करना और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर माँ बाप को जेल भी हो सकती है।
6: ये बात तो हमें पता ही नहीं थी।
7: पोंगाराम जी एक बात समझ नहीं आई, अगर आपके दिल में भी ये बात थी तो आपने हमसे आके कहा क्यों नहीं?
9: आपको जबान जो दी थी, मना कैसे करता?
11: ओ अगर ऐसी बात है पोंगा राम जी तो आज एक जबान मैं भी देता हूँ आपको। सुबोध और बेला की शादी जरूर होगी लेकिन 3-4 साल के बाद। तब बेला भी 18 की हो जाएगी और सुबोध भी 21 का।
0: और अगली सुबह जब बेला मिठाई का डिब्बा लेकर मीना के घर गई।
1: ये क्या बेला, अपनी शादी की मिठाई खुद ही बांट रही है?
2: शादी होने की मिठाई नहीं दादी, शादी रुकने की।
0: भाई वाह, मीना और उसकी दादी ने तो सचमुच कमाल कर दिया। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की नई कविता।
2: लड़की हो 18 लड़का 21 रखना याद,
4: उससे पहले शादी तो है कानूनी अपराध।
0: भाई मजा आ गया ये कविता सुन के। ये बात सही है दोस्तों कि 18 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी और 21 बरस की उम्र से पहले लड़के की शादी करना सचमुच कानूनी अपराध है। अब वक्त हो गया है, याद है ना? गाना सुनने का।

0: जितनी बढ़िया कहानी और कविता थी उतना ही मजेदार गाना भी था। अब क्या करे क्या करे क्या करे, क्या कहा, खेलने चले। तो ठीक है, खेलते हैं, चलो मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। आज मैं आपसे तीन कड़ियां बताकर एक पहेली पूछूंगी। आपको ये कड़ियां जोड़ जोड़ कर पहेली का सही उत्तर बताना है। तैयार है ना सब?
2: जी बहन जी।
1: शाबाश। तो आज की पहेली है एक उपकरण के बारे में। तुम्हें मुझे उस उपकरण का नाम बताना है, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। इसके आविष्कार से पहले होती थी चिट्ठी से बात।
3: चिट्ठी से बात?
1: हाँ दीपू, यानी कि लोग एक दूसरे को पत्र या तार लिखकर ही अपनी बात बताया करते थे।
3: ये तो बहुत मुश्किल पहेली लग रही है बहन जी।
4: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: अभी बताती हूँ सुमी। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। अब तो जब जी चाहे कर लो, कभी कहीं भी किसी से बात।
5: मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहन जी।
3: हाँ बहन जी, तीसरी कड़ी भी बताइए ना।
1: मोनू दीपू अब ध्यान से सुनना, तीसरी कड़ी बताने जा रही हूँ। जब कोई इसके बटन दबाए, दूर कहीं ये घंटी बजाए।
4: मैं समझ गई बहन जी, टेलीफोन।
1: शाबाश मीना। और क्या तुम्हें पता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?
6: मुझे पता है बहन जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था।
1: तो बताओ कृष्णा, किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार?
6: अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने।
1: बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया ना बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का सातवां पाठ पानी के प्रयोग. क्या डूबा क्या तैरा. पृष्ठ 60. आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी. आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी. पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी. उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती. जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती. एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं. यह देखकर उसने गूंधे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली. उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला पर यह क्या, वह तो डूब गई. सोचो और अंदाजा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती. स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी. और चम्मच. प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा. शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकालकर ऊपर रखो. साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी. पृष्ठ 61. आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही. आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती रहती हैं. देखो ये कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है. देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी. लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में. ये कविता लिखी शिशिर शोभन अष्ठाना ने. पृष्ठ 62. करके देखो. कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर ये प्रयोग करो. तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी कुछ चीजें. अब पानी से भरे बर्तन में ये चीजें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है. अपने अवलोकनों को तालिका में भरो. तैरती चीज के लिए सही का निशान और डूबती चीज के लिए गलत का निशान लगाओ. पानी में डाली चीज खाली कटोरी. तालिका में लिखो, मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया. दूसरी चीज है

कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर मुझे पहले लगता था, प्रयोग करने पर पाया। तीसरी चीज है लोहे की कील या पिन। फिर है माचिस की तीली, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल। फिर है दवाई की पन्नी, एल्यूमिनियम की फैली हुई, एल्यूमिनियम की पन्नी मोड़कर गोली सी बनाकर, एल्यूमिनियम की पन्नी कटोरी सी बनाकर। इसके अलावा साबुन की टिकिया, साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, बर्फ का टुकड़ा। आप बताओ और तालिका में लिखो, मुझे पहले क्या लगता था और प्रयोग किया तो क्या पाया। अपने साथी के समूह से भी पता करो, क्या तैरा क्या डूबा, लिखकर पूरा करो। लोहे की कील पानी में रिक्त स्थान गई, जबकि कटोरी रिक्त स्थान। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि 2 प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में रिक्त स्थान, पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए रिक्त स्थान होगी क्योंकि रिक्त स्थान। 3 दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब रिक्त स्थान, खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर रिक्त स्थान। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि रिक्त स्थान। पृष्ठ 63 यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तुम्हें क्या लगता है, नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हुआ हूं, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें एक कटोरी शक्कर घोलकर देखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूंगा, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? पृष्ठ 64 करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीजें इकट्ठी करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो। कोई एक चीज एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। चीजें हैं नमक, मिट्टी, चौक पाउडर, 1 चम्मच दूध, तेल। अब बताओ ये घुला या नहीं, और 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ? बताओ
क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है, तो कहाँ? नमक और चौक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? पृष्ठ 65। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? क्यों? बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ दो बूंदें तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गईं, जबकि कुछ पीछे रह गईं। तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंदें सबसे आगे निकली? ऐसा क्यों हुआ होगा? पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थीं। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गईं। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो, बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? पाठ 4 याद है? सोचो, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा? तुम्हारे घर में कौन सी चीजें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? पृष्ठ 66। डांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है, भारत की आजादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है, उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। हम क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो, इसके लिए क्या क्या कर सकते हो? चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीजें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखो। पानी के प्रयोग। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये 7वां पाठ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: टेंशन छूटी, एग्जाम खत्म हो गए। रूहानी, अब तू कहाँ घूमने जाएगी?
2: अरे हम इच्छा देखना पड़ेगा, अभी तो मेरी मम्मी ने डिसाइड नहीं किया है।
1: अच्छा, मैं भी जाऊंगी, पर मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी।
2: लेकिन घूमने तो जाना पड़ेगा, है ना अनुष्का?
3: हाँ। क्या हो रहा है बच्चों?
1: कुछ नहीं दीदी, हमारे एग्जाम खत्म हो गए इसलिए हम लोग बात कर रहे कि हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे।
3: एग्जाम्स खत्म हो गए तब तो सबको बड़ा ही मजा आ रहा होगा।
1: हाँ दीदी,
2: बहुत राहत की सांस मिली।
3: कैसे गए वैसे आप लोगों के एग्जाम्स?
1: बहुत अच्छे गए,
2: टेंशन में बस निकाल दिए।
3: टेंशन में निकाल दिए?
2: हाँ।
3: बाप, तो वैसे बात हो रही है क्योंकि एग्जाम्स खत्म होने की, तो उसके बाद आती है गर्मी की छुट्टियाँ, तो बच्चों की दुनिया में चलिए आज बात करते हैं गर्मी की छुट्टियों के बारे में। और हमारे साथ है अमीक्षा, हमारे साथ है रूहानी और हमारे साथ है अनुष्का भी। और आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो जरा खुद ही बता दीजिए।
1: मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: मैंने अब 7th खत्म कर दी और अब मैं 8th में आऊंगी।
4: और मैंने 4th खत्म कर गया, मैं 5।
3: तो आप लोग अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, है ना, बड़ी क्लास में आ जा रहे हो। तो गर्मी की छुट्टियों में इससे पहले तक आप लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या करते थे?
2: मैं तो दीदी घूमने जाती थी अपनी मम्मी के साथ दूर दूर जगहों पर।
3: दूर दूर जगहों पर कहाँ कहाँ?
2: मनाली गई हूँ, द्वारका गई हूँ, इस साल भी कहीं जाने वाले हो।
3: ओके, और आप लोग?
4: हम तो गए हैं म्यूजियम गए हैं हम।
3: अरे वाह।
4: और वहाँ चिड़ियाघर गए हैं।
3: हाँ, चिड़ियाघर और म्यूजियम में भी तो बड़ा मजा आता है ना।
4: हाँ।
3: अनुष्का तो गई है म्यूजियम। और अमीक्षा?
1: मैं तो दीदी पिछले साल नेपाल गई थी।
3: अरे वाह, कैसा लगा था नेपाल?
1: नेपाल बहुत अच्छा है।
3: बहुत अच्छा है? इंडिया जैसा है कि अलग अलग है?
1: इंडिया जैसा नहीं है, पूरा अलग है।
3: पूरा ही अलग है? क्या अलग है वहाँ पे?
1: वहाँ पे वो बुद्ध के टेम्पल है और घूमने की बहुत सारी जगह है।
3: तो और म्यूजियम में अनुष्का ने क्या क्या देखा था, क्या अच्छा लगा था चिड़ियाघर में म्यूजियम में?
4: म्यूजियम में हमने पुराने जमानों की तलवार देखी और बंदूक देखी थी और कुछ पुराने जमाने के खिलौने, ऐसे बहुत बाकी चीज देखे।
3: कहाँ पे था ये म्यूजियम?
4: महाराष्ट्र में।
3: महाराष्ट्र गए थे आप?
4: हाँ।
3: ओके, और चिड़ियाघर में क्या क्या देखा?
4: चिड़ियाघर में हमने शेर देखा था, भालू देखा था और बाकी सब देखे थे।
3: सबसे अच्छा क्या लगा?
4: मगरमच्छ।
3: मगरमच्छ सबसे अच्छा लगा?
4: हाँ।
3: क्या अच्छा लगा उसमें?
4: वो बहुत बड़ा था मगरमच्छ।
3: बहुत बड़ा था ना, उससे डर नहीं लगा?
4: नहीं, वो तो अंदर, उसको है ना अंदर रखा हुआ था इसलिए
3: नहीं लगा, बाहर आ जाएगा तो लगेगा, है ना। और आपने क्या देखा रूहानी?
2: दीदी मनाली में तो मैंने अजगर को अपने गले में लटकाया था।
3: अरे बाप रे, ये कैसे हो गया?
2: अरे उसका मुंह बंद करके रखा था जो फोटो खिंचवा रहा था, इसलिए मैंने सोचा गले में लटका लूं। अभी तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उस वक्त फोटो में मेरा मुंह देखो तो बहुत डरावना लग रहा था।
3: उसको देख के डर लगा तो होगा।
2: हाँ, मेरी मम्मी जबरदस्ती कर रही थी, ले ले ना गले में, ले ले, इसलिए
3: फोटो खिंचवाने के लिए।
2: हाँ।
3: पर उसके बाद जब हाथ में पकड़ा तो डर कम हुआ फिर?
2: हाँ, बहुत भारी था वो।
3: बहुत भारी था? गिरे तो नहीं ना?
2: नहीं, इतना भी भारी नहीं था।
3: ओके, तो गर्मी की छुट्टियों में मतलब आप लोग घूमने जाते हो और कभी किसी के घर भी जाते हो रिश्तेदारों के या मिलने किसी से, या कोई आता है आपके घर पे?
2: हाँ, नानी के घर।
3: नानी के घर जाते हो?
2: हाँ।
1: मैं अपने मामा मामी पापा वगैरह के घर जाती हूँ।
3: ओके।
4: मैं अपनी मौसी के ऐसे जाती हूँ और अपने गाँव में
3: जाते हैं। अच्छा लगता है गाँव में जाना अनुष्का?
4: हाँ,
3: थोड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है?
4: बहुत अच्छा लगता है।
3: क्या दिखता है वहाँ गांव में, ऐसा क्या है जो आपको यहाँ नहीं दिखता?
4: गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ खेलने को मिलता है।
3: अच्छा।
4: हाँ।
3: तो आपके दोस्त भी बन जाते हैं वहाँ पे? ओके। और अमीक्षा, आप किससे किससे मिलते हो, क्या क्या करते हो वहाँ पे?
1: वहाँ पे मैं जब पहले अपने मामी मामा के घर रहती थी तब वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बने थे, तो मैं जब जाती हूँ तब वो उनके साथ खेलती हूँ और नई नई चीजें क्रिएटिविटी करती हूँ और ड्राइंग्स बनाती हूँ।
3: ओके, और रूहानी क्या क्या करती है?
2: मैं तो वहाँ जाके अपने बड़े भैयाओं से मिलती हूँ, वो बड़े भैया मेरे को तंग करते रहते हैं। दो दिन में उनके घर रहने गई, उसमें भी वापिस आ गई, क्योंकि इतना तंग करके रखा था ना, दो सेकंड भी बैठ नहीं पाती थी मैं।
3: अरे बाप रे, ऐसा क्यों था, ऐसा क्या तंग कर दिया उन्होंने?
2: अरे मेरी बेइज्जती करते रहते हैं बार बार वो लोग।
3: आपको चिढ़ा रहे होंगे?
2: हाँ।
3: भाइयों को मजा आता ना बहनों को चिढ़ाने में।
2: वो अपनी खुद की बहन को भी चिढ़ाते।
3: तो उनको लगा होगा मेरी एक और बहन आ गई, उसको भी चढ़ाएंगे। तो उनके साथ शरारत नहीं करी आपने फिर?
2: करती हूँ।
3: आप भी तो करते होंगे। है ना?
2: तो शुरुआत वो करते, मुझे जवाब तो देना पड़ेगा।
3: जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, भाई बहनों में यही होता है ना, कुछ किसी को चिढ़ाना, किसी के साथ खेलना, कुछ करना। और अमीक्षा, आप जब जाते हो वहाँ पे, आपके पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, आप क्या क्या खेलते हो उनके साथ?
1: उनके साथ हम लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, और पहले जो जो गेम खेलते थे वो खेलते हैं।
3: अच्छा,
1: लंगड़ी टांग खेलते हैं।
3: गिल्ली डंडा अभी भी खेलते हैं?
1: हाँ।
3: आपको आता है?
1: नहीं आता नहीं है, वो लोग सिखाते हैं।
3: सिखा देते हैं?
1: हाँ।
3: गिल्ली डंडा तो आप आजकल सुना ही नहीं रहता कोई खेलते हुए। आप लोगों ने खेला है कभी? अनुष्का ने, रूहानी ने गिल्ली डंडा खेला है?
2: नहीं, वो नहीं खेला, लेकिन उसके जैसा गेम खेला था।
3: क्या?
2: बॉटल से।
3: बॉटल से गिल्ली डंडा?
2: अच्छा। एक लकड़ी को उछाल के बॉटल से मारते।
3: अनुष्का ने?
4: हमने सिंपल ही गेम खेले, लुका छुपी, ऐसे पकड़म पकड़ाई, ऐसे कुछ
3: पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी। हाँ, उसमें मजा आता है ना।
2: हम तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स खेलते हैं, जैसे गेम के मतलब हमारा घर होता है ना, उसके आगे एक सीढ़ी जैसा बहुत लंबा सा होता है, आंगन जैसा। तो उस अलग अलग घरों के आंगन पर हम खेलते हैं। जैसे अगर एक कोई एक जो होता है ना डैम देता है, वो जो नीचे आ गए ना रोड पे उनको पकड़ता है, और अगर ऊपर चलेंगे आंगन पर तब नहीं पकड़ पाएगा, और अगर वो आंगन पे आ गया तो उसे मारेंगे, ऐसा। वो भी पकड़म पकड़ाई जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग
3: जैसा है। क्या ऊंच नीच खेला है आप लोगों ने?
1: हाँ, वो हम लोग ने खेला है।
3: उसमें कुछ ऊपर होते थे तो नीचे जाना होता था।
1: हाँ,
3: है ना?
1: वो बताते थे कि तुम लोगों को उधर जाना।
2: हाँ, वो वही है, लेकिन हम उसको गुजराती में ओटला रे ओटला कहते हैं।
3: हाँ,
1: हम लोग ऊंच नीच का पापड़ा बोलते हैं।
3: ऊंच नीच का पापड़ा। क्या क्या नाम होते है ना, मजा आता है ना खेलने में।
2: हाँ।
3: ये तो हम लोगों ने भी खेले हैं गेम्स, मतलब आप लोग भी अभी पुराने वाले गेम्स खेलते हो।
2: इतना भी थोड़ी हम ना मॉडर्न हो गए हम लोग।
3: हाँ, ये भी सही बात है। तो और वो खेलते हो, सिकड़ी खेलते हो आप लोग? सिकड़ी पता है किसी को? या पिट्ठू फोड़ खेलते हो?
2: नाम से नहीं पता, वैसे तो हम खेलते होंगे।
3: एक सिकड़ी होता है ना, उसमें 8 नंबर होते हैं, 1 2 फिर 3 फिर 4 5 एक साथ होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 9 होता है। पत्थर फेंकना होता है, फिर एक टांग पे जाना होता है, उस पत्थर को उठाना होता है।
2: हाँ, वो भी खेला है। हम तो चौक से ही बना के खेलते
3: हैं। चौक से बनाते हैं उसको।
1: कोई कोई ईंट से भी बनाता है।
3: हाँ,
2: लाल कलर की ईंट होती है उससे।
3: उसको क्या बोलते हो आप लोग?
2: लंगड़ी टांग।
3: अच्छा, लंगड़ी टांग बोलते हो। ओके। और पिट्ठू फोड़, उसमें ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, 7 पत्थर, फिर बॉल से उसको गिराते हैं।
1: हाँ, वो भी खेला है।
2: वो तो हम पत्थरों से खेलते हैं।
1: वो फिर बाद में वो बॉल मारते हैं, तब तक
3: बनाना होता है, उसको वापस रखना होता है। क्या बोलते हैं उसको आप लोग?
2: हम तो बॉटल से खेलते हैं, कुछ बोलते नहीं है, बस बॉटल से मारते और बॉटल दूर फेंकते और बॉटल को लेने जाना पड़ता है, और बॉटल लेके फिर उल्टे पांव वापस आना होता है।
3: अच्छा, ऐसा?
2: हाँ।
3: ओ, ये तो ट्विस्ट आ गया गेम में।
2: हाँ।
3: अनुष्का खेलती है? सबसे अच्छा क्या लगता है अनुष्का को खेलने में?
4: बैडमिंटन
3: अच्छा लगता है। अरे वाह, किसके साथ खेलते हो?
4: मैं अपने गाँव में गई थी तो मेरा भाई थे और एक बहन थी, तो यहाँ पर जो भाई है उसके साथ।
3: अच्छा, यहाँ वाले भाई के साथ यहाँ खेलते हो और वहाँ वाले भाई के साथ वहाँ खेलते हो।
4: हाँ।
3: अच्छा, और गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग क्या क्या करने वाले हो इस बार?
2: इस बार तो दीदी शांतिवन में जो समर कैंप हो रहा है ना, उसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले।
1: उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है,
2: नए फ्रेंड्स मिलते हैं।
3: और अनुष्का, आप आओगे समर कैंप में?
4: यस।
3: तो वहाँ पे बिल्कुल आपने अच्छा बताया कि यहाँ पे समर कैंप होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, गेम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, बहुत कुछ होता है ना, बहुत मजा आता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होने वाला है। तो समर्स में मतलब फुल इंजॉय करते हो आप लोग?
4: यस।
3: समर ब्रेक अच्छा लगता है कि विंटर ब्रेक अच्छा लगता है?
2: विंटर ब्रेक। समर ब्रेक का सिर्फ आम अच्छा लगता है वाकई विंटर ब्रेक
4: क्योंकि बहुत गर्मी होती है।
2: और इतनी गर्मी में बाहर निकलने भी नहीं देती है मम्मी।
4: नानी वगैरह बोलती है लू लग जाएगी घर के अंदर रह लू लग जाएगी।
3: और अनुष्का क्या अच्छा लगता है, गर्मी की छुट्टियाँ कि सर्दी की छुट्टियाँ?
4: हमको तो सर्दी की घर से ही लगती है।
3: क्यों? हाँ बोलो।
4: हमको सर्दी की छुट्टियाँ अच्छी लगती है।
3: क्यों ज्यादा क्यों अच्छी लगती है सर्दी की छुट्टियाँ?
4: क्योंकि उसमें ज्यादा बाहर निकलते हैं और फिर धूप आती तो उसमें खड़े रहते हैं। मजा आता है, बाहर नींद आती है, बाहर बैठते हैं तो धूप में
3: नींद आती है, अच्छा भी लगता है। गर्मी की छुट्टियों में धूप अच्छी लगती है?
4: बहुत धूप होती है।
3: तो फिर करते क्या हो दोपहर में अगर धूप होती है, बाहर नहीं खेलते तो फिर क्या करते हो?
2: घर में ही बुला लेते हैं दोस्तों को
4: और खेलते हैं
3: इंडोर गेम्स।
4: हाँ।
3: कौन से इंडोर गेम्स खेलते हो?
4: लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गई।
2: मैं तो ऑफलाइन लूडो लाई थी, मतलब जो सामने ऐसा बोर्ड जैसा होता है ना उस पे रख के खेलते वो वाला लूडो, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी बार बार खत्म हो जाती है।
3: अच्छा, आप लोग मतलब पहले लूडो फोन पे खेलते थे?
2: हाँ।
3: सब लोग?
2: हाँ।
3: अच्छा, ये
2: क्योंकि
3: तो
2: लूडो किसी ने फोन के अलावा कहीं नहीं देखा है।
3: आप लोगों ने लूडो फोन के अलावा देखा ही नहीं था?
2: नहीं।
3: ओहो, हम तो हमेशा से वो लूडो हमारे घर पे रखा ही रहता था और सांप सीढ़ी भी खेलते थे, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अभी इतनी चेंजेस आ गए हैं जनरेशन में कि आप लोग फोन पे लूडो खेलते हैं।
4: फोन में लूडो खेलते हैं ना तो उसमें ऑप्शन आता है, उसमें लूडो भी चलता है और सांप सीढ़ी भी चलती है।
3: अच्छा, दोनों खेल सकते हैं उसमें?
4: एक ही ऐप में।
3: तो क्या चारों लोग खेल सकते हैं उसमें?
4: उसमें छह लोग खेल सकते हैं।
3: छह लोग लूडो खेल सकते हैं?
2: उसके बोर्ड का शेप भी अलग हो जाता है फिर छह लोग वाले में।
3: चार से तो डिफरेंट ही होगा।
2: स्क्वायर नहीं रहता है, पेंटागन हो जाता है।
3: ओके, और अनुष्का ने भी ऑनलाइन ही खेला है लूडो? ओके, तो आपने इस बार ऑफलाइन लेके आया ना आप लूडो, तो कौन से में ज्यादा मजा आया?
2: ऑफलाइन वाले में।
3: ऑफलाइन में ज्यादा मजा आया?
2: क्योंकि उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि फोन में होता है ना उसमें डाइस होता है वो कंप्यूटर कंट्रोल करता है, और ऑफलाइन में हम कंट्रोल कर सकते हैं।
3: ये तो है, मजा तो आता है हाथ से उसको पासे को फेंकने में और फिर गोटी को चलने में, नंबर काउंट करके, ऐसे दो कंप्यूटर ही चल देता है अपने आप ही। जो आया
4: फोन में तो टुक टुक टुक टुक आवाज आती है।
3: हाँ, लेकिन वो अपनी गोटी खुद ही बढ़ा देता है और पासे का नंबर भी खुद ही आ जाता है, आपको तो बस क्लिक करना होता होगा, है ना। ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है, इस बार खेल के देखना ऑफलाइन, है ना, बैठ के खेलना, नानी के साथ खेलना, घर वालों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ तो खेलते ही हैं, घर वालों के साथ भी खेल सकते हैं। खेलते हो कभी घर वालों के साथ?
4: हाँ, मेरी नानी और मैं खेलते हैं। कभी कभार मेरी मासी भी खेलती है।
3: कौन जीतता है?
4: कोई भी जीतता है, एक दिन मैं जीतती हूँ, एक दिन मेरी मासी जीतती है, एक दिन मेरी नानी जीतती।
3: ओके, और आप लोग खेलते हो घर वालों के साथ?
2: हाँ,
3: सब लोग खेलते हैं।
2: मेरी दादी जी तो गुस्सा करती है, ले जा इसको यहाँ से, मेरे को नहीं खेलना।
3: क्यों?
2: पता नहीं,
3: उनको अच्छा नहीं लगता होगा लूडो।
2: नहीं,
3: या तो आप लोग शैतानी करते होंगे।
2: हाँ, करती हूँ मैं।
3: थोड़ी थोड़ी?
2: नहीं, ज्यादा।
3: ज्यादा करते हो? इसीलिए। अच्छा, गर्मी की छुट्टियों में ऐसा भी कुछ है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कुछ बोर होते हो किसी वजह से या कुछ पसंद नहीं है, ऐसा कुछ है?
4: नानी बोलती है पढ़ाई कर ले उसमें वेकेशन में, हम बोलते नहीं हमें नहीं करने पढ़ाई।
2: हाँ, अगले साल की पढ़ाई करने को बोल देते, फिर जल्दी जल्दी बुक्स भी ला लेते अगली क्लास की।
3: वो नहीं अच्छा लगता ना? अनुष्का को क्या नहीं अच्छा लगता गर्मी की छुट्टियों के बारे में?
4: मेरे को वीन के जैसा ही है कुछ।
3: क्या, किताबें? नई क्लास की किताबें आ जाती है तो फिर मजा नहीं आता, उन पे कवर भी चढ़ाना होता होगा ना।
2: वही काम दे देते, इतनी सारी बुक्स, उसके जितनी कॉपीज, उस पे भी कवर चढ़ाना, नेम स्लिप भी उस पे
4: तो
2: लगाना।
4: कवर भी नहीं होते हैं।
2: हाँ,
4: कवर बार बार दुकान पे जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है।
2: और विंटर वाले ज्यादा अच्छे लगते छुट्टियाँ, क्योंकि उसमें ना क्लास खत्म नहीं हुई होती है और हमें वही सिलेबस वापिस पढ़ना होता है, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। अभी तो पूरी क्लास ही बदल जाती है।
3: अनुष्का क्या बोल रही थी आप, बार बार खत्म हो जाता है फिर क्या करते हो?
4: फिर तो बार बार जाके लेके भी आना पड़ता है कवर।
3: बहुत काम करना पड़ता है ना।
4: और स्टेपलर की पिन भी खत्म हो जाती है,
2: वो भी लेने जाना पड़ता है,
3: सब बच्चों को करना पड़ता है। बाप रे, और फिर पढ़ाई भी करनी पड़ती होगी, हॉलीडे होमवर्क भी तो मिलता होगा? नहीं
2: नहीं, अभी तो क्लास ही खत्म हो जाती है। विंटर छुट्टियों में भी हॉलीडे होमवर्क तो मिलता ही है।
3: गर्मियों में लेकिन देखो हॉलीडे होमवर्क नहीं है आपके पास।
2: दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही खराब है।
4: अगर होता भी है तो वो भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता, एक्टिविटीज देते हैं।
3: अच्छा, जैसे?
4: जैसे वो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के गोले बना के उसमें कोई भी सीड डाल दे और वो पौधे के टाइप में लगा दे, और जब वो जब हम स्कूल जाएं तब उसको फर्स्ट डे पे ले जाए, वो लोग फिर हमें मार्क्स देते हैं, वो मार्क्स हमारे एग्जाम में भी जुड़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप और प्रकृति से जुड़ रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी मिलती है कुछ एक्टिविटी करने के लिए?
2: नहीं, हमारे तो एग्जाम के बाद ही तुरंत छुट्टियां पड़ जाती है।
3: तो फिर नेक्स्ट क्लास में जाना होता है सीधा जाके छुट्टियों के बाद?
4: हमारी एग्जाम होती है, फिर 4-5 दिन छुट्टी होती है, फिर अप्रैल में अगले साल की पढ़ाई होती है, फिर जून में मई जून छुट्टी
3: होती है। 2 महीना छुट्टी होती है आपके पास। तो कुछ सीखने का मन नहीं करता कि गाना सीखें, कुछ और सीखें, कुछ प्रैक्टिस करें नया?
2: सीखते हैं, मैं कभी कभी क्राफ्टिंग करती हूँ बैठी होती हूँ घर पे तो, और कभी कभी मन करता है, मतलब कभी खुल के नहीं गा पाती हूँ मैं, घर में सिर्फ गुनगुनाना ही होता है, और ऊपर छत पे जाके फिर मैं जोर से गाती हूँ।
3: अनुष्का, कुछ सीखने का मन करता है आपका? क्या?
4: डांस करने का मन करता है तो थोड़ा।
3: करते हो आप डांस?
4: थोड़ा थोड़ा करते हैं।
3: थोड़ा थोड़ा करते हो, यूट्यूब पे देख के या अपने आप ही ऐसी?
4: यूट्यूब पे देख के।
3: यूट्यूब थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं करते आप?
4: नहीं।
3: क्यों?
4: ज्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता इसीलिए।
3: तो ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको? क्राफ्ट अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, कुछ और अच्छा लगता है? पढ़ाई अच्छी लगती है लग रहा है अनुष्का को, खेलना अच्छा लगता है ना? ओके, तो गर्मी की छुट्टियों में एक्टिविटीज करते हैं, गेम्स खेलते हैं दोस्तों के साथ और घूमने जाते हैं। तो मतलब बहुत मजा आता है
2: घूमने पर भी, जब प्लेस आ जाती है घूमने वाली तभी मजा आता है, और जर्नी में नहीं आता क्योंकि इतना हिलता है वो, जैसे उल्टी जैसा हो जाता है। बसों में भी होता है, ट्रेन में भी होता है, सो सो के बोर हो जाते हैं एक ही जगह पे बैठे बैठे, खाना भी वही आ जाता है।
3: ट्रैवल कर रहे हैं तो बैठना ही पड़ता है उस समय। उस समय अब क्या कर सकते हो, घर वालों से बातें कर सकते हो?
2: उस समय मैं सोचती हूँ काश मैं घर पे ही अच्छी होती, खेल रही होती अभी अपने दोस्तों के साथ।
3: लेकिन वहाँ जाके फिर और लोगों से मिलने को भी तो मिलता है। फिर उनसे कहाँ मिल पाते हो छुट्टियों के बगैर, तो लगता होगा वो ही हमारे पास आ जाए ना। और अच्छी अच्छी चीजें खाने को भी तो मिलती हैं, फ्रूट्स भी आते हैं गर्मियों में अच्छे अच्छे। बहुत अच्छे होते हैं।
2: जर्नी में लगता है घर पे अच्छी हूँ, घर पे होते हो तब जर्नी में अच्छा लगता है।
3: और आपको कहाँ अच्छा लगता है मीक्षा?
4: मुझे तो घर में ही अच्छा लगता है, पर जर्नी में अच्छा नहीं लगता, जब मैं नए लोगों से मिलती हूँ तब भी अच्छा लगता है।
3: यानी कि रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं भी हो तो मंजिल तो अच्छी है। तो रास्ते पे चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी।
2: फिर मैं वहाँ की फोटो खींच के घर आके अपने ही दोस्तों को दिखाती हूँ, ये देखो मैं बर्फ में घूमने गई थी, ये देखो मैंने गले में सांप लटकाया था।
3: हाँ, फिर दोस्त शौक हो गए होंगे सांप देख के।
2: हाँ, कोई कोई तो देखता भी नहीं है पूरी पिक्चर क्योंकि उनको सांप से इतना डर लगता है।
3: हाँ, सबको अलग अलग चीजों से डर लगता है। अनुष्का को सबसे क्या अच्छा लगता है, जाना घूमना कि घर में रहना?
4: घर में रहना ज्यादा लगता है क्योंकि बस में एक जगह रहते हैं इसीलिए।
3: एक जगह बैठना पड़ता है ना, बोर हो जाते हैं फिर, पर वहाँ पहुँच के तो अच्छा लगता होगा।
4: हाँ,
3: थोड़ी देर के लिए बोर हो रहे हैं लेकिन कितने दिन मजा भी तो आ रहा है ना। चलो आप लोग गर्मी की छुट्टियां इस बार भी इंजॉय करो बहुत खूब, और कुछ ना कुछ नया सीख के फिर रेडियो पे हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना कि आप लोगों ने गर्मी की छुट्टियों के बाद शेयर करना जून के बाद क्या क्या सीखा इस बार, क्या क्या किया, ठीक है? ओके, तो चलो अभी कर देते हैं हम अपने दोस्तों को गुड बाय और उनको विश कर देते हैं कि गर्मी की छुट्टियां उनकी बहुत बहुत अच्छी हो। तो क्या कहोगे आप लोग अपने दोस्त, कुछ बोल दो?
2: आप भी अपनी गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छे से मनाओ और हमारे जैसे कुछ सीखो,
4: और आप कहीं घूमने जाओ तो हमें भी बताना कि आप कहाँ घूमने गए थे। ऑल द बेस्ट।
3: तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, आप भी कुछ सीखिए, कुछ करिए, मम्मी पापा की हेल्प भी करिए थोड़ा, और अपने आगे वाली क्लास की तैयारी भी करिए, और अगर हॉलीडे होमवर्क मिला है तो उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक साथ करना पड़ता है बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। फिलहाल बच्चों की दुनिया से लेते हैं इजाजत, बाय बाय।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 3, ज्ञान प्राप्ति, पृष्ठ संख्या 40। ज्ञान प्राप्ति, दर्शन परिचर्चा। शांति प्रिय अराड़ मणि के आश्रम में राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनकी शरीर की आभा से सारा आश्रम प्रकाशित हो गया हो। मुनि अराड़ ने दूर से ही राजकुमार को देख लिया और उच्च स्वर में कहा, स्वागत है, आइए। राजकुमार धीरे धीरे उनके पास आए। दोनों ने विधिपूर्वक एक दूसरे का अभिनंदन अभिवादन किया, कुशल क्षेम पूछा और फिर मृग चर्म बिछी दो चौकियों पर दोनों बैठ गए। मुनि ने राजकुमार को निहारते हुए स्नेहपूर्वक कहा, हे सौम्य, मुझे पता चला है कि आप सभी स्नेह बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं। आपका मन सब प्रकार से धैर्यवान है, आप ज्ञानी हैं, तभी तो राजलक्ष्मी को त्याग कर यहां आए हैं। वैसे राजा लोग भोगी हुई राजलक्ष्मी को अपनी संतान को सौंपकर ही वन में आते रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि आप विषयों के बीच रहते हुए युवावस्था में ही लक्ष्मी को बिना भोगे ही यहां आ गए हैं। इस धर्म को जानने के लिए आप श्रेष्ठ पात्र हैं। आप ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को पार कीजिए। यद्यपि शिष्य को अच्छी तरह जानकर ही उचित समय पर शास्त्र ज्ञान दिया जाता है, परंतु आपकी गंभीरता और संकल्प को देखकर मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। अराड़ मुनि के ये शब्द सुनकर कुमार परिव्राजक अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, आप जैसे विरक्त की यह अनुकूलता देखकर मैं कृतार्थ हो गया हूं। जैसे देखने की इच्छा वाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा वाला पथ प्रदर्शक को और नदी पार जाने की इच्छा वाला नौका को देखता है, वैसे ही मैं आपको देख रहा हूं। यदि आप उचित समझें तो मुझे जरा और मृत्यु के रोग से मुक्त होने का उपाय बताइए। अराड़ मुनि ने कुमार से कहा, हे श्रोताओं में श्रेष्ठ, पहले आप हमारा सिद्धांत सुनिए और समझिए कि यह संसार जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता है। पृष्ठ संख्या 41। हे मोह मुक्त, आलस्य अंधकार है, जन्म मृत्यु मोह है, काम महामोह है और क्रोध तथा विषाद भी अंधकार है। इन्हीं पांचों को अविद्या कहते हैं और इन्हीं में फंसकर व्यक्ति पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। इस प्रकार आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त कर आवागमन से मुक्त होती है और अक्षय पद अमरत्व को प्राप्त करता है। अराड़ मुनि से यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कुमार ने अक्षय पद प्राप्त करने के उपाय पूछे। तब उन्होंने अनेक उपाय बताए और अंत में कहा, यदि आप संतुष्ट हों और उचित समझें तो इनका अनुपालन कीजिए, क्योंकि इन्हीं सिद्धांत का अनुसरण करके प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। अराड मुनि के प्रवचन सुनकर कुमार ने कहा, हे मुनि, मैंने आपसे उत्तरोत्तर कल्याणकारी मार्ग सुना, किंतु मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता। आत्मा के अस्तित्व को मानने पर अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है। मुझे आपकी ये बातें स्वीकार नहीं है। अराड मुनि के सिद्धांतों को सुनने के बाद भी कुमार को संतोष नहीं हुआ, अतः यह धर्म अधूरा है ऐसा मानकर वे उस आश्रम से निकल गए और अपने लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ गए। अराड मुनि के आश्रम से निकलकर कुमार उद्रक ऋषि के आश्रम में आए। वहां भी आत्मा की सत्ता के विचार जानकर उन्हें संतोष नहीं हुआ, अतः परम पद पाने की इच्छा से उन्होंने उद्रक ऋषि का आश्रम भी छोड़ दिया और धीरे धीरे वे राजश्री गय के नगरी नामक आश्रम में गए। कुछ समय के बाद बोधिसत्व कुमार को एकांत विहार की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नए रंजना नदी के तट पर निवास किया। वहां उन्होंने 5 भिक्षुओं को देखा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और वहीं रहकर तपस्या कर रहे थे। उन भिक्षुओं ने जब इस नवागत साधु को देखा तो वे उनके निकट आए और उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद जन्म और मृत्यु का अंत करने के उपाय के रूप में बोधिसत्व ने निराहार रहकर कठोर तप प्रारंभ किया। वहां उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया और अनेक उपवास व्रत किए। कठोर तपस्या के कारण वे कृशकाय हो गए। वे भोजन के रूप में कभी एक बेर, कभी एक तिल, कभी एक तंडुल यानी चावल का सेवन करते थे। इस कठोर तपस्या के कारण जैसे जैसे उनका शरीर कृश होता जाता था उनके मुखमंडल का तेज बढ़ता जाता था। मेदा, मांस और रक्त से रहित और मात्र त्वचा और अस्थि वाला उनका शरीर फिर भी समुद्र के समान भरा भरा सा लगता था। पृष्ठ संख्या 42। कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार की कठोर तपस्या से व्यर्थ ही शरीर को कष्ट होता है। यह तापस धर्म ना वैराग्य दे पाता है, ना बोध, ना मुक्ति। उन्हें ऐसी अनुभूति भी हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता, अतः वे शरीर बल वृद्धि के विषय में विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, भूख, प्यास और श्रम से अस्वस्थ मन के द्वारा मोक्ष भला कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्हें लगा कि आहार तृप्ति से ही मानसिक शक्ति मिलती है, स्थिर और प्रसन्न मन ही समाधि पा सकता है तथा समाधि युक्त चित्त वाला व्यक्ति ही ध्यान योग कर सकता है। ध्यान योग के सिद्ध हो जाने के बाद साधक उस धर्म को प्राप्त करता है जिससे उसे दुर्लभ, शांत, अजर अमर पद प्राप्त होता है। उन्हें लगा कि मुक्ति का उपाय आहार पर ही आधारित है, अतः उन्होंने भोजन करने की इच्छा की। कठोर तपश्चर्या से बोधिसत्व अत्यंत कृशकाय और दुर्बल हो गए थे, फिर भी वे धीरे धीरे नए रंजना नदी की ओर गए, स्नान किया और तट के वृक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर वे ऊपर आए। उसी समय निकट ही रहने वाले गोपराज की कन्या नंदबाला प्रसन्नतापूर्वक वहां आई। शंख जैसी गोरी बाहों वाली गोपबाला ने नीला वस्त्र धारण किया था और लग रही थी जैसे फेन मालाओं से युक्त यमुना प्रकट हो गई हो। नंदबाला ने पहले श्रद्धापूर्वक बोधिसत्व को प्रणाम किया और उन्हें पायस यानी खीर से परिपूर्ण पात्र प्रदान किया। इस प्रकार के सुभोज्य से तृप्त होकर उन्हें लगा कि वे अब बोधि प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। बोधिसत्व के साथ रह रहे 5 भिक्षुओं ने जब उनका यह आचरण देखा तो उन्हें लगा कि अब यह मुनि भी धर्मच्युत हो गया है, इसलिए वे उन्हें छोड़कर चले गए। उन सबके चले जाने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और वे पास ही एक अवस्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए। तभी काल नामक एक सर्प प्रकट हुआ, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका था कि यह मुनि अवश्य ही बोधि प्राप्त करेगा। उसने पहले उनकी स्तुति की। काल सर्प ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों से आक्रांत होकर यह पृथ्वी बार बार डोल रही है। सूर्य के समान आपकी आभा सर्वत्र प्रकाशित है। आप अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हे कमल लोचन, जिस प्रकार आकाश में नीलकंठ पक्षियों के झुंड आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं और मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है, उससे लगता है कि आप अवश्य ही बुद्ध बनेंगे। पृष्ठ संख्या 43। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें नंदबाला नामक कन्या सिद्धार्थ को खीर से भरा पात्र प्रदान कर रही है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 44। सर्प द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सिद्धार्थ ने तृण लेकर बोधि प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा की। वे महावृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मैं कृतार्थ नहीं हो जाता, इस आसन से नहीं उठूंगा। जब सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा पूर्वक आसन लगाया तो देवता गण अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वत्र नीरवता छा गई। उस समय न मृग बोले न पक्षी। वे धीरे धीरे नितांत एकांत शांत वातावरण में समाधिस्थ हो गए। मार की पराजय। जब महामुनि सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर आसन लगाया तो सारा लोक अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सदधर्म का शत्रु मार यानी कामदेव भयभीत हो गया। उसे सामान्यतः कामदेव, चित्रायुद्ध और पुष्पशर कहा जाता है। यह काम के संचार का अधिपति है, यही मार है। उसके विभ्रम, हर्ष और दर्प नाम के तीन पुत्र हैं और अरति, प्रीति और तृष्णा नाम की तीन कन्याएं हैं। उन्होंने जब अपने पिता को भयभीत देखा तो इसका कारण जानना चाहा। मार यानी कामदेव ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया, देखो, इस मुनि ने प्रतिज्ञा का कवच पहनकर सत्व के धनुष पर अपनी बुद्धि के वाण चढ़ा लिए हैं। यह हमारे राज्य को जीतना चाहता है। यही मेरे दुख और भय का कारण है। यदि यह मुझे जीत लेता है और सारे संसार को मोक्ष का मार्ग बता देता है तो राज्य सूना हो जाएगा। इसलिए यह ज्ञान दृष्टि प्राप्त करे उससे पहले ही मुझे इसका व्रत भंग कर देना चाहिए। अतः मैं भी अभी अपना धनुष बाण लेकर तुम सबके साथ इस पर आक्रमण करने जा रहा हूं। इस प्रकार सारी स्थिति समझाकर मार अपने पुत्र पुत्रियों को साथ लेकर उसी अश्वत्थ वृक्ष के पास गया, जहां महामुनि समाधि लगाकर विराजमान थे। उसने पहले महामुनि को ललकारा और फिर धनुष बाण हाथ में लेकर कहा, हे मृत्यु से डरने वाले क्षत्रिय, उठो, अपने क्षत्रिय धर्म का आचरण करो, मोक्ष का संकल्प छोड़ो, शास्त्रों और यज्ञों से लोक जीतकर इंद्रपद प्राप्त करो, नहीं तो मैं अपना बाण छोड़ दूंगा। पृष्ठ संख्या 45। मार की इस चेतावनी का जब मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने अपने पुत्रों और कन्याओं को आगे भेजा और अपना बाण छोड़ दिया, परंतु इसका भी कोई प्रभाव मुनि पर नहीं हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने यही बाण शिव पर छोड़ा था, तो एक बार विचलित हो गए थे, परंतु आज यह निष्फल कैसे हो गया है? क्या इस मुनि के हृदय नहीं है, अथवा यह बाण वह बाण नहीं रहा जिसने शिव को पराजित किया था? इस प्रकार सोचते हुए उसने अपनी सेना को याद किया और तत्काल उसकी विकराल सेना उपस्थित हो गई। महामुनि के चारों ओर विचित्र और भयंकर आकृति वाले जीवों की भीड़ सी लग गई। वे विविध प्रकार की रूप सज्जा धारण किए हुए थे। उनमें से कुछ त्रिशूल घुमा घुमा कर नाच रहे थे, कुछ गदा हाथ में लिए इधर उधर कूद रहे थे और सांड की तरह हुंकार रहे थे। रात्रि के प्रारंभ में ही शाक्य मुनि और मार के बीच होने वाले युद्ध के कारण सारा आकाश मलिन हो गया, पृथ्वी कांपने लगी और दिशाएं जलने लगीं। उस समय भयंकर झंझावात प्रवाहित होने लगा। आकाश में उस समय ना तारे थे और ना चंद्रमा था, चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया। इन सब के बीच शाक्य मुनि उसी प्रकार स्थिर चित्त बैठे रहे जिस प्रकार गायों के बीच में सिंह निश्चिंत भाव से बैठा रहता है। मार ने तब अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया और कहा कि महर्षि को भयभीत करो जिससे इसका ध्यान भंग हो जाए। आज्ञानुसार सभी महामुनि को डराने लगे, किंतु जैसे खेल में उत्तेजित बालकों को न व्यथा होती है न उद्वेग, वैसे ही महर्षि इन सब के भयंकर रूपों और क्रियाकलापों से न व्यथित हुए और न ही उत्तेजित। जब मार के किसी सैनिक ने अपनी आंखें तरेर कर महामुनि पर गदा से प्रहार किया तो उसका गदा सहित हाथ ही जकड़ कर रह गया। किसी ने शिला और किसी ने वृक्ष उठाकर उन पर प्रहार करना चाहा तो स्वयं ही गिर गए। किसी ने उन पर अंगारों की वर्षा की तो मुनि के मैत्री भाव के कारण वे लाल कमलों की पंखुड़ियां बनकर बरसने लगे। शाक्य मुनि अपने आसन से जरा भी विचलित नहीं हुए। इस भयंकर वातावरण से वन के पशु पक्षी आर्त नाद करने लगे। सभी भयभीत हो गए, किंतु सिद्धार्थ मार की सेना से भयभीत नहीं हुए। इस पर मार को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत क्रोध भी आया। तभी किसी अदृश्य जीव ने आकाश से प्रकट होकर मार से कहा, तुम व्यर्थ ही क्यों परिश्रम कर रहे हो? जैसे सुमेरु पर्वत को हवा हिला नहीं सकती, वैसे ही तुम और तुम्हारे भूतगण इस महामुनि को विचलित नहीं कर सकते। चाहे अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, चाहे जल अपना द्रवत्व त्याग दे, चाहे पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़ दे, लेकिन अपने पूर्व जनों के पुण्य प्रताप से यह मुनि अपना नहीं निश्चय छोड़ेगा। यह मुनि शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित सारे जगत का महावैद्य है। तुम इसके कार्य में विघ्न न डालो। पृष्ठ संख्या 46। उस अदृश्य जीव ने आगे कहा, देखो क्षमा रूपी जटा, धैर्य रूपी दृढ़ मूल, चरित्र रूपी पुष्प, बुद्धि रूपी शाखा और धर्म रूपी फल देने वाला यह वृक्ष उखाड़ने योग्य नहीं है। बोधि प्राप्ति के लिए जो कार्य पहले इन्होंने किए हैं उनकी सिद्धि का समय अब आ गया है। यह स्थान भी वही है जहां प्राचीन काल में अनेक मुनियों ने साधना की है। यह स्थान भूतल की नाभि है। ऐसी श्रेष्ठ भूमि पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं है जो इस महामुनि की समाधि के वेग को सह सके। इसीलिए हे मार, तुम व्यर्थ परिश्रम मत करो, जाओ शोक मत करो और शांति प्राप्त करो। अपने सभी प्रयत्नों को विफल होते देखकर और इस अदृश्य जीव

ने परम तत्वों को जानने की इच्छा से ध्यान लगाया। ध्यान की समस्त विधियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। मैं कहां कहां, कब कब अवतीर्ण हुआ हूं, इस प्रकार उन्होंने सहस्त्रों जन्मों का प्रत्यक्ष स्मरण किया। अपने उन अवतारों में उन्होंने जो दया कर्म किए थे और जिस प्रकार मृत्यु प्राप्त की थी, उन सब का प्रत्यास्मरण किया। उन्हें अनुभूति हुई कि यह सारा संसार केले के गर्भ के समान नितांत निस्सार है। द्वितीय प्रहर में उस महामुनि ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए। उन्होंने नीच ऊंच कर्म करने वाले प्राणियों के उत्थान पतन का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिससे उनकी दयालुता और भी बढ़ गई। उन्होंने पाप कर्म करने वालों की नारकीय वेदना और पीड़ा का अनुभव कर दुख का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि कर्म बंधनों से बंधे हुए प्राणी किस प्रकार दुख भोगते हैं पर मर नहीं पाते, और जब मरते हैं तो कैसे ये प्राणी निम्न योनियों में पुनः जन्म ग्रहण कर दुख भोगते हैं। पृष्ठ संख्या 47। उन्होंने अनुभव किया कि संसार में छोटे बड़े सभी जीव भूख और प्यास जनित दुखों से पीड़ित हैं। कुछ जीव हैं जो नरक के समान गर्भ नामक सरोवर में गिरकर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। कुछ जीव हैं जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाते हैं और वहां काम की ज्वाला में जलते हैं और तृप्त होने से पूर्व ही स्वर्ग से गिर जाते हैं। उन्होंने जन्म जरा और मृत्यु के कारणों का साक्षात्कार किया। उन्हें लगा जैसे वायु के योग से अग्नि का एक कण भी सारे वन को जला देता है, वैसे ही तृष्णा युक्त काम कर्म रूपी जंगल को जलाता रहता है। उन्होंने ध्यान में समझा कि तृष्णा का मूल कारण वेदना या संवेदना है, जो इंद्रियों वस्तुओं और मन के संयोग से उत्पन्न होती है। उन्हें बोध हुआ कि अविद्या के नष्ट होने पर ही संस्कार क्षीण होते हैं और परम पद का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्हें प्रतीति हुई कि उन्हें अब पूर्ण मार्ग का ज्ञान हो गया है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जब सारा चराचर जगत शांत था, महाध्यानी मुनि ने अविनाशी पद प्राप्त किया और वे सर्वज्ञ बुद्ध हो गए। जैसे ही शाक्य मुनि बुद्ध हुए, सारी दिशाएं सिद्धों से दीप्त हो गईं और आकाश में दुंदुभी बजने लगी। बिना बादल बरसात होने लगी, मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी, वृक्षों से फल फूल बरसने लगे और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर धर्म छा गया। इक्ष्वाकु वंश के मुनि ने सिद्धि प्राप्त कर ली और वे बुद्ध हो गए। यह जानकर देवता और ऋषिगण उनके सम्मान के लिए विमानों पर सवार होकर उनके पास आए और अदृश्य रूप में उनकी स्तुति करने लगे। ध्यानावस्थित होकर महात्मा बुद्ध ने जीवन मरण के कार्य कारण संबंधों को भली भांति जान लिया था और मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इस मुक्तावस्था में वे 7 दिनों तक बैठे रहे। तभी उन्हें जगत को बोध प्रदान करने की अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। तभी 2 देवता आए और उन्होंने निवेदन किया, हे भवसागर को प्राप्त करने वाले मुनि, आप इस दुखी जगत का उद्धार कीजिए। जैसे धनी धन बांटता है, वैसे ही आप अपने गुण और ज्ञान को बांटिए। महात्मा बुद्ध ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। तभी अन्य दिशाओं से देवतागण आए और उन्होंने महामुनि को भिक्षा पात्र दिया। निकट से जाने वाले एक सार्थवाह के 2 श्रेष्ठियों ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। पृष्ठ संख्या 48। तब उन्होंने आराड और उद्रक का स्मरण किया।
परंतु तब तक वे दिवंगत हो चुके थे। अतः उन्होंने उपदेश देने के लिए उन पांच

भिक्षुओं का स्मरण किया जो उन्हें तप से भ्रष्ट मानकर छोड़कर चले गए थे। इस तरह संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध ने काशी जाने की इच्छा की। वे अपने आसन से उठे, उन्होंने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और बोधि वृक्ष की ओर प्रेम से देखा। प्रश्न एक, अराड मुनि ने अविद्या किसे कहा है? दो, कठोर तपस्या में लगे सिद्धार्थ ने किस कारण भोजन करने का निर्णय किया? तीन, मार कौन था और वह बुद्ध को क्यों डरा रहा था? चार, सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त करने पर प्रकृति में किस प्रकार की हलचल दिखाई पड़ी? यहां तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। जैसे कि हमने कल इसी प्रोग्राम में विशेष एक संस्कार को परिवर्तन करने की विधि, जिसका कारण हम दूसरों को मानते हैं, दूसरे के कारण हम अपने आप को बदल नहीं पाते या इसके कारण ऐसा हो रहा है, कारण बताने के कारण हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, रियलिटी क्या है, वो हमने समझने की कोशिश की कल के एपिसोड में। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अब जब दूसरों के बारे में जब हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में आती है। अब घर को ही ले लीजिए, सास और बहू के रिश्तों में समन्वयता या फिर असमानता भी होता है या फिर कभी कभी जो है बड़ी मुश्किल भी होती है और कहा बहुत अच्छा जो है चीज़ें बन जाती हैं। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कार परिवर्तन के अंदर ये भी एक विषय आता है। तो आज सास और बहू के रिश्तों में समन्वयता इस विषय को लेकर बात करने वाले हैं और हमेशा की तरह राजेश सर हमारे साथ हैं और आज के इस प्रोग्राम में वो इस विषय को लेकर अपने विचार हमारे साथ साझा करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, थैंक यू वेरी मच
0: जी। राजेश जी, मैं चाहूँगा कि आप, जैसे कि आज जो विषय है संस्कार परिवर्तन के अंतर्गत, हम सास और बहू के रिश्ते में समन्वयता इस विषय पर क्यों बोलना चाहते हैं?
1: देखिए, भारत की संस्कृति ऐसी है जहाँ पर कि हमारी जो परिवार है एक तरह की कंबाइंड फैमिली है, जहाँ पर बेटा और बहू, माँ बाप और जो लड़का होता है उसके भाई बहन छोटे हैं बड़े हैं, या अगर वो मैरिड भी हैं तो भी काफ़ी परिवारों में लोग इकट्ठे रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन भारत में देखा गया है कि ये जो खास रिश्ता है परिवार में सास और बहू का, ये कहते हैं कि एक तरह की घर घर की कहानी बन गई है। जैसे कि सास और बहू के रिश्ते में ज़्यादातर कोई ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, दरार रहती है, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो जब दोनों में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं तो परिवार में भी तनाव रहता है, चिंता रहती है, परेशानी रहती है। जो हस्बैंड है उसको भी टेंशन रहती है, क्योंकि व्यक्ति तो सारा दिन, भारत में जैसे कल्चर है कि जो भाई हैं या जो लड़के हैं वही काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और वही पैसा कमा करके लाते हैं घर में, जिससे घर जो है चलता है। लेकिन एक व्यक्ति सारा दिन बाहर रह के घर में आता है कि घर में सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है तो उसको सुकून और आराम और रिस्पेक्ट ना मिलने की बजाय कुछ और ही सुनना पड़ता है। तो जिससे परिवार का जो हम कहेंगे एक, जिसको हम कहते हैं भारतीय परिवार या जिसको हम कहते हैं कि परिवार बना ही क्यों था, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए ये संबंध जो है ये सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा खबरों में रहता है कि सास और बहू या कहेंगे घर घर की कहानी। तो अगर ये संबंध दोनों का ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ परिवार जो है एक खुशहाल परिवार हो सकता है और एक बहुत अच्छा माहौल जो हमारे बच्चों को चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अच्छे संस्कारों के लिए, अगर बच्चों को ऐसा माहौल मिल जाए। लेकिन उसका आधार मैं समझता हूँ वो मुख्यतः सास और बहू का, इसलिए आज विशेष हमने इसको चर्चा में लिया है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हर घर में जो है सास और बहू का एक रिलेशनशिप बना रहता है और कई बार इन दोनों को जो है लोग जो है मेन एक मुद्दा बन जाता है, जहाँ पर एक एक व्यक्ति है जो उसी घर में रहते हैं और एक नया मेहमान उनके सामने आ जाता है, तो उन दोनों के संस्कारों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। कभी कल्चर अलग होता है, कभी भाषा अलग होता है, कभी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती है और फिर उनका मेन जो है तालमेल बिठाना या तालमेल के साथ एक नए रिश्तों को अपनाना, ये अपने आप में दोनों के लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में कैसे वो चीज़ें बनती हैं, तो यहाँ पर संस्कारों का टकराव होना सहज है। लेकिन उसे एक अगर मेडिटेशन या फिर हम लोग इस तरह की जो बातें पिछली बार हमने खुद के बारे में थोड़ा सा खुद का एहसास, खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में आप क्या बनना चाहते हैं या आपका क्या लाइफ में आप किस तरह से जीना चाहते हैं, इस तरह की बातें जो आपने बताई थी शायद वो काम करती है। तो कैसे हम लोग जो है दोनों जो है डिफरेंट कल्चर वाले लोगों को एक साथ एक जगह पे रहना है और लंबा समय तक रहना है तो बड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें क्या कौन कैसे चेंजेस करे?
1: तो जैसे आपने कुछ बातें बताई कि संस्कार दोनों के अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक परिवार में, जैसे सास तो उसी घर में रहती है लेकिन बहू को अपना घर छोड़ के आना पड़ता है, और जिस घर में वो रहती है उनके संस्कार अलग होते हैं, और जिन लोगों के साथ वो रहती है अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहती है उन सबके संस्कार अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनके टेस्ट अलग है, उनका पहरावा अलग है। तो एक परिवार को दूसरे परिवार में छोड़ कर के जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने आप को एडजस्ट करना। और उसमें प्यार की भी बहुत आवश्यकता होती है कि एक जो लड़की है अपना घर छोड़ के अगर दूसरी जगह जाती है तो वो किस लिए जाती है? तो वास्तविकता में देखा जाए तो हस्बैंड के प्यार के लिए जाती है, और प्यार के लिए हम जिंदगी में सब कुछ करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ हम कुर्बानी भी देते हैं, त्याग भी करते हैं, कुछ भी छोड़ते हैं, तो हमें वो छोड़ना नहीं लगता बल्कि पाना लगता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ प्यार एक ऐसी चीज़ है, जैसे भारतीय अगर आप मूवीज़ को भी देखें तो 99% मूवीज़ जो है लव के ऊपर बनी हुई हैं, और प्यार के कारण वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, धन दौलत को भी छोड़ देते हैं, इवन दुनिया छोड़ने को भी वो क्या जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए एक लड़की अपना घर छोड़ के इसलिए आती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसको अपने हस्बैंड से इतना प्यार मिले कि वो अपने घर वालों को याद नहीं करे, अपने भाई बहनों को माँ बाप को याद नहीं करे। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ऊंच नीच हो रही है, कोई ना कोई हम कहते हैं कि दरार पड़ रही है, तो उसका कारण क्या है? तो देखा जाए उसका कारण भी प्यार ही है।
2: बिल्कुल,
1: कैसे प्यार है और उसके पीछे क्या कारण है? जैसे वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड उससे ज्यादा प्यार करे, और वहीं माँ है, माँ ने अपने बच्चे को भी बड़े प्यार से पाला होता है बचपन से, उसको उसके आदतों की, उसके संस्कारों की, उसके खाने पीने की, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, माँ को सबसे सब कुछ पता होता है। तो माँ ने भी अपने जिंदगी का बहुत एक अभिन्न हिस्सा जो है अपने बच्चों को पालने के लिए जो है व्यतीत किया होता है, और माँ का भी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो माँ भी अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, और वही पत्नी के लिए वही बेटा जो है उनका पति है तो वो भी उसको बहुत प्यार करती है। तो यहाँ देखें तो ये दरार, मैं समझता हूँ पहला जो मुख्य कारण है, संस्कार तो वन ऑफ द मेन रीजंस है ही हैं, लेकिन उससे भी जो बड़ा कारण है वो शायद क्योंकि दोनों ही एक व्यक्ति को प्यार कर रहे हैं। व्यक्ति एक है, एक के लिए वो हस्बैंड है और एक के लिए क्या है वो बेटा है। अब दोनों ही प्यार करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि उन दोनों में जेलसी है, क्योंकि प्यार दोनों में है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं हस्बैंड एक है लेकिन उनकी दो बीवियां हैं, हस्बैंड तो एक है, वो दोनों अपने हस्बैंड को प्यार करती हैं लेकिन आपस में उनकी जेलसी होती, ईर्ष्या होती है। तो मैं समझता हूँ इसका थोड़ा बहुत कारण जो है कहीं ना कहीं जेलसी है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या है कि वो चाहती हैं कि एक बेटे को अपनी तरफ खींचती है माँ के बेटा मेरा कहना माने, क्योंकि जैसे ही शादी होती है पहले बेटा जो है वो ज़्यादा समय अपनी माँ को देता है, उसे अपने मन की हर बात को करता है और माँ की बात को सुनता भी, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। तो हमेशा ही माँ का अपने बच्चे के ऊपर अधिकार रहता है, लेकिन जैसे ही एक और बेटी घर में आ जाती है, पत्नी आ जाती है, तो उसका प्यार थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो जैसे ही प्यार डाइवर्ट होता है तो और जो बेटा है वो अपनी पत्नी को भी, पति है अपनी पत्नी को भी टाइम देता है, उसकी भी बात को सुनता है, उसकी भी बात को मानता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दोनों में एक कंपटीशन हो जाता है, एक हम कहेंगे कि कंपटीशन हो जाता है कि वो मेरे को ज़्यादा समय दे, मेरी बातों को ज़्यादा सुने, मेरे को ध्यान दे। इस तरह माँ को भी लगता है कि नहीं, ये बेटा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, पहले तो मेरे पास बैठता था, अभी तो मेरे पास पाँच मिनट के लिए नहीं बैठता, हमारी तो बात ही नहीं सुनता है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारण जो है दोनों में एक तरह की जेलसी है, और उस जेलसी के कारण ही फिर जब संस्कार उनके अलग अलग होते हैं तो संस्कारों में भी टकराव आ जाता है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि मान लीजिए एक पर्सनैलिटी है जिसको सफाई बहुत पसंद है और दूसरी पर्सनैलिटी ऐसी है जो सफाई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उस ईर्ष्या को एक दूसरे में कहेंगे कमियां कमज़ोरियां निकालने में वो जो है वो लग जाते हैं। लेकिन उसका जो रीज़न बिहाइंड होता है वो ये होता है कि वो ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या की जगह अगर दोनों आपस में प्यार रखें, क्योंकि उस ईर्ष्या के बीच में बेटा भी बेचारा फंस जाता है, और जो घर आएगा तो माँ क्या करेगी, बहू की गलतियाँ निकालेगी, बहू की बुराइयाँ करेगी। वही माँ पहले बेटे से पूछती थी कि बेटा क्या हुआ, तुझे आज ऑफिस में खाना मिला, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, प्यार से बात करती थी। लेकिन आज वही बेटा घर में आ रहा है तो माँ उसके बारे में नहीं पूछ रही है, लेकिन क्या बता रही है, बहू ने ऐसा किया, बहू ने वैसा किया, आज उसने सब्जी ठीक नहीं बनाई, आज उसने ये नहीं किया, आज उसने मेरे से बात नहीं की, है ना, आज उसने घर की सफाई अच्छी तरह से नहीं की। तो बेटा ऑलरेडी दुखी होके थका हारा हुआ वो काम पे घर आता है, और जैसे ही वो घर आता है तो उसका भी जीवन क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो पत्नी क्या बात करती है, तुम्हारी माँ मेरे से अच्छी तरह व्यवहार नहीं करती, मेरे से प्यार नहीं करती, उसने आज ये कर दिया ये कर दिया। तो दोनों तरफ उसको क्या सुनने को मिल रहा है, एक दूसरे की कमी कमजोरियाँ, एक दूसरे के ताने सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन ये खींचातानी जो है ये जेलसी की वजह से है, ईर्ष्या की वजह से है। अगर सास भी अच्छी तरह ये समझ ले कि अगर हम आपस की जेलसी को ख़त्म कर दें, अगर बहू भी अच्छी तरह ये समझ लें कि हम एक दूसरे की जेलसी को ख़त्म कर दें, तो हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा हो सकता है, सारे बहुत सुख से रह सकते हैं। तो पति को भी पत्नी का प्यार मिलेगा और बेटे को भी माँ का जो है वो प्यार मिलेगा। तो मेन कॉज जो है वो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, रूट कॉज को समझना हमको जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब वो ये समझ जाते हैं तब तो ठीक है, संस्कार जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि संस्कारों को बदला जा सकता है, जिस विधि से हमने बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बताएंगे कि हमने जो पिछले एपिसोड में विधि बताई थी उस विधि के ऊपर प्रयोग किया। एक बहन थी और उसको लग रहा था कि मैं जिस घर में शादी करके आई हूँ पिछले 20 साल से रह रही हूँ, लेकिन मेरे को पिछले 20 साल से जो मेरे सास ससुर हैं उन्होंने मेरी जो रिस्पेक्ट बनती है आज तक मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी। नो डाउट वो बूढ़े हैं, उनको उनकी सेवा तो करनी पड़ती थी, उनको भोजन भी खिलाना पड़ता था, पानी भी देना पड़ता था, लेकिन मन में वो हीन भावना लेकर के उनकी सेवा करती थी, खिजके उनकी सेवा करती थी, ये लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये लोग मेरी इज्जत नहीं करते जो मैं डिज़र्व करती हूँ, इन्होंने मुझे आज तक वो मान शान नहीं दिया या वो रुतबा नहीं दिया घर में जो मेरा होना चाहिए था। फिर हमने जब उनको बताया कि आप ये वाला प्रयोग करके देखो, आप ये समझो कि मुझे उनकी मदद करनी है, उनके संस्कारों को बदलना है, क्योंकि उसको लगता था कि मैं कुछ भी करती हूँ, सब्जी अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो

0: मेरी सास मेरे को ताने मारती है ना, तो उनको ना देख करके, क्योंकि वो क्या करती थी, जैसे ही सास के पास जाती थी उसका चेहरा देखती थी तो उसका मन नेगेटिव हो जाता था। और भले उसको मजबूरन में काम तो करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही अपनी सास का चेहरा देखती थी मन नेगेटिव, मन नेगेटिव। तो उसकी सास ने जो उसको नेगेटिव बातें बोली वो उसको याद आ जाती थी। ऐसे ही सास के साथ भी यही होता था, और दोनों का झगड़ा चलता ही रहता था, किसी न किसी बात पे होता था। लेकिन एक व्यक्ति ने ये धारण किया, क्योंकि भारत में कल्चर ये है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना छोटों का फर्ज होता है। तो बहू ने जब ये सोचा कि मुझे बदलना है, मुझे इनकी मदद करनी है, बल्कि मुझे रिस्पेक्ट इनको देनी है, ना कि लेनी है, क्योंकि एक नियम है देना ही लेना है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो बदले में क्या मिलता है, आपको भी रिस्पेक्ट मिलती है ना। किसी को आप झुक के पेन देंगे तो अगला व्यक्ति भी झुक जाएगा। अगर आप पहले किसी को नमस्कार करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगला व्यक्ति भी आपको नमस्कार करता है। अगर आप किसी व्यक्ति से इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं तो वो भी इंग्लिश में बोलना शुरू करता है। आप हिंदी में बात करेंगे वो हिंदी में बोलना शुरू करेगा। तो पहल आपको करनी है, क्योंकि आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो हमने देखा कि वो जो बहू थी उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया कि अपनी जो सास थी उसके सबसे पहले गुण देखे कि इसमें, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं गुण तो होते ही, हमने उनको बोला कि आप उनके गुण देखो, तो उसने कहा गुण तो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सफाई पसंद है, घर का बहुत ध्यान रखती है, जब हम बाहर जाते हैं हस्बैंड वाइफ तो बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों को खाना बना के देती है, और जब नौकरानी घर में आती तो उससे काम भी करवाती है, तो बहुत अच्छे गुण हैं उनमें। तो उन्होंने उनके गुणों को देखा, तो फिर उनको बोला कि अभी आप जब भी उनके सामने जाओ तो उनके गुणों का चिंतन करना और मुख से कुछ मत बोलना। तो उन्होंने साइलेंस रखी, मुख से कुछ नहीं बोला और उनके गुणों का चिंतन किया। जैसे गुणों का चिंतन किया तो उन्होंने पाया कि मन तो पॉजिटिव हो गया, और उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे इनकी मदद करनी है। तो बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों की मदद करनी, बेचारे बूढ़े होते हैं, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, चल नहीं पाते हैं, कई तरह की तकलीफें होती हैं, उसके कारण वो बेचारे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और चिड़चिड़ा होने के कारण बहू से भी ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन वो बेचारी समझ नहीं पा रही थी कि वाई दे आर वो मेरे से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब उसको बताया कि अपने ऊपर आपको ध्यान देना है, तो फिर उन्होंने कहा मुझे इनकी मदद करनी है। फिर उन्होंने एक स्ट्रांग संकल्प लिया कि मैं एक महान जो है व्यक्ति हूँ, और इस महानता के आधार पर मुझे महान कार्य करने हैं। तो इस भाव से, एक सेवा भाव से, रिस्पेक्ट भाव से उसने कि ये मेरे माँ बाप की तरह हैं, मुझे इनकी सेवा करनी, ना कि मुझे मजबूरन करना पड़ता है, ये तो मेरे को ताने मारते हैं, मन में नेगेटिव भाव लेके नहीं, पॉजिटिव भाव से जब उसने करना शुरू किया, और एक बार नहीं दो बार नहीं, कंटिन्यूसली 9-10 बार किया, तो जैसे उसने करना शुरू किया तो सास के भी मन में आया, अरे ये तो बदल गई है, इसके शब्दों में परिवर्तन आ रहा है, और उसकी जो मन की फीलिंग्स थी वो टच होती, क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो जो भाव दूसरों पर पहुंचते हैं, वो भाव दूसरों को बदलते हैं। तो उसने पाया कि जो उसने 10 बार बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि यहाँ तो कई बार हमें स्वार्थ होता है तो हम सास की सेवा करते हैं, आपने बाहर जाना है, अपने मायके जाना है, माँ बाप के पास तो आप थोड़ा बहुत उनके आगे पीछे घूमते हैं कि आपको छुट्टी मिल जाए, लेकिन जब आप निस्वार्थ उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उसने पाया कि उसकी सास ने भी उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। वो जो एक रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन रख रही थी पिछले 20 साल से, जो आज तक उसको मिली नहीं थी, तो बस 21 दिन उसने इसका प्रयोग किया और उसने पाया कि वो रिस्पेक्ट जो 20 साल से मांग रही थी, आज बिना मांगे ही उसे वो रिस्पेक्ट जो है मिल रही है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर एक व्यक्ति बदलता है तो दूसरा भी
1: आसानी से बदल जाता है। जी राजेश जी, काफ़ी अच्छा एग्जांपल देखिए आपने बताया, सास और बहू के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे हम लोग सम अप कर सकते हैं, उसे कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये आपने बताया। और बात यह है कि रिलेशनशिप दोनों तरफ से जो है वैसे के वैसे ही है, लेकिन हम जब नए रिश्ते में जुड़ जाते हैं तो हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में ही बने रहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। तो बात सुनने के बजाय अगर हम लोग उस चीज़ को समझे और समझने के बाद उसके साथ हम लोग अगर जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि अगर हम सास को ही अपना माँ समझे और उनको हेल्प करना शुरू कर दें तो सिंपल है कि वो सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाती हैं, और उनको भी अच्छा लगता है कि ये तो मेरी बेटी जैसा है और मेरी सेवा करती है, तो उन्हें भी जो है नेगेटिव ख़त्म हो जाता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, जैसे आपने बहुत ही सिंपल उदाहरण देके बताया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कुछ बातें आपसे शेयर किया, जैसे बहुत सारे अलग अलग रिलेशनशिप है और उसमें मेन मुख्य जो रिलेशनशिप आता है सास और बहू का, जिसके ऊपर हमने आज चिंतन किया। तो चलिए जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप भी अगर इन विषयों को अच्छी तरह से समझने लगे हो और आपको एक कार्यक्रम के माध्यम से कुछ नया इंसाइट मिलता है, आत्मचिंतन करने का मौका मिल जाता है, आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना मैसेज करिए या फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आशिया।
1: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, आज विशेष दिन है, 21 तारीख है, जहाँ 21 हमारे लिए शुभ होता है, क्योंकि 21 लड्डू का, मोदक लड्डू का गणेश जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। और गणेश जी के साथ 21 लड्डू रखने का मतलब यही है कि भाई आप ऐसा कुछ ईश्वर के प्रति बलिहार जाओ कि आपको 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए 21 का जो है, 21 लड्डू का भोग जो है गणेश जी को लगाया जाता है। तो 21 तारीख की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज बलदेव छठ और ललित पष्टी भी है, सूर्य पष्टी भी, और इसके साथ में विश्व अल्जाइमर दिवस है, विश्व शांति दिवस है, विश्व आभार दिवस भी आज है। और देखा जाए तो आज बोला पासवान, शास्त्री गायिका नूरजहां, अन्नपूर्णान आजरा, अच्छंग राय, नवल किशोर ढेबर, स्वामी अग्निवेश, जितेंद्र अभिषेकी, महेंद्र मुंजार पारा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही सवाई जय सिंह, अमरनाथ विद्या अलंकार, रामानुजन प्रसाद सिंह, राजू श्रीवास्तव, इन सभी का पुण्य दिवस है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज विशेष सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात के एक ही क्यों ना बजे हो, है ना। इसीलिए कहा जाता है जो चीजें रुचिकर है उन्हीं पे काम कीजिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, लीजिए ये प्यारा गीत आपके नाम, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए विश्व आभार दिवस के बारे में बात करते हैं। ये विशेष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन हमें उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करने का मौका देता है जिन्होंने हमारे देश और जीवन को सजाने संवारने में अपना योगदान दिया है। विश्व आभार दिवस निजी और संस्थागत दोनों तौर पर मनाया जा सकता है। हर कोई चाहता है कि उनके काम की तारीफ हो, ऐसे में विश्व आभार दिवस से अच्छा दिन नहीं हो सकता। और आइए इसकी शुरुआत या फिर इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं। 1965 में अमेरिका के हवाई राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समूह जमा हुआ। वहाँ इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि हर साल एक ऐसा दिन रखा जाए जब लोग एक दूसरे के अच्छे कार्य पर आभार व्यक्त कर सकें, अपने को धन्यवाद कह सकें। और इसके लिए 21 सितंबर का दिन चुना गया। और जब ये लोग अपने अपने देश वापस गए तो साल 1966 में 21 सितंबर को विश्व आभार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। उसके बाद इसके मनाने वालों की संख्या धीरे धीरे तेजी से बढ़ती गई और आज विश्व के करोड़ों लोग 21 सितंबर को इसे मनाते हैं। इसे मनाने का सबसे मुख्य कारण है पूरे वैश्विक समुदाय को एक साथ लाना। इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसके काम की तारीफ करे। अब ये अलग बात है कि कौन किसका कैसे तारीफ करे, ये सोचना पड़े। तो आइए इसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। यूँ तो किसी की तारीफ करने और आभार व्यक्त करने की कई सैकड़ों तरीके हैं और उसके लिए कोई समय या सीमा निर्धारित नहीं हो सकता। हम अपने रिश्तेदारों को या माता पिता, दोस्तों और भाई, कई लोगों का आभार व्यक्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में हर पल हमारे साथ चल रहे हैं। घरों में अवसर पालतू जानवर रखते हैं, घर के अंदर जो जानवर रखते हैं हम लोग, वो हमारे मनोरंजन का साधन होता है, साथ ही हमारे घर की रखवाली भी करते हैं। हम 21 सितंबर को उनके साथ कुछ पल बिताकर और खेल कर उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पर्यावरण को भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से हमें शुद्ध हवा मिलती है हम पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण का आभार व्यक्त कर सकते हैं। अपने परिवार का आभार व्यक्त करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उनके साथ बैठकर खाना पीना करें और अपने उनके साथ अपने अनुभवों को साझा करें। जिन लोगों को भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनके साथ समय बिताना और उन्हें धन्यवाद कहना सबसे बेहतर होगा। आप चाहे तो घर में एक आभार पत्रिका की शुरुआत कर सकते हैं। ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक शानदार अनुभव होगा। ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए आप वैसे लोगों का साथ समय बिताते हैं जो परेशान हैं, या वैसे लोग जिनकी झोली में खुशियां बहुत कम आती हैं। अनाथालय या वृद्धाश्रम इसके लिए सबसे बेहतर जगह है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। आभार और धन्यवाद पर विश्व के सबसे बड़े शोधकर्ता रॉबर्ट इमांस का मानना है कि हर मनुष्य चाहता है कि उसके काम और मेहनत के बदले लोग उसकी तारीफ करें और उसको धन्यवाद कहें। रॉबर्ट बताते हैं कि जब आप किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो वो मनुष्य मानसिक तनाव से मुक्त होता है, उसे नींद अच्छी आती है, साथ ही शारीरिक परेशानियों से वो दूर रहता है। इन वजहों से वो डॉक्टर के पास भी बहुत कम जाता है। आभार प्रकट करने से मनुष्य के अंदर आत्मबल आता है। आप भी आज के दिन अपने तमाम चाहने वालों का ज़रूर आभार व्यक्त करें और साथ ही शुभकामनाएं भी दें। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें आभार दिवस के बारे में, विश्व आभार दिवस के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे की आप सभी को विश्व आभार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सुनते हैं प्रतिक्रिया देते हैं और आप सुनते हैं प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए हम खुश होते हैं। हमारी खुशी को बढ़ाने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए। आभार दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइए। एक शांति दिवस भी आज के दिन है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। ये दिवस सभी देशवासियों को और लोगों के बीच आज़ादी, शांति, स्वतंत्रता और खुशी का एक आदर्श माना जाता है। विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। शांति सभी को प्यारी होती है, इसकी खोज में मनुष्य अपना अधिकांश जीवन न्यौछावर कर देता है, किंतु ये काफ़ी निराशाजनक है कि आज इंसान दिन प्रतिदिन इस शांति से दूर होता जा रहा है। आज चारों तरफ फैले बाजारवाद ने शांति को व्यक्ति से और भी दूर कर दिया है। पृथ्वी, आकाश व सागर सभी अशांत हैं। स्वार्थ और घृणा ने मानव जाति को, समाज को विखंडित कर दिया है। यूं तो विश्व शांति का संदेश हर युग और हर दौर में दिया गया है, लेकिन इसको अमल में लाने वालों की संख्या बेहद कम रही है। 1982 से शुरू होकर 2001 तक सितंबर महीने का तीसरा मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस के रूप में चुना गया है, लेकिन वर्ष 2002 से इसके लिए 21 सितंबर का दिन घोषित कर दिया गया था और 2012 के विश्व शांति दिवस की थीम थी धारणीय भविष्य के लिए धारणीय शांति। उद्देश्य यही है, संपूर्ण विश्व में शांति कायम करना आज संयुक्त राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ को रोकने और शांति की संस्कृति विकसित करने के लिए यूएन का जन्म हुआ। संघर्ष, आतंक और अशांति के इस दौर के अमन में अहमियत का प्रचार प्रसार करना बेहद जरूरी और प्रासंगिक हो गया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी तमाम संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी और राष्ट्रीय सरकारें प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन करती हैं। शांति का संदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और खेल जगत के विख्यात हस्तियों को शांति दूत भी नियुक्त कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दशक पहले ये दिन सभी देशों और उनके निवासियों में शांतिपूर्ण विचारों को समृद्ध बनाने के लिए समर्पित किया था। भारत और विश्व शांति की बात हमेशा किया जाता है, वहीं इसके बारे में आगे और बातें आपसे शेयर करता हूं, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और आप भी विश्व शांति के इस दिवस को कैसे मनाया जाए, आप क्या कर सकते हैं, अपने घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, विश्व शांति दिवस की बातें कर रहे थे हम लोग। इसका मेन उद्देश्य यही था कि विश्व शांति दिवस भारत में विशेष विश्व शांति और अमन स्थापित करने के लिए 5 मूल मंत्र दिए गए थे और पंचशील के सिद्धांत भी कहा जाता है। पंचसूत्र, जिसे पंचशील भी कहते हैं, मानव कल्याण के लिए विश्व शांति के आदर्शों को स्थापित करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत बनाए गए थे। और वो सिद्धांत इस प्रकार थे। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभु सत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई ना करना, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप ना करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। अगर विश्व उपरोक्त ये सारी 5 बिंदु पर अमल करे तो हर तरफ चैन और अमन का वास होगा। इसके लिए सफ़ेद कबूतर का उड़ना विश्व शांति के उपलक्ष में हर देश में जगह जगह सफ़ेद रंग के कबूतरों को उड़ाया जाता है, जो कहीं ना कहीं पंचशील के सिद्धांतों को दुनिया तक फैलाते हैं। और विश्व शांति के अवसर सफ़ेद कबूतर उड़ाने का परंपरा बहुत पुरानी है। इन कबूतरों को उड़ाने के पीछे एक शायर का शेर बहुत ही यादगार है, विचारणीय है। लेकर चले हम पैगाम भाईचारे का, ताकि व्यर्थ खून न बहे किसी वतन के रखवाले का। क्या बात है। लेकर चले हम पैगाम भाईचारे का, ताकि व्यर्थ खून न बहे किसी वतन के रखवाले का। आज कई लोगों का मानना है कि विश्व शांति को सबसे बड़ा खतरा साम्राज्यवादी आर्थिक राजनीति की चाल से है। विकसित देश युद्ध की स्थिति उत्पन्न करते हैं ताकि अन्य सैन्य साजो सामान बिक सके। एक ऐसा कड़वा सच है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज सैन्य साजो सामान उद्योग विश्व में बड़े उद्योग के तौर पर उभरा है। आतंकवाद को अलग अलग स्तर पर फैलाने, विकसित देश इससे निपटने के हथियार बेचते हैं और जिसके जरिए संपत्ति जमा करते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान, ईरान और इराक जैसे देशों में हुए युद्धों को विशेषज्ञ हथियार माफियाओं के लिए एक फायदे का मेला मानते हैं। उनके अनुसार दुनिया में भय और आतंक का माहौल खड़ा करके ही सैन्य सामान बेचने वाले देश अपनी चांदी कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। ये कड़वा सच है, इसे हम सभी को समझना है। आज प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना होगा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव कल्याण की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। भाषा, संस्कृति, पहनावे विभिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विश्व के कल्याण का मार्ग एक ही है। मनुष्य को नफरत का मार्ग छोड़कर प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। शांति के महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया है कि हर 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाए। इस सदी में विश्व में फैली अशांति और हिंसा को देखते हुए हाल के सालों में शांति कायम रखना मुश्किल ही लगता है, किंतु उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही वह दिन आएगा जब हर तरफ शांति ही शांति होगी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हैं नूरजा की कहानी सुनने के बाद। अब मैं आपको अन्नपूर्णा आनंद के बारे में बात करते हैं और ये हिंदी के बहुत ही हास्य लिखने वाले कलाकारों में सबसे आगे थे। 22 वर्ष की आयु में ही साहित्य के क्षेत्र में इनका पहला निबंध खोपड़ी बहुत ही पॉपुलर हास्य वाला मतवाला प्रकाशित हुआ। मुख्य रूप से कहानियां लिखी इन्होंने जिनमें हास्य की योजना भाषा के स्तर पर परिस्थितियों का विडंबना पर आधारित रहती है। हिंदी के शिष्ट हास्य रस के साहित्य को ऊंचा उठाया। अन्नपूर्णा आनंद लिखते बहुत कम थे पर जो कुछ लिखा वो समाज के प्रति मीठी चुटकुलियाँ लिए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए किसी के प्रति द्वेष या मत्सर न रखकर समाज को जगाने के लिए लिखा। उनका हास्य कोरे विदूषकत्व के बिना कोटि का था, भिन्न कोटि का था। और अन्नपूर्णा आनंद काशी उत्तर प्रदेश के निकासी थे। उन्होंने अधिकांश कहानियों में काशी नगर के वातावरण को मूर्तिमान किया है। लेकिन स्वयं बराबर काशी में ही रहे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई संपूर्ण आनंद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके साथ लखनऊ में भी रहे। अन्नपूर्ण आनंद ने कुछ रचनाएं की थी, मन मयूर, मेरी हजामत, मंगल मोद, मगन राहु चोला, महाकवि चचा, पंडित विलासी मिश्र, इन सभी की जो रचना है ये इन्होंने किया। अन्नपूर्ण आनंद ने पंडित मोतीलाल नेहरू के पत्र इंडिपेंडेंट में कुछ समय श्री प्रकाश के साथ काम किया और फिर अन्नपूर्ण आनंद दानवीर शिवप्रसाद गुप्त ने निजी सचिव थे गुप्त जी के साथ ही अपने संसार भ्रमण भी किया था। तो ये थी कुछ खास बातें अन्नपूर्ण आनंद के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ और ये गीत आपको खुशी देगा, आपकी खुशी को बढ़ाते रहे ऐसे शुभ आशा के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए एक विशेष स्वामी जी के बारे में बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। 21 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनेता और आर्य समाज थे। आर्य समाज का काम करते करते 1968 में उन्होंने आर्य सभा नामक एक राजनीतिक दल बनाया। बाद में 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना उन्होंने दिल्ली में की। स्वामी अग्निवेश ने हरियाणा से चुनाव भी लड़ा और मंत्री भी बने, लेकिन मजदूरों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद उन्होंने राजनीति से बिल्कुल इस्तीफा दे दिया। बंधुआ मजदूरों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले, नोबल जैसा सम्मानित समाज जाने वाला राइट लवलीहुड अवार्ड ये पा चुके स्वामी अग्निवेश व्यक्तित्व को लेकर कई तरह की राय रही है। आइए, स्वामी अग्निवेश का जन्म आज ही के दिन 1939 को मद्रास चेन्नई में हुआ। दक्षिण भारतीय परिवार में जन्मे स्वामी अग्निवेश शिक्षक और वकील रहे, मगर साथ ही उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम के एंकर की भूमिका भी निभाई और रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रहे। 1970 में उन्होंने एक राजनीतिक दल आर्य सभा की शुरुआत की थी। आपत्तकाल के बाद हरियाणा में बनी सरकार में वे मंत्री भी रहे। आर्य समाजी होने के कारण वे मूर्ति पूजा और धार्मिक कुरीतियों का हमेशा विरोध करते रहे। कई बार ऐसी बातें खुलकर कही जो धार्मिक लोगों को बहुत चोट लग सकती है। रूढ़वादी और जातिवादी के विरोध इनका संघर्ष हमेशा रहा है। बंधुआ मजदूरों के खिलाफ स्वामी अग्निवेश की दशकों की मुहिम तो जग जाहिर है। उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की शुरुआत की और हमेशा ही रूढ़वादिता और जातिवाद के खिलाफ लड़ने का दावा करते रहे। 80 के दशक में उन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। स्वामी अग्निवेश ने दिल्ली का एक हॉस्पिटल में शुक्रवार के दिन 11 सितंबर 2020 की शाम को अंतिम सांस ली। उन्हें लीवर से जुड़ी बीमारियां इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था और इलाज कर ही रहे डॉक्टरों की टीम ने बताया कि लीवर सिरोसिस से पीड़ित स्वामी अग्निवेश ने कई प्रमुख अंगों ने काम करना बंद कर दिया था उस समय, जिसकी वजह से उनका अंतिम वक्त में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जावेद अख्तर ने स्वामी अग्निवेश के निधन पर अपने ट्विटर पर लिखा था कि इस दुनिया ने स्वामी अग्निवेश के रूप में एक महान इंसान को खो दिया है। बंधुआ मजदूरों के खिलाफ उनकी आवाज ने लाखों पुरुष, महिलाओं और बच्चों को एक नया जीवन दिया था। गुड बाय स्वामी जी करके मैसेज किया है जावेद अख्तर साहब ने। तो चलिए, ऐसे विशेष व्यक्ति की कहानी आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। अब आइए मैं आप सभी को सीधे ले चलता हूं, नूरजहां के बारे में बात करते हैं। जी हां, भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्री और गायकों में से एक थी। इनका नाम वास्तव में अल्लाह वसई था। दक्षिण एशियाई की महानतम गायिकाओं में शुमार की जाने वाली मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां को लोकप्रिय संगीत में क्रांति लाने और पंजाबी लोकगीतों को नया आयाम देने का श्रेय जाता है। उनकी गायकी में वो जादू था कि हर उदयमन गायक के प्रेरणा सूत्र। स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने भी जब अपने करियर का आगाज किया तो उन पर नूरजहां का गायकी का प्रभाव था। नूरजहां अपनी आवाज में नित्य नए प्रयोग करती थी। अपनी इन खूबियों की वजह से ही वे ठुमरी गायिका की महारानी कहलाने लगी। तो आइए इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं विस्तार से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: भारतीय सिने जगत की मल्लिका ए रन्नुम के नाम से मशहूर पार्श्व गायिका अल्हावासी उर्फ नूरजहां ने अपनी आवाज में जिन गीतों को पिरोया वे आज भी जादू बिखेरते हैं। पंजाब के एक छोटे से कस्बे कसूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जब नूरजहां का 21 सितंबर 1926 को जन्म हुआ तो नवजात शिशु के रोने की आवाज को सुन बुआ ने कहा, इस बच्ची के रोने में भी संगीत की लय है। नूरजहां के माता पिता थिएटर में काम किया करते थे। घर में फिल्मी माहौल के कारण नूरजहां का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर हो गया था। नूरजहां ने यह निश्चय किया कि बतौर पार्श्व गायिका अपनी पहचान बनाएंगी। उनकी माता नूरजहां ने मन में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान को पहचान लिया, उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था घर पर ही कर दी। नूरजहां ने अपनी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कजान बाई से और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद गुलाम मोहम्मद तथा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से ली थी। वर्ष 1930 में नूरजहां को इंडियन पिक्चर के बैनर तले बनी एक मूक फिल्म हिंद के तारे में काम करने का मौका मिला। इसके कुछ समय के बाद उनका परिवार पंजाब से कोलकाता चला आया। इस दौरान उन्हें करीब 11 मूक फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। वर्ष 1931 तक नूरजहां ने बतौर बाल कलाकार अपनी पहचान बना ली थी। वर्ष 1932 में प्रदर्शित फिल्म शशि पन्नू नूरजहां के सिने करियर की पहली टॉकी फिल्म थी। इस दौरान नूरजहां ने कोहिनूर यूनाइटेड आर्टिस्ट के बैनर तले बनी कुछ फिल्मों में काम किया। कोलकाता में उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता पंचोली से हुई। पंचोली को नूरजहां में फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने उसे अपनी नई फिल्म गुले बकावली के लिए चुन लिया। इस फिल्म के लिए नूरजहां ने अपना पहला गाना साला जवानियां माने और पिंजरे देविच रिकॉर्ड कराया। लगभग 3 वर्ष तक कोलकाता रहने के बाद नूरजहां वापस लाहौर चली गईं। वहां उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार जीए चिश्ती से हुई जो स्टेज प्रोग्राम में संगीत दिया करते थे। उन्होंने नूरजहां से स्टेज पर गाने की पेशकश की जिसके एवज में नूरजहां को प्रति गाना 7.5 आने दिए गए। 7.5 आने उन दिनों अच्छी खासी राशि मानी जाती थी। वर्ष 1939 में निर्मित पंचोली की संगीतमय फिल्म गुले बकावली की सफलता के बाद नूरजहां फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित शख्सियत बन गई। इसके बाद वर्ष 1942 में पंचोली की ही निर्मित फिल्म खानदान की सफलता के बाद नूरजहान बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। फिल्म खानदान में उन पर फिल्माया गाना कौन सी बदली में मेरा चांद है आजा श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म खानदान की सफलता के बाद नूरजहान ने फिल्म के निर्देशक शौकत हुसैन से निकाह कर लिया। इसके बाद वह मुंबई आ गई। इस बीच नूरजहान ने शौकत हुसैन की निर्देशित नौकर जुगनू 1943 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। नूरजहान अपनी आवाज में नित्य नए प्रयोग किया करती थी। अपनी इन खूबियों की वजह से वह ठुमरी गायकी की महारानी कहलाने लगी। इस दौरान नूरजहान की दुहाई 1943, दोस्त 1944 और बड़ी माँ विलेज गर्ल 1945 जैसी कामयाब फिल्में प्रदर्शित हुईं। इन फिल्मों में उनकी आवाज का जादू श्रोताओं के सर चढ़कर बोला। इस तरह नूरजहान मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में मल्लिका ए तरन्नुम कही जाने लगी। वर्ष 1945 में नूरजहान की एक और फिल्म जीनत भी प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का एक कवाली आहे ना भरी शिकवे ना किए कुछ भी ना जुबा से काम लिया श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। नूरजहान को वर्ष 1946 में प्रदर्शित निर्माता निर्देशक महबूब खान की अनमोल घड़ी में काम करने का मौका मिला। महान संगीतकार नौशाद के निर्देशन में नूरजहान का गाए गीत आवाज दे कहाँ है आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे जवां है मोहब्बत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद नूरजहान ने पाकिस्तान जाने का निश्चय कर लिया। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार ने जब नूरजहान से भारत में ही रहने की पेशकश की तो नूरजहान ने कहा, मैं जहां पैदा हुई हूं वहीं जाऊंगी। पाकिस्तान जाने के बाद भी नूरजहान ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। लगभग 3 वर्ष तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के बाद नूरजहान ने फिल्म चैनवे का निर्माण और निर्देशन किया। उसने बॉक्स ऑफिस पर खासी कमाई की। इसके बाद वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म दुपट्टा ने फिल्म चैनवे के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। फिल्म दुपट्टा में नूरजहान की आवाज में सजे गीत श्रोताओं के बीच इस कदर लोकप्रिय हुए कि न सिर्फ इसे पाकिस्तान में बल्कि पूरे भारत वर्ष में भी इसने धूम मचा दी। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर रेडियो सिलोन पर नूरजहान की आवाज का जादू श्रोताओं पर छाया रहा। वर्ष 1963 में नूरजहान ने अभिनय की दुनिया से विदाई ले ली। वर्ष 1966 में नूरजहान पाकिस्तान सरकार की ओर से तमगाए इम्तियाज सम्मान से नवाजी गईं। वर्ष 1982 में इंडिया टॉकी के गोल्डन जुबली समारोह में नूरजहान को भारत आने का न्योता मिला। तब श्रोताओं की मांग पर नूरजहान ने आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है गीत पेश किया और उसके दर्द को हर दिल ने महसूस किया। वर्ष 1996 में नूरजहान आवाज की दुनिया से भी जुदा हो गई। वर्ष 1996 में प्रदर्शित एक पंजाबी फिल्म सखी बादशाह में नूरजहान ने अपना अंतिम गाना की दमदा भरोसा गाया। नूरजहान ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 1000 गाने गाए। हिंदी फिल्मों के अलावा नूरजहान ने पंजाबी उर्दू और सिंधी फिल्मों में भी अपनी आवाज से श्रोताओं को मदहोश किया। अपनी दिलकश आवाज और अदाओं से सबको मदहोश करने वाली नूरजहान 23 दिसंबर 2000 को इस दुनिया से रुखसत हो गई।
2: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और जाते जाते आप सभी के लिए एक छोटा से विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत। ओम शांति। सुनते रहो मस्कराते रहो।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और दोस्तों आज तारीख है 21 सितंबर यानी कि मंडे है और हफ्ते में हर हफ्ते में पहले दिन की जो शुरुआत होती है युवा मंच की वो हम करते हैं साइबर सिक्योरिटी की जानकारी के साथ। दोस्तों एक दुनिया है जिसमें हम फिजिकली रहते हैं, एक शहर है हमारे गाँव का नाम है जिसके नियम कायदे हमें मालूम है, जहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं उन्हें हम सालों से जानते हैं, लेकिन एक और दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं जिनसे ना हम कभी मिले हैं और ना कभी मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की दुनिया की, जहाँ के हम सब निवासी हैं क्योंकि हम यहाँ पे हर काम कर रहे हैं, हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, हम यहाँ पैसों के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम यहाँ गेम्स खेल रहे हैं और भी क्या क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो किसी भी गाँव में शहर में अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आप मिलते हैं उनके साथ करते हैं, वो सब इंटरनेट की दुनिया में हो रहा है, एक क्लिक पे हो रहा है। लेकिन बस अंतर ये है कि इस दुनिया के इस गांव के रहवासी इतने सारे हैं कि उन्हें जानना असंभव है। ऐसे में कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कैम्स के जरिए कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हमारा हथियार बन जाता है सिर्फ और सिर्फ एक, वो है जानकारी। और सही जानकारी जरूरी है आज के युग में जहां आपको व्हाट्सएप मैसेज यूट्यूब पे न जाने कितने लिंक्स रोज भेजे जाते हैं। सुबह अगर फोन उठा लें तो सबसे पहले तो ये लगता है अरे इन्होंने ये भेजा उन्होंने वो भेजा, तो अब उसमें क्या सही है क्या नहीं समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप रेडियो मधुबन पर ये जानकारी सुन रहे हैं तो ये शत प्रतिशत सही ही होगी, क्योंकि दोस्तों हम आपको साइबर सेफ की ओर लेकर जाते हैं, साइबर दोस्त की ओर लेकर जाते हैं। ये जो पहल है ये इंडियन साइबर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की है। जी हाँ, इसलिए आपको सही जानकारी मिलने की पूरी 100% गारंटी भी है। होम मिनिस्ट्री की ये पहल है, भारत सरकार की ये पहल है, इसलिए सही जानकारी आपको यहाँ जरूर मिलेगी। आप इसे किसी सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, बस सर्च कीजिए साइबर दोस्त। दोस्तों एक सेशन हुआ जिसपे बात हुई, बहुत सारी एप्स हैं जिसे आप डाउनलोड करते होंगे, लेकिन कुछ एप्स ऐसी हैं जो आपने डाउनलोड करी है लेकिन वो आपके फोन का ही पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं। कुछ फाइल्स डाउनलोड करने की परमिशन दे देती हैं, आपने ओके दबाया लेकिन आपके ओके दबाने के पीछे बहुत सारे नियम थे जो आपने पढ़े नहीं। इस चीज का फायदा उठाते हैं स्कैमर्स। कुछ एप्स ऐसी होती हैं जिनको आप डाउनलोड करते हैं, सोशल मीडिया में उनके ऐड आते हैं, आपको लगता है ये तो बड़ा अच्छा गेम है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, डाउनलोड कर लेते हैं। एपीके फाइल्स की दोस्तों पहले भी बात हुई थी और नोटिसेस भी आते होंगे आपके पास भी, मेरे पास भी आए। एपीके फाइल डाउनलोड ही नहीं करनी है, कई बार हम सेंसिटिव परमिशन दे देते हैं और वो फोन रिस्क में आ जाता है, आपका फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है आपकी बैंक की जानकारी है वो लीक हो सकती है, आपके

फोन की जो जानकारी है वो कहीं और पहुंच सकती है, आपके पासवर्ड्स लीक हो सकते हैं। अब इसमें घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सारी ऐप्स, मैक्सिमम ऐप्स सेफ हैं, सुरक्षित हैं, बस कुछ ही हैं जो इस तरह की गलत कर्म करते हैं। तो अब उनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, ये आपको पता चलेगा आज। लेकिन बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, इस ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपको बताएंगे मैलिशियस एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में, और एपीके का क्या स्कैम हो रहा है वो भी बताएंगे, वो भी एकदम वेरीफाइड सोर्स के माध्यम से। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओए रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओ अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: Welcome to this week's Cyber Safe Flight brought to you by CyberDose, the official cyber safety awareness initiative by the Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइबर थ्रेट की जो आपके फोन तक एक यूजफुल या ऑफिशियल ऐप की तरह पहुंच सकता है, लेकिन आपकी डिवाइस और आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिस्क में डाल सकता है। फ्रॉडस्टर्स ऐसे फेक एंड्रॉइड ऐप्स को ई चालान, गैस बुकिंग, KYC अपडेट, सिस्टम अपडेट या एनवायरमेंट और एंटरटेनमेंट ऐप्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। यूजर्स को SMS, WhatsApp मैसेज, सोशल मीडिया एड्स या सस्पिशियस लिंक्स के थ्रू फेक वेबसाइट्स तक ले जाकर APK फाइल्स डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। आज इस थ्रेट को समझने और जानने के लिए सिटीजन्स ऐसे मलिशियस ऐप से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे साथ है श्री बजरंग बनसोड़े, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, साइबर क्राइम ब्रांच, मुंबई। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
4: जय हिंद, नमस्कार।
3: व्यूअर्स, आज के सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आखिर में हम आपको पांच ऐसे ऐप्स बताएंगे जो मलिशियस APK स्कैम्स में यूज किए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐप आपके फोन में दिखे तो उसे इग्नोर ना करें, हम ये भी बताएंगे कि आगे क्या करना चाहिए। और अगर आपके पास

0: कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है वो तुम्हारा स्मार्टफोन बन गया है अभी। और इस स्मार्टफोन में मोस्टली एंड्रॉयड सिस्टम, जो मल्टीपल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे एंड्रॉयड है, आईओएस है, हारमोनी है। पुराने वाले अगर हम मान ले तो एक ब्लैकबेरी था जो ओएस था। तो ऐसे सारे ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पीछे चलती है। तो एंड्रॉयड में जो चलने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल वाली, तो उसमें जो एंड्रॉयड पॉकेट किट्स होते हैं उसको चलाने के लिए, तो उसको हम एपीके कहते हैं। अगर वो एपीके किस गलत काम के लिए इस्तेमाल हो जाती है तो फिर हम उसको मेलेशियस एपीके कहेंगे। तो एपीके ये गलत नहीं है, लेकिन एपीके विथ इंटेंशन कुछ गलत इंफॉर्मेशन, अनऑथोराइज वे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अगर उसका इस्तेमाल हो जाता है तो उसको हम मेलेशियस एपीके कहते हैं।
1: सर, तो यूजर्स ऐसे मलिशियस ऐप तक पहुंचते कैसे हैं?
0: देखिए, यूजर्स मलेशियस ऐप तक जाने के कारण बहुत सारे हैं। आपको लगता है वो इक्वली सिमिलर दिखते हैं, जिस ऐप को आप ढूंढ रहे हैं उसके पैरेलल ही वो उसी टाइप के दिखते हैं, या वहां कोई कॉमन जिसको हम कहेंगे कि कोई ग्रीड, कोई लालच दिखाया जाता है, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको ये सबसे ज्यादा आसान तरीका होगा, आप इससे ये अचीव कर सकते हैं लाइक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये ऑथराइज ऐप स्टोर से ना आते हुए साइड लोडेड होते हैं। मतलब ये आपको ऑथराइज सेंटर से नहीं मिलेंगे, ये आपको किसी लिंक द्वारा भेजे जाएंगे, किसी अदर चीज से, कोई एसएमएस से, कोई अदर के कोई सा भी कम्युनिकेशन वाला मीन हो उससे वो फाइल भिजवाई जाएगी, और जिससे आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा या इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टिगेट या प्रोव किया जाएगा। और ऐसे जो ऐप होते हैं उसके लिए जो नॉर्म्स डिसाइड हुए हैं डीओआई के द्वारा, जो रेगुलेशन होना चाहिए वो उसमें नहीं होता है, तो फिर वो अनऑथोराइज एक्सेस तुम्हारे पर्सनल डेटा का कर लेते हैं। इसके कारण आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और मॉनिटरी सेफ्टी, ये सारी चीजें खतरे में आ जाती है। तो ये मैलिशियस ऐप का काम हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मोस्टली एपीके फाइल फ्रॉड्स।
1: तो जैसे आपने बताया, एप्स यूजुअली बहुत तो डेली लाइफ में डाउनलोड करते ही हैं, बट अगर किसी ऐप का एक गलत चीज के लिए इस्तेमाल करा गया है, जैसे कि डेटा कलेक्ट करना या किसी को हरास करना, तो वो एक मलिशियस ऐप बन जाता है सर। लेकिन कई बार यूजर्स किसी ऐप को इंस्टॉल करते समय उसकी परमिशन बिना समझे ही अलाउ कर देते हैं, तो कैसे समझे कि कोई ऐप अननेसेसरी या रिस्की परमिशंस मांग रहा है हमसे?
0: जी देखिए, अगर आपके सामने कोई भी ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं और वो आपको परमिशन मांग रहा है, तो आपको उसको देखना है पहले वो किस टाइप की परमिशन मांग रहा है। मान लो कि आपका कोई हेल्थ वाला ऐप है फॉर एग्जाम्पल, और वो आपके कॉन्टेक्ट की परमिशन मांग रहा है, या कोई अनदर ऐप है दूसरा कि जो आपके पर्सनल डिटेल्स की परमिशन मांग रहा है। मान लो किसी के लिए आपको कहा जाता है कि ये कंप्लीटली फ्री है, लेकिन उसके पीछे बताया जाता है कि आपको इसके आपके नाम, बैंक डिटेल्स, या आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के डिटेल्स फिलअप करने हैं, लेकिन ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो हमें समझ जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए कि इसमें कुछ तो भी गड़बड़ी है, और ऐसे साइड लोडेड या ऐसे फिशी या कुछ ज्यादा लालच देने वाले जो ऐप है इनसे हमें सतर्क रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये एपीके वाले जो फाइल्स है ये किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपको बताया जा सकता है कि ये बहुत ही अर्जेंसी वाले है, गवर्नमेंट ऐप से है, आपके डेली नीड वाले लाइफ के। मान लो कि लास्ट टाइम जो रिसेंटली चल रहा था कि वर्ल्ड वॉर, ये क्राइसिस चल रहा था वॉर का, यूएस और ईरान का,
1: जी
0: गैस की थोड़ी सी उसमें हम स्कार्सिटी फेस कर रहे थे, कमतरता फेस कर रहे थे, तो महानगर गैस के नाम से एपीके, यानी कि नाम टाइटल तो कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे ये ऐप एंड्रॉयड पॉकेट जो है वो होंगे जो तुम्हारे मोबाइल के एक्सेसिबिलिटी लेंगे, आपका जो डेटा है पर्सनल डिटेल्स है वो उससे साइफन ऑफ कर लेंगे, डिटेल चुराएंगे, और उसके बाद फिर आपके बैंक के डिटेल्स या बाकी चीजें उसमें है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चीजें आपके सामने आते समय कभी ई ट्रैफिक चालान आ जाएगा, कभी गैस चालान आ जाएगा, फिर कभी सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा, या फिर कोई फला फला बहुत ही बढ़िया ऐप बना है जिससे

0: आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, या फिर आपको आपके बैंक का केवाईसी अपडेट करना है, हर बैंक का नाम लेके अलग अलग ऐप से आ जाएगा, या फिर रिसेंटली जो बहुत ही लोगों के कुछ इंटरेस्ट वाले चीजेस कहेंगे, या फिर रिलीजियस चीजें, जैसे कि मान लो कि पूजा और प्रसाद के लिए आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसे भी नाम से आ सकते हैं। दीपावली ग्रीटिंग हो सकता है, न्यू ईयर ग्रीटिंग, नाताल ग्रीटिंग, ऐसे किसी भी चीज से, या किसी क्लब की मेंबरशिप, नाइट क्लब की मेंबरशिप, ऐसी कोई भी चीज, कोई भी दिखावा देके ऐसी एपीके फाइल आपके सामने आ सकती है और उसके द्वारा आपके साथ स्कैम हो सकता।
1: सर, एक्सेसिबिलिटी परमिशन को लेकर भी रिसेंटली बहुत बात की गई है कि उसका मिसयूज हो रहा है। तो एक्सेसिबिलिटी परमिशन को लेकर सिटीजन को कॉशियस क्यों रहना चाहिए, और कोई मलिशियस ऐप इस सेटिंग का मिसयूज कैसे कर सकता है?
0: देखिए, एक्सेसिबिलिटी परमिशन, इससे आप, मैंने शुरू में ही बोलते समय कहा कि अगर हेल्थ ऐप है और आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांग रहा है, आपके बैंक डिटेल्स का एक्सेस मांग रहा है, कोई ऐप होगा जो आपके लोकेशन से डिटेल्स मांगता होगा, मान लो आपके लोकेशन के डिटेल्स अगर मिल जाते हैं तो इट मीन्स दे कैन फॉलो यू कि आपकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है। आपने एक पुराने न्यूज़पेपर में न्यूज भी पढ़ी होगी कि जो स्टेटस और फेसबुक सोशल मीडिया जैसे उन्होंने अपडेट किया कि 4 दिन वैकेशन पे है, फला गांव है, या सो एंड सो डेस्टिनेशन पे है, और उनके घर में हाउस ब्रेकिंग हो गया। तो कहां से कहां इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन हो सकता है। आपके बैंक डिटेल ऐप कंप्लीटली फ्री ऐप है, लेकिन आप बैंक डिटेल देते हैं तो इसका मतलब उनके पास आपके बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम और आपके डिटेल आ गए। बची बात है अभी सिर्फ पिन कोड जो ओटीपी है उसकी, तो उतना अगर उसको अवेलेबल हो जाता है तो फिर वो आपके बैंक ऐप को या बैंक ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने की हैसियत में आ जाएगा। इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल करके वो लोग आपको किसी भी साइबर या फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार बना सकते। इसीलिए हमें इस एक्सेसिबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जब तक जरूरत ना हो एक्सेसिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा राइट है। और तुम तुम्हारे एक्सेसिबिलिटी दूसरों को देते हो तो फिर तुम्हारे बाकी, जैसे कि कैमरा की एक्सेसिबिलिटी है, अगर किसी मैलिशियस ऐप के पास जाती है तो वो समय बेसमय आपके हैंडसेट का कैमरा ऑन कर सकता है, जिससे आपकी प्राइवेसी, आपकी सेफ्टी खतरे में आ सके।
1: सर, अगर किसी के फोन में मलिशियस ऐप इंस्टॉल हो गया हो तो कौन से वार्निंग साइंस यूजर को दिख सकते हैं, फिर क्या नोटिस करना चाहिए उन्हें?
0: देखिए, कोई मैलेशियस ऐप अगर आपके हैंडसेट में इंस्टॉल हुआ है तो मोस्टली आपको एक बहुत ही जनरल दिखने वाला सिम्टम है कि कभी कभी आपके डिस्प्ले पर उस ऐप का आइकॉन आ सकता है कि जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है, या बीच बीच में पॉप अप कर सकता है। दूसरी चीज है, आपके हैंडसेट की बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, जो एबनॉर्मल फील करा देगी आपको कि इतना यूज तो मैंने किया नहीं, फिर भी वो बैटरी ड्रेन हो रही है। या फिर तुम्हारे हैंडसेट के इंटरनल बैकग्राउंड पे फंक्शनिंग ऑन गोइंग है, इसके कारण हैंडसेट की हीट बढ़ सकती है, हैंडसेट गर्म हो सकता है, बैटरी ड्रेन हो सकती है, या फिर कोई ऐप वाली मूवमेंट, या कोई पॉपअप वाले मैसेजेस, या अनडिजायर्ड या अनवांटेड कुछ मैसेजेस या ओटीपीज अपीयर हो सकते हैं। इसका मतलब है आपका हैंडसेट आपके अलावा भी कहीं से ऑपरेट हो रहा है क्या, इसका हमें शक होना चाहिए और हमने तुरंत उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।
1: सर, जैसे कि आपने बताया कि सही तरीका तो यही है कि आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जैसे ऐप स्टोर से ही एप्स को डाउनलोड करें, कोई भी और जरिए से, चाहे मैसेजेस हो, व्हाट्सएप हो, अगर कोई हमें ऐसी फाइल या शॉर्टकट लेने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में हमें कोई ऐसी फाइल मिले तो उसे एक्सेस ना करें, डाउनलोड ना करें। तो हमारे व्यूअर का एक सवाल आया है, अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उसके फोन में मलिशियस ऐप या अननोन ऐप है तो उसे सेफली रिमूव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
0: ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, किसी को भी हो सकता है, किसी के साथ भी ये हो सकता है, अगर ऐसे लगता है कि कोई मेलेसिस ऐप हमारे हैंडसेट में है, हम सर्टन है या प्रोबेबिलिटी भी है, दोनों चीजें हैं, तो भी हमें सेफ्टी मेजर्स लेने ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें अगर लगता है कि हमारे मोबाइल में कुछ गड़बड़ी है तो मोबाइल को हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी से तोड़ना है। क्योंकि उसका जो रिमोट एक्सेस अगर है किसी के पास तो वो कट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हमारे हैंडसेट को एयरप्लेन मोड पे डाल दें, उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे उस हैंडसेट से कनेक्टेड या उसमें इंस्टॉल जो बैंक ऐप है, यूएपीआई के ऐप है या मनी ट्रांजेक्शन वाली कोई भी चीज है, तो उसको हमें तुरंत ब्लॉक करने के लिए ऑथोराइज चैनल थ्रू जाना है। मैं ये कहूंगा कि पर्टिकुलरली उस हैंडसेट को, उस मोबाइल सिम को इस्तेमाल ना करते हुए दूसरे सिम से आपके बैंक कॉल कस्टमर केयर को कॉल करके अपने जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक ऐप है उनको तत्काल तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए। तीसरा है कि अगर आपको लगता है कि आपके हैंडसेट में कुछ ऐसा हुआ है, आपके साथ बाकी ट्रांजेक्शन वाली चीज हुई है, तो हमें उसके लिए साइबर हेल्पलाइन है, cybercrime.gov.in है या 1930 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन देनी है, और पैरेलली हमें हमारे हैंडसेट को सेफ मोड पे जाके रिस्टार्ट करना है। सेफ मोड हम कैसे करेंगे, तो हमें पावर बटन और वॉल्यूम डाउन वाला बटन एक साथ दबाना है, तो डिस्प्ले पे एक आइकॉन आ जाएगा, उसको हम कहेंगे कि इसको हम सेफ मोड पे एक्टिवेट कर, सेफ मोड पे उसको ऑन करना है। तो उस सेफ मोड पे हम जब एक्टिवेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई मैलिशियस या डुप्लीकेट ऐप है क्या जो हमें खतरा पहुंचा सकता है। तो ऐसे आप ऐप अगर आपको दिखते हैं तो उसको अनइंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल होने के बाद फिर नॉर्मल मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। लेकिन कभी कभी अगर बहुत ही ट्रिकी ऐप हो या एपीके हो तो वो इस तरीके से इंस्टॉल भी नहीं होती है कभी कभी। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हमें फिर तुरंत हमारे हैंडसेट को, मोबाइल को फैक्ट्री रिसेट करना है। तो फैक्ट्री रिसेट करेंगे तो उसके जो जेन्युइन ऐप है, उसके बेसिक प्रोडक्शन के साथ वाले, उसी ऐप के साथ वो रिस्टार्ट हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा, और फिर उससे तुम्हें, तुम्हारे मोबाइल में जो मैलिशियस ऐप है उनके खतरे से हम बच जाएंगे। लेकिन सबसे लास्ट वाली लाइन कहूंगा कि जो हमेशा दिमाग में रखनी है, कभी भी हमें इस टाइप का शक होता है और समझ में नहीं आता क्या करना है, तो हमें तुरंत 1930 पे कॉल करना है, साइबर हेल्पलाइन की मदद लेनी है और अपने बैंक को कम्युनिकेट भी करना है, तो इससे हम सेव कर सकते हैं। और एक नॉर्मल कुछ एक ट्रिक है कि जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं जो टेक्नो एक्सपर्ट है, जैसे कि हमें रिफ्रेश होने की जरूरत है, उस टाइप हमारे हैंडसेट को भी रिफॉर्म करने के लिए उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट इवनिंग के आवर्स में जाके हम उसको अगर सिस्टम में सेट कर दे रीसेट, मान लो कि रात के 2 रीसेट वाला ऑटो सिस्टम उसको लगा दे, तो वो हर दिन रात को 2 रिस्टार्ट हो जाएगा। जितने भी अनऑथराइज कनेक्शन उसके साथ है या अनऑथराइज ऐप है, वो अपने आप इनएक्टिव हो जाएंगे और तुम्हारा मोबाइल फिर से एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा, उस कनेक्शन से कट हो जाएगा। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे मोबाइल को मोर सेफ बनाने।
1: सर आई थिंक ये काफी अच्छे स्टेप्स है, एंड हम चेक रखने के लिए भी जैसे आपने बताया टू बी ऑन द सेफर साइड, हम रीसेट या अपने फोन को रीसेट कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। सर आखिर में मलिशियस एपीके स्कैम से बचने के लिए हमें क्या हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए?
0: देखिए, शुरू में मैंने जो बताई थी वो सबसे बड़ी हैबिट है कि हमें अनऑथराइज या किसी भी अननोन व्यक्ति से जो भी हमें लिंक आती है, उस लिंक को मैं तो कहूंगा कि हमें खोल के भी नहीं देखना है और उसको इंस्टॉल तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो कोई मैलिशियस एपीके हो सकती है या कोई ट्रोजन भी हो सकता है जो तुम्हारे मोबाइल में इंसर्ट होके बैकग्राउंड में रन हो सकता है। तो ये एक बात है, हमें अनऑथराइज वे से आए हुए किसी भी ऐप को, किसी भी लिंक को डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना है। दूसरा, हमें हमेशा जो भी कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई ऐप लेना है तो वो ऑथराइज ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना है। तीसरा, जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और हमारी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उन चीजों को एज ए इमेज फॉर्मेट, एज ए टेक्स्ट सेव करके मोबाइल में नहीं रखना चाहिए, वो हमारे साथ दिमाग में या फिर हमारे घर में कई अदर जगह सेफ रखनी चाहिए, ताकि अगर आपके मोबाइल के साथ कुछ होता है तो उनको डायरेक्टली वो सारा डेटा एक्सेसिबिलिटी के साथ ना मिल जाए।
1: सर थैंक यू, आपने जो भी आज हमारे साथ इनसाइट शेयर करी वो काफी वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव रही। आज के सेशन से ये इम्पोर्टेंट बात सामने आती है, किसी ऐप को सिर्फ इसलिए सेफ नहीं मान सकते क्योंकि वो यूजफुल, ऑफिशियल या अर्जेंट दिखाई दे रही है। SMS, WhatsApp मैसेज, सोशल मीडिया एड्स या अननोन लिंक से APK फाइल्स डाउनलोड करना, बिना समझे एक्सेसिबिलिटी जैसे सेंसिटिव परमिशन अलाउ करना और सस्पिशियस एक्टिविटी को इग्नोर करना हमारी डिवाइस को फाइनेंशियल रिस्क हमारे डिवाइस से फाइनेंशियल रिस्क पैदा कर सकता है। और जैसे हमने सेशन की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, कुछ ऐप नेम्स जो ऐसे मलिशियस APK स्कैम्स में यूज किए गए हैं उनमें शामिल है नाइट प्ले, री लूप, किस, रीवो, वीमो, जो I4C MHA द्वारा एडवाइजरी दी गई है उसमें डिटेल में हमने ये भी समझाया है कि कैसे एप्स हमारे फोन में आते हैं, डाउनलोड होते हैं और किस तरीके से ये हमारे बैकग्राउंड में रन करते हैं। अगर इनमें से कोई भी अननोन ऐप आपके फोन में दिखे तो उसकी परमिशंस और सोर्स को इमिजिएटली चेक करें। अगर ऐप सस्पिशियस लगे तो यूजफुल तरीके से यूज करने, सेफली रिमूव करने के स्टेप्स फॉलो करें। आप साइबर दोस्त के सोशल मीडिया चैनल्स पर भी चेक कर सकते हैं जहां हमने सस्पिशियस या मलिशियस एप्स को सेफली अनइंस्टॉल करने के वीडियोस भी शेयर किए हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। और अगर इस ऐप की वजह से फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो एविडेंस प्रिजर्व करें और जैसे कि सर ने आज बताया, तुरंत अपने डिवाइस को रीसेट करें, एयरप्लेन मोड पर डालें और अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग दीज इम्पोर्टेंट इनसाइट्स एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और सेफ्टी टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे साइबर अलर्ट।
0: Thank you.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं,

0: दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, आप सभी ने जाना कि इस प्रकार से कुछ ऐसे मेलिशियस एपीके फाइल्स होते हैं या फिर एप्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड करते हैं तो आपके लिए खतरा बन जाता है। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि आप जांच परख के ही कुछ डाउनलोड करें, जितना इम्पोर्टेंट है उतना डाउनलोड करें। और फ़ोन की जो जानकारी है, जो आपकी पर्सनल जानकारी है, वो हर ऐप को परमिशन नहीं दें उसको एक्सेस करने के लिए। कई बार आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि वो आपका क्या क्या देख सकता है, कैमरा यूज़ कर सकता है, क्या यूज़ कर सकता है। जो उस तरह की ऐप्स हैं जहाँ पे इसका कोई यूज़ ही नहीं है तो उनको परमिशन ना दें, और लिमिटेड यूज़ करें, जहाँ पे ज़रूरी है उतना यूज़ करें। कई बार हम फ़ोन को भी इस तरह से यूज़ करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या क्या है फ़ोन पे। तो इसलिए उसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में हमें करना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है या आपके पास कोई कंसर्न्स हैं या आपके पास कोई मैसेज आते हैं या आपके पास कोई कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है कि इंटरनेट की दुनिया में इसे करना ठीक है या नहीं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप रेडियो मधुबन के नंबर पर हमें उसके बारे में बता सकते हैं, जो भी आपका कंसर्न है, चाहे तो मैसेज टाइप कर सकते हैं या ऑडियो मैसेज अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। दोस्तों, युवा मंच ये कार्यक्रम आप सुनते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम 5 से 6 बजे तक। अगर मान लीजिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो इस कार्यक्रम के दौरान हम आपके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर ज़रूर देंगे, वो भी वेरीफाई करके, ऐसे नहीं, सही जानकारी के साथ और एक्सपर्ट से पूछ के, ताकि आप तक जो भी जानकारी पहुंचे वो एकदम सही हो, कोई भी ऐसी गलत चीज़ ना पहुंचे जो आपको कंफ्यूज करे या आपको और परेशान करे या जिसमें डाउट क्रिएट हो। तो इसीलिए अगर आपको लगता है, हम तो बस यही चाहते हैं कि आपका जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल है वो सुरक्षित रूप से हो और आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, आपके साथ कोई गलत ना करे, आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की आपको हानि ना पहुंचा सके, उसके लिए ज़रूरी है, मैं फिर से कहूंगी, जानकारी। तो जानकारी का सही स्रोत पता हो तो जानकारी तो मिलती है। आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है दोस्तों। रेडियो है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, बहुत कुछ है, जानकारी ही जानकारी है, लेकिन सही जानकारी कहाँ मिलती है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, रेडियो मधुबन आपका अपना दोस्त है, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इसलिए आपको ऐसा लगता है किसी विषय पर बात होनी चाहिए, आपको लगता है आप चर्चा करना चाहते हैं, आप कोई अपना इंसिडेंट भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आपके साथ अगर कोई फ़ोन कॉल आया हो या व्हाट्सएप मैसेज आया हो या कोई और ऐसी चीज़ आई हो जो आपको लगता है कि हाँ भाई, मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड करने की कोशिश की गई थी तो मैं दूसरों को भी बताऊं, तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग सचेत हो जाएं, बाकी लोगों को वार्निंग मिल जाए कि इस तरह के स्कैम में नहीं फंसना है। मैं नंबर दोहरा देती हूँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का, मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ दो खूबसूरत कहानियां, अमेजिंग जानकारी, प्यारी सी कविता और सवाल, ये सब कुछ लेकर आई हूँ आज की उड़ान में। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ के इन सभी चीजों का आनंद लीजिए, साथ ही साथ खूबसूरत मौसम का भी आनंद लीजिए। हालांकि ऑटम हीट शुरू हो चुका है और ऐसे में अक्सर जो बाहर का तापमान और घर के अंदर के तापमान में फर्क अक्सर नजर आता है, और ऑटम हीट कई बार कहते हैं बहुत क्रॉचिंग सी होती है। पर इसके साथ साथ सावधानी इस बात की भी बरतनी है, क्योंकि मौसम के इस बदलाव में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब का प्रकोप चारों ओर फैल रहा है। ऐसे में यदि ज़्यादा तबीयत खराब है तो घर में ही उपचार न करके सही समय पर, सही वक्त पर डॉक्टर तक सलाह जरूर लीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, मुस्कुराते जरूर रहिए। तो वेलकम दोस्तों, रेडियो मधुबन पर एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आती हूँ, क्योंकि मैं मोना आपके साथ जुड़ी हूँ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

ए खुदा ए खुदा। तो चलिए दोस्तों, आज की पहेली पूछने से पहले अमेजिंग जानकारी के साथ आप दोस्तों को जोड़ लेते हैं। तो आज की जानकारी है, नदियों का घर कहाँ पर है। वैसे तो हमने और आपने नदियों को बहते देखा है, हाँ बारिश के दौरान तो यहाँ पर बहती हुई नदी जरूर नजर आती, लेकिन इस साल तो हमें वो देखने का मौका भी ना मिला क्योंकि राजस्थान की इस क्षेत्र में बिल्कुल पानी ना गिरा। कभी कभार इतनी तेज आती है पर वो भी चंद मिनटों के लिए, ऐसे में नदी तो भर नहीं सकती है। खैर, नदियों को बहता देख कभी आपने सोचा कि आखिर ये आई कहाँ से और इसके बाद ये जाती कहाँ पर है। वेल दोस्तों, नदियों का जन्म दूर कहीं ऊंचे पहाड़ों पर ही अक्सर होता है। जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, बारिश की बूंदें इकट्ठी होती है, तब पानी की कुछ छोटी छोटी धाराएं चट्टानों से फिसल कर नीचे की ओर बहती हैं। यहीं से नदी की शुरुआत होती है। इसे नदियों का स्रोत या सोर्सेस या उद्गम का या हेड वाटर्स भी कहा जाता है। पहाड़ों पर बर्फ या ग्लेशियर पिघलते तब उनका पानी छोटी धाराओं के रूप में इस एक बड़ी नदी की धारा में शामिल होता है। इसमें आगे झरने, झीलें आदि सब बनते हुए ये धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी बन जाती है। इन छोटी छोटी धाराओं को या नदियों को ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां कही जाती हैं। ये नदियां या तो मुख्य जल धाराएं नदी में आकर मिलती है या जल प्रवाह से बढ़ती भी है। वेल, आज इतना ही, कल बाकी की जानकारियां जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले आज की पहेली जरा ध्यान से सुन लीजिए। मेरे पास एक मुंह है लेकिन मैं बोलता नहीं, मेरे पास दो हाथ है लेकिन मैं काम नहीं करता हूँ, बताओ दोस्तों मैं कौन हूँ। मेरे पास एक मुख है लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे पास दो हाथ भी है लेकिन मैं काम नहीं करता हूँ, बताओ दोस्तों मैं कौन हूँ। झटपट इस पहेली का जवाब देना 9414151415 पर देना। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

वेल दोस्तों, हमको मन की शक्ति देना। चलिए दोस्तों, पुनः आज की जो पहेली है वो दोहरा देते हैं। मेरे पास एक मुख है लेकिन मैं बोलता नहीं, मेरे पास दो हाथ है लेकिन मैं काम नहीं करता हूँ, हाँ बता दो मैं कौन हूँ। जी हाँ, वैसे तो कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, हाथों की कलाई में भी आती है, घर की दीवारों में भी सजती है, साथ ही साथ कहते हैं ये पॉकेट में भी होती है, गले में भी लटकती है और मेन चौराहे में भी कई बार ये होती हैं। और इसका यदि ये सारी हिंट आपको समझ में आ गए तो झटपट सही जवाब दीजिए, 9414151415 भी दीजिए। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग
1: रोहानी को भी ओम शांति, गुड इवनिंग।
0: जी जी जी,
1: रोहानी का आपका प्रोग्राम हमने रविवार को सुना
0: जी,
1: शनिवार को भी सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और आज का सवाल का जवाब तो गरीब।
0: अच्छा, ओके,
1: वॉच वॉच,
0: ओके, थैंक यू,
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी नमस्ते, सूरज दर्जी बोलता हूँ। कैसे हो दीदी?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: बहुत दिनों से बाद आपसे बात हो रही है दीदी, आज बहुत दिन हो गए बात आपसे।
0: हम भी सोचते हैं क्यों ऐसा करते हैं, क्यों नहीं करते हैं।
1: नहीं ऐसा नहीं, हम कार्यक्रम तो सुनते रहते हैं, कभी कभी बात करने का मौका नहीं मिलता है, कभी कभी बात करते करते रह जाते हैं। चलो थोड़ी देर के बाद बात करें आपसे, लेकिन बात में भी बात रह जाती है।
0: अच्छा चलिए चलिए, थैंक यू।
1: फिर भी आज मैंने सोचा चलो आज तो बात ही कर लो, बहुत दिन हो गए हैं। दीदी को ऐसा लगेगा भाई हमसे रूठे क्या? नहीं नहीं, आपसे रूठ नहीं पाते कभी।
0: जी
1: आपसे कभी हम नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि हमारा तो रेडियो मधुबन हमारा जीवन साथी है। और आप भी हमारे बहुत आगे भाई बहन, जो हमारे प्रिय एक प्रिय मित्र की तरह है आप।
0: थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस, शुक्रिया।
1: कार्यक्रम चल रहा है
0: जी।
1: और जो आपने सवाल का हिंट दिया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाहर गया और हिंट।
0: चलिए कविता ध्यान से सुन लीजिए, कविता आप फोन पे रहिए, मैं कविता जरूर बोलती हूँ। गोल गोल चलती रहती हूँ, ना थकती हूँ ना रुकती हूँ, टिक टिक टिक टिक करते करते हर पल तुमसे कहती हूँ। बच्चों करो समय पर काम, जरा शीत रहे या तपता धाम, चलना और बस चलते रहना, यही है मेरे जीवन का नाम। बताइए।
1: समझ गया, वो तो घड़ी है।
0: घड़ी है, चलिए थैंक यू, नमस्कार। जी जी जी जी
1: नमस्ते।

0: एक पल बीतता हुआ एक नया सबक सिखाना है। सूरज ढलता चंदा उगता चक्र यही चलता जाए, समय की गति को जो समझा वही सफलता को जरूर पाए। नमस्कार, हमारे बीच कौन है?
1: मैं साजिया बोल रही हूँ।
0: हाँ साजिया, कैसी हो? हाँ जी,
1: आज जो आपने पहली पूछी है उसका जवाब है घड़ी।
0: ओके, थैंक यू। नमस्कार।
1: और मैं एक गीत गाना चाहती हूँ।
0: गाओ।
1: माय तेरे तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे, जब तुझ पे आज आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का।

0: बहुत अच्छा साजिदा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कहीं गाना सीखती हो तुम?
1: हाँ,
0: इसे बंद मत करना, सीखते रहना जरूर, ठीक है? ओके, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, बहुत मीठी आवाज है और आपको बेस्ट ऑफ लक। उठो जागो और करो काम, मत बैठो तुम हार, समय की रेत से फिसलता जाता है ये संसार, जो बोएगा आज यहाँ वही कल पाओगे, समय के साथ चलोगे तो हर मंजिल को जरूर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः एक बार आज की पहेली, मेरे पास एक मुख है लेकिन मैं बोलता नहीं, मेरे पास दो हाथ है लेकिन मैं कोई काम करता नहीं, झटपट बता दीजिए मैं कौन हूँ? 9414151415 पर सही जवाब जरूर दीजिए। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: ये है नशे की कहानी,
3: पहला नशा पहला खुमार,
2: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक और साथी दोस्त हैं। कौन बोल रहे हैं?
1: पालनपुर से दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: नमस्कार फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया काफी दिनों बाद हमारे बीच आने के लिए। शुक्रवार को आए थे लेकिन आज शनिवार का ही शाम है।

0: सोमवार की शाम है तो फिर पुनः जुड़ने के लिए। थैंक यू, बताइए।
1: और दूसरा के बहन जी, समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो आज पहली का जो जवाब है वो समय चलाने वाली घड़ी।
0: घड़ी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया एक बार पुनः आज की
1: मधुबन सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं।
0: शुक्रिया,
1: मंगल कामनाएं।
0: थैंक यू, नमस्कार। हमारे बीच रूहानी है। रूहानी, एक बार पुनः आज की पहेली दोहरा दो।
2: मेरे पास एक मुंह है लेकिन मैं बोलता नहीं, मेरे पास दो हाथ भी है लेकिन मैं काम करता नहीं, मैं कौन हूँ?
0: झटपट बता दो, नंबर है हमारा
2: 9414151415।
0: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो।

0: था आखिरी सिलेंडर, अब कोई सिलेंडर नहीं बचा।
1: जलाकर सबको भून भून कर खाऊंगा।
2: अरे चाय क्या 12 बजे मिलेगी?
3: माँ मेरा ऑमलेट बना दो।
4: एक कप चाय तो मैं भी पीऊंगा माँ।
5: सिलेंडर खत्म हो गया।
2: अबे मनहूस, ऐसी चाय मांगी कि गैस ही खत्म हो गई। अब जा जाकर सिलेंडर लेकर आ।
5: लगता है आप लोग अखबार नहीं पढ़ते।
2: ऐसा क्या आ गया अखबार में?
5: यही कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है।
4: तो चिंता मत कर प्यारी बहन, मैं लेकर आता हूँ। कैसे हो मुरारी काका?
0: वैसे ही जैसे तुमने कल देखा था पिंटवा। अरे क्या है, हम का जानी?
4: काका सिलेंडर चाहिए, अभी अभी खत्म हो गया है।
0: अखबार नहीं पढ़ा क्या?
4: समय नहीं मिला काका, आप ही बता दीजिए।
0: सिलेंडर नहीं आ रहा है पिंटवा, अब पता नहीं कब तक नहीं आएगा। गैस, पेट्रोल, ईंधन की हर जगह प्रॉब्लम है, हम का जानी।
4: लेकिन काका,
0: लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम का जानी।

0: अबे आज क्या खाने में धुआं ही मिलेगा?
1: माँ खाना बना रही हो या धुआं फैला रही हो, सबके सब बैठकर भाषण दे रहे हैं। एक बार जलाकर दिखा दो इन नरम लकड़ियों को।
2: मैं आपकी मदद करता हूँ माँ, रुक जाइए।
3: शांत शांत शांत, मेरा गांव वासियों, हम सरकार से लड़ रहा हूँ हमारे हक के लिए। जल्द ही सबको गैस के साथ साथ बढ़िया किचन भी बनवा कर दूंगा।
4: अरे गुरुदेव, इतने बड़े बड़े वादे क्यों कर रहे हो, एक सिलेंडर में निपटा दो।
3: वादा किया है मुरारी, निभाया नहीं, हमका राजनीति ना ही सिखा।
2: आप नहीं जानते मुखिया जी, लोगों के घरों में खाना भी नहीं पक रहा है।
3: अरे तो कहा हम जाकर पकाऊं भाई, हम क्या खान समा हूँ।
2: आप कुछ करते क्यों नहीं, अखबार में खबर छपी है सिलेंडर जरूर मिलेगा।
3: मिलेगा पिंटुआ, जरूर मिलेगा, पर मिला नहीं है समझा।
4: अरे चलो भाई, जाओ जाकर लकड़ी जलाओ, खाना पकाओ।

0: ये क्या है माय डियर, आज नमकीन और बिस्किट?
1: गैस खत्म हो गया है।
0: तुम्हारे घर पर भी सिलेंडर खत्म हो गया क्या?
1: पता नहीं कब आएगा, और मुझसे तो लकड़ियों पर खाना भी नहीं बनता।
2: पिंटू भैया, मेहुल दीदी, देखो मैंने इस कचरे को कैसे जला दिया है।
1: इसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, इसे सूरज की रोशनी के सामने रखकर कुछ भी जला सकते हो। क्या सोच रहे हो?
0: कुछ नहीं मेरी जान, बस खाना बनाने का तरीका सोच रहा हूँ।

0: बंद हो गया है, अब जल्दी से हांडी में चावल लेकर आ छुटकी।
1: साथ में दाल भी लाऊं?
0: हाँ, अगर दोनों एक साथ पक जाएंगे तो खाने के लिए वेट नहीं करना होगा।
2: अबे यहाँ धूप में कौन सा जादू दिख रहा है?
1: जादू नहीं, खाना पका रहे हैं।
2: कहाँ है खाना?
0: खाना इस सोलर बॉक्स के अंदर है फादर, इसी में पकेगा।
2: अबे कल क्या इसी में बंद कर दी है? नीचे आग तो जला इसके।
1: उफ, अरे ये कोई कढ़ाई नहीं है, इस सोलर कुकर।
2: हिंदी में बोल।
1: अरे सूरज की रोशनी से खाना पकता है इसमें।
2: इसके साथ रह रह कर तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। जो करना है करो, मुझे खाना पका कर दो।
0: ये लीजिए फादर, खाना तैयार है।
2: अबे खुशबू तो बढ़िया आ रही है, ला खा कर देखता हूँ।
0: आपको खाना कैसा लगा फादर?
2: बेटा खाना तो बढ़िया है, कम से कम बिना गैस के भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा।
0: जिस तरह से गांव में गैस की सिलेंडर की परेशानी चल रही है, उसका समाधान मिल ही गया समझो।
3: सिलेंडर देने वाला है पिंटुआ।
4: पिंटू, पिंटू, पिंटू, पिंटू, पिंटू।
0: रुकिए रुकिए, मैं कोई सिलेंडर देने नहीं आया था, मैं सोलर कुकर बनाना सिखाऊंगा सबको।
5: वो क्या होता है पिंटुआ?
0: सूरज की रोशनी से खाना पकेगा उसमें काका।
5: वाह क्या मजाक था, मतलब हम सबकी कढ़ाई धूप में रखे तो सब्जी बन जाएगी।
0: धूप में इसको रखना है और इसके अंदर खाना पकाने का बर्तन।
5: इसमें आग जलेगी क्या पिंटुआ?
0: नहीं काका, ये सूरज की रोशनी को एकत्रित करके बॉक्स में भेजेगा, उसके बाद आप देखना कमाल, मैं इसके अंदर अभी राइस बनाऊंगा, देखते जाइए बस।

0: वाह पिंटू भैया, ये तो सचमुच पक गया। अब ये बनेगा कैसे वो तो बता दो।
1: आज पूरा दिन हम यही काम करेंगे। अब से हर घर में सोलर कुकर होगा।
2: अरे भाई, चाय कब आएगी?
3: साथ में एक बड़ी थाली में मठरी भी मंगवा दीजिए मुखिया जी, सूखी चाय गले नहीं उतरेगी।
2: अरे बाबा जी, चाय सूखी लगे तो पानी पी लेना।
4: गैस खत्म हुई गवाह है।
2: गैस खत्म हुई गवाह? अरे बुड़बक मुरारी, सिलेंडर नहीं लाया एक्स्ट्रा?
0: अरे गुरदब कल ही आया था गांव से, अभी जाकर लगा देता हूँ। हम का जानी।
2: शांति भाई, कहाँ सो जाएं और क्यों सो जाएं?
1: सोना नहीं है मुखिया जी, सोलर लाओ।
2: अब ई का है पिंटुआ?
1: सोलर एनर्जी मुखिया जी, अब से खाना सोलर कुकर में बनेगा और गांव में बिजली भी सोलर पैनल से ही आएगी।
2: नया मीटर है का बिजली का?
1: बिजली से नहीं मुखिया जी, ये सूरज की रोशनी से चलता है।
3: और जिस दिन सूर्य देव नहीं निकले या बारिश हो गई, तब क्या होगा पिंटुआ?
2: जवाब दो भाई, बारिश में कहां से लाओगे रोशनी?
1: मुखिया जी, सोलर पैनल बारिश कोहरा सब में काम करते हैं। आप सरकार से जल्द से जल्द ये योजना सबको मुहैया कराइए, देर मत कीजिए।
2: करता हूँ, अभी जाइए, हम सरकार से बात करता हूँ।
3: जाइए भाई, अब का राहु काल का इंतजार कर रहे हो?

0: जा भीषु जा, दौड़ कर जा और बोल ले आ, जा।
1: तुम भी ना उस बेचारे को फील्डिंग करवा कर ही थका दोगे।
0: कम से कम तुम्हारे पास अकेले में कुछ वक्त तो मिलेगा।
2: पिंटू भैया, पिंटू भैया।
0: क्या हुआ बिशु?
2: मुरारी काका सिलेंडर को बाहर भेजने वाला है रात को। गोडाउन पूरा सिलेंडर से भरा हुआ है।
0: तुझे कैसे पता बिशु?
2: मैंने गोडाउन की खिड़की से देखा कि सिलेंडर वहाँ पे रखे हुए थे और मुरारी काका किसी के साथ फोन पर बात कर रहे थे।
0: अगर ऐसी बात है तो आज रात को ही नाइट मैच होगा बिशु। तुम भी अपना खाली सिलेंडर लेकर आ जाना माय डियर।
1: क्या सच में सिलेंडर मिल जाएगा?
0: अगर बिशु की बात सच है तो बिल्कुल मिलके रहेगा।

0: अरे जिंदगी प्यारी नहीं है का पिंटुआ, जो ट्रक के सामने आ गए हटो हटो।
1: ट्रक की क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो सबकी जिंदगी प्यारी है काका।
2: मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद।
0: अरे ये सब क्या है, हम का जानी
3: कहाँ है, हल्ला मचा रखा है भाई।
1: हल्ला नहीं, पूरा मोहल्ला आपके गुणगान कर रहा है। मुखिया जी जो आपने सबके लिए सिलेंडर मंगवा दिया, ये लोग इतने खुश हो गए कि सुबह तक इंतजार ही नहीं कर पाए और इसी वक्त आ गए।
3: का
0: सिलेंडर?
3: अरे भगवान आपका भला करे मुखिया जी, भूखों की दुआ लगेगी आपको, आपने सिलेंडर मंगवा दिया। उल्लो की तुम कैसे पता चला, ये पूरे गांव में कैसे ढोल बज गया,
0: हम का जानी।
1: चलिए मुखिया जी, एक एक करके सबके हिस्से का सिलेंडर दे दीजिए और आपके हिसाब की दुआ और मुनाफा, मेरा मतलब सिलेंडर की कीमत ले लीजिए।
3: हमने अपना वादा पूरा किया, अब जनता भी सबसे ज्यादा वोट देकर हमें विजयी बनाए।
1: मुखिया जी हमारा वोट हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ है, ऑलवेज मुखिया जी ऑलवेज।
4: वेल दोस्तों, मजेदार इस कहानी के बाद मैं मोना वापस तो आ गई हूँ, पुनः आज की पहेली एक बार और दोहरा देती हूँ। आज की पहेली है,
5: मेरे पास एक मुंह है लेकिन मैं बोलता नहीं, मेरे पास दो हाथ भी है लेकिन मैं काम भी नहीं करता, मैं कौन हूँ?
4: झटपट बता दीजिए, नंबर है हमारा
5: 9414151415।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: बिल्कुल, जीवन अनमोल है और इसीलिए ध्यान ये जरूर रखिए कि किसी भी रीति कोई हादसा ना हो। वेल, एक बार क्या हुआ, राजू ने वीरू से कहा, कल मैं ना रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरत से जाकर टकरा गया। वीरू ने बोला, क्या बात कर रहा है, फिर क्या हुआ? राजू ने कहा, फिर क्या, मेरी बहुत पिटाई हुई। वीरू ने कहा, किसने? अरे सूरज की मम्मी ने बहुत पिटाई की, बहुत। एक्चुअली सूरज से जाके टकरा गया मतलब सूरज एक दोस्त था उसका, राजू का, और उससे जाके वो टकरा गया। सही में पिट्टी तो खानी थी, जैसा करोगे जैसा सोचोगे वैसा ही तो बनोगे। चलिए गीत अब आप तक पहुंचा रहे हम उड़ान में।

0: जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पुनः एक बार पहेली दोहराऊंगी। मेरे पास एक मुख है लेकिन मैं बोलता नहीं, मेरे पास दो हाथ है लेकिन मैं काम नहीं करता, बता दो दोस्तों कौन हूँ? झटपट बता दो, 9414151415 पर बता दो। समय का खेल, ये छोटी सी कहानी अब आपके लिए उड़ान में।
1: परिवार में रामू, उसकी पत्नी मीरा और उसका बेटा शिवम थे। दूसरा परिवार अमीर था, जिसमें काला सेठ, उसकी पत्नी संदीप और बेटी मोनिका थे। काला सेठ का गांव में ही एक छोटा सा ढाबा था, जिसकी वजह से उसकी अच्छी कमाई होती थी। शिवम के पिता रामू काला सेठ के ढाबे पर काम करते थे। बाप और बेटा दोनों काम करते थे, फिर भी उनका गुजारा मुश्किल से होता था। दूसरी तरफ रामू का बेटा शिवम एक किराने की दुकान पर काम करता था, वहाँ से उसे थोड़े से पैसे मिलते थे। एक दिन शिवम काम से थक कर अपने घर जा रहा था कि उसके साइकिल के सामने मोनिका आ जाती है।
2: तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने मुझे गिरा दिया। भिखारी कहीं के, जानबूझकर गिराया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
3: जी नहीं, मैंने आपको नहीं गिराया, आप खुद ही सामने आ गए। मैं तो सही जा रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
2: बहुत घमंड है तुझमें भिखारी, गलती करता है और ऊपर से बहस भी करता है। अब तू देख, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी और तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और शिवम बस वही खड़ा रहकर ये सोच रहा था कि वो लड़की कितने गलत तरीके से बात कर रही थी। रामू ढाबे पर काम कर रहा था, इतने में वहां पर काला सेठ की बेटी आ जाती है।
4: सुनिए पिताजी, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, अगर आप फ्री हैं तो मेरी बात अभी सुनिए प्लीज।
5: हाँ बोलो बेटी, क्या कहना है तुम्हें?
4: पिताजी, हमारे गांव का लड़का शिवम मुझसे जानबूझकर साइकिल से टकराया और मुझे गिरा दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत चोट लग गई है। पिताजी, ऊपर से वो मुझसे बहस कर रहा था, कह रहा था कि मैं ही गलत जा रही थी, मुझसे माफी भी नहीं मांगी उसने।
5: अच्छा, उस भिखारी की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी बेटी से बहस करेगा? अब तू देखना बेटी, मैं उसका क्या हाल करता हूँ।
6: नहीं नहीं मालिक, मेरा बेटा शिवम ऐसा नहीं है। बिटिया को जरूर कुछ गलत फहमी हो गई होगी, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता।
5: ओ अच्छा, तो वो गवार तेरा बेटा है। चल तू निकल यहाँ से, कल से तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, समझा?
6: नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, काम के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मेरे बेटे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पर मुझे काम से मत निकालिए।
1: रामू बहुत मिन्नतें करता है लेकिन काला सेठ उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है।
3: क्या हुआ पिताजी, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए?
6: बेटा, आज मुझे सेठ जी ने काम से निकाल दिया, क्योंकि तूने उनकी बेटी को गिराया था। बस इतनी सी बात से उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया।
3: कोई बात नहीं पिताजी, अब आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। ऊपर से उनकी बेटी मुझसे बहुत घमंड से बात कर रही थी। पिताजी आप कोई फिक्र ना करें पिताजी, मैं साथ में कोई और काम कर लूंगा, लेकिन अब आप वहां पर दोबारा नहीं जाएंगे।
1: शिवम के मना करने के बावजूद भी उसके पिता किसी और ढाबे पर काम ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। दूसरी तरफ शिवम जी तोर मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो अपने माता पिता को परेशान नहीं देख सकता था। काला सेठ की बेटी बहुत बदतमीज थी, वो सारा दिन अपने पिता की कार में घूमती और पैसे उड़ाती रहती थी। एक दिन ढाबे पर सूट बूट पहने एक आदमी आता है, जिसको पहले किसी ने नहीं देखा था।
7: सुनो, ये ढाबा किसका है, कौन है यहाँ का मालिक, मेरे सामने आइए।
5: अरे साहब, मैं हूँ इस ढाबे का मालिक, बताइए क्या खाएंगे आप, हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है।
7: मुझे कुछ नहीं खाना, तुम बस ये बताओ कि किसकी परमिशन से तुमने यहाँ ढाबा बनाया है। ये सरकारी जमीन है, तुम यहाँ किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते। जो ये तुमने ढाबा बनाया है बिना किसी अनुमति से, अब तुम्हें इसका जुर्माना भी भरना होगा, और कल से ये जगह बिल्कुल खाली होनी चाहिए, वरना तुम्हें जेल भी हो सकती है, समझे?
1: ये बात सुनकर काला सेठ की जुबान को ताला लग गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस चुप खड़ा था। काला सेठ अब बहुत दुखी था, क्योंकि उसने 2,00,000 जुर्माना भी भरा था, जिसके पैसे उसने अपनी कार बेच कर चुकाए थे। अब उसका काम भी बंद हो गया था और अब उसे घर की किश्त भरने की भी फिक्र थी, क्योंकि उसका घर पर बैंक से लोन लिया हुआ था।
8: जब काला सेठ बैंक की किश्त नहीं देता तो बैंक उनके घर को ताला लगा देती है, जिसकी वजह से अब वो सड़क पर आ गए थे। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि काला सेठ बस नाम का सेठ रह गया है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब वो गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी किराए पर लेकर रहते थे। एक दिन काला सेठ की पत्नी उससे कहती है,
9: सुनिए जी, अब ऐसे कैसे चलेगा? हमारे पास जो भी खाने का सामान था वो हमने इस्तेमाल कर लिया है, अब आप कोई काम देख लीजिए, काम के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता।
10: तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा।
1: इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मन में वो बहुत परेशान था। इस तरह से उसे एक खेत में काम मिल गया था, जिसके बदले उसे दिन के 50 रुपए मिलते, जिससे वो घर के लिए आटा ही ले पाता था। अब उसे समझ में आ गया था कि मेहनत क्या होती है।
11: देखा पिताजी, काला सेठ को भगवान ने सबक सिखा दिया है। उनके पास खुद का कुछ भी नहीं था, समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उन्होंने सब कुछ किश्तों पर लिया था। ऐसी अमीरी तो किसी को ना मिले। हमारा घर भले ही छोटा है, लेकिन हमारा अपना है।
12: हाँ बेटा, लेकिन हमें किसी के हालात देखकर खुश नहीं होना चाहिए। समय कभी भी बदल सकता है, हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही
0: इसी कहानी से यही है कि समय का खेल बदलता है, साथ ही साथ घमंड किसी भी प्रकार का बिल्कुल उचित नहीं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले घड़ी जवाब तो देती जाओ। हाँ, कुल मिलाकर जिन साथियों ने कॉल भी किया, कार्यक्रम सुन रहे थे, बड़ी खुशी के साथ हमारे साथ जुड़े थे, उन सबको शुक्रिया करती हूँ। और जो कॉल भी नहीं करे पर फिर भी कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे, उन्हें भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे, तब तक के लिए उड़ान से कहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में इस कार्यक्रम को लेकर जब गाँव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है। गांव का आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देता है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सनवाड़ा में पहुंचे हैं। बहुत खुशी लग रहा है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय की मिली सहयोग से बच्चों का हुनर, बच्चों का प्रतिभा, बच्चों का भाव भावना विशेषता को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है आज बच्चों को मिल रही है। बहुत खुशी और हर्ष का बात है। हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सभी बच्चे भाग लेंगे तो देर किस बात की। सरकार का जो मंशा है आसपास का अंदर में जो गतिविधि हो रही है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा जन जन तक पहुंचाएंगे आज, तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा संस्था के वरिष्ठ शिक्षक भी उपस्थित है। सर को स्वागत करते हैं। सभी बच्चों को एकत्रित कराए और सबको वार्म अप कराने के लिए अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सर आपको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में। आप अपना परिचय देंगे, बच्चों को उमंग उठाएगा।
1: मेरा नाम जितेंद्र परियार है
0: जी सर,
1: और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांगवाड़ा में अध्यापक लेवल द्वितीय विषय हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ
0: जी सर।
1: और विद्यालय परिवार की ओर से आज मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ
0: जी।
1: आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों को कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा
0: जरूर,
1: और यह सीख और यह शिक्षा इनके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और इस हेतु आपका मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ
0: सर। खासकर बच्चों का जो नामांकन बालिका और बालक शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका यहाँ पर बालिका बहुत है, नामांकन ना बराबर है
1: जी,
0: दोनों बराबर है ना? बालिका संख्या अधिक है नामांकन में,
1: यहाँ पर कुल नामांकन है 78।
0: छोटा सा गांव है फिर भी इतना उपस्थिति है,
1: और सभी बच्चे पूर्ण मनोयोग से सुबह जल्दी विद्यालय आते हैं, प्रार्थना बहुत ही अच्छे ढंग से क्रियान्वित करते हैं, पढ़ाई में भी बच्चे रुचि लेते हैं
0: जी।
1: और यहाँ पर बालक और बालिकाएं सभी पढ़ने में होशियार है
0: जी सर। उनका अभिभावक और माता पिता बच्चों को पढ़ाने में कितना रुचि रखते हैं? क्योंकि बीच बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा ग्रामांचल बच्चे पहाड़ी का गोद में बसा हुआ गांव रहता है, फिर भी उनका कम्युनिकेशन और जिसका चलते थोड़ा ड्रॉप आउट का संख्या कितना है? यहाँ पर ड्रॉप आउट होते हैं?
1: नहीं, फिलहाल एक भी ड्रॉप आउट तो नहीं है।
0: वाह, बहुत अच्छा बात।
1: कारण ये है कि यहाँ पर हम TLM के माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं,
0: ओके,
1: बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटी करवाते हैं
0: जी सर।
1: और इसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि एक भामाशाह श्री मंचाराम जी के द्वारा विद्यालय में ये टेलीविजन कल ही भेंट किया है।
0: क्या बताली बजा बच्चे। और जो भामाशाह हमारा जो नाम लिए उनके लिए और जोर से उनके लिए क्या हमारा साहब हमारा सुन रहे, और सांगवाड़ा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय को जो अपना बच्चों के लिए खुद नहीं खाते दूसरों को खिलाते हैं और खुद नहीं देकर दूसरों के लिए दिखाने के लिए जो कोशिश किए ये काम बात नहीं है, तो उनके लिए हम रेडियो मधुबन परिवार की ओर से भी साधुवाद अर्पण करते हैं। और सर जितिन सर और क्या कहना चाहेंगे? भामाशाह को तो हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो बच्चों को आवश्यकता है आज पहला उनको एक बच्चों को मोटिवेशनल सॉन्ग दिखाई दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। मैं कौन और मेरा कौन ये चीज भी दिखाई दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से ओपनिंग में। आज बहुत खुशी का बात, और परमात्मा का सत्य परिचय भी मिलेगा बच्चों को, और खुद अनुशासन में कैसे रहेंगे, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए कब देखना चाहिए, वो चीज आज बच्चों को उस टीवी के माध्यम से दिखाई देंगे। सभी बच्चे रेडी है? सभी बच्चे देखने के लिए रेडी? वाह, ये हुई ना बात, इतना दाम है। चलिए सर आगे क्या कहना चाहेंगे भामाशाह के लिए? ऐसे कोई भी भामाशाह चाहे आए हमारे इस स्कूल को, क्योंकि बच्चे को कुछ जो आवश्यकता है जहाँ जरूरत है वहाँ देने से पुनीत काम होता है।
1: देखिए सर, टीवी में चित्र भी दिखते हैं और आवाज भी हम सुन सकते हैं
0: जी जी,
1: तो जो सुना हुआ होता है वो हम हो सकता है कि एक बार सुनकर भूल सकते हैं, लेकिन जो सुना हुआ और देखा हुआ वो अगर मस्तिष्क में एक बार चित्र बन जाता है
0: जी जी,
1: तो वो शायद ही हम कभी भूल सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही एक उपयोगी साबित होगी।
0: सही बात,
1: इसे निवेदन करूंगा जो भी है हमारे गांव के कि इस स्कूल के हित में अपना जो भी योगदान है हमेशा दान करते आए, लेकिन और भी अगर बच्चों के लिए आप करना चाहे तो आप सादर आमंत्रित है। बच्चे हमारे है, ये गांव भी हमारा है, ये स्कूल भी हमारा ही है। अगर हम पढ़ेंगे तो हम आगे और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा गांव आगे
2: बढ़ेगा,
1: गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और जब देश विकसित होगा तो विश्व का कल्याण होगा।
2: इसलिए ग्रास रूट में बच्चे हैं और वो गांव का हित में, जनहित में, और खासकर बच्चों का हित में, बच्चों का हित में जन कल्याण अर्थ जो किए वो पुनीत काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर को और हमारा भामाशाह को भी, जो भी भामाशाह इन एडवांस कहना चाहेंगे, आना चाहेंगे, देखना चाहें वो आकर देखें। और हमारा बच्चे तो अपना ही है, बच्चे सच्चे होते हैं और बच्चे ही भविष्य है, गांव का, देश का भविष्य है। तो बच्चों को धन्यवाद देते हैं और सर को भी धन्यवाद देते हैं। वो एक वार्म अप कर दिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति एक प्रार्थना के रूप में हमारा बच्चे प्रस्तुतकरण करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सानवाड़ा का आवाज सुनेंगे। लेकिन सर जी तो सभी बच्चों को वार्म अप करा दिए, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और हमें बहुत खुशी लग रहा है। बच्चों का आवाज न हो और हम विद्यालय में आए, हम भी बच्चे बनकर बच्चों का साथ रूबरू होंगे और बच्चों का अंत में जो भाव भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए पहला प्रस्तुति हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती को याद करते एक प्रार्थना के रूप में, याद के रूप में सभी बच्चे इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सबका आवाज ही उनका पहचान होगा, जब आवाज सुनेंगे वो आवाज सुनते ही अरे ये हमारा गुड़िया का आवाज है, हमारा सुगना का आवाज है, हमारा सुरेश का आवाज, वो आवाज में दम होना चाहिए। और हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए होवनहार टैलेंट बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे, इतने बच्चे फिर भी सिलेक्टेड बच्चे कुछ उपस्थित है तो उनको हम स्वागत करेंगे। अपना अपना नाम, कौन सा क्लास और कौन सा गांव से आते हैं, कौन सा फली से आते हैं वो बताएंगे। रेडी? ओके, बताइए।
2: दरिया मेरा नाम है।
1: जी वेरी गुड। और कौन सा क्लास दरिया?
2: सातवीं।
1: हमारा दिल तो दरिया जैसे होना चाहिए, पूरा बहते हुए। हाँ नेक्स्ट।
3: मेरा नाम है पूजा कुमारी।
1: हाँ
3: सातवीं में पढ़ती हूँ।
1: वेरी गुड पूजा। घर में और कौन कौन है बताइए?
3: मम्मी पापा और चार बहने।
1: अरे वाह।
3: और एक भाई।
1: भाई है। सबसे बड़े कौन है, भाई ना बहन?
3: बहन।
1: बहन नाम क्या, बड़ी बहन का नाम बताओ?
3: मनु।
1: मनु और पूजा। पूजा को तो भाई हम पूजा पाठ करते हैं। चलिए नेक्स्ट।
4: मेरा नाम है राधा कुमारी।
1: हाँ राधा कृष्ण, अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी कुछ दिन पहले हम गया और राधा को कौन याद करेंगे, राधा भी ना कृष्ण का अधूरा है। तो राधा बोलिए आगे, कौन सा क्लास?
4: आठवीं में पढ़ती।
1: वेरी गुड आठवीं। नेक्स्ट।
5: मेरा नाम मीतल है।
1: हाँ मीतल। ओके
5: आठवीं क्लास।
1: आठवीं क्लास। नेक्स्ट।
6: मेरा नाम कीकी कुमारी है, आठवीं क्लास।
1: वेरी गुड। तो श्रोता मित्र, ग्रामवासी और खासकर हमारा माता पिता अभिभावक सुन रहे ध्यान से, बच्चे एक प्रार्थना करेंगे। सब बच्चे रेडी, प्रार्थना मुद्रा में रेडी, उनको साथ देंगे पूजा और उनका दोस्त को, शुरू करेंगे एक प्रार्थना।
7: दया

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और हमें खुशी है इस तरह बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महात्मा होते हैं, और बच्चों का अंदर में जो भावना है, जैसे परमात्मा से हम शक्ति लेते हैं, और प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती का साथ साथ उनका सभी परिवार को, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव सबको याद करते हैं, और जब विद्यालय में आते हैं तब भी घर में तो पूजा पाठ करते हैं, और हम पूजा पाठ अगरबत्ती करते हैं, और सभी को धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। बच्चों को एक मंच आवश्यकता था, उनका आवश्यकता को आज पूर्ण करने के लिए रेडियो मधुबन खुद स्टूडियो पहुंच गया, और बच्चों को स्टूडियो में जैसे बच्चे अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं इस तरह प्रस्तुतिकरण आज दिए, तो हमें खुशी है जब इस तरह कार्यक्रम को उनका माता पिता अभिभावक भाई लोग बहन दीदी काका काकी नाना नानी दादी माँ सुनेंगे, अरे ये तो हमारा पूजा का आवाज है, क्या बात कहेंगे, और पूजा को शाबाश देंगे, और नामांकन में भी वृद्धि होगा क्योंकि बच्चे पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में आकाशवाणी में भी आते हैं, और सरकार को भी धन्यवाद क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम को लेकर विद्यालय में पहुंचे, और विद्यालय का आवाज को, बच्चों का आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक स्टेज आज दिए हैं, तो इसका श्रेय तो संस्था प्रधान और सभी स्टाफ को जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर में जो अनुशासन है आज देखने को मिल रहा है, और बच्चे तो अनुशासन में अपना कार्यक्रम सुना रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनाएंगे, है ना, पूजा एंड पार्टी सब सुनाएंगे, और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, क्योंकि विद्यालय एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम में आज बच्चों को भाग लेने के लिए खुशी से मंच दे रहे हैं, और इस मंच का फायदा ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को कभी कभी मिलता है आज मौका मिला तो मौका का फायदा ले रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में पूजा एंड पार्टी, सभी को नाम जो पहले ग्रुप थे वही ग्रुप को पुनः वंस मोर और एक प्रस्तुति देने के लिए रेडियो मधुबन उनको स्वागत करते हैं। और बच्चे अपना दिल का बात को देशभक्ति का माध्यम से सुनाएंगे एक गीत। रेडी सभी बच्चे, सभी एक ही जैसे कदम में कदम मिलाकर जैसे चलते हैं, बोल में भी एक ही साथ ऐसे। कौन सिखाता है? मैंने शिक्षक गण सिखाता, इसलिए विद्यालय में आना जरूरी है। विद्यालय में आएंगे तो सीखेंगे, विद्यालय में आज जो नहीं आया उस तो आज नहीं बना, रेडियो में बोलने के लिए उसे मौका ही नहीं मिला। इसलिए हर रोज जब स्कूल खोलेगा आना ही है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई में सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा? नियमितता, नियमित रेगुलर आना चाहिए। जो नहीं आएगा उसका गया, आज उनका प्रोग्राम गया जो नहीं आया उसका। कौन कौन नहीं आया आज? पूजा आज कौन नहीं आया, नाम बता देखी।
1: जनता दुर्गा।
0: अच्छा दुर्गा और
1: जनता
0: वो नहीं आए, देखो उनके लिए तो गया आज प्रोग्राम, देख तो सुन नहीं पाएगा, आप उनको बता देना, इसलिए रेगुलर क्लास को आने के लिए सजेशन देना। चलिए और एक प्रस्तुति के लिए रेडी? ओके चलिए शुरू करते।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। देश हित में एक देशभक्ति गीत और उसमें पूरा भारत का महिमा का साथ साथ सभी वर्ग जो भारतवासी है सभी का महिमा है और हम सब सैनिक हो चाहे कृषक हो चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चे हो सभी का महानता सभी का योगदान रहता है तब हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा और हम भारत की जय कहते। बोलो भारत माता की। वाह क्या बुलंद आवाज है सर, क्या आवाज बच्चों को सिखाया है और ऐसे होना चाहिए। और राणा प्रताप को कौन भूल पाएगा, राजस्थान का मिट्टी का जो खुशबू, राजस्थान में राजा महाराजाओं का निवास है और आज भी बच्चों का अंदर में वो जोश होश और बुद्धि से तेज होकर अपना बात को रखते हैं। पहला बार आए कोई झिझक नहीं कोई डर नहीं और अपना आवाज को बुलंद करते हैं। फिर से बोलेंगे भारत माता की। वंदे वाह वाह। और हमारा भारत कितना महान है, जितना भी महिमा करे भारत का कम ही पड़ेगा। और जिस भारत में स्वयं परमात्मा स्वयं भगवान आते 33 करोड़ देवी देवता का निवास स्थान है और माउंट आबू सब तीर्थ में तीर्थ महान, माउंट आबू सर्व महान है क्योंकि स्वयं परमात्मा का अवतरण भूमि है माउंट आबू राज। क्योंकि हम बच्चे रहेंगे तो आबू राज परिक्रमा करेंगे है कि नहीं। तो बहुत खुशी लग रहा है, सभी बच्चों को धन्यवाद देते और इस गीत में ही सार समाया हुआ है। चलते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। पूजा का नाम मुझे बार बार आ रहा, पूजा खड़े हो जाइए। पूजा पूजा के बाद मजा आ रहा है ना पूजा। हाँ पूजा तुम बताओ घर में कोई नया चीज जो आता है, वैसे आम का सीजन में आम मिलता है ना आम। हाँ। पहले घर में जो आएगा आम लेकर पापा की मम्मी लेकर आएंगे, पहले किसको देते हैं? घर में तो बहुत सारे लोग है, मम्मी पापा चाचा नाना नानी भाई बहन प्यारा भाई, किसको देते हैं?
1: सब मिलकर
0: सब मिलकर खाना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सब मिलकर भाई को भी देगा तो भाई क्या बोलेगा? बहन को दो। बहन को दो देंगे तो बहन बोलेंगे भाई को दो। भाई क्या बोलेगा? ना पापा को दो मम्मी को दो। हम सब मिलकर खाएंगे तो एकता में बल है ना।
1: हाँ।
0: एकता में मिठास है। बोले छोटा मिलेगा प्रसाद जैसे किन्तु खुशी मिलना चाहिए। तो कोई भी चीज घर में आते क्या करेंगे? सब मिलजुल कर खाना चाहिए ना बच्चे। कोई भी चीज नया चीज आता है चाहे कपड़ा हो चाहे खाद्य हो चाहे कुछ भी हो तो सब मिलकर खाएंगे ना। जैसे आज का प्रोग्राम में बच्चे गीत गा रहे, तुमको भी मिला ना चांस गाने के लिए। इसका मतलब हम सब मिलकर गाए कि नहीं? हाँ, इसलिए सब मिलकर करना चाहिए। एकता क्या कहेंगे?
2: एकता
0: यूनिटी।
2: यूनिटी
0: यूनिटी मतलब बल। जैसे कोई भी काम असंभव काम भी संभव होगा एकता से। ओके पूजा और बताइए तुम्हारे दोस्त को उन्हें पूजा।
1: दरिया
0: दरिया। अभी तो श्री कृष्ण और सुदामा का महिमा सुनते हैं है ना। कृष्ण और सुदामा दो दोस्त है ना, इनका साली पूजा का दरिया। दरिया तुम बताओ तुम्हारे दोस्त का नाम बताओ।
1: पूजा।
0: अरे वाह पक्का होगी। पूजा बोलता दरिया, दरिया बोलता पूजा। वेरी गुड। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए चलिए चलिए आगे बढ़ते हुए इस कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए बच्चे उपस्थित है। आज तो बच्चिया ही पूरा लॉटरी ले रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चा कोई गुड्डा नहीं आ रहा, सभी हमारा परिया है, छात्राएं इस कार्यक्रम को सजा रहे। पहला जमाने में छात्र आते थे, अभी तो छात्रा ही आते हैं, लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को और माता पिता को और समय को भी। चलिए और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए दो छात्रा उपस्थित है, तो क्या नाम बताएंगे?
2: पवनी।
1: पवनी
2: पवनी
1: हाँ, तो पवनी पवनी दो डबल सर को कैसे याद है? तो दोनों जैसे जुड़वा होते हैं, नाम भी काम भी गीत भी, तो इनका नाम भी सेम और गीत भी सेम गाएंगे, है ना? दोनों पवनी दोनों दोस्त है और नाम सेम है, और मुझे तो लग रहा था जुड़वा, लेकिन जुड़वा नहीं है। अभी बताएंगे और जब परिचय मिलेगा तब पता चलेगा दोनों कौन है। अपना नाम तो पवनी है, कौन सा क्लास?
2: छठी।
1: छठी। और कौन सा गांव से?
2: संगवाड़ा।
1: और तुम्हारा पापा का नाम?
2: सबलाराम।
1: तुम बता देखी।
3: छठी क्लास, मेरे पापा का नाम सुरूपाराम।
1: हाँ, इसमें पता चल गया दोनों का पापा अलग है और दोनों जुड़वा नहीं है। चलिए एक प्रस्तुति करेंगे, सुनाएंगे बढ़िया से। खुशी है? अच्छा, बड़ोगर क्या बनेगी पवनी? तुम बताओ, पहला पवनी बड़ोगर क्या बनेगी?
2: पुलिस।
1: अरे बाप रे, पुलिस बाप रे, चोरदा भ्रष्टाचारी लोग तो दौड़ेंगे भागेंगे और छुपेंगे आपको देखकर, है ना? पुलिस का काम क्या होती है पवनी, बताओ देखी?
2: चोरों को पकड़ना।
1: हाँ, चोर को पकड़ना, सजा देना और उसको पुलिस स्टेशन से लेकर पूरा न्याय देना। ओके पवनी, तुम क्या बनेगी?
2: मैम।
1: हाँ मैम, मैम मतलब मैडम बनेगी, शिक्षक शिक्षेत्री करेगा, है ना? शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण, सब बच्चों को चरित्र देंगे, है ना? अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा। चलिए शुरू करते हैं एक गीत।

0: जाए।
1: क्या बात क्या बात, आज तो भारत वासियों को याद किए सभी प्रदेश का, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ओडिशा, बंगाल, जितना हमारा देश के अंदर में राज्य है सभी राज्य का नाम को याद करते हुए उनका जो गीत, संस्कृति, खान पान सब को याद किए, क्योंकि अनेकता में एकता है, भारत एक है, हम सब एक है, बोलो हम सब एक है, वाह हम सब एक है, बोलो हम सब एक के है, और एक के है, एक मतलब ऊपर वाला के है, सभी ऊपर वाला का है कि नहीं, सब भगवान के है कि नहीं, इसलिए हम सब एक है और एक के है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए दोनों छात्र को, पवनी है ना, पवन मतलब क्या जानते हैं पवनी,
0: हवा,
1: हवा, वाह ताली बजा, पवनी मतलब हवा, पांच तत्व होता है, हवा का बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं, हवा नहीं होगा हमें बहुत गर्मी महसूस होगा, शीतलता नहीं मिलेगा, हवा को देख सकते बच्चे
0: नहीं।
1: तो कैसे जानते आप लोग हवा है बोल के, कैसे जानते पवनी, तुम्हारा नाम पवनी है तो बताओ हवा को कभी देखा है, पवन को देखा है, बताओ कहाँ देखा है, कैसे देखता है, देखने में कैसे है इसका, जैसे पंखा चल रहा है हवा दिखाई दे रहा है ना, पंखा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है पवनी, पंखा दिखाई दे रहा है, लेकिन महसूस क्या हो रहा है, हवा का महसूस होता है, हवा के बारे में जानकारियां है लेकिन देख नहीं सकते, हवा के बारे में जानकारियां है, हवा क्या क्या देती है बताओ देखिए, ऑक्सीजन, वाह होशियार बच्चे, वाह ऑक्सीजन साइंटिस्ट बनेगा, हाँ नेक्स्ट, और क्या देती हवा,
0: हवा नहीं होती तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है,
1: हाँ शीतलता देती है हवा, हमको ठंडक देती है, और क्या देती है बता पवन, तुम बता हवा से हमें क्या मिलता है, एक तो ठंडक हो गया तो ऑक्सीजन होगा, और हवा नहीं होगा तो हमारा कपड़ा गीला वाला कपड़ा सूखेगा
0: नहीं,
1: धूप भी चाहिए और हवा भी
0: चाहिए,
1: हवा में रख दो तो कपड़ा सूख जाएगा कि नहीं,
0: सूख जाएगा।
1: तो पवनी अपना बात को रखे, बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे, इसका बाद अगला प्रस्तुति, तो सभी को धन्यवाद और खासकर दोनों पवनी को धन्यवाद देते हैं, है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज विद्यालय के बच्चे आज पूरा सभी प्रस्तुति दे रहे हैं, और खासकर देशभक्ति, भक्ति और अभी लोकगीत, देसी गीत सुनेंगे सभी। सभी साथ देंगे बच्चे हमारा, सभी साइलेंस में रहेंगे। और हमारा इस कार्यक्रम को मैंने सोचा था सिर्फ बालिका ही भाग लेते हैं, गुड़िया ही भाग लेते, लेकिन गुड्डा भी कम नहीं, हमारा बालक छोकरा भी अपना इस कार्यक्रम को बोला हम क्यों पीछे रहे, खाली बहन को आगे दे रहे, हमको भी तो चाहिए चांस। आज हमारा पांडव पांडव सब पहुंचे, पांडव मतलब छोकरा। चलिए सभी का नाम बताएंगे।
1: मेरा नाम मुकेश कुमार।
0: मुकेश भाई ओके।
2: रविंद्र कुमार।
0: रविंद्र, मुकेश रविंद्र ओके।
2: विक्रम कुमार।
0: विक्रम, वाह क्या नाम है।
3: मेरा नाम है निकेश कुमार।
0: निकेश, सभी को स्वागत करते हैं एक प्रस्तुति जो कि देसी गीत सुनेंगे, शुरू।
4: जय पासी आउने आया जाने जाने।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और बच्चे खुशी से आज इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और अंतिम प्रस्तुति में एक गुलदस्ता जैसे सभी आवाज, चाहे गुजराती हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे देशभक्ति हो, सभी प्रस्तुतियां जो एक अंतरा बा एक मुखड़ा भी हो तभी गीत में चार चांद लगा देता है, जिसे गुलदस्ता में सभी वेराइटी का फूल होता है। तो ये आवाज का दुनिया में भी सभी का आवाज, चाहे हमारा राजस्थानी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जो भी हमारा भारत में निवास करते, सभी इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं और हमारा गीत के माध्यम से देश का हित में, जनहित में प्रस्तुत किए। सभी को अच्छा लगा और कभी आएंगे तो बढ़िया से प्रस्तुतिकरण करेंगे। वेरी गुड। चलिए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दिन भर की थकान के बाद जब शाम ढलने लगती है, यादों की एक नई किताब चुपके से खुलने लगती है। नगमों का गुलदस्ता सजा कर लाए हैं आपकी खातिर, क्योंकि सुहानी शाम में अपनों से दिल की बातें जमने लगती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो की केन हो। मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद स्टेशन, रेडियो स्टेशन मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों आज है 21 सितंबर की खूबसूरत और सुहानी शाम, और शाम ढल चुकी है और समय हो गया है हमारे और आपके सबसे पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बातों का। तो दोस्तों हाथ में चाय की चुस्की ले लीजिए, चाय ले लीजिए, खिड़की के पास बैठ जाए या जहाँ भी हो, अपने आप को आराम से रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे यानी कि अगला एक घंटा हम और आप मिलकर पुरानी तरानों को खूबसूरत यादों में पिरोने वाले हैं। और हमारे शायद सबसे पहले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, चलिए सुनते हैं उनसे। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से, कैसे हो सर?
0: बढ़िया सुरेश भाई, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग।
1: बहुत बहुत अच्छे सर, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, क्यों कि आप जो बहुत अच्छी बात पहले बता दी, सबको नमस्कार कर दिया, सबको बात बता दी, तो ये क्या है सर, आप तो पहले अच्छा अच्छा बोल देते हैं तो हमको खुशी रहती है। कभी कभी क्या है, हमारे बुरी लाजी सुबह जल्दी जल्दी आ जाते हैं तो आपको जो कहना है वो रह जाता है।
0: ये चीज़ होती है।
1: हम बुरी लाजी से कहते हैं कि आप ऐसी बात मुझे गलत समझना नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ आप अच्छी आप बात पहले बता दे, बाद में आप
0: बिल्कुल नहीं, कोशिश ये रहती है, लेकिन भुरीलाल जी के भी मन के अंदर की वो उत्सुकता है कि वो चाहते हैं कि
1: जल्दी बात करने के लिए।
0: सबसे पहला कॉल मेरा हो और मैं ही रेडियो में,
1: उसको क्या है, उसको खुशी रहती है कि चलो मैं बात कर लूं पहले।
0: जी बिल्कुल,
1: तो हमारे भुरीलाल जी थोड़ी देर से आए हैं, नहीं आए इसीलिए मैंने सोचा चलो अब मैं ही बात कर लूं, आपका जो बोलना आपने बोल दिया है तो मैं बात कर लूं।
0: क्या बात है, वाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चलो अच्छा लगा, और आप आ गए, सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है,
0: बिल्कुल,
1: तो आज के दिन की भी शुभकामनाएं सर। और मैं बताऊँ तो आज पूरा जो आसपास के गांव का जो अंबाजी में जा रहे हैं लोग पैदल,
0: जी,
1: तो ये भी एक खुशी की बात है। अभी बहुत लोग अंबाजी जा रहे हैं पैदल, रथ लेके, वो सभी साथ में संगठन में जा रहे हैं। अभी मैं बताऊँ तो परसों भी हमारे कई सारे लोग गए, वो माता जी का रथ लेके, और आज भी जाने वाले हैं, अभी तैयारी हो रही है, और थोड़ी आधा घंटे घंटे के बाद वो भी निकल जाएंगे सभी।
0: जी।
1: और मैं बताऊँ तो सर, हमारे पूरे गाँव है उसको जो गांव का जो वो नाका होता है वहां तक छोड़ने जाते हैं सभी, पूरा गांव, सभी लोगों को
0: जी।
1: और वहाँ एक खुशी का माहौल भी रहते हैं कि इतने लोग वहाँ सभी को छोड़ने जाते हैं, और लास्ट में जय अंबे जय अंबे का नारा लगा के सभी लोग वापस आते हैं, और वो जाने वाले वहां से निकल जाते हैं, और जो नहीं जाना है वो वापस एक अच्छा माहौल लेके करके आ जाते हैं सर।
0: बिल्कुल,
1: तो ये भी एक खुशी की बात होती है सर, इतने लोग साथ जाते हैं और लोग साथ में इसको भेजने जाते हैं,
0: और
1: एक अच्छा माहौल भी रहता है सर। तो कई वहाँ अंबाजी में देखो, भाद्रवी पूनम में 25 से 30 लाख 40 लाख लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: अंबाजी में, और कई सारी वहाँ भक्तमक आते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, अंबाजी माँ का जय जयकार बोलते हैं
0: जी।
1: तो चलो आज मैं एक गाना ही दे दूँ, ऐसा ही गाना दे दूँ कि
0: जी,
1: बड़ी दूर से आए प्यार का तो फलाए, वो अंबाजी जाते हैं माता जी के धाम जाते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं,
0: बिल्कुल,
1: बस ऐसा ही गाना मैं आपको आज भेज रहा हूँ। सभी हमारे साथ के मित्रों, हमारे बुरेलाल जी हैं, बुरा राम जी को भी हमारा राम राम है, हमारे सुभाष भाई भी आएंगे, मदन लाल जी भी आएंगे, हमारे फिरोज भाई पालनपुर वाले भी आएंगे, तो सभी को एक मौका करने का जरूर मिल जाएगा सबको। तो हमारे तरफ से सबको नमस्ते,
0: नमस्कार,
1: नमस्ते,
0: थैंक यू सो मच सुरेश भाई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सुरेश भाई ने, और भादरवी पूनम जो कि 20 से 26 तारीख के बीच में, ऐसा लग रहा है मुझे 20 से 26 शायद है, और अंबाजी मंदिर हमारे यहाँ पास में ही, अब रोड के पास में गुजरात बॉर्डर पे अंबाजी का जो बहुत ही बड़ा मंदिर है, वहाँ पे भादरवी पूनम का बहुत बड़ा मेला लगता है, और काफ़ी श्रद्धालु ऑलमोस्ट जैसे बताया सूरज भाई ने, 20-25 लाख लोग पैदल चल करके गाड़ियों से जैसे तैसे भी पहुंचते हैं मंदिर में, आरती दर्शन करते हैं और पूरी मनोकामनाएं अपनी पूरी करने की इच्छाएं जताते हैं। और ये जो बात है अंबाजी की, तो मैं भी कई बार हमने देखा है कि जब यहाँ से लोग पैदल पैदल चलते हैं तो रोड भी पूरे क्लोज हो जाते हैं और बहुत ही भक्ति भाव से लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जी हाँ, मंदिर में अगर कोई जा रहा है अंबाजी टेम्पल में और अपनी आरती के कुछ समय अगर उन्हें पता है तो मैं बता देता हूँ, मॉर्निंग में आरती 6 से 6:30 के बीच में है, दर्शन 6:30 से 11:30, फिर वापस शाम को 12:30 से 5 दर्शन के टाइमिंग है, फिर वापस शाम को आरती 7 से 7:30 है। ऐसे कुछ टाइमिंग्स है आरती के और दर्शन के। और कुछ ऐसा भी बताया गया है कि ध्वजा जो लोग लेकर के जाते हैं 5 मीटर से ज़्यादा की वहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ होगा उनका, और बसेस ऑपरेशन पे है और काफ़ी रास्ते भी शायद बंद भी है, तो अगर आना जाना कर रहे लोग बाइक गाड़ी से तो थोड़ा सा देख करके संभल करके जाए। और ये थी हमारी आज की बात। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और जो मैं बात कर रहा था, सितंबर का यह हसीन महीना और शाम की ये ठंडी हवा, ऐसे शाम हमेशा दिल को छिपे पुराने एहसासों को जगा देती है। जगाने से पहले हमारे साथ एक और हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, अंश करते हैं उनसे बात। हेलो,
2: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी, नमस्कार।
0: नमस्कार बाबू जी।
2: कंडीशन में फोन लगा रहा आपका, स्विच ऑफ बता रहा, स्विच ऑफ बता रहा बस।
0: अच्छा, स्विच ऑफ तो होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, किसी का कॉल भी चला था। सुरेश भाई हमारे
2: कवर क्षेत्र बाहर होगा या कुछ न कुछ है।
0: हाँ, हो सकता है, क्योंकि सुरेश भाई का भी कॉल चला था।
2: पहला कॉल मेरा आ गया, मेरे सुरेश भाई का आ गया तो भी कोई बात नहीं, हम एक ही बात है, हमारी माया एक ही है, तुम्हारी माया एक ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कोई बात नहीं, सुरेश भाई को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है। तो मेरा एक गाना दे रहा हूँ मैं।
0: जी बिल्कुल।
2: तुमसे डरकर कौन दुनिया में,
0: जी
2: मैं दिल से बात आ गई, काम शोर फिल्म का नाम, काम शोर किशोर कुमार की आवाज है।
0: बिल्कुल,
2: आज ये गाला हो जाएगा, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भूरा राम जी है, फिरोज भाई है, और वो क्या नाम उनका, फिरोज सुबह आपने सुभाष भाई लिया, वो महाराष्ट्र में
0: जी,
2: और उनकी मीठी मीठी आवाज के लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बहुत बहुत याद करता हूँ मैं
0: जी।
2: और अपने मदन भाई है, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल, सभी की तरफ से आपको भी प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद सो मच बुरी जी, बुरीलाल जी। या दोस्तों, यही प्यार की बातें जो हमें बड़ी पसंद आती है, लोगों के दिल से जो निकलता है एक दूसरे के लिए प्यार, यही तो मेरे रेडियो का सबसे बड़ा प्रेम है, खिंचाव है मेरे लिए भी, कि मुझे भी मंडे टू वेनजडे आप लोगों के बीच में ला देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं होते तो मेरे दिमाग में तो वही रहता है कि मंडे टू वेनजडे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सोमवार से बुधवार कहीं ना जाऊँ, जाऊँ तो उसके बाद गुरुवार के बाद ही ऐसा कोई प्लान बनाऊँ, और ना भी हो तो कोशिश मेरी ये रहती है। तो आप लोगों का जो ये प्रेम है हमें तक पहुंचा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि दिल के अंदर के कुछ एहसासों को ये बाहर लाती जैसे ही शाम होती है ना। हमारे साथ भी ऐसा होता कि शाम आती है, मंडे टू वेनसडे भी हम सोचते हैं कि भाई अब 8 बजने वाले, चलो बैठेंगे, पुराने गानों की कोई ऐसी यादें निकालेंगे और सुनेंगे। तो चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही सदाबहार नगमे के साथ जो आपके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तो ज़रूर से लाएगी। जी हाँ, और आज के कुछ गाने जो मैंने, 2-3 गाने ऐसे हमने सोचे हैं, शंकर जयकिशन जी की इसमें इनकी लिरिक्स है, और कोशिश है हमारी कि शंकर जयकिशन जी, मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी और ऐसे कुछ गानों को हम पेश करें। तो सबसे पहला गाना ही हम आपके लिए पेश करते हैं हसरत जयपुरी जी, शंकर जयकिशन जी के, इसमें सुनते हैं सबसे पहला ये गाना। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो गाना अभी हमने सुना, सन 1960 के दशक के सिनेमा की बात होती है, तो राज कपूर साहब की भव्यता, उनके संगीत का जादू सबसे पहले याद आता है। 1964 में आई फिल्म संगम ने ना केवल अपनी बेहतरीन कहानी और अभिनय के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके गाने आज भी, यानी कि 60 से भी ज़्यादा सालों के बाद, उतने ही तरोताज़ा और लोकप्रिय है। जो अभी हम ये गाना सुन रहे थे कि मैं कहाँ करूँ राम, इसमें वैजयंती माला जी की जो हिचकिचाहट थी, जब इस गाने की रिकॉर्डिंग और कोरियोग्राफी की बात चल रही थी, तो वैजयंती माला जी इस गाने को करने में थोड़ा सा झिझक रही थी। गाने के बोल बहुत ही अनौपचारिकता और चुलबुले थे। बुढ़ा मिल गया जैसे, उन्होंने लगा कि शायद यह उन पर जचेगा नहीं, लेकिन राज कपूर साहब की पारखी नज़र और हसरत जयपुरी साहब ने लिखे बोल ने ऐसा जादू जगाया कि वैजयंती माला जी के डांस मूव्स और उनके एक्सप्रेशंस आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर चुलबुले पलों में गिने जाते हैं। इस गाने का स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली और चंचल आवाज़ में गाया था। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने इसे जो ब्रास और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ इंडियन रिदम को मेल मिलाया था, उसने इस गाने को हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बना दिया था। गाने में राजेंद्र कुमार जी का शांत रहना और वैजयंती माला जी का उन्हें चिढ़ाते हुए नाचना दर्शकों को बहुत पाया था। जी हाँ दोस्तों, ये गाना भी कुछ ऐसा ही है, मैं कहा करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाँ हाँ बुढ़ा मिल गया। इसमें कुछ ऐसी कड़ियाँ भी है, जब मैंने उनको भेजा मेरी मोरनी सी चाल, सर में सफ़ेद उसके दांत बिगड़े, ऐसे कुछ बोल है, बहुत ही प्यारे लगते हैं जब हम ये गाना सुनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। अगला जो नगमा है, हमारी फरमाइश है हमारे सुरेश भाई की तरफ से। जैसे कि उन्होंने कहा कि अंबाजी में कई लोग दूर दूर से आते, बड़े दूर से आते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा पैगाम, ऐसा कुछ तोहफा अंबाजी मंदिर के लिए, तो चलिए सुनते हैं आज उन्हीं श्रद्धालु, उन्हीं भक्तों के लिए आज ये गाना हम फरमाइश के रूप में बजाते हैं, समर्पित करते हैं। सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: बड़ी दूर से

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में उपहार तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन तोहफा जो दिल से दिया जाए और जिसमें केवल निस्वार्थ प्रेम छिपा हो, उसकी कीमत

मुकेश जी की जोड़ी क्या ही कमाल कर जाती। कई बार ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसी पंक्तियाँ हो जाती कि क्या बात करें, है ना। गीतकार इंद्रो जी ने इस गाने में इतनी सादगी से दिल छू लेने वाले बातें की है। जब भी कोई मेहमान या अपना बहुत दिनों बाद घर आता है तो ये गाना खुद ब खुद होठों पर आ जाता है। इन लफ्ज़ों में कोई गुरूर नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक निश्चल दिल का पैगाम है कि हम बदले में कुछ मांगने नहीं बल्कि सिर्फ प्यार बांटने आए हैं। जी हाँ, तो हमारे सभी जो भी श्रद्धालु अम्बा जी की तरफ जा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत दिल से हम कहते हैं कि आप अपनी जो यात्रा है, पैदल चाहे बाइक से या कार से, जैसे भी आप जा रहे, अच्छे से सावधानी से हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले नगमे की ओर। जो हमारा अगला नगमा है ये हमारे भूरीलाल जी की तरफ से है। भूरीलाल जी ने बहुत ही प्यारा नगमा आज हमें पेश किया है, हमें फरमाइश के रूप में दिया है, और ये गाना मेरे भी फेवरेट्स में से है कि तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई। और जी हाँ, चलिए सुनते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जुबा पर आज दिल की बात आ गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे गाने जब भी मैं सुनता हूँ तो मेरे लिए तो मतलब इसके आप सारे लाइन सारे वर्ड्स आप सुनिए, एक एक जो भी इसके पैराग्राफ्स है वो सब आप सुनिए, इतने प्यारे, इतने दिल से गाए, इतने दिल से लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात जब किसी की मोहब्बत से पूरी तरह डूब जाता है, यानी कि जब बात हम दिल की करते हैं, तो दिल जब किसी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब जाता है तो पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक चेहरा नज़र आता है। जब तारीफों के लिए शब्द कम पड़ जाए तब संगीत दिल की बात बयां करता है। 1982 में आई फिल्म काम चोर का एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत गाना, रोमांटिक नगमा, जो अभी हमने सुना, जिसमें अपनी सादगी से हर प्रेमी के दिल में जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश रोशन और जया प्रदा जी की पर फिल्माया गया इस सुरीले गीत की, तुमसे बढ़कर दुनिया में। इस गाने को लिखा था मशहूर संगीतकार गीतकार अनजान जी ने और इसे संगीत से संवारा था राजेश रोशन जी ने। जी हाँ, इस गीत को अपनी रूहानी जादुई आवाज से सजाया था किशोर कुमार जी और अलका याग्निक जी। ये जोड़ी देखिए, किशोर कुमार जी और अलका याग्निक जी। गीतकार अनजान साहब ने इस गाने में निष्कपट प्रेम की और जो तस्वीर खींची है उसकी शुरुआत ही दिल को छू लेती है। इस गाने की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक दूसरे की शख्सियत और खूबसूरती की एक सच्ची और मासूम तारीफ है। ये गाना 80 के दशक के उन गानों में से एक है जो सादगी और सुरीलेपन का बेहतरीन मेल है। किशोरदा की मखमली आवाज़ और अलका याग्निक जी की शुरुआती दौर की ताजगी बरगी गायकी ने मिलकर इस गाने में एक अलग ही मिठास भर दी थी। और सची में मुझे भी ये था कि अलका याग्निक जी शायद 90s में आई है और 90s में उन्होंने अलका याग्निक जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए, बट 82-85 में ये गाना मतलब इतनी प्यारी आवाज़ उनकी देख करके तो सच में मेरे भी मतलब मुझे भी, मैंने पहले कहा ना आपको कि किशोर कुमार जी और अलका याग्निक की ये मैच देखिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले नगमे की और एक प्यारा सा नगमा और भी मुकेश जी की आवाज़ में हमारे इंतज़ार में है। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या गाना अभी हम लोगों ने सुना ना, क्या बोल थे इसके, क्या लिखा था इस पे, और ऐसा लग रहा था जैसे खुद राज कपूर जी इसको गा रहे हैं। खैर, इसको गाया है हमारे मुकेश जी ने, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे राज कपूर साहब की ही आवाज़ है। सबसे पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे, चलिए सुनते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो, राज कपूर जी ने गाया है शायद।
0: ये गाया है मुकेश जी ने।
1: नमस्कार सर, कैसे
0: नमस्कार।
1: हैं आप?
0: बढ़िया, आप कैसे हैं मदनलाल जी?
1: मैं बढ़िया रहता हूँ हमेशा मौसम के साथ, और आपकी आवाज सुन के रेडियो मधुबन की
0: क्या बात है।
1: और आज की यादों में,
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो हमें अच्छा बोले उनकी यादों में भी, और चाहे हमें कोई बात से गलत समझते उनको भी, बहुत उनकी यादों में भी खुश रहता हूँ।
0: क्या बात है, वाह क्या बात कही।
1: जी जी, हमें कांटों से भी दोस्ती और फूलों से भी यारी।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो पूरे शायराना अंदाज में है।
1: जी जी, हमारा यही खुराक है, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना
0: जी।
1: हाँ, कभी मान लो को किसी बात से कोई ऐसा है तो बस एक ही नजर रखने की, बस आसपास क्या हो रहा कुछ नहीं, बस अपने मतलब एकदम शांत में रह जाने का
0: जी।
1: क्या जब मूड मौसम बना के फिर गाड़ी चालू करने की और
0: बिल्कुल
1: जी। और आपको नमस्कार करते हैं खुशी के लगने और दिल की बातों को, और अभी जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं रेडियो से या दूर दूर से या गांव से, इन सभी को नमस्कार, और बस सभी शो अच्छे लगते हैं, और भी बहुत सारी बातें मगर एक गाना गाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: भक्त पिक्चर का गाना है और रवि का संगीत है, और गाने के बोल है ये, दिन बाहर के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करे, दुश्मन है जान के लाखों दिल संसार के, गम के सहारे आजा प्यार करे, ऐसी वैसी बातें कभी दिल से निकाल दे, छोटी सी जिंदगी हंसी पे गुजार दे, बाहर के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करे।
2: महेंद्र कपूर की आवाज है और बड़ी अच्छी
0: जी। फिर से एक बार आप मुझे बता दीजिए कौन सी मूवी से ये गाना अभी आपने बताया
2: है?
0: कौन सी मूवी का ये गाना था?
2: ये वक्त पिक्चर का गाना है।
0: वक्त मूवी का, क्या बात है।
2: जी हाँ, रवि का संगीत है और बड़ा प्यारा संगीत है
0: जी,
2: और इसमें अदाकार शशि कपूर और बहुत सारे हैं, पानी में गाते हैं, दरिया में।
0: चलिए कोशिश करते हैं आपके लिए ये गाना हम बजाए और आपको दिल से सुनाए इसको। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू ओम शांति।
0: जी हाँ दोस्तों, तो हम जो बात कर रहे थे इस गाने के बारे में, आपने अभी जो गाना अभी अभी सुना मुकेश जी की आवाज़ में, मैंने जैसे बताया आपको कि ऐसा लग रहा था जैसे खुद राज कपूर जी इसको गा रहे, और राज कपूर साहब का ही आवाज़ लग रहा था कि दिल लगाकर आपसे पछता रहे हैं जाने मन, प्यार करने की सजा हम पा रहे हैं जाने मन। जी हाँ दोस्तों, 1960s के दशक के उत्तरधार में जब भारतीय सिनेमा नई नई लोकेशंस और विदेशी दौर की खूबसूरत तस्वीरों को पर्दे पर ला रहा था, तब 1967 में आई थी ये फिल्म अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म है अराउंड द वर्ल्ड, और ये ऐसी ही एक मूवी इंग्लिश में भी बनी है जिसमें जैकी चैन जी है, और ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है, वो भी कॉमेडी मूवी है। ये भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जो 70mm फॉर्मेट में, 70mm का जो हम पर्दा कहते थे, मैं बनी, और दुनिया भर के खूबसूरत शहरों में शूट की गई थी। इस गाने को लिखा था महान गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने, और संगीत से सजाया था दिग्गज संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने। जब भी मोहब्बत में थोड़ी सी शिकायत, थोड़ा सा दर्द और बेपनाह चाहत का एक साथ झलकती है, तो ये गाना सीधे दिल को छू लेता है। हसरत जयपुरी साहब के इन लफ्ज़ों ने मोहब्बत की गहराई भी और वह मासूमियत भी जो सिर्फ सच्चे एहसास में ही मिल सकती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ में यह नगमा और भी अमर हो जाता है। इस गाने की सबसे बड़ी खूबसूरत इसकी सादगी और शंकर जयकिशन साहब का वो सुरीला अरेंजमेंट जो बिना किसी शोर शराबे के सीधा दिल में उतर जाता है। राज कपूर साहब का अभिनय की सादगी और राजश्री जी की नज़ाकत ने इस गाने को पर्दे में जीवित कर दिया था। जी हाँ, ये गाना हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत में शिकवा भी वही कर सकता है जिसने सच्चे दिल से चाहत निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैंने अभी गाने में ये बोल मैंने सुने कि दिल तो पहले दिया, दिल को अपने रो चुके, पास जो पूंजी बची है हाय वो भी खो चुके। और एक और ऐसा ही एक लाइन मैंने यहाँ पे भी सुना था, आ गए बातों में हम दिल पे छूटी फुलझड़ी, आंख कुछ ऐसी लड़ी नौकरी करनी पड़ी। जी हाँ, कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा, अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि प्यार किया या प्यार में ऐसे कुछ हुआ, शर्तें आई और शर्तों में फिर उसके लिए हमें नौकरी करनी पड़ी, तो आप हमसे बिल्कुल शेयर कीजिए 9414151415 पर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगले नगमे की और। अगला नगमा सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मेरे को तो फोन आया था दीदी का, शिवाली बनता ऐसे ही बोले निर्मला बहन आ रहे हैं, तुझे पता है क्या विवाह का कुछ है? हाँ पता है, 25 27 है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। 1967 में आई फिल्म एक इवनिंग इन पेरिस, एंड इवनिंग इन पेरिस का नाम सुनते ही शम्मी कपूर साहब का वो बेफिक्र अंदाज, शर्मिला टैगोर जी की खूबसूरती और पेरिस की हसीन वादी आंखों के सामने आ जाती है। शम्मी कपूर जी के गानों में जो एनर्जी और मस्ती होती थी वो आज भी हमारे दिल को तरोताज़ा कर देती है। इस गाने को लिखा था महान गीतकार शैलेंद्र जी ने, संगीत दिया था दिग्गज जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने, और अपनी शानदार आवाज़ से सजाया था हमारे प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब ने। गाने के बोल में एक प्रेमी का वो विश्वास और मीठी चुनौती झलकती है जब वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि आज भले ही तुम मुँह फेर लो लेकिन कल फिर सामना होगा और तब तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि ये दिल वाला कोई नाचीज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। अभी अभी हमारे मदनलाल जी ने हमें कॉल किया और उनका एक प्यारा सा बेहद ही अच्छा गाना, दिन है बाहर के, चलिए सुनते हैं। ये रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों। और अभी जो हमने ये गाना सुना है वक्त मूवी से 1965 से, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि जी। इसे गाया था आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी ने। इसे लिखा था साहिर लुधियानवी जी ने। और बहुत ही प्यारा ये गाना है। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिन के सहारे आजा प्यार करे। चलो दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, और फिर करेंगे वादा हम आपसे मिलने का, यानी कि कल हम फिर से इसी वक्त ठीक मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन, क्योंकि जो अगला कार्यक्रम है वो है सेहत स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य की जानकारी के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन और हमें दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, खमा गणी जी।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम ले आने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति हमारी सही समझ को बेहतर करना है। हम पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य से जुड़े हुए अनेक चीजों को जानते आए हैं, मगर जितना जितना ज्यादा हम प्रगतिशील होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम वैज्ञानिक और एक विज्ञान से ओतप्रोत सोच से गुजर रहे हैं, जितने आसानी से हमारे हाथों में टेक्नोलॉजी और जानकारी आती जा रही है, उसके कारण हम प्रायः इंटरनेट पे जिन चीजों को देख लेते हैं उन्हें ही सत्य मान लेते हैं। जो सोची समझी चीजें थी, जो सदियों से हम करते आ रहे थे, या परंपरागत चिकित्सा की जो हमारी विधियां थी उसकी जो समझ थी, वो भी हम खोते चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, व्यक्ति मुझे कितने बजे खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए क्या नित्य कर्म करने चाहिए, इस पर भी लोगों की समझ दिनों दिन घटती चली गई है। और हर चीज के लिए हम या तो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, या फिर किसी भी जानकारी को जब हम डॉक्टर्स या किसी चिकित्सा कर्मी से सुनते भी हैं, तो भी उसे हम इंटरनेट पर सर्च करके उसे रीवेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसे सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जो भी जानकारी हम इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं वो संपूर्ण नहीं हो सकती है। जब आप एक चिकित्सकीय सलाह ले रहे हैं तो उस सलाह को सही अर्थों में समझने का प्रयास करने की भी जरूरत है। शरीर में जब भी कोई व्याधियां आती हैं या कोई ऐसी बीमारी आती है, तो उसका कारण यही होता है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण वो व्याधि के रूप में शरीर में प्रस्तुत होती है। आइए स्वास्थ्य जगत के ही कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि रोग क्यों हो रहे हैं और उनसे निदान पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य जगत से एक ऐसे ही एक्सपर्ट जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है और आज भी स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो इसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, हम हमेशा स्वास्थ्य के प्रति क्या इतने इग्नोरेंट रहे हैं या बेसमझ रहे हैं, या पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ कुछ चीजें स्वास्थ्य संबंधी मिलती आई हैं, एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो जानकारियां पहुंचाते गए हैं, पहुंचाते आए हैं लोग, मगर आज यकायक क्या हम इन चीजों से दूर हो गए, या कोई कारण रहा है जिसके कारण हम आज ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? प्रायः लोग ये उदाहरण देते हैं कि हमारे दादाजी के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी, वो लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे जितने हम पड़ रहे हैं। ये चीज अक्सर सुनने को मिलती है। आप एक चिकित्सकीय दृष्टि से इस चीज को कैसे देखते हैं?
1: अब हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसके लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, दूसरा हमारी जनसंख्या बहुत हो गई है, और तीसरा हमारा भोजन पूरा गड़बड़ हो गया है, और शारीरिक श्रम जो है हमारा वो कम होता चला जा रहा है। श्री भैया के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने अपना बचपन एक ऐसी जगह बिताया जहां मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी, वो एक फैक्ट्री या एक ऐसे परिसर में रही, और बातचीत में भैया ने बताया कि 2 मंजिले और 3 मंजिले तक वहां पे घर था। और मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूं कि मेरे शहर में भी जब विश्वविद्यालय बना था तो वहां पर 2 मंजिला इमारतें बनी थी लोगों को रखने के लिए, जो मेडिकल कॉलेज बना था वो 2 मंजिला बना था। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मेरे पूरे शहर में लिफ्ट जो थी वो सिर्फ फर्टिलाइजर फैक्ट्री में लगी थी, वो भी चिमनी में ऊपर जाने के लिए। और वो लिफ्ट लिफ्ट नहीं था, एक लोहे का जाल था से घिरा हुआ एक ट्रे थी जिसमें खड़े होकर आप ऊपर जा सकते हैं। और हम लोग बड़े खुश होते थे जब छोटे थे तो फैक्ट्री विजिट में वो आपको ऊपर ले जाते थे और वहां से पूरा शहर दिखता था। आज अमूमन बहुत सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लोग रहने लगे हैं, वहां लिफ्ट लग गई है, लोग जो है वो सीढ़ी चढ़ना को अवॉइड करने लगे हैं, फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करने लगे हैं। पहले ऋतु अनुसार ही फल मिलता था, जब ठंडक थी तब सेब मिलता था, गर्मी थी तो आम मिलता था, और फल देख के हम लोग समझने लगते थे कि हाँ हाँ ऋतु में परिवर्तन आ गया है। पहले बहुत सारे लोगों के घर में सिर्फ पंखा था और जो निम्न वर्गीय परिवार थे उनके यहाँ पंखा भी नहीं था। जो श्रोतागण जिनकी उम्र आज 40 से ऊपर होगी उन्होंने बचपन में हाथ से झलने वाला पंखा देखा होगा, आज वो कहीं नहीं दिखता है। अमूमन सबके घर में जो एक लालटेन और एक हाथ से झरने वाला पंखा, ये दोनों चीजें गायब हो गई हैं, क्योंकि अब लालटेन की जगह टॉर्च आ गया है, इन्वर्टर आ गया है, हमारी बिजली की सप्लाई अच्छी हो गई है, और जो पंखा है वो मैकेनिकल पंखे की जगह अब मोटराइज्ड पंखे सबके घर में लग चुके हैं, और पंखा छोड़िए अब तो बहुत सारे लोगों के घर में एसी लग गया है। पहले गर्म पानी नहाने के लिए करना पड़ता था, गैस के ऊपर गर्म पानी होता था। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में एक पीतल का बहुत बड़ा सा ड्रम था, उसके बीच में एक लोहे का पाइप डला हुआ था, उस लोहे के पाइप में कोयला जलता था और उससे लोग गर्म पानी जो था वो इस्तेमाल करते थे। अमूमन चिकित्सालय के कमरों में भी गीजर नहीं लगा था, तो हम पहले उस वातावरण में थे जहां हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ठंडा हो या गर्म, वो झेल ले रहे थे। हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे थे और हम ऋतु के अनुसार भोजन कर रहे थे और हम बीमार कम पड़ रहे थे। और उसका एक और बड़ा रीजन कि पर्यावरण बहुत शुद्ध था। हम लोग ने कभी ये बात नहीं करी कि पॉल्यूशन है या नदी पॉल्यूटेड है या वातावरण में पॉल्यूशन है। जो अक्सर हम लोग जब बातचीत करते हैं सुनते हैं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि स्मॉग बन गया है, ये चीजें हम लोग ने सुनी ही नहीं थी बचपन में। हम लोग सिर्फ कोहरा जानते थे कि कोहरा बहुत हो गया, कैसे निकलेंगे। हम लोग पॉल्यूशन के बारे में कभी ये नहीं सुने थे कि पॉल्यूशन इतना आ जाएगा कि हम लोग देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हमारा जो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाएगा। हम लोग ने भैया बचपन में पानी हैंडपंप से पिया है, नलों से पिया है, आज आप देखिए कि व्यक्ति बोतलों में पानी पी रहा है। आज बच्चे जो है वो उनको ये बात मालूम ही नहीं है कि ट्रेन में जब चला करते थे तो पानी का बड़ा वाला कैंपर लेके चला जाता था उसमें भर, क्योंकि पानी कभी बोतलों में बिकता ही नहीं था। तो समय के साथ पर्यावरण में कमी आई, हमारे रहन सहन जो है गड़बड़ हुआ, हमारा एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, वो चीजें कम हुई। अच्छा, हम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग कहेंगे अरे हम पहले तो व्यायाम करते नहीं थे, देखिए अब तो मैं आधी घंटा कर रहा हूं, पर पहले हम जाने अनजाने में बहुत व्यायाम कर रहे थे। हम साइकिल चला रहे थे, हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हम बाजार से सब्जी लेने जा रहे थे, इतनी हमारे पास संसाधन ही नहीं थे कि हम रोज रोज बाहर का खा पाए। तो अब चीजें सुलभ हो गई हैं, चीजें जल्दी मिल पा रही हैं, बहुत ज्यादा मिल पा रही हैं, तो इसका जो असर है वो हमारे शरीर पे दिखने लगा है।
0: ये सारी चीजें जब हम देखते हैं कि कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो बदलाव के कारण हम अपने रहन सहन को, अपने खान पान को बदलते आ रहे हैं, हमारे आहार विहार में जो परिवर्तन आता जा रहा है, शारीरिक श्रम की कमी, ये सारी चीजों की वजह से आज स्वास्थ्य में और बढ़ती हुई आबादी के कारण भी हम ये चीजें ज्यादा देखते हैं कि भाई व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और इस बीमारी के लिए वजह हम स्वयं है और हमारी जीवन शैली है ज्यादातर। अब जब हम पिछले दिनों बातचीत कर रहे थे तो एक ऐसी चीज जिसके बारे में व्यक्ति अक्सर बातचीत करने से शर्माता है वो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या, यानी कब्ज की समस्याएं। और कब्ज के बारे में आप ये बात बता रहे थे कि अगर हम अपने भोजन पर ही ध्यान दें तो फिर कब्ज की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। प्रायः ये चीज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मीटिंग में बैठा हुआ है या फिर ऑफिस के काम में लगा हुआ है या कोई ऐसे जगह पर है जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पा रहा है, या समय पर भोजन नहीं कर पा रहा है, कई लोग शौचालय साफ सुथरे नहीं मिलेंगे, या घर के बाहर शौच पर जाना मुश्किल है, इसलिए वो अपने जो नेचुरल कॉल है, जब उन्हें शौच में जाने जैसा लगता भी है तो उसे रोक लेते हैं। तो ये सारी चीजें कारण बन रही हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, ये बात समझ में आती है। अब प्रश्न उठता है कि कब्ज आखिर कब तक, मतलब कब तक अगर मैं इस चीज को बिना ट्रीट किए हुए, इग्नोर करते हुए अगर ऐसे ही चलता रहूं तो फिर क्या होगा? क्योंकि प्रायः लोग कह देते हैं अरे कोई बात नहीं, चल तो रहा है ना गाड़ी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 2-3 दिन में एक बार पेट साफ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो रहा है, उसे भी एक नया नॉर्मल, एक न्यू नॉर्मल समझ के लोग चलते हैं। तो क्या ऐसे चलना सही है? अगर हम कब्ज जैसी चीज को इग्नोर करते जाते हैं तो आगे क्या समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं?
1: हमारी बड़ी आंत में बहुत बड़ी ताकत है पानी को सोखने की। और एक चीज समझिए कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा मल है, वो पेट से, जब पेट से निकल के छोटी आंत में जाता है तो उससे सारे न्यूट्रिएंट या जो ताकत की चीजें हैं वो सोख ली जाती हैं। और जब वो बड़ी आंत में जाता है तब उससे पानी सोखा जाता है। और आप सोचिए कि जो क्रिया 12-14 घंटे में सोखने की होती है, वो जब आप उसी क्रिया को 24 घंटे, 48 घंटे करवाइएगा तो वो ज्यादा पानी सोख लेगा। और इससे जो हमारी जो मल है वो इतना कड़ा हो जाएगा कि उससे निकालने में हमें ताकत लगानी पड़ेगी। और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की खराबी ये है कि वो आपके पाचन तंत्र में जो गंदगी है उसे लंबे समय तक रहने देगा, वो निकल नहीं पा रही है। और कब्ज में जब वो लंबे समय तक रहेगी तो पानी के बाद जो टॉक्सिन्स है उनको भी खींच लेगा और हमारे शरीर में जो चीज हमें नहीं चाहिए वो मिलती चली जाएगी। ये तो हुआ शरीर के ऊपर नुकसान। जो फिजिकल नुकसान है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज से, वो है बवासीर, आप जिसको अंग्रेजी में हिमरॉइड्स या पाइल्स भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग न अपने कब्ज के बारे में बात करते हैं और न अपने बवासीर या पाइल्स या हिमरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। आप खुद देखिए कि सब की मतलब इस बवासीर के नाम पे और पाइल्स के नाम पे सबसे बड़ी ठगी चल रही है। आप हजारों नीम, हकीम, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, आपको ऐसे ऐसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, और जो मतलब डॉक्टर हैं भी नहीं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं किए हैं, डॉक्टरी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और अपने आप को डॉक्टर क्लेम करते हैं, वो लोग इसका इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने दीवार पर इसके बारे में इश्तेहार देखे होंगे कि मिलिए इनसे और ये आपका बवासीर ठीक कर देंगे। तो ये क्रॉनिक कब्ज के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिसको हो सकती है व्यक्ति को, वो है बवासीर या हेमोराइड्स। आदमी अपना पेट साफ होने की तो बात ही नहीं कर पा रहा है और उसके बाद नीचे से कोई और मस्सा निकल गया तो उसके बारे में कहाँ बात करेगा। तो पता चलता है कि समस्या जो एक बड़ी हो गई थी कब से, वो महा बड़ी समस्या के रूप में आदमी उसको उससे परेशान हो चुका है और वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है।
0: बात न करने की जब ये चीज सुनते हैं तो समझ में आता है कि लोग इन चीजों से थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, या कभी कभार वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि ये चीज हम किसके सामने बोलें और बोलेंगे तो क्या समझा जाएगा हमारे बारे में। और जैसे आपने कहा कि भाई कॉन्स्टिपेशन ही जब क्रोनिक फॉर्म में बढ़ जाता है, वो उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप हो जाता है, तो वो आगे बवासीर और पाइल्स जो आप बात कह रहे थे वहां तक बात पहुंच जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते करते यहां तक पहुंचे हैं, तो ये बीमार हो रहे हैं, ये कैसे अपने आप को समझा जाए, कैसे देखा जाए कि हाँ मेरे को ये तकलीफ हो रही है और कब हमें एक चिकित्सीय सलाह लेने की जरूरत है?
1: सबसे पहली बात, बवासीर कोई रोग नहीं है, ये एक रोग का लक्षण है। पहले हम ये समझें कि बवासीर हो क्यों सकता है। एक जैसा हम और आपने बात की कि क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक अगर आपको पेट नहीं साफ हो रहा है तो आपको बवासीर हो सकता है। आप लंबे समय तक आपको अगर डायरिया भी चल रहा है, आपका पेट बह रहा है, तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो आपका नीचे जो गुदा द्वार बंद होता है वो ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है। आप बहुत लंबा समय बैठते हैं, अगर अपने काम में आप बैठे ही रहते हैं, आप बहुत मोटे व्यक्ति हैं, क्योंकि मोटापा जो है, जो हमने सबसे बड़ी बीमारी, देखिए हमने पहली जो जिस बीमारी को हमने डिस्कस किया वो मोटापा ही थी, क्योंकि मांसपेशियों के बीच में जो फैट सेल्स है, हमारे मोटापे की कोशिकाएं हैं, वो जमा होने लगती हैं और वो उस मांसपेशी की ताकत को कमजोर करती चली जाती हैं। तो अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको उससे भी परेशानी होगी। महिलाओं में जब उनको प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारी महिलाओं को बवासीर की समस्या प्रेगनेंसी के समय होती है, और उम्र के साथ जब हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तब भी उनको पाइल्स या बवासीर हो सकता है। ये बवासीर क्या है, सबसे एक समझ लीजिए कि हमारा जो गुदा द्वार है वहां रक्त की कुछ कोशिकाएं हैं, और ये मेरे अंदर भी है और जितने लोग सुन रहे हैं सबके अंदर ये कोशिकाएं हैं, किसी कोई नई चीज नहीं है, और ये मांसपेशी के बीच में है। ये जब ताकत इनमें रहती है, ये मजबूत रहती हैं, ये इन कोशिकाओं को, ये जो गुदा द्वार है इसके त्वचा के अंदर रखी रहती हैं, और जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है या आप मोटापा होता है या आप प्रेगनेंसी होती है तो ये मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। तो ये रक्त कोशिकाएं जो है वो एक मस्से के रूप में जो है वो गुदा द्वार के पास आ जाती हैं। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। मेरे पास एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो कि बहुत बड़ी एक कंपनी में काम करते थे, वो आरोग्य मंदिर में आए और उन्होंने जो कंप्लेन की वो ये थी कि उनको थकान हो रही है। उम्र उनकी करीब 48 साल थी और वो सिर्फ ये बोलते थे कि मैं बहुत अच्छा खाता हूं, मैं बहुत अच्छा भोजन करता हूं, मुझे कभी कभार कॉन्स्टिपेशन होता है और मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लगाता हूं, मैं बहुत उच्च पद पे आसीन हूं तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो मुझे थकान लगती है। और तब भी वो हमारे चिकित्सालय में अपनी समस्याएं बता नहीं रहे थे और मुझे बहुत थकान हो रही थी, बहुत थकान हो रही थी। तो ऐसे डॉक्टर, उनके पास कोई ब्लड रिपोर्ट भी नहीं थी, कोई खून की जांचें भी नहीं थी, तो हम लोग ने कहा कि एक जांच करा लिया जाए, कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। हाँ, और हम लोग सोच रहे थे कि उनको कोई बड़ी समस्या निकलेगी, तो मालूम चला कि उनका हीमोग्लोबिन जो है, जो लाल रक्त कोशिकाओं वाला हीमोग्लोबिन है, वो करीब जो नॉर्मली 11 से 14 के बीच में होना चाहिए वो सिर्फ 7 था। और जैसे ही रिपोर्ट आई और जब उनसे मिला गया तो उनसे पूछा गया, क्या आपके जो मल है उसमें खून तो नहीं आता है? तो उन्होंने संकुचाते हुए बोला, हाँ आता तो है पर हम किसी को बताए नहीं। तो सोचिए, ये व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, उच्च पद पे आसीन है, वो अपनी समस्या नहीं बता पा रहा है, तो हम और लोगों से क्या सोचें? तो आप यदि अपनी समस्या की बात नहीं करेंगे तो उसका निवारण नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको बवासीर की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो किसी भी डॉक्टर से या कोई भी जो हेल्थ प्रोफेशनल है जिसको आप मानते हैं उससे सलाह जरूर लीजिए। लोग इसके बारे में, भैया जो बहुत भारी काम करते हैं, बहुत भारी सामान उठाते हैं, उनको भी इसकी समस्या होती है और वो ये सोच लेते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमको हो रहा है, या आपको अपनी जो चीजें नॉर्मल नहीं है और आपको अगर हो रही हैं तो उसके बारे में आपको जरूर बात करनी चाहिए। यदि आपको थकान लग रही है, आपके मल रास्ते से खून आ रहा है, आपको भयंकर कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है, आपको रेगुलर डायरिया हो रहा है, या आपको ऐसा काम करते हैं जो आप बहुत मोटे हैं, आप भारी वजन उठाने का काम करते हैं, तो आपको अपनी समस्या के बारे में जरूर बताना चाहिए कि आपको थकान लग रही है। अच्छा लोग भैया, जैसे श्री भैया बुखार होता है तो आदमी तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है, बड़ा छोटी समस्या है, तब भी वो तुरंत दौड़ के जाता है कि अरे डॉक्टर साहब एक बार देख तो लेंगे, और डॉक्टर साहब उसको अब छू के थर्मामीटर डाल के या तुरंत उसकी नब्ज चेक करके देख लेते हैं तेज तो नहीं चल रही है, छूते ही मालूम चल जाता है। इस समस्या जब पूरी विकराल रूप ले लेती है तब वो जाता है। और तब भी मानव हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा क्यों, मैंने कहा कि हम लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि अरे हमें कोई पहचान तो नहीं लेगा हम कौन हैं, लोग छुपते हैं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो हम लोग सर्जरी के ओपीडी या जनरल मेडिसिन के ओपीडी में जब पेशेंट आता था तो वो कान के पास आके बोलना चाहता था, हम लोग से बोलते दूर होके बोलो, हम और तुम ही हैं कमरे में, बाकी कोई नहीं है मत, पर वो वहां भी खुल के नहीं बोलना चाह रहा था कि क्या समस्या है। तो यदि आपको भयंकर कब्ज है, आपको मसा कोई नीचे महसूस हो रहा है आपको, या खून आ रहा है, तो कृपा करके तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाइए।
0: जैसे आप ये बात बता रहे थे तो मैं समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति का असहज होना या शर्मिंदगी महसूस करना या उसके अंदर हिचकिचाहट होना इस बीमारी को और ही बढ़ा सकता है, इसकी समस्या को और बढ़ा सकता है, और समय पर इलाज न लेने से वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से इस समस्या से लंबे समय तक जूझता रहेगा, और जो चीज़ आसानी से ठीक की जा सकती थी वो चीज़ ठीक करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर समय इशारा करता है कि यहाँ रुकना

0: जानकारी मुहैया कराई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में ये चीज समझ में आई है कि हमारे शरीर का ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। अगर हम इस जिम्मेदारी को न निभाएं, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों या छोटी मोटी समस्याओं को अगर हम दरकिनार कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं, या मैं काम बहुत ज्यादा कर रहा हूं, या मेरे पास समय नहीं है, या मैं डॉक्टर से मिल नहीं सकता, तब तक मैं इन चीजों को टालते रहूं जब तक वो हमें पीड़ा देने वाले या बहुत ज्यादा समस्या का विकराल रूप धारण करने तक रुकते रहें, तो फिर उसके इलाज में भी लंबा समय और ज्यादा व्याधि हमें महसूस करनी पड़ सकती है। इसलिए जब भी समस्याएं आपके शरीर में दिखें तो तुरंत ही चिकित्सीय सलाह देखने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स के पास जाकर मिलकर सही राय करना बहुत आवश्यक है, और साथ साथ अपने खान पान, भोजन इत्यादि आहार विहारों पर भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक चीज है। आज के सेहत स्वास्थ्य में रुकते हैं, रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हल्के हल्के बोल न, हल्के हल्के बोल न, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल न, हल्के।

0: होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के।
1: मम्मी मम्मी।
2: हाँ बेटा।
1: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ाएं?
3: इतना तो
4: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गणपति बापा के दिन चल रहे हैं तो परी और मनी दीदी आ गए हैं गणपति की स्टोरीज लेकर के।
5: हाँ बच्चों, अभी तो हम गणपति बापा की नई नई कहानियाँ सुन रहे हैं। और आज पता है, आज हम बातें करेंगे एक नई कहानी पर, गणेश जी और चंद्रमा।
4: हाँ बच्चों, इसके बारे में आपको पता है, एक बार गणेश जी को बहुत सारे मोदक मिले। उन्होंने पेट भर के मोदक खाए और अपने मूषक पर बैठकर घर लौट रहे थे।
5: और पता है, रास्ते में चंद्रमा ने उन्हें देखकर उनकी हंसी उड़ाई। गणेश जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि किसी के रूप या शरीर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
4: लेकिन बच्चों, चंद्रमा ने अपनी गलती तो स्वीकार की और गणेश जी से क्षमा मांगी।
5: हाँ बच्चों, और इससे हमें सीख मिलती है कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और गलती होने पर तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए।
4: तो बच्चों, आप भी ऐसे ही करते हैं ना, गलती से किसी का भी मजाक मत उड़ाना।
5: सही कहा परी, और यदि गलती हो तो उससे क्षमा भी मांग लेनी चाहिए।
4: हाँ बच्चों, तो चलो, मजा आया ना गणेश जी की कहानी सुन करके। तो अब लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
5: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आ जाओ बच्चों, रेडियो के पास परी आ गई है कहानी सुनाने के लिए। बच्चों आज एक बाघ की कहानी सुनेंगे। एक जंगल में बाघ रहता था, बहुत बूढ़ा हो गया था। उसमें अब पहली वाली ताकत नहीं थी, फुर्ती भी नहीं थी, तो उसने सोचा मैं शिकार तो कर नहीं सकता, इसलिए पेट भरने के लिए मुझे कोई और उपाय करना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद बच्चों उसको एक युक्ति सूझी। उसने घोषणा की कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अपनी बाकी जिंदगी पुण्य के कर्मों में लगाऊंगा। अब मैं घास और फल खाकर अपना गुजारा करूंगा, निरंतर प्रभु का नाम स्मरण करूंगा, इसलिए जंगल के पशु पक्षियों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों कुछ भोले भाले जानवर बाघ की चिकनी चुबड़ी बातों में आ गए। वे कहने लगे कितना महान संत है, हमें चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार रोज कुछ जानवर बाघ के दर्शन के लिए आते, गुफा में जाते। बाघ इन भोले भाले जानवरों को देखते ही उन पर टूट पड़ता और उन्हें मारकर खा जाता। तो इस प्रकार बच्चों बूढ़ा बाघ आराम से अपना पेट भरने लगा। कहानी यहाँ पूरी थोड़ी होती है बच्चों। एक लोमड़ी को इस बाघ की ये जानकारी मिली। उसने मन ही मन कहा, मैं बाघ की बातों पर विश्वास नहीं करती, बाघ भला घास और फल खाकर कैसे जिंदा रह सकता है, मैं खुद जाऊंगी और सच्चाई का पता लगा कर आऊंगी। दूसरे दिन लोमड़ी बाघ की गुफा में पहुंची। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वो ठिठक गई। वहां जमीन पर गुफा में गए हुए जानवरों के पंजे और खुरों के निशान पड़े हुए थे। लोमड़ी ने बारीकी से उन निशानों को निरीक्षण किया और उसे फौरन पता चला कि गुफा में जाने वाले जानवरों के पंजों और खुरों के निशान तो दिखाई देते हैं, पर गुफा से बाहर निकलने वाले किसी जानवर के पैरों के निशान कहीं भी नहीं है। लोमड़ी मन ही मन कहने लगी, इस ढोंगी बाघ को जिंदा रखने के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगी। वो गुफा के दरवाजे से ही लौट आई। तो देखा बच्चों, ये कहानी कितनी मजेदार है। हमें समझाती है ना कि मकार की चिकनी चुबड़ी बातों के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों, आपको कोई ऐसी मीठी मीठी बातें करके फुसलाने की कोशिश करे तो ऐसे फंसना नहीं, ध्यान से बुद्धि से काम लेना। तो चलो बच्चों अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सप्तद्वीप नौखंड, जो कि एक नए शीर्षक की कहानी है, जिसमें सप्तद्वीप नौखंड के प्रचुरता, वहां की संपन्नता के बारे में हमने पिछली कड़ी में जाना। अब आगे इस किताब में क्या लिखा है, इस चैप्टर में क्या लिखा है, वो मैं बिना देर के आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सप्तद्वीप नौखंड में सभी एक दूसरे की गति प्रगति का ध्यान रखने वाले लोग बसते थे और वहाँ वैभव स्वयं प्रकट हुआ। वहाँ फल फूल और अनाज का प्रचुर उत्पादन होने लगा। वहाँ से फल सब्जियाँ अनाज पड़ोसी राज्यों के लोग खरीद कर ले जाने लगे, तो इस तरीके से व्यापारिक संरचना भी तैयार होने लगी और इस स्थान ने फिर एक नए राज्य का रूप ले लिया। अब चूंकि विजयनगर के पास ही बसा हुआ था ये सप्तद्वीप नौखंड, इसलिए वहाँ की व्यापार प्रणाली और शासन प्रणाली दोनों पर विजयनगर का ही प्रभाव था और वहाँ पर से ही विविध सामग्रियाँ विजयनगर से ही उस क्षेत्र में सप्तद्वीप नौखंड को भेजी जाती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ विनिमय परंपरागत रीति से चल रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सैन्य दल का भी गठन किया था और इस तरीके से वहाँ पर आने वाले यात्रियों को राज्य में प्रवेश की भी खुली सुविधा थी। लेकिन विचित्र भानु जो राजा थे, उनका भी बहुत अच्छा तालमेल था महाराज कृष्णदेव राय के साथ और उन्होंने शासन संभालते ही कई तरह की आज्ञाएं जारी की और उन्होंने कईयों पर वाणिज्यिक कर लगा दिए। प्रवेश पर शुल्क लगाए जाने के कारण कई पड़ोसी राज्यों से उनके राजनैतिक संबंध सामान्य नहीं रह गए और जो महाराज विचित्र भानु थे वहाँ के सप्तद्वीप नौखंड के, उनकी धन की आकांक्षा भी बढ़ती गई और उन्होंने अपनी प्रजा से भी विभिन्न चीज़ों में शुल्क लेने का चलन प्रारंभ कर दिया और इससे वहाँ की प्रजा में भी क्षोभ उत्पन्न होने लगा, दुख उत्पन्न होने लगा और वो प्रजा की प्रतिक्रिया से बेपरवाह जो महाराज थे वो अपनी गति से ही आगे बढ़ते जा रहे थे और इस तरीके से वहाँ का जो अंदर का अंदरूनी जो ढांचा था वो खतरे में पड़ गया और अपनी ही धुन में मग्न महाराज विचित्र भानु अपने सैन्य दल और गुप्तचर संगठन के बल पर स्वेच्छाचारी होने लगा, कहीं भी आता जाता और उसके पास जो सैनिक थे वो तैयार रहते थे। तो इस प्रकार से वहाँ की प्रजा पर भी अत्याचार बढ़ने लग गया और प्रजा भी अब सुखी नहीं रहने लग गई। बच्चों, अब इसके बाद आगे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी अगली कड़ी में और फिर कैसे इसमें तेनाली रामा की एंट्री होती है वो भी अगली कड़ी में ही पता चलेगा। बच्चों, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर हम आते रहेंगे। चलो फिर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है फिर से लेकर साथ में परी को। और हमने तो बहुत सारी बातें भी की, और अब पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी जाना है ना। तो क्या सवाल पूछा था परी?
2: बच्चों, हमने पूछा था, बिना मुंह के बोलूं मैं, बिना हाथों के लिखूं मैं, बिना शरीर के सबको सिखाऊं, बताओ मैं कौन हूँ।
1: और बच्चों, आपको मैंने हिंट दी थी कि टीचर तो हमें देख करके पढ़ाते हैं, मुंह से शब्दों के द्वारा पढ़ाते हैं, हाथों से ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं, और जिसमें से देख के पढ़ाते हैं वही है इसका सही जवाब। तो सही जवाब है किताब। उसका मुंह भी नहीं होता है, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और बिना शरीर के ही सबको पढ़ाता है। तो सही जवाब है किताब।
2: हाँ बच्चों, और लिखो आज की पहेली जल्दी से। ना रंग मेरा ना कोई गंध, जीवन में मेरा बड़ा संबंध, नदियों बादल और सागर में मैं रहूं, बताओ मैं कौन हूँ।
1: अब बताओ बच्चों, कौन सी चीज है ये? इसका ना कोई रंग है और ना कोई गंध, यानी कुछ भी खुशबू भी नहीं आती उस चीज में, और जीवन का तो बड़ा संबंध है। हमारे शरीर में 70% होता है बच्चों। तो चलो चलो जल्दी से फोन उठाओ और हमें सही जवाब वॉइस नोट या मैसेज कर दो 9414-1415 पर।
2: हाँ बच्चों, और साथ में भगवान को सॉरी और थैंक यू लिखना नहीं भूलना, उसके बाद ही सोना। तो हम भी करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM पर।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

छेड़ो। तो आज है वीर तेजा जयंती, तो वीर तेजा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। लोक परंपरा में तेजा जी को वचन निभाने वाले सत्यवादी वीर और सर्पों से जुड़े लोग देवता के रूप में याद किया जाता है, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, जो कैसे हमारे स्वास्थ्य को ठीक करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जरूर आप घरेलू उपाय सुनेंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: वचन दिया तो प्राण गए, पर वचन ने जाने दिया। गो माता की रक्षा में जीवन अपना भार दिया। शौर्य, सत्य और त्याग की गाथा आज भी गाई जाए। वीर तेजा जी के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाया जाए। वीर तेजा जी के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाया जाए। तो पुनः आप सभी को वीर तेजा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि लोक परंपरा में तेजाजी को वचन निभाने वाले सत्यवादी वीर और सर्पों से जुड़े लोक देवता के रूप में याद किया जाता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार कहानी के साथ करना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, वीर तेजाजी, देखिए पहले तो उनका यही कहना चाहूंगी कि वो साहसिक थे और वीर तेजाजी पर्वत सर का रहने वाले हैं और पर्वत सर में आज भी बहुत ही मेला लगता है। उनका जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहड़ देव और माता का नाम राव कुमरी बताया जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध, अब मैं लाछा गुजरी के बारे में, सबके बारे में बताऊंगी। तो क्या है, वीर तेजाजी का बचपन में ही शादी कर दी जाती है। पहले तो बाल विवाह होते थे, पहले तो कितनी बार गर्भ में ही, भाई आपके लड़की हुई हमारे लड़का हो तो अपना संबंध फाइनल, तो इस तरह फाइनल कर दिया जाता था। तो ऐसे ही वीर तेजाजी का भी बचपन में ही, जो उनको याद भी नहीं है कि उनकी कभी शादी भी हुई थी, कुछ भी उनको याद नहीं है क्योंकि बचपन में बहुत छोटे थे तभी कर दी जाती है उनकी शादी। तो वैसे मैं उनका थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगी कि उनका विवाह पेमल से हुआ था। उनकी धर्मपत्नी का नाम पेमल था, ठीक है। तो वीर तेजाजी धीरे धीरे बड़े हुए। वीर तेजाजी की माँ राम कुंवरी ने पहले से परिवार में कह रखा था कि कोई भी तेजा को नहीं बताएगा कि उसका विवाह हो चुका है, समय आने पर हम खुद बताएंगे। और वीर तेजा के बड़े भाई भी थे, भाभी भी थी घर में। वीर तेजाजी खेतों में काम करते थे, बड़े हो चुके थे, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं कि उनका विवाह हो चुका है। तो वो काम कर रहे थे खेत में, बहुत ज़बरदस्त भूख लगी, बहुत ज़्यादा काम कर दिया, समय का ध्यान नहीं रखा, तो बोले कि अब तेज भूख लग रही, चलो घर पर चलते हैं। घर पर आए तो भाभी को बोला कि भाभी बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है, गर्मा गर्म भोजन पिरस दो। भाभी को उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, भाभी ने खाना नहीं बनाया और भाभी उल्टा ताने मारने लगी। अरे मण पोयो मण पीस्यो का वरते जाओ, मण को तो रांध्यो खाटो खीचड़ो। तब ऐसा बोल बोले तो तेजा जी को लगा कि आज भाभी को क्या हो गया। तो भाभी ने, तेजा जी ने कहा, अरे साची साची बात बता दो भावज मारियो, काई हुओ जो बताव स्या। अरे भाई क्या हुआ, सच जो भी है आप बताओ ना, आज भोजन क्यों नहीं बनाया, रोज आप भोजन पकाती हो, गर्मा गर्म भोजन पिरसती हो और आज आप इस तरह के बोल बोल रही हो। तो भावज ने कहा, अरे परण्योड़ी पीर बसे ओ कवरते जाओ, वाने लई ने घर आवस्या। अरे भाई आपकी बीनणी तो अपने पीर में मौज कर रही है, अब उनको ले आओ, वो गर्मा गर्म भोजन बना करके पिरसेगी, मैंने बहुत बना दिया। तब तेजाजी को झटका लगा कि अरे भावज, भाभी ये क्या कर रहे हो, राजस्थान में भाभी को भावज कहा जाता है। तो बोले, अरे भाभी कैसी बात कर रहे हो, मेरा विवाह हो गया। हाँ, अरे भाई कहाँ हुआ, अरे पीला पोतड़ा हुआ, ये राजस्थान में ही आता है। तो बोले कि अच्छा, अरे साची साची बात बता दो भावज मारियो, कौन है परनाया पीला पोतड़ा। अरे भाई किसने मेरी शादी की? तो भावच कहती है, अरे काको बाबो कीनी सगाई कवरते जाओ, बाबो सा परनाया पीला पोतड़ा। अरे भाई काका बाबा ने तो सगाई की और आपके ही पिताजी और दादाजी ने आपका विवाह किया। तो फिर वो तेजा जी को आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हुआ, माता के पास गए। अरे साची साची बात बता दो माता मारी, ओ कोनी परनाया पीला पोतड़ा। तो माँ ने ये बात सुनी, तेजा जी ने कहा कि सच बताओ मेरी माँ, मेरी शादी पीला पोतड़ा किसने करवाई है? तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, विवाह तो तुम्हारा हो गया लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बोले कि अरे पता तो चलना ही था, किसी से भी चला हो, लेकिन मेरा विवाह हो गया और मुझे पता भी नहीं, मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेने। अरे भादरवा का महीना है, और माँ ने कहा कि नहीं ये भादरवा महीना तो अशुभ है, नहीं जा सकते हो तुम। मैं नहीं जाने दूंगी। बोले बस अब तो मैं किसी की नहीं सुनू, मैं तो जाऊंगा और अपनी बिंदनी को लेके आऊंगा, उसी के हाथ का खाना खाऊंगा। भाभी ने मुझे ताना मार दिया है, अब मैं जाऊंगा, मुझे नहीं सुनना है किसी का ताना। माँ मनाती रही, माँ को गुस्सा भी आया बहू पर कि अरे क्यों बताया उसको, समय आने पर वैसे मैं बताने वाली थी। अब तो तेजा जी अपनी घोड़ी पर सवार होकर के चले लीलन घोड़ी पर और गए। अब वो जा रहे थे, गुस्से में तो थे और जा रहे थे, तो देखा कि एक सांप है, सर्प है, वो आग में जलने जा रहा है। तो तेजा जी ने सोचा कि अरे ये सर्प अगर मेरी आंखों के सामने आग में जल गया तो एक हत्या हो जाएगी। उसने लकड़ी से उसको छिचकार दिया, अलग कर दिया। तो सांप को बड़ा गुस्सा आया कि अरे बड़ी मुश्किल से तो मैं इस आग में जलने जा रहा था और उसने फिर से मुझे आज मेरी आयुष्य दे दी। उसने तो कहा कि हे पापी दुष्ट, तूने ये अच्छा नहीं किया मुझे बचा करके, अब तो मैं तुझे डसूंगा। तेजा जी ने कहा कि अरे मैंने तो भला किया था, मुझे क्या पता कि आपको हकीकत में मरना ही था, मैं तो पाप के डर से बचाया कि भाई आपके हत्या हो जाएगी तो पाप मुझे लगेगा, मैंने अपनी आंखों से देखा इसलिए मैंने बचाने की कोशिश की और आप मुझे डसने चले। बोले कि बिल्कुल मैं तो तुम्हें डसूंगा। बोले ठीक है नाग देवता, मैं वचन देता हूँ आप मुझे डसना, लेकिन मेरा विवाह हो चुका है, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से मिलकर आऊँ फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे डस लेना। सर्प ने कहा अच्छा बेवकूफ बनाता है मुझे, कोई गए हुए वापस आएगा? बोले कि मैं वचन देता और मैं वचन जो देता हूँ उसको निभाता हूँ, ये मेरा कोल है याद रखना। बोले ठीक है तो इंतजार करूंगा तेरा। और वचन दे करके तेजा जी तो गए अपने ससुराल। अब ससुराल गए तो उनके लीलन घोड़ी को देख करके ससुराल वालों की तो गाय भड़कने लगी डर के मारे। तो सास तो बैठी थी बाल खुले हुए चौक के अंदर बैठी थी, पहचाना नहीं जमाई राज को और बोले अरे कौन आया है तू पापी दुष्ट, मेरे गायों को भड़का दिया तूने। तो बोले कि अरे सासू माँ मैं हूँ। अरे कोई सासू वासू नहीं, अरे सासू माँ मैं हूँ, आपकी बेटी को लेने आया हूँ। अरे कोई सूचना नहीं और मेरी बेटी को लेने आया है, मैं नहीं मानता कि तू मेरा जमाई है, फिर भी अब आए हैं तो कुछ तो बना के खिलाना है। तो ये जो कुरत होते हैं, कुरत की दाल बनाई और ठंडी रोटी जमाई को पिरसी। अच्छा नहीं लगा तेजा जी को लेकिन क्या करे, और सासू माँ जब तक खाना पकाती रही पिरसती रही गालियाँ देती रही, बेटी से भी नहीं मिलने दिया और बोले कि कोई जमाई हमाई नहीं, घर से सूचना आएगी तब देखा जाएगा, जाओ अभी मैं तो बेटी से मिलना है और ना ही मैं अपनी बेटी को भेजूंगी, मैं तुम्हें नहीं पहचानती तुम कौन हो। तो वो कहते ना कि आकाश से गिरे पेड़ में लटके या फिर खजूर से गिरे पेड़ में लटके ऐसा बोलते हैं ना। तो अब एक तो मौत से बच कर के आए कि कैसे भी करके मैं अपनी पत्नी से मिलूं, और यहाँ पर सासू माँ ऐसा व्यवहार कर रही, तो बड़ा दुख हुआ तेजा जी को। अब वो निकलने लगे, उधर उनकी पत्नी का नाम पेमल था, पेमल को पता चला कि अरे उनके पति उनको लेने आए और माँ ने ऐसा व्यवहार किया तो अच्छा नहीं लगा। तो पेमल ने अपनी सखी लाछा गुजरी को जाकर के बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, कैसे भी करके तू हम दोनों को मिलवा। तो लाछा गुजरी वो वहाँ से ससुराल से निकले तेजा जी, तो लाछा गुजरी रास्ते में आ गई और बोले कि अरे कहाँ जा रहे हो जीजा जी? बोले अच्छा साली जी आप कौन हो? अरे आपने साली जी बोली दिया तो मैं आपकी साली जी हूँ, मैं पेमल की सखी हूँ, आपकी बीननी की सखी हूँ, और पेमल आपका इंतजार कर रही है। फिर लाचा गुजरी के घर में दोनों को मिलवाया, फिर बोले कि भाई आए हो तब आपको रात तो रुकना ही पड़ेगा। तो रात थोड़ी से ही अंधेरा हुआ और उधर लाचा गुजरी की गायें चोरी हो गई। अब वो रोती हुई आई, खटखटाया दरवाजा कि अरे भाई मेरी तो गायें चोरी हो गई है, कैसे भी करके मेरी गायों को छुड़वाओ। तो बोले कि ठीक है, तेजा जी तो बहुत ही बहादुर थे, तो वो बोले कि ठीक है मैं लेके आता हूँ। मीणा लेके चले गए थे, तो तेजा जी अपनी घोड़ी पर सवार होकर के गए और बहुत युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ मीणा के साथ। तेजा जी अकेले थे, मीणा बहुत सारे थे, कैसे भी करके सारी गायों को छुड़वा करके लेके आए, पूरे लहू लुहान हो गए थे और कहा कि ये लो लाचा, ये तुम्हारी गाय है। तो लाचा ने देखा सारी गायें तो थी, लेकिन एक अंधा जो गाय का बछड़ा था उसको राजस्थानी में कहते हैं काना केल्डा, वो नहीं मिला। बोले अरे जीजा जी ये क्या किया आपने, मेरे को तो सारी गायें नहीं मिलती तो चलता, लेकिन मेरे को तो वो काना केल्डा ही चाहिए, आपको तो वो लाना पड़ेगा। बोले अरे सारी गायें तो आ गई ना, एक नहीं आई तो क्या फर्क पड़ गया कि नहीं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो काना केल्डा ही चाहिए। फिर गए, फिर युद्ध किया, बचा कुचा शरीर का हिस्सा भी लहू लुहान हो गया और काना केल्डा भी ला के दिया, और फिर तेजा जी निकल गए। तेजा जी गए कि भाई बस अब ये फर्स्ट एंड लास्ट अपना मिलना हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ, अब मृत्यु मुझे बुला रही है। और गए तेजा जी नाग देवता के पास कि नाग देवता वचन का दिया हुआ मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मुझे अब डस सकते हो। नाग ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि अरे तू तो पूरा लहू लुहान है, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं जो मैं तुझे डसूँ, कहाँ डसूँ। फिर तेजा जी ने अपनी जबान को निकाली कि देखो पूरा शरीर लहू लुहान है, घायल है, लेकिन ये मेरी जबान अभी भी अच्छी है, आप इस पर डस सकते हैं। नाग देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि देखो वचन का दिया हुआ मैं डसूंगा जरूर, लेकिन मैं साथ ही साथ आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम्हारी पूजा होगी और जिसको भी सर्प दंश होगा, जिसको भी सांप काटेगा तुम्हारे पास आकर के, तुम्हारे देवरे पर, क्योंकि वीर तेजा जी का राजस्थान में जगह जगह देवरा है, मतलब स्थान है, थानक है, तो जो भी तुम्हारे देवरे पर आकर के धोख लगाएगा और तुम्हारे नाम के जो डोरा बांधेगा हाथ में, तो उसको सांप का जहर का असर नहीं होगा, ये मैं वरदान देता हूँ। और जीप पर डस लिया नाग देवता ने और तेजा जी वहीं गिर पड़े, प्राण पंखेरु उड़ गए, वीर गति को प्राप्त कर लिए, लेकिन वचन के दिए हुए वो आगे पीछे नहीं हुए और अपने वचन को निभाया। इसलिए राजस्थान में आज के दिन, आज तेजा दशमी है, दशम के दिन ऐसा हुआ था, इसलिए दशम को तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन इस तरह उनकी मृत्यु हुई थी, तो राजस्थान में उनका जगह जगह स्थान बनाया गया जहाँ देवरा कहते हैं। और आज भी भक्तजन बहुत ही प्यार से, मतलब जब जिनको भी सांप दंश होता है जरूर वो तेजा जी के स्थान पर जाते हैं, बाकी 12 महीना उनके भक्त श्रद्धालु पुजारी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका याद करते हैं। तो इस तरह उनका, मतलब उन्होंने वीर गति प्राप्त की और वो राजस्थान के लोक देवता बने। तो ये हुआ आज का विचार, हो रहा है अब सुन लेते फिर से एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। जी हाँ, जो जिसको यद भी कहते हैं, तो ये कौन सी बीमारी को ठीक करता है जानेंगे आप। देखिए, अगर सूजन है, यदि शोथ के कारण कफ दोष हो, तो जो के बारीक पिसे आटे में अंजीर का रस मिला करके लगाइएगा, ठीक है। यदि शोथ के कारण कफ दोष हो तो जो के बारीक पिसे आटे में अंजीर का रस मिलाकर लगाइएगा। कंठमाला है तो जो के आटे में धनिया की हरी पत्तियों का रस मिलाकर रोगी स्थान पर लगाइएगा, इससे कंठमाला ठीक हो जाती है। कंठमाला है तो जो के आटे में धनिया के हरी पत्तियों का रस मिलाकर के रोगी स्थान पर लगाइए, इससे कंठमाला ठीक हो जाएगी। मधुमेह माने डायबिटीज की तकलीफ है तो छिलका रहित जो को भून करके पीसिए, फिर शहद और पानी के साथ सत्तू बना करके खाइएगा। मधुमेह है तो छिलका रहित जो को भूनिएगा पहले, तो फिर पीसिएगा, फिर इसमें शहद और पानी मिला करके सत्तू बनाकर खाइए, या फिर दूध और घी के साथ दलिया का सेवन करिएगा। जौ का दलिया बना करके आप दूध में ओटा करके घी डाल करके आप खा सकते हैं, तो इससे लगातार रहते मधुमेह की व्याधि से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर जलन है तो गर्मी के कारण कितनी बार जलन होती है शरीर में, ठीक है, तो आग सी निकलती है, तो जौ का सत्तू खाइएगा। ये गर्मी को शांत करके ठंडक पहुंचाता है और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो गर्मी के कारण शरीर में जलन हो रही हो, आग सी निकलती हो, तो जौ का सत्तू खाइएगा। ये गर्मी को शांत करेगा, ठंडक पहुंचाएगा और शरीर को शक्ति प्रदान करेगा। अगर अतिसार है तो जौ तथा मूंग का सूप लीजिएगा, इससे आंतों की गर्मी शांत होगी। अतिसार है तो जौ और मूंग का सूप लीजिएगा, इससे आंतों की गर्मी शांत होगी।

और लास्ट उपाय है, गले की सूजन है तो थोड़ा सा जौ कूट करके पानी में भिगो दीजिए। कुछ समय के बाद पानी निथार करके उसे गर्म करके उसके कुल्ले करिएगा। इससे शीघ्र ही गले की सूजन दूर हो जाएगी। गले की सूजन है तो थोड़ा सा जौ कूट करके पानी में भिगो दीजिए। कुछ देर के बाद पानी निथार करके उसको गर्म करिए, फिर उससे कुल्ला करिए। इससे क्या है, शीघ्र ही गले की सूजन ठीक हो जाएगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है जो मैं आपके पूछने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओ कहते हैं कि भाई वीर तेजा जी के सवारी का नाम आप बताइएगा। वीर तेजा जी के सवारी का नाम क्या था? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का विषय है मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जाल में, जितना आदमी उलझता है अपने बुने ख्याल में। मतलब मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने हुए ख्यालों में, क्या कहेंगे आप। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, वीर तेजा जी की सवारी का नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जुड़िएगा जरूर। और बहुत ही सुंदर आज का विषय आपके समक्ष रखा है, उसमें आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं भाई, आज वीर तेजा जयंती है, हमें पता है आप मनाने में व्यस्त होंगे, जगह जगह आज के दिन मेला भी लगता है तो श्रद्धा से लोग जाते हैं, शीश नमाते हैं, आज तो श्रीफल भी लेके जाते हैं जिसको नारियल कहते हैं, अगरबत्ती धूप दीप ये ले जा करके जहाँ तेजा जी का स्थान है वहाँ पर जा करके इस तरह प्रसाद के रूप में नारियल भी बदरते हैं, दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती लगाई जाती है, मन्नतें मानी जाती है, मन्नतें उतारी जाती है, जो मन्नत मांगते हैं वो उतारी जाती है। और जिसका भी सर्पदंश का अगर जैसे कहते हैं ना कि किसी ने बाधा रख ली हो कि भाई तेजा जी महाराज अगर ये सांप के जहर का असर नहीं होगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो फिर वहाँ पर चूरमा भी बनाया जाता है, चूरमा का भोग भी चढ़ाया जाता है और उनकी जेवड़ी भी बांधी जाती है, जो लच्छा होता ना उसको हाथ में बांधते उसको जेवड़ी कहते हैं, जेवड़ी भी बांधी जाती है, जेवड़ी वड़ी की जाती है, जिसने बांध रखी है आज के दिन वहाँ पर खोलते हैं कि भाई ये इतनी दिन की बाधा थी, हमारी बाधा पूरी हो गई, हमारी मन्नत पूरी हो गई, आज हम ये जेवड़ी बड़ी करते हैं, तो उस लच्छे को आज के दिन उतारा भी जाता है, तो इस तरह है। पर चलिए देखिए, मकड़ी नहीं फंसती अपने जाले में, फिर भी इंसान फंसता जाता है अपने बुने ख्यालों में। तो ये सभी आप जानते ही होंगे, ये अपनी कहानी है, दूसरों की नहीं है। मकड़ी भी जाला बना करके उड़ जाती है, वो फंसती नहीं है कि भाई जाले के अंदर ही फंसी रहे और उसी में सिमट करके रह जाए और एक दिन खत्म हो जाए, ना बिल्कुल नहीं। लेकिन इंसान का क्या कहना भाई, पहले तो अपना परिवार बसाता है, फिर धीरे धीरे उस मोह में इतना फंसता जाता है कि बात मत पूछिए, क्या सही क्या गलत, अर्थ अनर्थ सब कुछ भूल जाता है। अभी कल ही किसी का फोन आया था, दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है बच्चे छोटे छोटे पाँच छः साल के बच्चे, वो तो झगड़ेंगे फिर एक होंगे फिर झगड़ेंगे फिर एक होंगे, लेकिन एक बच्चा रोने लगा तो एक पापा ने देख लिया कि मेरा बच्चा रो रहा है, तो जा करके सामने वाले बच्चे के जोरदार चाटा लगा दिया। अब वो बच्चा भी रोने लगा, रोते रोते अपने घर पर गया कि फलाने के पापा ने मुझे मारा है। अब उसके पापा को भी गुस्सा आया कि अरे मेरे बच्चे को कैसे मार दिया। गए, जाते ही सीधी फेट पकड़ी कि भाई क्या हुआ, क्यों मारा मेरे बच्चे को, ताकत कैसे हुई तुम्हारी हाथ लगाने की मेरे बच्चे को। तो बोला कि तूने मेरे बच्चे तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। अब इसमें दोनों के फाइटिंग हो गई। बोलो अब बच्चे तो देखे थोड़े दिनों बाद एक भी होंगे, कितना भी आप पकड़ के रखो वो नहीं रुकने वाले, लेकिन बड़ों को पहले तो चाहिए कि वो जिसने देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है तो बच्चे को पूछे क्या हुआ, सामने वाले को भी पूछे क्या हुआ। चलो किसी की भी गलती है तो प्यार से समझाने का होता है ना कि भाई अब हो गया, होना था सो हो गया, अगली बार झगड़ा नहीं करोगे नहीं तो साथ में खेलने नहीं देंगे। तो बच्चे वैसे ही डर जाते हैं कि अरे भाई खेलने नहीं देंगे। हेलो
2: हेलो दीदी।
1: हाँ जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग सुभाष भाई।
2: नमस्ते। आज के दिन की आपको रेडियो मधुबन परिवार सभी श्रोते भाई बहने सभी राजस्थान गुजरात सभी भाई बहनों को दोस्तों को बधाई और शुभ भावना और प्यार भरा नमस्कार। सुविचार भी बहुत अच्छा था और विषय भी बहुत अच्छा है, लेकिन कल के आपके वंदे मातरम और सलामी जिंदगी ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगे। वो रिपीट होंगे तो श्रोता भाई बहनों ने जरूर सुनना। और विषय के बारे में मैं थोड़े में बोलता हूँ, देखो मकड़ी भी अपने जाल में फंसती नहीं, पर आदमी क्या करता है, बीच की बातों का ही मंथन करते रहता है, चिंतन करते रहता है, वे सब बातों में उलझा रहता है, नेगेटिव बातों में फालतू चिंता करता है। तो फोकस ऑन प्रेजेंट, फोकस प्रेजेंट पे दो, वर्तमान पर दो, गलतियां जो हुई है वो सुधारो, चिंतन मत करो, वो सुधारो और आगे बढ़ो। सभी को सहयोग दो, सभी को प्रेम से रहो, तो आप कभी भूल जाएंगे नहीं। जितना वो अच्छे विचार करो, अच्छे से कर्म करो, तो जाल में फंसोगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति दीदी, ओम शांति।
1: बहुत बहुत आभार सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, वीर तेजा जी की सवारी का नाम आपको बताना है जो मैं विचार में दे चुकी हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना हो विचार तो उसमें जवाब था। और बाकी आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, मकड़ी भी अपना जाल बना करके उसमें फंसती नहीं है, लेकिन इंसान अपने ख्यालों में इतना फंस जाता है कि पूछे मत। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दे रही थी कि देखे कैसे वो व्यक्ति छोटी सी बात में बच्चे को मार दिया, पर चाहते तो वो बच्चों को समझा सकते थे और बच्चे समझ भी जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत फाइटिंग हुई, लोगों ने आकर के छुड़ाया, नहीं तो पुलिस तक बात चली जाती। तो क्या फायदा, क्या फायदा, आप इतना फंस रहे हैं कि उसमें इतना स्वार्थी होते जा रहे हैं। बच्चे तो इनोसेंट है, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो क्या हम दूसरों के बच्चे को क्यों आते ही अपने ही बच्चे को मारते कि तू जब आता है तब रोता ही है, क्या हुआ, तू क्यों आया, क्या कारण हुआ, या मारना तो था ही नहीं, वैसे ही समझाना था, प्यार से बात सुननी थी और समझाना था। तो कहाँ जा रहे हैं आजकल लोगों के विचार, कहाँ जा रहे हैं। हेलो,
3: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बोलता हूँ।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, नमस्ते
3: जी। दीदी बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है दीदी, और बहुत अच्छा विचार भी सुना दिया। और ये आपने बताया कि आज दीदी लोग इतने ख्यालों में, इतने विचारों में फंस गए हैं कि पता नहीं आगे उसका क्या होगा।
1: जी
3: जैसे जैसे जो कोई चीज बढ़ती रहती है तो इतना अंदर डूबे रहते हैं, अंदर ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं मेरे पास, ये लाएंगे ये लाएंगे, बस पूरा दिन वही ख्यालों में रहता है, दिखता रहता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि भी हम फालतू चीजें की जरूरत नहीं है और इसे क्यों हम अंदर इसको घुसने दे विचारों को, और सभी ऐसे विचारों से डूबा हुआ है इंसान, सुबह से शाम तक बस विचारों में ख्याल रखता है। आज इतना खुश रहा है इंसान की पता नहीं, टेंशन देखो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे हो रहे हैं, कोई किसी को अटक आ जाता है, किसी को कोई तुरंत लकवा मार जाता है। तो ये ख्यालों में यदि इतने विचारों में रहते हैं तो ये सभी बीमारियों का भी हमको भय रहता है, तो ऐसे विचारों को नहीं रखना है। जैसे आपने बताया, जिससे की बात बताई, दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, वो तो दीदी बच्चे हैं, लड़ेंगे बाद में इकट्ठा हो जाएंगे। हमारे भी मैं बताऊँ तो हमारी भी गुड़िया छोटी से छोटी, दो तीन चार गुड़िया हमारे महल में, तो बहुत चलता ही रहता है गुड़िया को, और ऐसे हम माँ बाप को परेशान करेंगे, माँ बाप को बोलेंगे कैसे, तो ये नहीं करना चाहिए। अरे बच्चे हैं, आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे, बड़ों को ऐसा नहीं सोचना है और ऐसा विचार नहीं लाना है। सामने वाले को गुस्सा करके मारे
1: जी। हाँ जी, हाँ जी
3: जी
1: जी
3: जी, बस मैंने आपको भेज दिया है।
1: हाँ जी,
3: और कल भी हमने वंदे मातरम सुना था, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा
1: जी।
3: हमारी सभी जो बहनें आती है तो बहुत एक नॉलेज भी मिलता है दीदी सबको, ऐसा नहीं कि बहनों के लिए कार्यक्रम होता है, नहीं, हम भी बड़ों को छोटे को और सभी को भी ये कार्यक्रम एक अच्छा एक नॉलेज दे देता है कि हम इतने ही महिलाओं को परेशानी होती है फिर भी वो इतने कष्ट उठा के आगे जाती है, बच्चों को संभालती है, परिवार के लिए कुछ करती है, तो कई सारी नॉलेज हमको भी मिलती है, पुरुषों को भी मिलती है कि कैसे करने रहना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो आपने जो वंदे मातरम है बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया है।

0: से कई बहनों को भी इतना फायदा हो रहा है दीदी कि कोई भी कष्ट आए लेकिन पीछे नहीं हटना है।
1: जी जी बिल्कुल, मोटिवेट होते हैं ना एक दूसरे का सुन करके ही प्रेरणा हाँ, लेते हैं।
0: कई सारे सीख मिलती है की इसके पास कुछ नहीं है तो दोस्तों का खाना भी नहीं, इसके बाद फिर भी वो जैसे जैसे करके एक दूसरे का काम करते थी, उसके बच्चों को आगे ले जाती है, पढ़ती है, दिखाती है, किसी का काम करती है, फिर भी परिवार संभालती है।
1: जी बिल्कुल,
0: पढ़े लिखे होते हैं फिर भी कई कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो कुछ न कुछ ऐसा काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है।
1: जी जी जी
0: फिर भी वो पीछे नहीं हटती है महिला।
1: बिल्कुल, थैंक यू, नमस्ते भैया, नमस्ते। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने भी अपनी बात रखी है। अब हम यहाँ पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार नमस्कार बहन जी।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: जय अम्बे जय अम्बे
0: जय अम्बे जय अम्बे।
1: हाँ, कल से भादरवी पूनम का मेला शुरू हो गया है, तो सबको जय अम्बे।
0: जी जी जी, अम्बे माता जी के यहाँ जाना है अम्बा जी।
1: की भाई जैसे हमारे कोई भी दोस्तों को यहाँ आना हो तो मुझे कॉल करे, मैं सभी का वहाँ खास ये है दर्शन लायक स्थल भी वहाँ का दर्शन कराऊंगा, मैं जाऊंगा। हमारे नजदीक पड़ता है बहन जी अम्बा।
0: अच्छा,
1: जी
0: अच्छा।
1: लेकिन कोई दोस्त जो अभी हमारे दोस्त है रेडियो मधुबन के, तो कई दोस्त आते होंगे शायद दर्शन के लिए माता जी के, तो हमें थोड़ा कॉल करे तो मैं पहुंच जाऊंगा और सबको वहाँ का जो स्थल है दिखाऊंगा, साथ में रहूंगा। ठीक है
0: जी जी, रेडियो के जरिए सभी सुन रहे हैं।
1: का जवाब तो मैंने दे दिया। ठीक है
0: जी।
1: और क्या है, आज तो पूरा हो गया?
0: नहीं नहीं, अभी विषय बाकी है। आज का विषय है मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। क्या कहेंगे आप?
1: ख्यालों में डूबा हुआ है ना, बुरे ख्यालों में मकड़ी
0: मकड़ी भी झाला बना करके उड़ जाती है, वो फंसती नहीं है कि उसी में फंस करके दम तोड़ दे, वो नहीं होता है। लेकिन इंसान पता नहीं इतना मकड़ी से भी खतरनाक, मतलब रहना घर परिवार में, ऐसे नहीं है कि हमें घर परिवार में नहीं रहना है, लेकिन इतना भी स्वार्थी नहीं हो जाना है कि अहित हित वो सब भूल जाए।
1: ये नहीं कर रहा है
0: जी,
1: हम संसारी है, अर्थ उपार्जन करना है।
0: घर परिवार में रहना भी एक साधना है, लेकिन कैसे रहना है वो आना चाहिए। स्वार्थ के लिए हम दूसरों का अहित करें वो भी तो अच्छी बात नहीं है।
1: नहीं, गलत बात है। अपना स्वार्थ दूसरों का ये कर दे, ये नहीं करना चाहिए बहन जी।
0: जी,
1: क्योंकि कर्म तो सभी को भुगतना पड़ता है। हमें अच्छा लगेगा थोड़ी देर तक, लेकिन क्या है कि गलत है तो गलत ही है, इसका परिणाम हमें भुगतना तो पड़ता ही है। दूसरों को ये करके क्या सुख मिलेगा हमें बहन जी? दिल मिल के रहना चाहिए, सभी को सच्ची राह बतानी चाहिए। ठीक है
0: जी।
1: कई लोग क्या करते हैं कि भी घाटे में आ जाए, कोई ऐसा हो जाए तो हमें ये जमीन बिक दे तो हम ले लेंगे, ऐसा करके गलत रास्ता बता देते, तो ये नहीं करना चाहिए बहन जी। ठीक है, सही रास्ता बताना चाहिए। हम भी इसमें से उभरे है, बाहर आए हैं, बताना चाहिए ऐसा करो। ठीक है
0: जी।
1: तो किसी को जाल में फंसाना नहीं चाहिए। सभी दोस्तों को आपको नमस्कार, और जरूर अम्बाजी आओ, सभी दोस्त तो जरूर कॉल करें मुझे।
0: और अम्बाजी के पास ही आबू है, शिव यहाँ है, शक्ति वहाँ है, तो शक्ति से मिलो तो शिव से भी मिलने आ जाओ।
1: ये भी मेला चालू ही है रामदेवड़ा
0: जी।
1: रामदेवड़ा भी सभी यहाँ से पैदल और साधन बाइक को लेके जा रहे हैं, तो अम्बाजी से ही निकलता है रास्ता हमारे यहाँ से, तो सभी को शुभकामनाएं, देव देव शुभकामनाएं
0: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। इधर आओ तो आबू भी आइएगा।
1: जरूर जरूर
0: जी, जय अम्बे। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। देखिए, घर गृहस्थी में रहना, घर परिवार में रहना, ये भी बहुत बड़ा तप है, लेकिन रहना आना चाहिए, है ना। जैसे वो दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ, न लेना है न देना है उनको, वो तो भाई ऐसे भी नहीं कि कोई हिस्सा चाहिए, या वो दूसरे अपार्टमेंट में, वो दूसरे अपार्टमेंट में, बच्चे खेलते हैं इस वजह से, और ऐसे में इतना बखेड़ा हो गया, जो कभी 6 महीने में नजर आते हो या सोसाइटी के प्रोग्राम में नजर आते हो, बाकी एक दूसरे को देखना क्या भी काम नहीं मिलता है, फिर भी झगड़ा। अब रोज साथ में रहते हो, उनकी क्या हालत होती होगी। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते नमस्ते विक्रम भाई, कैसे हैं आप?
2: जयपुर से आता हूँ मैडम जी।
0: अभय सिंह जी, अभय सिंह जी।
2: जी
0: मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत। और सुनाइए, कैसे हो आप?
2: बढ़िया है मैडम जी, प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। मधुबन अच्छा। की पूरी टीम को, आपको, सबको बधाई हो, बड़ों को सादर प्रणाम।
0: थैंक यू जी, आपको भी। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे
2: जी। मैं वो उसका तेजा जी महाराज जी का वाहन पूछा था ना मैडम।
0: हाँ जी हाँ जी,
2: लीलन घोड़ा घोड़ी।
0: अच्छा ठीक है, देखते हैं सही गलत। आप कार्यक्रम सुनिएगा, जरूर जवाब देंगे
2: जी।
0: और
2: जी,
0: आज का विषय है, देखिए मकड़ी भी झाला बनाती है तो उसमें फंसती नहीं है, लेकिन इंसान इतना फंस जाता है कि पूछे मत। क्या कहेंगे आप, अपने ही ख्यालों में फंसा रहता है वो।
2: जी मैडम बिल्कुल सही बात है, ये आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीर में हर जगह जकड़ा हुआ रहता है। तो हर चीज के पीछे मैडम जी त्याग जरूरी है
0: जी,
2: और त्याग है वो हमको उसका श्रेय मिलता है त्याग का, लेकिन आदमी को थोड़ा सहनशील रहना चाहिए, उसका फल उसको मिलेगा, बाद में मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और कोई भी चीज है मैडम जी, उसका कोई नुकसान होते तो कोई फायदे भी होते हैं। तो उलझन जो होती है, उलझन का समाधान दूसरे की बात को सुनना और गहनता से उस पे अमल करना, और उसके बाद में उस पे कोई भी चीज आदमी को बोलना चाहिए, और दूसरे को भी सहन करना जरूरी होता है। इन चीजों के पीछे थोड़ा तप त्याग की आवश्यकता है, और हमको तप त्याग में क्या है, आज के समय में थोड़ी गिरावट है, तप त्याग में कमी है मैडम जी, जिसकी वजह से ये उलझने हैं वो मकड़ी की तरह क्या है, वो उलझने में फंस जाता है इंसान
0: जी। कैसे निकलेंगे, रहना घर परिवार में है लेकिन कैसे हम अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे?
2: बिल्कुल जी मैडम, हर एक चीज है वो जुड़ी हुई है। हम एक मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के हर भाग से, हर तबके से जुड़ा हुआ है, हर रिश्ते नातों में बंधा हुआ है। तो उन चीजों का असर है वो सभी चीजों पे जाता है। तो हमको इन सब चीजों में धैर्य से काम लेना चाहिए, सहन करना चाहिए, और वो चीज जो होती है वो अपने लिए अच्छी होती है, वो उसके परिणाम फ्यूचर में अच्छे मिलेंगे। लेकिन सहन नहीं करते हैं लोग, तो सहन करना चाहिए मैडम जी, सहन करना उसके मतलब उसके प्रति आदमी को दूसरे में पहले जैसे भाव थे वैसे ही भाव रखने चाहिए। सने की भावना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बात भी हो जाती है कोई भी चीज तो सुनो देखो, समझाइश हो सकती है, समझाइश के बाद में फिर पुनरावर्ती होती है, तो उसमें पुनरावर्ति में फिर जो दोषी होता है बार बार पुनरावर्ति कर रहा है, तो फिर उसको दूसरा जो अपना सामाजिक परिवेश वाला दबाव है वो दबाव भी दिला सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं मैडम जी, जो लगभग 10% के आसपास रेशो चल रहा है उनका, तो वो 10% है उनकी वजह से 90% को शांति भंग नहीं करनी चाहिए
0: जी।
2: 90% को चाहिए कि हम 90 से उसको 95 में बढ़ाने की कोशिश करें, हम उसको 85 में ना लें
0: जी।
2: तो ये थोड़ा सा उतावलापन कह दो या कोई, जैसे आपने बहुत उदाहरण पहले भी सिंपल उदाहरण दिया था कि तुरंत जवाब नहीं उसका अगले दिन जवाब उठता है, आपने कहानी सुनाई थी
0: जी जी जी,
2: किसी घर का रूल था
0: जी,
2: तो
0: जी
2: वो मुझे बहुत अच्छी लगी प्रेरणा, मैंने उससे मतलब दिल में बैठाया कि बहुत अच्छी बात है, इतना टाइम में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है
0: बिल्कुल,
2: और वो परिवर्तन है वो एक बहुत अच्छा बदलाव लाता है, ईर्ष्या देश की भावना में गिरावट आती है, समस्या का समाधान हो जाता है, और पहले के जो टीचर्स थे जो हम उनको, आज भी गुरुजी हमारे दिल में इतनी जगह है उनके प्रति मैडम जी,
0: जी।
2: आज भी यदि वो मुझे कोई कोई कभी कभी मिल जाते हैं जो उस समय थोड़े यंग थे वो
0: जी,
2: तो आज भी मैं उनका बहुत, वो हमारे को बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाना लिखाना छोका पिंडी करते थे, लेकिन क्या है छोका पिंडी का जवाब ये नहीं है कि हम घर में आके उस चीज को बढ़ावा दे दें, तो माँ बाप को भी चाहिए कि ये चीजें हमारे लिए अच्छी हैं। अभी आज के समय मोबाइल का बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है मैडम जी,
0: जी
2: बच्चे मोबाइल देखते हैं, घर में मना करते हैं, माँ बाप फिर माँ बाप से ही पंगा हो जाता है
0: जी
2: उनको, तो ये उनमें सहन करने की क्षमता घट जाती है मैडम जी, पहले तो उसको थोड़ा, अब जो आपने बताया कि वो इंसान जकड़ जाता है, तो वो पहले से ही हमारे को किसी भी चीज के प्रति ज्यादा घनिष्ठता, चाहे वो संतान हो मैडम जी या चाहे कोई भी चीज हो, उसमें प्रगाढ़ता उतनी अच्छी रहती है जितना हम, जैसे वो एक मैडम जी ने चाय का नहीं बोला था मैडम जी, चाय पीते ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं
0: जी जी जी,
2: तो चाय में जितना मीठा लाइक जितना चल सकता है उतना डालने तो बढ़िया है, और ज्यादा घनिष्ठता ज्यादा डाल देंगे तो वो फिर वो
0: बेस्वाद हो जाएगी जी, सही है
2: जी मैडम जी, तो वही है हमारे को, हमारे आसपास जो भी परिवेश है उस परिवेश में हमको सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना हमारी बहुत बड़ी भूमिका है उसके अंदर, और ये भूमिका हमारे जो प्राकृतिक जीव जंतु है ना मैडम जी,
0: जी
2: ये भी हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको उसके निर्माण में बहुत सहयोग करते हैं, जो ऐसे ऐसे जीव हैं जो उनका, लेकिन वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ऐसे ही ये हमारा जो आसपास का जो माहौल है उसमें उस पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे को उसमें पूरा सहयोग और त्याग तपस्या की भावना सब कुछ बहुत जरूरी है, बहुत आदमी मैंने मैडम जी ऐसे भी देखे हैं,
0: बस समय हो रहा है जी,
2: हर एक सिचुएशन में हर एक कंडीशन में वो मदद के लिए तत्पर रहते हैं और वो करते रहते हैं
0: जी जी। चलिए अभय सिंह जी, अभी तो ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, तो बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत आभार आपका,
2: राधे राधे मैडम
0: जी, राधे राधे। और प्रश्न का जवाब देंगे, दे दिया सॉरी, चलिए प्रश्न का जवाब भी दे दिया अभय सिंह जी ने, बहुत ही सुंदर बात बताई है। अब प्रश्न का जवाब सही है गलत है या थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, तो इस विषय को यही समाप्त करते हैं। कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि देखिए घर परिवार में रहिए, रहना हमें घर परिवार में ही है, लेकिन इतना स्वार्थी नहीं हो जाना है कि हम अच्छा या बुरे का भान ही भूल जाए, है ना, अच्छे या बुरे का मतलब ही भूल जाए, जीना है तो भाई सभी के लिए जिए ना, खुद के लिए जीना तो स्वार्थ हो गया, तो सभी की बातों को समझने की कोशिश करिएगा और कहाँ सही कहाँ गलत विवेक शक्ति को बढ़ाइएगा। और बस आइए अब एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
4: ओए इधर इधर इधर, भाई क्या पहुँचा दोगे है, कहाँ पहुँचा दोगे, ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे, ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे है, कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है, और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे, हाँ मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
5: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने का। सोच रही थी कि आपको कोई अच्छी सी बड़ी रेसिपी सिखाऊंगी, लेकिन समय बहुत कम है, तो चलिए मैं वेस्ट में से बेस्ट बनाना सिखा देती हूँ, है ना। क्योंकि ये भी जरूरी है, बहुत सारी चीजें हमारी बच जाती है, कोई एकदम माप तोल के तो खाना नहीं बनता है, थोड़ा बहुत तो बचता ही है, चाहे चावल हो, खिचड़ी हो, चाहे चपाती हो। तो चपाती बच जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे चपाती बच गई है तो सुबह की चपाती बची है तो आप उसका दोनों हाथों से मसल करके पाउडर कर दीजिए, छोटे छोटे एकदम बारीक हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा बेसन और सारे मसाले मिला करके थोड़ा सा पानी से घोल करके उसके पकौड़े निकाल करके खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है। और अगर खिचड़ी बन जाती है, बच जाती है, चावल बच जाते हैं, तो आप इनके मुट्ठे भी बना सकते हैं, आप इनके थेपले भी बना सकते हैं, आप इनके छोक भी सकते हैं, छोक करके भी खा सकते हैं। टेस्ट चेंज हो जाएगा और चीज़ भी हमारी उठ जाएगी, परिवार में सभी सदस्य प्यार से खाएंगे कि अरे वाह, अगर आप थेपला बनाते तो पता ही नहीं चलेगा कि ये थेपला किसके बने हैं, अगर आप मुठ्ठिया बनाते तो और भी रेसिपी चेंज हो जाती है, तो बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो मैं फटाफट आपको मुठ्ठिया बनाना सिखा देती हूँ। अगर चावल बच गया, खिचड़ी बच गई है, तो आप ले लीजिए चावल या खिचड़ी को, और इसमें आप थोड़ा सा गेहूं का आटा डालिए, बेसन डालिए, मक्की का आटा डालिए और हरी मिर्च अदरक की पेस्ट करके डाल दीजिएगा। घर में लौकी है तो कद्दूकस करके डालिएगा, मेथी की भाजी है तो मेथी के पत्ते भी थोड़े से आप धुलाई करके काट के डाल सकते हैं, और नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़े से आप मिठास के लिए चीनी डाल दीजिएगा, और खटास के लिए आप नींबू निचोड़ दीजिए, भले दही डाल दीजिएगा, और मोहन डालना है। अच्छी तरह इसको गूंद लेना है, गूंदने के बाद मतलब टाइट गूंदना है, और गूंदने के बाद आप लंबे लंबे रोल बना दीजिए, रोल बना करके भाप में इसको बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद आप थोड़े से देर निकाल करके इसको ठंडा होने दीजिए, फिर इसको काट लीजिए। काटने के बाद अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, और आप उसमें तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो राई जीरे का तड़का लगाइए, वही तिल डालिएगा, मुट्ठे के अंदर भी तिल डालना है, तिल का भी तड़का लगाना है, सौंफ भी डालिएगा, हरी मिर्च अदरक की पेस्ट करके और भी आप डाल सकते हैं छोंक में, और थोड़ा सा नमक डाल करके फिर ये जो मुठ्ठिया आपने बनाए हैं वो मुठ्ठिया इसमें डाल करके अच्छी तरह हिला दीजिएगा। मसाला डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो चलेगा, मुठ्ठिया में डाल रखा है। और इसको अच्छी तरह हिला करके हरा धनिया डाल दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, बन गया मुठ्ठिया। तो रेसिपी भी चेंज हो गई, स्वाद भी चेंज हो गया, बड़े चाव से सभी खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह वेस्ट में से बेस्ट बना सकते हैं। अब वेस्ट में से बेस्ट बना रहे इसलिए हम भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई ये एक बार हम लगा चुके हैं इनका, है ना, लेकिन ऐसे आप कर सकते हैं। अब हमारे श्रोता बंधु जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते बुराराम जी, राम राम।
1: राम राम है वो उसका ये क्या बोले थे, तेजा जी के घोड़ी का नाम बताना का था ना
0: जी।
1: हाँ जी, तो लीलन घोड़ी था नाम।
0: अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं अभी जवाब देने ही जा रहे हैं हम। हाँ हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, तो ये थे भूराराम जी और से, और अब विषय को यही समाप्त करते हैं। रेसिपी भी अच्छी सिखा दी है और साथ ही साथ अब आप सभी से अनुमति भी चाहेंगे, क्योंकि समय हो चला है अगला कार्यक्रम सुनने का। तो आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आप आजमा सकते हैं। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में आपको वेस्ट में से बेस्ट बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि वीर तेजा जी के सवारी का नाम क्या था, तो हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है। नाम लेना चाहूँगी सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, भूराराम जी ओर से, और अलका जी काबरा कप्पासन से, संगीता जी लावटी कप्पासन से, अभय सिंह जी जयपुर से। आप सभी का सही जवाब है, घोड़ी का नाम वीर तेजा जी की सवारी है, घोड़ी जिसका नाम है लीलन। कितने जनों ने न बोला है लीलन, लीलन नहीं लीलन, ठीक है। तो आप सभी का आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है। जो अपना होता है वो सुख देता है। जरा सोचे, क्रोध अपना संस्कार है या कहना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोध से तो दुख ही उत्पन्न होता है। और अब मैं आपको प्यारी सी कविता सुनाऊंगी तेजा जी पर, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक सुंदर से प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। राजस्थान की धरती में एक ऐसा लाल जना, सत्य साहस त्याग का, जिसने जग में मान बढ़ा दिया। खरनाल की पावन धरती पर तेजा वीर कहलाए, खरनाल की पावन धरती पर तेजा वीर कहलाए। दीन दुखी की मदद को दौड़े, कभी न पीछे हट पाए। वचन दिया तो वचन निभाया, चाहे प्राण ही क्यों न जाए। वचन दिया तो वचन निभाया, चाहे प्राण ही क्यों न जाए। गौ माता की रक्षा खातिर रण में वीर लड़ जाए। लाछा की गायों की खातिर, लाछा की गायों की खातिर संकट से टकराए। तन पर चोटे कितनी आई, फिर भी कदम न डगमगाए। तन पर चोटे कितनी आई, फिर भी कदम न डगमगाए। नागदेव से वचन निभाने लौटे वीर तेजाजी, नागदेव से वचन निभाने लौटे वीर तेजाजी। शरीर हुआ था घावों से छलनी, फिर भी बात निभाई। जब डसने को जगह नहीं बची थी, जब डसने को जगह न बची थी, जीभ उन्होंने आगे की। सत्य और वचन की खातिर दे दी आहुति जीवन की। आज भी राजस्थान की धरती उनकी गाथा गाती है, आज भी राजस्थान की धरती उनकी गाथा गाती है। तेजा जी की वीर कहानी हर दिल को राह दिखाती है, तेजा जी की वीर कहानी हर दिल को राह दिखाती है। साहस रखो सत्य पर चलो, साहस रखो सत्य पर चलो, सेवा को धर्म बनाओ। वचन निभाने वाले तेजा सा जीवन अपना सजाओ, वचन निभाने वाले तेजा सा जीवन अपना सजाओ। तो वीर तेजा जी महाराज की जय हो। राजस्थान के लोक देवता को शत शत नमन।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाईसा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे है, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
2: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
6: शांति, सब ठीक कह रहे हैं। चलो, हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
7: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
8: क्या?
2: क्या?
8: क्या?
7: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
9: हाँ जमाईसा, तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
2: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
9: बहुत अच्छी बात है,
10: सब लोग मिलकर रहेंगे।
11: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर।
12: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
13: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
11: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपकी ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
13: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
14: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है ये खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
9: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
11: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना।
12: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
6: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
14: क्या करेले के लड्डू
2: या मिर्ची का हलवा?
9: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊं, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
10: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
13: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
15: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
16: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
15: हाँ हाँ वही।
17: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
13: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या? अंधेरों में साथ निभाता है, दिन में भला क्या खूबी है? मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या?
18: वाह वाह वाह वाह
3: वाह वाह। किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
10: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
15: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
10: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
15: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
3: भाई साहब जाने दीजिए ना।
6: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
15: जमाई साहब आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो। एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
3: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
10: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
16: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कर भी है दिल नहीं।
14: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
13: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
10: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
17: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
7: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
6: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
7: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है। रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
3: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार। कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन दिल में नहीं।
17: चलिए जमाई साहब अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
16: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाईसा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
19: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाईसा का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए, उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई सा को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
9: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

0: नमस्ते राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में इस कार्यक्रम को लेकर जब गाँव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है। गांव का आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देता है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सनवाड़ा में पहुंचे हैं। बहुत खुशी लग रहा है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय की मिली सहयोग से बच्चों का हुनर बच्चों का प्रतिभा बच्चों का भाव भावना विशेषता को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है आज बच्चों को मिल रही है। बहुत खुशी और हर्ष का बात है। हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सभी बच्चे भाग लेंगे तो देर किस बात की। सरकार का जो मंशा है आसपास का अंदर में जो गतिविधि हो रही है जो टैलेंट है जो प्रतिभा जन जन तक पहुंचाएंगे आज तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा संस्था के वरिष्ठ शिक्षक भी उपस्थित है। सर को स्वागत करते हैं। सभी बच्चों को एकत्रित कराए और सबको वार्म अप कराने के लिए अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सर आपको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में। आप अपना परिचय देंगे बच्चों को उमंग उठाएगा।
1: मेरा नाम जितेंद्र परियार है
0: जी सर
1: और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांगवाड़ा में अध्यापक लेवल द्वितीय विषय हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ
0: जी सर।
1: और विद्यालय परिवार की ओर से आज मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ
0: जी।
1: आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों को कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा
0: जरूर
1: और यह सीख और यह शिक्षा इनके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगी और इस हेतु आपका मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ
0: सर। खासकर बच्चों का जो नामांकन बालिका और बालक शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे। आपका यहाँ पर बालिका बहुत है नामांकन ना बराबर है
1: जी
0: दोनों बराबर है ना बालिका संख्या अधिक है नामांकन में।
1: यहाँ पर कुल नामांकन है 78।
0: छोटा सा गांव है फिर भी इतना उपस्थिति है
1: और सभी बच्चे पूर्ण मनोयोग से सुबह जल्दी विद्यालय आते हैं प्रार्थना बहुत ही अच्छे ढंग से क्रियान्वित करते हैं पढ़ाई में भी बच्चे रुचि लेते हैं
0: जी।
1: और यहाँ पर बालक और बालिकाएं सभी पढ़ने में होशियार है
0: जी सर। उनका अभिभावक माता पिता बच्चों को पढ़ाने में कितना रुचि रखते हैं क्योंकि बीच बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि तरह ग्रामांचल बच्चे पहाड़ी का गोद में बसा हुआ गांव रहता है फिर भी उनका कम्युनिकेशन और जिसका चलते ड्रॉप आउट का संख्या कितना है यहाँ पर ड्रॉप आउट होते हैं।
1: नहीं फिलहाल एक भी ड्रॉप आउट तो नहीं है।
0: अब्बा बहुत अच्छा बात है।
1: कारण ये है कि यहाँ पर हम TLM के माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं
0: ओके
1: बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटी करवाते हैं
0: जी सर।
1: और इसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि एक भामाशाह श्री मंचाराम जी के द्वारा विद्यालय में ये टेलीविजन कल ही भेंट किया है।
0: क्या बताले बजा बच्चे। और जो भामाशाह हमारा जो नाम लिए उनके लिए और जोर से उनके लिए क्या हमारा साथ हमारा सुन रहे और सांगवाड़ा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय को जो अपना बच्चों के लिए खुद नहीं खाते दूसरों को खिलाते हैं और खुद नहीं देकर दूसरों के लिए दिखाने के लिए जो कोशिश किए ये काम बात नहीं है तो उनके लिए हम रेडियो मधुबन परिवार की ओर से भी साधुवाद अर्पण करते हैं। और सर जितिन सर और क्या कहना चाहेंगे भामाशाह को तो हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो बच्चों को आवश्यकता है आज पहला उनको एक बच्चों को मोटिवेशनल सॉन्ग दिखाई दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से मैं कौन और मेरा कौन ये चीज भी दिखाई दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से ओपनिंग में आज बहुत खुशी का बात और परमात्मा का सत्य परिचय भी मिलेगा बच्चों को और खुद अनुशासन में कैसे रहेंगे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए कितना देखना चाहिए कब देखना चाहिए वो चीज आज बच्चों को उस टीवी के माध्यम से दिखाई देंगे। सभी बच्चे रेडी है सभी बच्चे देखने के लिए रेडी है। वाह ये हुई ना बात इतना दाम है। चलिए सर आगे क्या कहना चाहेंगे भामाशाह के लिए ऐसे कोई भी भामाशाह चाहे आए हमारे इस स्कूल को क्योंकि बच्चे को कुछ जो आवश्यकता है जहाँ जरूरत है वहाँ देने से पुनीत काम होता है।
1: देखिए सर टीवी में चित्र भी दिखते हैं और आवाज भी हम सुन सकते हैं
0: जी जी
1: तो जो सुना हुआ होता है वो हम हो सकता है कि एक बार सुनकर भूल सकते हैं लेकिन जो सुना हुआ और देखा हुआ वो अगर मस्तिष्क में एक बार चित्र बन जाता है ना
0: जी जी
1: तो वो शायद ही हम कभी भूल सकते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ही एक उपयोगी साबित होगी।
0: सही बात
1: से निवेदन करूंगा जो भी है हमारे गांव के कि इस स्कूल के हित में अपना जो भी योगदान है हमेशा दान करते आए, लेकिन और भी अगर बच्चों के लिए आप करना चाहे तो आप सादर आमंत्रित है। बच्चे हमारे है, ये गांव भी हमारा है, ये स्कूल भी हमारा ही है। अगर हम पढ़ेंगे तो हम आगे और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा गांव आगे
2: बढ़ेगा,
1: गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और जब देश विकसित होगा तो विश्व का कल्याण होगा।
2: इसलिए ग्रास रूट में बच्चे हैं और वो गांव का हित में, जनहित में, और खासकर बच्चों का हित में, बच्चों का हित में जन कल्याण अर्थ जो किए वो पुनीत काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर को और हमारा भामाशाह को भी, जो भी भामाशाह इन एडवांस कहना चाहेंगे, आना चाहेंगे, देखना चाहें वो आकर देखें। और हमारा बच्चे तो अपना ही है, बच्चे सच्चे होते हैं और बच्चे ही भविष्य है, गांव का, देश का भविष्य है। तो बच्चों को धन्यवाद देते हैं और सर को भी धन्यवाद देते हैं। वो एक वार्म अप कर दिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति एक प्रार्थना के रूप में हमारा बच्चे प्रस्तुतकरण करेंगे। लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सानवाड़ा का आवाज सुनेंगे। लेकिन सर जी तो सभी बच्चों को वार्म अप करा दिए, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और हमें बहुत खुशी लग रहा है बच्चों का आवाज न हो और हम विद्यालय में आए, हम भी बच्चे बनकर बच्चों का साथ रूबरू होंगे और बच्चों का अंदर में जो भाव भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए पहला प्रस्तुति हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती को याद करते एक प्रार्थना के रूप में याद के रूप में सभी बच्चे इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सबका आवाज ही उनका पहचान होगा, जब आवाज सुनेंगे वो आवाज सुनते ही अरे ये हमारा गुड़िया का आवाज है, हमारा सुगना का आवाज है, हमारा सुरेश का आवाज, वो आवाज में दम होना चाहिए और हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए होवनहार टैलेंट बच्चे सिलेक्टेड बच्चे इतने बच्चे फिर भी सिलेक्टेड बच्चे कुछ उपस्थित है तो उनको हम स्वागत करेंगे। अपना अपना नाम, कौन सा क्लास और कौन सा गांव से आते हैं, कौन सा फली से आते हैं बताएंगे। रेडी? ओके, बताइए।
2: दरिया मेरा नाम है।
1: जी वेरी गुड। और कौन सा क्लास दरिया?
2: सातवीं।
1: हमारा दिल तो दरिया जैसे होना चाहिए पूरा बहते हुए। हाँ नेक्स्ट।
3: मेरा नाम है पूजा कुमारी।
1: हाँ
3: सातवीं में पढ़ती हूँ।
1: वेरी गुड पूजा। घर में और कौन कौन है बताइए?
3: मम्मी पापा और चार बहने।
1: अरे वाह।
3: और एक भाई।
1: भाई है। सबसे बड़े कौन है? भाई ना।

0: बहन नाम क्या है? बड़ी बहन का नाम बताओ।
1: मनु।
0: मनु और पूजा। पूजा को तो भाई हम पूजा पाठ करते हैं। चलिए नेक्स्ट।
2: मेरा नाम है राधा कुमारी।
0: हाँ राधा कृष्ण, अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी कुछ दिन पहले हम गया और राधा को कौन याद करेंगे, राधा भी ना कृष्ण का अधूरा है। तो राधा बोलिए आगे कौन सा क्लास?
2: आठवीं में।
0: वेरी गुड, आठवीं। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम मीतल है।
0: हाँ मीतल, ओके।
3: आठवीं क्लास।
0: नेक्स्ट।
4: मेरा नाम केके कुमारी है, आठवीं क्लास।
0: वेरी गुड। तो श्रोता मित्र, ज्ञान राशि और खासकर हमारा माता पिता अभिभावक सुन रहे ध्यान से, बच्चे एक प्रार्थना करेंगे। सब बच्चे रेडी? प्रार्थना मुद्रा में रेडी? उनको साथ देंगे पूजा और उनका दोस्त को शुरू करेंगे एक प्रार्थना।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और हमें खुशी है इस तरह बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महात्मा होते हैं। और बच्चों का अंदर में जो भावना है, जैसे परमात्मा से हम शक्ति लेते हैं, और प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती का साथ साथ उनका सभी परिवार को, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव सबको याद करते हैं। और जब विद्यालय में आते हैं तब भी घर में तो पूजा पाठ करते हैं, और हम पूजा पाठ अगरबत्ती करते हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। बच्चों को एक मंच आवश्यकता था, उनका आवश्यकता को आज पूर्ण करने के लिए रेडियो मधुबन खुद स्टूडियो पहुंच गया और बच्चों को स्टूडियो में जैसे बच्चे अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं इस तरह प्रस्तुतिकरण आज दिए। तो हमें खुशी है जब इस तरह कार्यक्रम को उनका माता पिता, अभिभावक, भाई लोग, बहन, दीदी, काका, काकी, नाना, नानी, दादी माँ सुनेंगे, अरे ये तो हमारा पूजा का आवाज है, क्या बात कहेंगे, और पूजा को शाबाश देंगे। और नामांकन में भी वृद्धि होगा क्योंकि बच्चे पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में आकाशवाणी में भी आते हैं। और सरकार को भी धन्यवाद क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम को लेकर विद्यालय में पहुंचे और विद्यालय का आवाज को, बच्चों का आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक स्टेज आज दिए हैं। तो इसका श्रेय तो संस्था प्रधान और सभी स्टाफ को जाते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर में जो अनुशासन है आज देखने को मिल रहा है और बच्चे तो अनुशासन में अपना कार्यक्रम सुना रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनाएंगे, है ना, पूजा एंड पार्टी सब सुनाएंगे और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, क्योंकि विद्यालय एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम में आज बच्चों को भाग लेने के लिए खुशी से मंच दे रहे हैं और इस मंच का फायदा ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को कभी कभी मिलता है आज मौका मिला तो मौका का फायदा ले रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: बोल में भी है एक ही साथ, ऐसे कौन सिखाता है? मतलब शिक्षक गण सिखाते, इसलिए विद्यालय में आना जरूरी है। विद्यालय में आएंगे तो सीखेंगे, विद्यालय में आज जो नहीं आया उस तो आज नहीं बना, रेडियो में बोलने के लिए उसे मौका ही नहीं मिला। इसलिए हर रोज जब स्कूल खोलेगा आना ही है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई में सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा? नियमितता, नियमितता, रेगुलर आना चाहिए। जो नहीं आएगा उसका गया, आज उनका प्रोग्राम गया, जो नहीं आया उसका। कौन कौन नहीं आया आज? पूजा, आज कौन नहीं आया, नाम बताओ देखी।
1: जनता, दुर्गा।
0: अच्छा, दुर्गा और
1: जनता
0: वो नहीं आए, देखो उनके लिए तो गया आज प्रोग्राम, देख तो सुन नहीं पाएगा, आप उनको बता देना, इसलिए रेगुलर क्लास को आने के लिए सजेशन देना। चलिए और एक प्रस्तुति के लिए रेडी? ओके, चलिए शुरू करते।

बहुत बहुत धन्यवाद। देश हित में एक देशभक्ति गीत और उसमें पूरा भारत का महिमा का साथ साथ सभी वर्ग जो भारतवासी है सभी का महिमा है और हम सब सैनिक हो चाहे कृषक हो चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चे हो सभी का महानता सभी का योगदान रहता तब हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा और हम भारत की जय कहते। बोला भारत माता की। वाह क्या बुलंद आवाज है सर, क्या आवाज बच्चों को सिखाया और ऐसे होना चाहिए। और राणा प्रताप को कौन भूल पाएगा, राजस्थान का मिट्टी का जो खुशबू, राजस्थान में राजा महाराजाओं का निवास है और आज भी बच्चों का अंदर में वो जोश होश और बुद्धि से तेज होकर अपना बात को रखते हैं। पहला बार आए कोई झिझक नहीं कोई डर नहीं और अपना आवाज को बुलंद करते हैं। फिर से बोलेंगे भारत माता की। वाह वंदे वाह वाह। और हमारा भारत कितना महान है, जितना भी महिमा करे भारत का कम ही पड़ेगा। और जिस भारत में स्वयं परमात्मा स्वयं भगवान आते 33 करोड़ देवी देवता का निवास स्थान है और माउंट आबू सब तीर्थ में तीर्थ महान माउंट

0: आबू सर्व महान है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अवतरण भूमि है माउंट ऑफ आबूराज। क्योंकि हम बच्चे रहेंगे तो आबूराज परिक्रमा करेंगे, है कि नहीं? तो बहुत खुशी लग रहा है, सभी बच्चों को धन्यवाद देते, और इस गीत में ही सार समाया हुआ है। चलते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। पूजा का नाम मुझे बार बार आ रहा, पूजा खड़े हो जाइए। पूजा, पूजा के बाद मजा आ रहा है ना पूजा? हाँ पूजा, तुम बताओ घर में कोई नया चीज जो आता है, वैसे आम का सीजन में आम मिलता है ना आम, हाँ। पहले घर में जो आएगा आम लेकर पापा की मम्मी लेकर आएंगे, पहले किसको देते हैं? घर में तो बहुत सारे लोग हैं, मम्मी पापा चाचा नाना नानी भाई बहन प्यारा भाई, किसको देते हैं?
1: सब मिलकर
0: सब मिलकर खाना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सब मिलकर भाई को भी देगा तो भाई क्या बोलेगा? बहन को दो। बहन को दो देंगे तो बहन बोलेंगे भाई को दो। भाई क्या बोलेगा? ना पापा को दो मम्मी को दो। हम सब मिलकर खाएंगे तो एकता में बल है ना,
1: हाँ।
0: एकता में मिठास है, बोले छोटा मिलेगा प्रसाद जैसे, किंतु खुशी मिलना चाहिए। तो कोई भी चीज घर में आते क्या करेंगे? सब मिलजुल कर खाना चाहिए ना बच्चे,
2: हाँ।
0: कोई भी चीज नया चीज आता है, चाहे कपड़ा हो चाहे खाद्य हो चाहे कुछ भी हो, तो सब मिलकर खाएंगे ना,
2: हाँ।
0: जैसे आज का प्रोग्राम में बच्चे गीत गा रहे, तुमको भी मिला ना चांस गाने के लिए,
2: हाँ।
0: इसका मतलब हम सब मिलकर गाए कि नहीं, हाँ, इसलिए सब मिलकर करना चाहिए। एकता क्या कहेंगे?
2: एकता,
0: यूनिटी।
1: यूनिटी,
0: यूनिटी मतलब बल। जैसे कोई भी काम, असंभव काम भी संभव होगा एकता से। ओके पूजा, और बताइए तुम्हारे दोस्त को उन्हें पूजा?
1: दरिया,
0: दरिया। अभी तो श्री कृष्ण और सुदामा का महिमा सुनते हैं, है ना? कृष्ण और सुदामा दो दोस्त है ना, इनका सहेली पूजा का दरिया। दरिया तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त का नाम बताओ?
1: पूजा।
0: अरे वाह, पक्का होगी। पूजा बोलता दरिया, दरिया बोलता पूजा, वेरी गुड। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए चलिए चलिए आगे बढ़ते हुए इस कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए बच्चे उपस्थित है। आज तो बच्चिया ही पूरा लॉटरी ले रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चा कोई गुड्डा नहीं आ रहा, सभी हमारा परिया हैं, छात्राएं इस कार्यक्रम को सजा रहे। पहला जमाने में छात्र आते थे, अभी तो छात्रा ही आते हैं, लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को और माता पिता को और समय को भी। चलिए और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए दो छात्रा उपस्थित है, क्या नाम बताएंगे?
2: पवनी
1: पवनी
2: पवनी।
1: हाँ, तो पवनी पवनी दो डबल सर को कैसे याद है, तो दोनों जैसे जुड़वा होते हैं, नाम भी काम भी गीत भी, तो इनका नाम भी सेम और गीत भी सेम गाएंगे, है ना? दोनों पवनी दोनों दोस्त है और नाम सेम है, और मुझे तो लग रहा था जुड़वा, लेकिन जुड़वा नहीं है। अभी बताएंगे और जब परिचय मिलेगा तब पता चलेगा दोनों कौन है। अपना नाम तो पवनी है, कौन सा क्लास?
2: छठी।
1: छठी। और कौन सा गांव से?
2: संगवाड़ा।
1: और तुम्हारा पापा का नाम?
2: सबलाराम।
1: तुम बताओ देखी,
3: छठी क्लास, मेरे पापा का नाम सुरूपाराम।
1: हाँ, इसमें पता चल गया दोनों का पापा अलग है और दोनों जुड़वा नहीं है। चलिए एक प्रस्तुति करेंगे, सुनाएंगे बढ़िया से, खुशी है? अच्छा, बड़ा क्या बनेगी पवनी, तुम बताओ? पहला पवनी बड़ा क्या बनेगी?
3: पुलिस।
1: अरे बाप रे, पुलिस, बाप रे, चोर तो भ्रष्टाचारी लोग तो दौड़ेंगे भागेंगे और छूटेंगे आपको देखकर, है ना? पुलिस का काम क्या होती है पवनी, बताओ देखी?
3: चोरों को पकड़ना।
1: हाँ, चोर को पकड़ना, सजा देना और उसको पुलिस स्टेशन से लेकर पूरा न्याय देना। ओके पवनी, तुम क्या बनेगी?
3: मैम।
1: हाँ मैम, मैम मतलब मैडम बनेगी, शिक्षक शिक्षेत्री करेगा, है ना? शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण, सब बच्चों को चरित्र देंगे, है ना? अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा। चलिए शुरू करते हैं एक गीत।

0: क्या बात क्या बात, आज तो भारत वासियों को याद किए सभी प्रदेश का, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ओडिशा, बंगाल, जितना हमारा देश के अंदर में राज्य है सभी राज्य का नाम को याद करते हुए उनका जो गीत, संस्कृति, खान पान सब को याद किए, क्योंकि अनेकता में एकता है, भारत एक है, हम सब एक है, बोलो हम सब एक है, वाह हम सब एक है, बोलो हम सब एक के है, और एक के है, एक मतलब ऊपर वाला के है, सभी ऊपर वाला के है कि नहीं, सब भगवान के है कि नहीं, इसलिए हम सब एक है और एक के है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए दोनों छात्रा को, पवन है ना, पवन मतलब क्या जानते हैं पवनी,
1: हवा,
0: हवा, वाह ताली बजा, पवनी मतलब हवा, पांच तत्व होता है, हवा का बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं, हवा नहीं होगा हमें बहुत गर्मी महसूस होगा, शीतलता नहीं मिलेगा, हवा को देख सकते बच्चे
2: नहीं।
0: तो कैसे जानते आप लोग हवा है बोल के, कैसे जानते पवनी, तुम्हारा नाम पवनी है तो बताओ हवा को कभी देखा है, पवन को देखा है, बताओ कहाँ देखा है, कैसे देखता है, देखने में कैसे है इसका, जैसे पंखा चल रहा है हवा दिखाई दे रहा है ना, पंखा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है पवनी, पंखा दिखाई दे रहा है, लेकिन महसूस क्या हो रहा है, हवा का महसूस होता है, हवा के बारे में जानकारियां है लेकिन देख नहीं सकते, हवा के बारे में जानकारियां है, हवा क्या क्या देती है बताओ देखी, ऑक्सीजन, वाह होशियार बच्चे, वाह ऑक्सीजन साइंटिस्ट बनेगा, हाँ नेक्स्ट और क्या देती हवा,
1: हवा नहीं होती तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है,
0: हाँ शीतलता देती है हवा हमको, ठंडक देती है, और क्या देती है बता पवन, तुम बता हवा से हमें क्या मिलता है, एक तो ठंडक हो गया तो ऑक्सीजन होगा, और हवा नहीं होगा तो हमारा कपड़ा गीला वाला कपड़ा सूखेगा
1: नहीं,
0: धूप भी चाहिए और हवा भी
1: चाहिए,
0: हवा में रख दो तो कपड़ा सूख जाएगा कि नहीं,
1: सूख जाएगा।
0: तो पवनी अपना बात को रखे, बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे, इसका बाद अगला प्रस्तुति, तो सभी को धन्यवाद और खासकर दोनों पवनी को धन्यवाद देते हैं, है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति, लेकिन अल्प विराम का बाद

0: चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज विद्यालय के बच्चे आज पूरा सभी प्रस्तुति दे रहे हैं, और खासकर देशभक्ति, भक्ति और अभी लोकगीत, देसी गीत सुनेंगे सभी। सभी साथ देंगे बच्चे हमारा, सभी साइलेंस में रहेंगे। और हमारा इस कार्यक्रम को मैंने सोचा था सिर्फ बालिका ही भाग लेते हैं, गुड़िया ही भाग लेते, लेकिन गुड्डा भी कम नहीं, हमारा बालक छोकरा भी अपना इस कार्यक्रम को बोला हम क्यों पीछे रहे, खाली बहन को आगे दे रहे, हमको भी तो चाहिए चांस। आज हमारा पांडव पांडव सब पहुंचे, पांडव मतलब छोकरा। चलिए सभी के नाम बताएंगे।
1: मेरा नाम मुकेश कुमार।
0: मुकेश भाई ओके।
2: रविंद्र कुमार।
0: रविंद्र, मुकेश रविंद्र ओके।
2: विक्रम कुमार।
0: विक्रम, वाह क्या नाम है।
3: मेरा नाम है निकेश कुमार।
0: निकेश, सभी को स्वागत करते हैं एक प्रस्तुति जो कि देसी गीत सुनेंगे। शुरू।
4: जय पासी आउने आया जाने जाने।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और बच्चे खुशी से आज इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, और अंतिम प्रस्तुति में एक गुलदस्ता जैसे सभी आवाज, चाहे गुजराती हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे देशभक्ति हो, सभी प्रस्तुतियां जो एक अंतरा भाई एक मुखड़ा भी हो तभी गीत में चार चांद लगा देता है, जिसे गुलदस्ता में सभी वेराइटी का फूल होता है। तो ये आवाज का दुनिया में भी सभी का आवाज, चाहे हमारा राजस्थानी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जो भी हमारा भारत में निवास करते, सभी इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं और हमारा गीत के माध्यम से देश का हित में, जनहित में प्रस्तुत किए। सभी को अच्छा लगा और कभी आएंगे तो बढ़िया से प्रस्तुतिकरण करेंगे। वेरी गुड। चलिए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। वैसे संगीत का सफर सच में इतना सुहाना होता है कि बाकी सब सफर उसके आगे फीके लगते हैं। एक्चुअली चाहे हम घूमने जाएं या परिवार के साथ समय बिताएं या कहीं अकेले किनारे बैठे हो किसी सोच में डूबे हो, संगीत हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, इसलिए हम भी उसका साथ नहीं छोड़ते और लेकर आते हैं आपके लिए ये कार्यक्रम जिसमें मिलवाते हैं आपको हर हफ्ते एक नए मेहमान से। लेकिन वो मेहमान होते हैं खास क्योंकि उन्हें होता है संगीत से प्यार। और आज भी हमारे समक्ष एक ऐसी ही आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है निधि अग्रवाल जी, जो कि कवयित्री भी हैं, वो ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट राइटर भी हैं, और साथ साथ उनकी कविताओं का बहुत सुंदर उन्होंने संग्रह भी तैयार किया है। तो आइए निधि जी,

0: आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आज। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं संगीत, जहाँ भी मौका मिले, संगीत या गीत, कहीं पर भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो तो जो भी मैं कविताएं लिखती हूँ उनको ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि वो समाज से जुड़ी होती हैं और प्रकृति से भी संबंधित होती हैं, जिससे कि हम लोग अपने समाज में क्या चल रहा है, हमारी प्रकृति में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे हम लोग जुड़े रहें। मैं खुद जुड़े रहती हूँ और इन कविताओं के माध्यम से बस अपना संदेश सबको सुनाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ इसलिए। और मैं बेसिकली यूपी कानपुर की रहने वाली हूँ, और हमारे यहाँ जैसे गंगा नदी है तो वहाँ पे मतलब अभी तो काफ़ी प्रदूषण पे कंट्रोल है, लेकिन एक समय था जब हमारे यहाँ पे गंगा का बहुत ज़्यादा प्रदूषण था, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पानी हमें साफ़ नहीं मिल पाता था और हर जगह गंदगी, कचरा, कूड़ा ये सब रहता था। लेकिन अभी सरकार भी बहुत मतलब जागरूक हुई है सबको लेकर, तो अभी साफ सफाई गंगा की करना बहुत हो गया है, और शहर में भी अभी सुंदरीकरण हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा गंदगी और वो प्रदूषण और वो सब रहता था। तो मेरी कविताओं का मतलब, क्योंकि बचपन से ही मुझे संगीत, कविताओं से, गीत से बहुत एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है, और बहुत मतलब एक अंदर से ही एक जैसे एक मुझे रहा है बचपन से कि मैं कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ें करने का मुझे शौक रहा है। तो उसमें कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, जो भी मुझे लगता है समाज में चल रहा है और जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए और तब बच्चों के लिए, जो हम उनको कैसे एक अच्छी सोच दे सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आज है हमारा और बच्चे हमारा कल। तो जब हम अपनी युवा पीढ़ी को सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे बच्चों को, तो हमारा भविष्य और आज बहुत सुंदर हो
0: तो
1: सकता है।
0: इसलिए आप युवाओं के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी कविताएं लिखते हैं।
1: जी, मैं उनके लिए भी लिखती हूँ। और हमारी जो महिलाएं हैं, जो शक्ति सेना है हमारे देश की, मतलब 50% जो जनसंख्या है हमारी महिलाओं की है, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो, वैसे तो आजकल हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत
0: कहां नहीं है महिलाएं, चाहे
1: हर जगह है महिलाएं,
0: चाहे क्रिएटिव फील्ड्स में हो,
1: हाँ हर फील्ड में आगे हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो उनसे भी संबंधित मैं कविताएं लिखती हूँ, बाकी समाज के लिए लिखती हूँ और प्रकृति से संबंधित। और एक चीज और मेरे विषय में शामिल है, जो है आध्यात्मिकता, जिसकी आज हम सबको बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल के जो हमारा माहौल है, जो हमारी जिंदगी है, उसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम मतलब कभी कभी लो फील करने लगते हैं, हम निराश, हताश होने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती,
0: बहुत सारी परेशानियां,
1: बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि बहुत सारी परेशानियां भी हैं जीवन में। तो हमें लगता है कि हमें परमात्मा से जुड़ने की और उनकी, उनसे शक्ति लेने की जरूरत है। तो जब हम अध्यात्म को साथ लेके चलेंगे तो हमारा जो जीवन है वो बहुत बेहतर बनेगा, बहुत मतलब हम अच्छे से अपनी सारी समस्याओं का सामना कर पाएंगे और हम अपने हर मतलब हर जो भी हमारे जीवन में हम करना चाहते हैं उसमें हमेशा हमें सफलता मिलेगी।
0: तो बहुत सुंदर विषय है आपके, आपने बताए, और मुझे लगता है कि आपके पास शब्दों का बहुत बड़ा खजाना भी होगा, क्योंकि जब कोई लिखते हैं तो वो शब्दकोश भी बहुत बड़ा जरूर होता है उनके पास, क्योंकि हर चीज को व्यक्त कर पाना कई बार लोगों को मुश्किल भी लगता है कि हमने जो सोचा शायद वो कहा या नहीं, तो वो भी होता है। निधि जी, मैं आपसे थोड़ा सा और पहले ये जानना चाहूंगी कि कविता लिखना आपने कब शुरू किया, वो कैसा?
1: जी, मैं क्लास 5th या 6th में थी, तो तब से मतलब मैं प्रकृति के शुरू से बहुत करीब रही हूँ। हमारा जो घर भी रहा है वो बहुत मतलब ऐसे, हमने घर में मतलब मेरे माता पिता को भी हरियाली का बहुत शौक रहा, तो हमारे आसपास बहुत पेड़ पौधे रहे, पशु पंछी बहुत मतलब पहले हमारे घर के मतलब घर में भी वो उनकी बहुत हम आवाज़ सुनते रहे शुरू से ही, और गीत संगीत भी हमने बहुत मतलब करीब से मैंने बचपन से देखा। तो मेरा एक रुझान सा हो गया कि मतलब कि कुछ मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, जो प्रकृति है, जो वातावरण है वो हमसे कुछ कहना चाहता है तो हमें उनकी आवाज को सुनने की कोशिश करना चाहिए, क्या वो हमको संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश अगर मैं समझ पाती हूँ तो वो मैं अगर कविता के माध्यम से दूसरों को भी बताऊं या सुनाऊं तो मुझे एक बहुत मतलब लगता था कि मैं कुछ सेवा कर रही हूँ प्रकृति की और मतलब अपने समाज की भी। तो जब मैं 5th या 6th क्लास में थी तभी से ये सफर लिखने का शुरू हुआ। तो मैंने पहली बार जो कविता लिखी थी वो एक कुछ चिड़िया पर और प्रकृति पर लिखी थी और वो हमारे यहाँ पे दैनिक एक वो पत्रिका छपती थी उस समय, अभी भी छप रही है अमर उजाला, तो उसमें प्रकाशित भी हुई थी।
0: क्या बात है।
1: तब से मुझे लगा कि मैं ठीक ठीक लिख सकती हूँ तो बस वहीं से मैंने शुरुआत की और फिर जो वो वहां से शुरुआत हुई तो परमात्मा की हाँ वो सफर आगे बढ़ता रहा और मतलब अभी बहुत सारे।
0: तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी आपसे निधि जी कि जैसे आप कविताएं तो लिखते हैं, एक्चुअली मैं जानना तो आपके सफर के बारे में बहुत कुछ हम चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम संगीत का है, ये कार्यक्रम ऐसा है कि जहाँ पे हम जुड़ते हैं कविताओं से गीतों से, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपकी लिखी हुई कोई कविता आप हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं।
1: जी जी जरूर। मेरी एक कविता है जो मैंने लिखी है कि कैसे मतलब अपने मन के जो भाव होते हैं उस पे आधारित है कि हर इंसान के अंदर मन में कुछ ना कुछ भाव रहते हैं और उनको मतलब हम कैसे मतलब कभी कभी बहुत गहराई से फील करते हैं, तो वो ही भाव के ऊपर ये कविता है कि मेनली जैसे शांत एक शांति का एक होती है भाव होता है या एक फीलिंग होती है, तो वो मुझे जब फील हुई होती है तो उसकी मतलब कितनी पावर होती है उसमें, उसी पर आधारित है। खामोशी की जुबान, खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, बिन बोले बहुत कुछ कहती है, मन के अनसुने राज खोलती है, दिल में बस उतर जाती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, जुबान कभी ना जो कर पाती, खामोशी की जुबान वो कर देती है जो सोचा नहीं। खामोशी की जुबान मन का आईना है, खामोशी की जुबान मन का आईना है, हमारे विचारों को देती है आकार, हमारे विचारों को देती है आकार। खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, खामोश रहकर भी अपनेपन का एहसास कराती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह देती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, जीवन में नए रंग भरकर जीवन खूबसूरत बनाती है, जीवन खूबसूरत बनाती है। खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, गहरा असर करती है।
0: क्या बात है, खामोशी को जुबान दे दी आपने। और क्या महसूसता होती है जब कोई इंसान चुप भी होता है तो क्या कह रहा होता है या क्या महसूस कर रहा होता है। आपने एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ देती है खामोशी की जुबान। इसका क्या अभिप्राय था, मतलब ये क्या आपकी भावना थी इसके पीछे?
1: मेरे मन में इसके पीछे यही भावना थी कि जब हम खामोश होते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं हम उनको समझ पाते हैं, अपने मन को समझ पाते हैं, और परमात्मा से जुड़ने के लिए भी हम जितना खामोश रहते हैं उतना ही डीप कनेक्शन परमात्मा से हमारा बन पाता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं तो हम खुद से नहीं जुड़ पाते हैं और परमात्मा से भी हम नहीं जुड़ पाते उतना अच्छे से, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, या हमें क्या करना चाहिए, और परमात्मा से हमारा जो संबंध है उसकी गहरी महसूसता जब हम खामोश होते हैं तभी होती है। और हमारी शक्तियाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हम जब बोल रहे होते तो हम अपनी शक्तियों को भी उतना ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे होते हैं.
0: ओके.
1: लेकिन जब खामोश रहते हैं तो हमारी शक्तियां कंसंट्रेट हो जाती हैं और बेटर होती हैं. मेरा बस यही अभिप्राय था खामोशी की जुबान के पीछे.
0: बहुत सुंदर.
1: हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए. जो भी हमारा दिनचर्या है या जो भी हमारा लाइफस्टाइल है तो अपने लिए समय निकालें और उस समय मतलब खामोशी में रहकर बैठें तो हमें बहुत सारा मतलब अपने बारे में जानने को मिलेगा और हमारे जीवन में हमें ज्यादा सफलता मिलेगी और परमात्मा का भी हमारा जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग
0: होता जाएगा. क्या बात है. और जैसा आपने कहा कि आपने फिफ्थ क्लास से आप लिखना शुरू कर दिया था, आप अपना अनुभव सुना रहे थे, तो आपने क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो क्या ये फील्ड आपकी लिखनी से ही शुरू हुई, इसीलिए आपका इंटरेस्ट आया, या कोई और रीज़न था इस करियर के पीछे?
1: एक्चुअली मेरी लेखनी से, वैसे तो मैंने आगे की जो पढ़ाई की वो मतलब अलग फील्ड में की थी क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हमेशा से, क्योंकि मुझे साइंस बहुत पसंद रहा क्योंकि इसमें लॉजिक होता है चीज़ों में. हम मतलब प्रूव कर सकते हैं हर चीज़ को, हमें ऐसे मतलब बिना देखे कोई चीज़ को मानने की, बिना समझ के मानने की ज़रूरत नहीं होती. साइंस हर चीज़ का प्रूफ देती है, लॉजिकल होती है, इसलिए मुझे साइंस फील्ड पसंद थी. तो मैंने साइंस में ही अपनी पढ़ाई आगे की और उसके बाद उस समय क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड वाली फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो मेरे घर वालों ने भी चाहा कि मैं उस फील्ड में कुछ करूँ. तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई उस फील्ड में की, MBA किया और MBA के बाद मैंने कुछ कॉरपोरेट कंपनीज में, MNCs में भी काम किया. लेकिन अंदर से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा था.
0: ओके.
1: लेकिन जो मेरा राइटिंग वर्क था वो मेरा चल रहा था साइड बाय साइड. तो मुझे लगा कि जब मुझे ये प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ और इससे मैं ज्यादा करीबी फील करती हूँ, क्रिएटिव राइटिंग है चाहे वो कविताओं के माध्यम से है, लेखों के माध्यम से है, ब्लॉग्स के माध्यम से है, और मैं गीत भी लिखती हूँ तो गीतों के माध्यम से है. तो फिर मुझे लगा कि मैं इसी को अपना फुल टाइम करियर बनाऊं क्योंकि मुझे और भी लोगों ने
0: जो, कब लगा आपको मतलब
1: जब मैंने जैसे आपको शेयर किया कि जब मैं MBA करके और कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही थी उस समय 2-3 साल बीत चुके थे.
0: 3 साल बाद आपको ये लगने लगा?
1: मुझे ये लगने लगा कि मुझे अपना करियर थोड़ा सा मुझे वो करना चाहिए, हाँ मुझे कुछ शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे उतना पैसा मैं कमा रही थी और जॉब भी चल रही थी लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना जो हम कर रहे होते हैं वो मुझे कहीं मिसिंग लग रहा था. बाहरी तौर पे तो मैं कर रही थी, ठीक था सब कुछ, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए बहुत कंटेनमेंट की, सेटिस्फेक्शन की, वो नहीं आ रही थी. और बाकी जो मैं जैसे फ्रीलांस बेसिस पे काम करती थी तो जो फील्ड से जुड़े, लेखन की फील्ड से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप इस फील्ड में अगर करोगे तो ज्यादा शायद अच्छा रिजल्ट आप दे पाओगे और आप आगे ज्यादा सफल हो पाओगे और मतलब आपका लगता है कि इसमें ज्यादा अच्छा एप्टीट्यूड है. तो फिर तभी से मतलब मैंने सोचा कि मैं फिर इसी फील्ड में अपने आप को वो करूं, परस्यू करूं इस फील्ड को और इसी में अपने सफर को आगे बढ़ाऊं.
0: तो बस
1: वहीं से मैंने सोच लिया और वहीं से फिर मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी कर लिया, इसलिए मुझे बोला गया तो BHU से 1 ईयर का और उसके बाद से पूरी तरह इस फील्ड में
0: आप आ गए. क्या बात है. आपने कहा आप गीत भी लिखते हैं
1: जी.
0: तो क्या कोई गीत है आपका लिखा हुआ आपको याद या कुछ आप अगर शेयर करें हमारे श्रोताओं के लिए?
1: एक गीत है तो उसकी कुछ लाइंस मैं गा देती हूँ क्योंकि मैं कवित्री हूँ बट मैं लिखती हूँ गीत भी
0: जी.
1: इसका शीर्षक है तुम बिन कोई नहीं. ये परमात्मा को मैंने डेडिकेट या समर्पित किया हुआ है. तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे

तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम्हें पाकर जैसे आसमां पा लिया। तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है मेरी सारी वफा। तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है सारी वफा। तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता मेरा। दिन रात तुमको ही चाहूँ मैं, तुम्हारी ही मत पे चलती जाऊँ मैं।

दफा साथ देते हो मेरा हर दफा, मेरी दुनिया रोशन है तुम्ही से, मेरी खुशी जिंदा है तुम्ही से, तुम हो मेरे खुदा, तुम हो मेरे खुदा, रखते हो पलकों पे सदा, रखते हो पलकों पे सदा, कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया, कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया। जन्नत को जैसे जमी पे लाए हो, सुख अपार मुझ पर लुटाए हो, जन्नत को जैसे जमी पे लाए हो, सुख अपार मुझ पर लुटाए हो, तुमसे मिलकर कुछ ऐसा लगा, तुमसे मिलकर कुछ ऐसा लगा, तुम ही हो मेरे यहाँ बस तुम ही हो, मैं हूँ जैसे कोई अफसरा ऐसा मुझको लगने लगा, मैं हूँ जैसे कोई अफसरा ऐसा मुझको लगने लगा, तुमने मुझ पर ऐसा करम किया, ऐसा करम किया, इतना ऊंचा मुझको बना दिया।

0: पूरा किया हर कमी को मेरी पूरा किया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों क्यों मेरे भिगा दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों को मेरे भिगा दिया, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम बिन कोई नहीं मेरा, यहाँ सदियों से है तुमसे नाता मेरा, सदियों से है तुमसे नाता मेरा।
1: ये गीत आपने पूरा परमात्मा को समर्पित किया
0: जी,
1: आपने ऐसा लिखा, वो जो आप फील करते हैं ईश्वर के लिए वो जैसे आपने शब्दों में लिखा। तो जब आप ये गीत लिख रहे थे तो क्या भावना थी, जैसा आपने कहा कि आप वैसे गाते तो नहीं हैं, आप लिखते हैं, तो आपको ये मन में भावना थी कि ये आप किसी को देंगे या गवाएंगे, या आपको लगता था कि ये मैंने अपने लिए लिखा है, क्या सोच के आपने लिखा या क्या महसूस था थी इस गीत के लिए?
0: मेरा मतलब मेन पर्पस था कि ये गीत तो मैं अपने लिए लिखना चाहती थी, जो मेरा परमात्मा के साथ संबंध जो मैं महसूस करती हूँ, लेकिन जैसे कि मैं चाहती थी कि कोई और की आवाज में ये गीत
1: गाया
0: मतलब
1: जाए।
0: हाँ गाया जाए और सुने सब लोग, ताकि मतलब जैसा मैं महसूस करती हूँ परमात्मा के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो भी ऐसा महसूस करते हैं परमात्मा के लिए, तो एक मतलब उनको भी ये गीत सुनने को मिले तो उनको भी वो खुशी हासिल हो जो मुझे खुशी हासिल हो रही है, तो यही सोच के साथ मैंने ये लिखा था।
1: वंडरफुल। तो डेफिनेटली जब हम कुछ लिखते हैं तो अगर महसूस नहीं करते तो वो लिख नहीं सकते, वो
0: जी
1: कागज और
0: बिल्कुल
1: कलम पे
0: बिल्कुल,
1: नहीं आ सकता। तो यहाँ
0: जब
1: मैं आप
0: तक भावनाएं हमारे मन में नहीं होंगी उस विषय के प्रति या उस चीज के प्रति, तब तक वो शब्दों में उस तरह से ढल ही नहीं पाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सच। तो निधि जी एक और बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, कविताएं लिखना और कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी लेखन के भी दो अलग अलग फील्ड्स हैं बहुत,
0: जी
1: तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं, क्या समानता लगती है या कैसा महसूस करते हैं हम दोनों को ही लिखते वक्त?
0: देखिए, लेखन का है वो फील्ड एक अलग है, वहां पे हमें बहुत सारा प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ता है, बहुत सारी मतलब भावनाओं के साथ ही हम नहीं हमेशा लेखन कर सकते, हमें जो सच्चाई है समाज की या जो हमारे विषय है उसके ऊपर हमें रिसर्च भी करना पड़ता है, और बहुत सारी लोगों से बातचीत करके हम कोई लेख तैयार करते हैं और फिर वो लिखते हैं, और वो समाज से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे मतलब महिलाओं से रिलेटेड, कोई भी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है लेख हमारा, लेकिन उस पे हमें रिसर्च जरूर करना पड़ेगा, और वो इतना मतलब एक जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी कई बार उसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, ये जो हैं ये सारे बहुत भावनात्मक पहलू से संबंधित होते हैं, जो

0: समाज से भी हम चीजें देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, मतलब बहुत सारे विषय हैं जो जिन पे आधारित होते हैं, लेकिन मेनली इनमें भावनाएं मेन होती हैं और उन्हीं के आधार पे हम लिखते हैं। इसमें कोई रिसर्च वर्क या कुछ किसी से बातचीत के आधार पे ये चीजें नहीं होती हैं, बट ये है कि दोनों में समानता अगर देखें तो यही होती है कि लेखक जो होता है वो उसके विचार दोनों में ही आ जाते हैं, चाहे वो गीत होंगे, कविताएं होंगी या लेखन होगा। तो हमारे विचार तो इनमें आते हैं, हम अपने मन की जो भावनाएं, लेकिन वो लिखने का जो पैटर्न होता है वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है दोनों में। वो भावनात्मक विषय हमारी फीलिंग्स पे आधारित होते हैं जो गीत और कविताएं हैं, हालांकि वो विषय हम वहीं से उठाएंगे, अपने समाज से ही उठाएंगे, पर लेखन में होता है कि हमें खाली अपनी फीलिंग्स नहीं डाल देनी है, वो सच के करीब होने चाहिए, उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको शामिल करना पड़ेगा, लोगों के जो व्यूज हैं वो सारे शामिल करने पड़ेंगे। ये मेन डिफरेंस आ जाता है।
1: तो उसके लिए अगर मान लीजिए कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो क्या स्किल्स होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
0: मेनली अगर कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उनको थोड़ा सा लिखने की, मतलब उनकी एक शैली उनको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर होती है कुछ लोगों में तो फिर वो लेखन के फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। शब्दकोश अपना अच्छा बनाना पड़ेगा, जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में हमें थोड़ा कमांड होना चाहिए अच्छा, तो फिर इस फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, हालांकि अगर आप प्रोफेशनल एक राइटर बनना चाहते हैं तो वो भी आजकल ज़रूरी हो गया है कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो, लेकिन अगर आप ऐसे शौकिया तौर पर लेखन करना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं। अगर आपका रुचि है, लेखन में रुचि है, आपका शब्दकोश आप अच्छा रख सकते हैं और आप भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अगर आपका, मतलब एक आपके अंदर वो
1: काबिलियत है,
0: हाँ एप्टीट्यूड है, तो इस क्षेत्र में आप आके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ये क्षेत्र आपको बहुत
1: बहुत कुछ दे सकता है
0: क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान आप बना सकते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि लेखन के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के दिलों में आ जाते हैं, दिलों में लोग बिठाते हैं और बहुत सम्मान भी हमें मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, खाली इस क्षेत्र में सम्मान और एक लोगों का प्यार बहुत
1: होता
0: है, ये मैंने देखा है।
1: क्या बात है, मस्त है। तो कोई और ऐसी कविता निधि जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो या आपको बहुत पसंद हो, या जैसे आपने कहा लोगों का प्यार मिलता हो, जिससे आपको लगा कि हाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया इसे।
0: जी बिल्कुल, ये कविता है जो हमारे रिश्ते जो हैं उन पर आधारित है कि आजकल हमारे रिश्तों में, मतलब वो जो अपनापन, जो खींच है वो थोड़ा कम हो रही है, तो उसको कैसे हम बरकरार रखें, चाहे कोई भी रिश्ते हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्तों के साथ रिश्ता हो, या परमात्मा के साथ हमारे जो संबंध हैं, तो कैसे रिश्तों में एक ताजगी हम रखें, कैसे रिश्तों में प्यार स्नेह रखें, उस पर आधारित है मेरी ये कविता, आपके सामने रख रही हूँ। रिश्तों का सौंधापन, रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्ते तो हमें जोड़ते हैं, हम खुद ही उन्हें तोड़ते हैं। विकारों के वशीभूत होकर रिश्तों को छोड़ते हैं, झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं। झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप, अपनेपन की खाद। प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप, अपनेपन की खाद। मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है। मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है। रिश्ते सहज सरल समरस बन जाते हैं। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है। रिश्ते मुरझा ना पाए ध्यान हमें रखना है। रिश्ते मुरझा ना पाए ध्यान हमें रखना है। प्रेम का छिड़काव उन पर करते रहना है। प्रेम का छिड़काव उन पर करते रहना है। मधुरता और अपनत्व की धूप से उनको पोषित करना है। शीतलता की बारिश उन पर करते रहना है। रिश्ते सौंधे और सुंदर बने रहेंगे सदा और सर्वदा। रिश्ते सौंधे और सुंदर बने रहेंगे सदा और सर्वदा। रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है, जी भर जीने का मन करता है।
1: बहुत सुंदर। रिश्तों का सौंधापन, मतलब ये कैसे रिलेट किया आपने? हम जानते हैं वो सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है वो तो बहुत आकर्षित करती है, पर रिश्तों का सौंधापन क्या है? थोड़ा अगर आप समझाएं कि मतलब किस चीज़ ने प्रेरित किया आपको ये लिखने के लिए, और रिश्ते आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो भी अगर आप बताएं।
0: ये मतलब जैसे सौंधापन हम देखते हैं ना, बहुत मतलब खुशबू होती है एक बहुत प्यारी सी, तो वही हम खुशबू अपने रिश्तों में भरें तो फिर वो रिश्ते हमारे हमेशा सुंदर बने रहेंगे और हमारे रिश्तों में प्यार हमेशा बना रहेगा। तो वही मैंने कहा कि वो जैसे सौंधापन हमको, चाहे वो बारिश की बूंदें जब पड़ती है मिट्टी पे, तो मिट्टी से एक सौंधेपन की खुशबू आती है। पहले जमाने में वो जो दाल माताएं बनाती थी वो चूल्हे पे, उसमें एक सौंधापन आता था जो मिट्टी का बर्तन होता था। तो इस तरह हम वो सौंधापन अपने रिश्तों में भी अगर हम लाएं, वो मीठापन, तो हमारे रिश्ते बहुत सुंदर बने रहेंगे, बहुत रिश्तों में हमेशा एक ताजगी बनी रहेगी, एक अपनत बना रहेगा, स्नेह भावना बनी रहेगी। और मेरे लिए रिश्ते मेरे जीवन में बहुत बहुत मायने रखते हैं। तो बचपन से ही मैंने अपने रिश्तों को मतलब बहुत महत्व दिया है जीवन में, और चीज़ों से ज़्यादा हमेशा मैंने रिश्तों को महत्व दिया है। तो मैंने देखा है कि बाकी सब चीज़ें मेरे जीवन में हमेशा अच्छी हुई हैं क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, रिश्ते मेरे मजबूत हैं, तो मेरे मन की स्थिति भी हमेशा अच्छी है, और लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं जब अपने रिश्तों से जुड़ी रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे मुझे सीखने को मिलता है, एक मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहा है, एक बुरे वक्त में साथ मिला है रिश्तों का, अच्छे बुरे वक्त में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते हमेशा अच्छे बना के रखने चाहिए, चाहे वो घर के लोगों से रिश्ते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पे हैं, क्योंकि इन सबकी ब्लेसिंग्स और इन सबका साथ जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और परमात्मा से हमारा रिश्ता वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनसे अगर हम अपना रिश्ता अच्छा बनाए रहेंगे तो बाकी सारे रिश्ते भी कहीं ना कहीं हमारे अच्छे बने रहेंगे। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में रिश्ते। मेरे हिसाब से तो मेरी लाइफ में एक मतलब जो बोलते हैं ना कि लाइफ लाइन है रिश्ते मेरी लाइफ के।
1: क्या बात नीति जी। लेकिन रिश्तों को बरकरार रखने के लिए जो आपने कहा, ये सब पाने के लिए आज की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो चुकी है, सब अपने अपने तरह से जीवन जीना चाहते हैं, जो गलत भी नहीं है, और फिर भी और समय भी बहुत कम होता जा रहा है सभी के पास। तो कैसे, मतलब आपका क्या कोई फॉर्मूला है या कोई चीज़ है जिसने आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम किया, जो आपको लगता है कि दूसरों को भी मदद कर सकती है?
0: हाँ, मुझे लगता है कि आज की लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा, मैं भी मानती हूँ कि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और एक दूसरे के लिए इतना टाइम भी नहीं दे पाते आजकल हम लोग, और मतलब दूरियां भी बढ़ गई हैं, मतलब फिजिकल डिस्टेंस भी हो रहे हैं आजकल, क्योंकि कोई किसी शहर में रह के काम कर रहा है, कोई यहाँ रह के। लेकिन हम मन से तो जुड़े रह सकते हैं ना, तो मन की भावना हम सभी जो हमारे अपने हैं या जो भी लोगों के हम संपर्क में हैं, संबंध में, उनके लिए मन की भावनाएं अच्छे रख सकते हैं, और साथ में हम बीच बीच में उनसे अगर पॉसिबल हो तो उनके साथ कुछ समय बिताएं, कोई ओकेशन है उस समय हम आपस में मिलें, या फिर कभी हम लोग फोन से भी बात कर सकते हैं जिन लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है। और मान लीजिए कि हम किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो उस समय हम उस रिश्ते के साथ ज़रूर खड़े हों, समय निकाल कर उनके सुख दुख में। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे रोज़ ही मिलें, रोज़ ही बात करें, या उनको बहुत सारे अच्छे गिफ्ट दें, या फिर मतलब बाहरी जो दिखावे की चीज़ें वो करें, मगर हम उनका दिल से साथ दें रिश्तों का। और मतलब रिश्तों में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा सहनशील बने, और मतलब जो भी हमारे रिश्ते हैं उनको बरकरार रखने के लिए अगर हमें सैक्रिफाइसेस भी कुछ कुछ करने पड़ते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत स्मूथ रहती है रिश्तों में। बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी आपस में मतभेद भी हो जाते हैं, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू खत्म करें, रिश्तों में कभी भी मन मुटाव की भावना पैदा नहीं होने दे और अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दे तो हमारे रिश्ते अच्छे रह सकते हैं और हम लोगों से जुड़े रह सकते हैं जिन लोगों से हम जुड़े रहना चाहते हैं।
1: मतलब माफ कर दें अगर कुछ हो भी जाए तो।
0: जी जी बिल्कुल, माफ कर बैठे उसको, नहीं उसको लेकर बैठे नहीं और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा कोशिश करके पॉजिटिव रखें दूसरों के प्रति भी, क्योंकि हो सकता है देखिए हम सभी अलग अलग जगहों से आए हैं और हमारे संस्कार स्वभाव कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। ये सोचे कि उनका स्वभाव हमसे थोड़ा अलग है, ये नहीं कि मैं ठीक हूँ और वो गलत है, वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही है, बस हमको तालमेल बिठाने की जरूरत है, एडजस्टमेंट की जरूरत। अगर ये सोच रखेंगे तो हमारे रिश्ते कभी किसी के साथ खराब नहीं हो सकते। और जहाँ अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम थोड़ा सा साइलेंट हो जाए उस समय और बाद में जो भी बात है वो आपस में बातचीत करके खत्म कर लें। बस ये सब चीजें अगर हम अपनी लाइफ में सोच में रखेंगे तो हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे और हमेशा मतलब हमारे बीच जो है प्रेम और स्नेह बना रहेगा रिश्तों में। और मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, रिश्ते तभी खूबसूरत रह सकते हैं, हमारी सोच अच्छी रहेगी तो दूर रहकर भी हमारे रिश्ते आपस में बहुत अच्छे रह सकते हैं।
1: निधि जी, जैसे आपने रिश्तों के बारे में बात की और उससे पहले हमने परमात्मा के साथ जो संबंध की बात की, अब अगर थोड़ा सा प्रकृति पे आए, आपने क्योंकि लिखना जब शुरू किया था तो आपने कहा वो चिड़िया पे है ना, वो पेड़ों को देखा वो हाँ। आपने फिफ्थ क्लास में लिखना शुरू किया, तो प्रकृति के लिए भी अगर आपने कोई कविता लिखी हो तो वो हमें जरूर सुनाए हमारे श्रोताओं के लिए। कि हम आबू में रहते हैं और आबू सारा बोर है प्रकृति के जैसे वरदानों से ना, बहुत सुंदर प्रकृति का स्थान है ये,
0: बहुत सुंदर ये जगह है। यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे भी बहुत प्रकृति के नजदीक फील होता है और लगता है प्रकृति जो कुछ कहना चाहती है उसे सुनना चाहिए और उसको महसूस करने का बहुत अच्छा एक जरिया है ये आबू। तो मैंने जो मतलब मैं भी प्रकृति के शुरू से बहुत नजदीक रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रकृति के साथ समय बिताना। तो मेरी ये कविता प्रकृति से संबंधित है और समर्पित है। जीवन और प्रकृति, जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, क्या आपने ये बदलाव महसूस किया? जीवन का यह नया अंदाज असाधारण सा, फिर से हम पुराने समय में पहुंच गए हैं, जड़ों से जैसे जुड़ने लगे हैं, प्रकृति के बेहद करीब हो रहे हैं, सब कुछ लग रहा है नया नया। शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, दिल में भरें खुशी और मस्ती के रंग। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच भी कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। ताजी और ठंडी हवा आनंदित कर रही है, धूप गुनगुनी और प्यारी लग रही है, अपनों से समरसता बढ़ रही है, पर क्या अपने अंदर झांक कर देखा है? जरा खुद को टटोलो और पूछो, क्या मानव सृष्टि बदलने वाली है? क्या नई दुनिया आने वाली है? प्रकृति भी इशारा दे रही है, संभल जाओ मानव वरना देर हो जाएगी। पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी, पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी, प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी, प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी, और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी, फिर से ये महफिल ना सच जाएगी, फिर से ये महफिल ना सच पाएगी। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच में कुछ तो अच्छा हो रहा है। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी,
1: जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी। और सच में हमने प्रकृति के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत गलत किया है, प्रकृति का विकराल रूप भी इंसान ने देखा है।
0: हाँ, लेकिन बहुत हमने देखा है, मतलब क्योंकि अब आजकल जो दौर चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि प्रकृति भी अपनी सीमाएं लांघ रही है, बहुत जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत ज्यादा शोषण किया है, प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है मानव दिन पर दिन। तो इसीलिए ये सारी हम देख रहे हैं, प्रकृति भी फिर वो रिएक्शन दे रही है ना आपको जब हम उसका इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी हमारे पास समय है कि हम संभल जाएं वरना फिर हो सकता है बहुत देर हो जाए और फिर विनाश की मतलब एक प्रकृति भी ऐसे रूप में आ जाए,
1: प्रकृति भी अपना विकराल रूप और दिखाए,
0: और ज्यादा विकराल रूप सामने आएगा, तो फिर मानव को बहुत ज्यादा उस समय मतलब पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
1: वो कहते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो अब हमें प्रकृति प्रेम को और बढ़ाना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम प्रकृति की बात पे आई है, कैसे मतलब प्रकृति के साथ और करीब कैसे खुद को महसूस करें, या कैसे वो उस नाते को और स्ट्रॉन्ग किया जाए?
0: हाँ, प्रकृति के साथ हम अपना नाता स्ट्रॉन्ग तभी कर सकते हैं जब हम प्रकृति का संरक्षण करने की दिशा में आगे बढ़े। मतलब पेड़ पौधे, हरियाली है उसको मतलब और हरियाली अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाएं, और मतलब जो हमारे शहरों में जो जहाँ पे भी मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो हम लोग उस चीज को भी देखें कि हम नष्ट नहीं करें पेड़ पौधों को, और जो हमारा जैसे पानी है वो भी एक हमारा प्राकृतिक एक स्रोत है, प्रकृति से जुड़ा हो, तो उसको भी हम मिसयूज नहीं करें, उसको बर्बाद नहीं करें, उसका भी हम संरक्षण करें, तो हम प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं। जितना हो सके हम मतलब पेड़ पौधों का, जल का, इन सब का मतलब हम दुरुपयोग नहीं करें, इसका सदुपयोग जितना जितना हम करते जाएंगे तो हम प्रकृति के और नजदीक आते जाएंगे, और मतलब उनको अपना एक दोस्त समझें, ये नहीं सोचे कि ये तो मतलब पेड़ पौधे हैं, इनका क्या है, इनको कैसे भी इस्तेमाल करो, इनके अंदर तो कोई जान नहीं है, ये तो एक जगह खड़े रहते, निर्जीव नहीं माने, वो सजीव है हमारे जैसे ही, तो अगर हम उनको अपने जैसा ही समझेंगे तो हमारी उनके प्रति भी शुभ भावना रहेगी, और हम उनको भी अपना एक सच्चा मित्र मान के चलेंगे, तो कभी हम उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, और हमारा उनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन बनेगा, और हम नजदीक रहेंगे, और वो प्रकृति की भी एक भाषा होती है, जो अगर हम एक शांति में रहकर अगर वो उस भाषा को सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें वो भाषा समझ में आएगी कि प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है। तो वो हम सुनने की कोशिश करें कि हमारी प्रकृति हमसे क्या चाहती है, जैसे हम प्रकृति से बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत कुछ प्रकृति हमको दे भी रही है, देती रही है सदियों से, लेकिन उसको भी जो हमसे चाहिए वो हम कभी हमने उस चीज के बारे में नहीं सोचा, केवल हमको क्या चाहिए प्रकृति से उसी के बारे में हम सोचते आए सदियों से। तो अब हमें जरूरत है कि हम इसको अपने फोकस को चेंज करें और प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है उसके बारे में भी हम सोचें।
1: ये बात मुझे सच में बहुत अच्छी लगी नीति जी की, हम देखते हैं, हम जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, हम वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं,
0: अगर बहुत अच्छा लगता है। अगर पेड़ पौधे, पहाड़, प्रकृति नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा?
1: बिल्कुल।
0: बहुत नीरस हो जाएगा, प्रदूषण कितना हो जाएगा हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, हर जगह, और बारिश जो प्रकृति की देन है हमको वो नहीं हमें मिलेगी, तो
1: बिल्कुल
0: सोच लीजिए कैसा जीवन होगा मानव जीवन।
1: सच में जब हम जाते हैं तो हम इतना इंजॉय करते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसी प्रकृति जो हमें हर टेंशन से फ्री करती है, जो हमें खाना देती है, पानी सब कुछ मिलता है, तो हम क्यों ना उसकी आवाज सुने। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोस्तों जब आप भी जाते हैं किसी भी सफर पर, या फिर ऐसे यूं ही कुछ वक्त अपने लिए जब आप निकालते हैं, तो प्रकृति की आवाज सुने, सच में वो हमसे क्या कहना चाहती है, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है। या बहुत सुंदर ये बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, करके देखिएगा जरूर, मैं अपने दोस्तों से कहूंगी यहाँ पे। और दीदी जी, मैं आपसे जाते जाते एक और प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने महिलाओं की भी बात करी थी, है ना, जो इन टॉपिक्स पर आप लिखते हैं उसमें आपने कहा था महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी आप लिखते हैं, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ बताएं कि आपके क्या विचार हैं उस बारे में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो अभी किस प्रकार के सशक्तिकरण की जरूरत है, क्या अभी वो तरीका, मतलब क्या अभी वो नीड बदल गई है या चेंज हो गई है, कौन सा सशक्तिकरण चाहिए, और फिर जाते जाते अगर आप हमें कोई एक कविता भी आपकी जरूर सुनाएं।
0: महिलाओं को तो देख रहे हैं हम कि आजकल महिलाओं समाज में आगे बढ़ रही हैं, उनको मतलब हर क्षेत्र में महिलाएं अच्छा कर रही हैं, क्योंकि जागरूकता हमारे समाज में बढ़ी है, तो इसी वजह से आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आर्थिक तौर पर इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होना सिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू भी है कि महिलाएं जहां एक और बाहरी तौर पे तो उनके अंदर सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं और हमारे संस्कार हैं, वो भी बच्चियों में आजकल के पेरेंट्स को देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कहीं ना कहीं वो संस्कार और वैल्यूज़ की मिसिंग भी हो रही है हमारी जो नारी शक्ति है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे समाज में, हमारे परिवार में उसका बहुत गहरा प्रभाव हो रहा है कि महिलाएं जहाँ एक और वो आर्थिक तौर पे पावरफुल बन रही हैं, एम्पावर हो रही हैं और वो इंडिपेंडेंट सोच वाली हो रही हैं, वो होशियार हैं, वो हर क्षेत्र में आगे प्रगति कर रही हैं, लेकिन जो अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए और मतलब सबकी आदर सम्मान जो महिलाओं को मतलब करती हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस चीज को नहीं समझती हैं, लेकिन एक समाज में कुछ मतलब बहुत सारी वो भी हो रही है महिलाओं के आर्थिक तौर पे सक्सेसफुल होने के साथ साथ जो वैल्यूज और जो संस्कार हैं उनकी महसूसता में वो शक्तियां कम कहीं ना कहीं हो रही है महिलाओं में, जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे तलाक हो रहे हैं हमारे समाज में, मतलब डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं सहन शक्ति जो है जो पहले की माताओं में हुआ करती थी, स्नेह की भावना, स्नेह की शक्ति, प्रेम की शक्ति जिसके माध्यम से वो पूरे परिवार को बांधे रखती थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है आजकल। महिलाएं भी जैसे अपने ही बारे में ज्यादा सोचने लगी आजकल या अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी हैं बस, या मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम डेवलप होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहे हैं मतलब पति के साथ या हस्बैंड के साथ में, वो महिलाएं उस तरीके से तब अपने परिवार को नहीं साथ लेके चल पा रही हैं जैसे पहले महिलाओं के अंदर ये भी वैल्यूज और संस्कार रहते थे कि वो पूरे परिवार को बांध के चलती थी, परिवार की धुरी बन के चलती थी, भले ही वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आर्थिक तौर पे वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, लेकिन अपने परिवार में वो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी, वो रोल कहीं ना कहीं महिलाओं थोड़ा मिसिंग।
1: महिलाओं का मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि अब शायद हम जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हैं, उनको ये भी समझ में आया है या ये भी लगता है कि परिवार को बांधने का कार्य सब मिलकर करें और उसमें पुरुष भी सम्मिलित हों, उसमें ये डिफरेंस ना हो कि ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है, सभी की वो जिम्मेदारी होनी चाहिए।
0: हाँ, होनी चाहिए सबकी, पुरुषों की भी होनी चाहिए महिलाओं के साथ साथ, पर कहीं ना कहीं जो है ना परमात्मा ने भी जो महिलाएं हैं उनको जो शक्तियां दी हुई हैं जैसे स्नेह की, प्रेम की शक्ति, सहन शक्ति, वो पुरुषों से ज्यादा दी हुई है, तो अगर महिलाएं उस शक्ति को यूज करेंगी तो फिर वो ज्यादा मेजर रोल प्ले कर सकती हैं, जैसे पालना की शक्ति है ना, ये महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास ये शक्तियां उतनी नहीं है, तो इसलिए महिलाएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल परिवार को बांधने में कर सकती हैं। पुरुषों का भी रोल होता है और वो उनको निभाना भी चाहिए, पर अगर महिलाएं उनका साथ देंगी पूरी तरीके से, जैसे पुराने जमाने में हमारी माताएं बहनें दिया करती थी, तो परिवार कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से चलते थे और एक साथ रहते थे, कोई तलाक और डाइवोर्स पुराने जमाने में नहीं हुआ करते थे, जबकि पुराने जमाने में बहुत सारी महिलाएं मतलब वो भी सहन शक्ति खो रही हैं कहीं ना कि आर्थिक तौर पे वो क्योंकि सशक्त हो रही हैं, तो उनको लगता है कि हमें इतना सहन नहीं करने की जरूरत है, हमें कोई बात किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ मतलब मेरे को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए परिवार में जितना मेरे पति को मिलता है, मैं क्यों झुकूं, मतलब ये सब
1: झुकना तो दोनों को चाहिए, जहां जहां जरूरत
0: है दोनों झुकें, और मतलब ये और दोनों मतलब एडजस्ट करके चलें
1: जैसा आपने पहले कहा था
0: जी,
1: क्योंकि परिवार की जहां बात होती है
0: मतलब
1: वहां एक दूसरे को माफ करना, सहन करना, हर

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

शांति। आज 22 सितंबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में पाठशाला, पढ़ाई और श्रीमत, साथ ही साथ बाबा की याद में रहने की प्रेरणा मिली है। बाबा कहते, जैसे कोई भी पाठशाला में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, एक लक्ष्य भी रहता है, साथ में उन्हें जो डायरेक्शन मिलता है उस अनुसार चलते हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद जाकर के अपने कारोबार में व्यस्त भी होते हैं। यहां भी तुम बच्चों को कोई हमेशा के लिए यहां बैठना नहीं है। बाबा कहते, एक घंटा पढ़ाई किया, उसके बाद अपने धंधे दोरी में जाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहो, कमल फूल समान बनो और बाप को प्यार से याद करो। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को बैलेंस भी सिखाते हैं कि पढ़ाई भी पढ़नी है, श्रीमत पर भी चलना है, साथ ही साथ गृहस्थ जीवन में भी कैसे रहना है। तो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। इस श्रीमत का हमें पालन करना है। बाबा कहते, दुनिया में और सत्संग भी है, लेकिन वहां ऐसी श्रीमत नहीं मिलती है कि तुम भले रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में और पवित्र बनो, ये श्रीमत नहीं मिलती। तो बाबा कहते, यहां तुम बच्चों को अपना चार्ट भी लिखना है और बाबा को एक्यूरेट अपने याद का चार्ट भी देना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रखना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल, बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को भी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर है, पहली श्रीमत। तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरी श्रीमत, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी नहीं मिल सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्य की बुद्धि में हो कि हम ये वर्षा पा रहे हैं, बाप से वर्षा पा रहे हैं। यहां तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुखधाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे कि हम अपने पिता से वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं, नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है किससे? आत्मा को अब पहचान मिली है स्वयं की और परमात्मा की, बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहां आकर बैठना तो नहीं है, ये बाबा तो नहीं कहते कि यहां घर बार छोड़ करके आकर बैठ जाओ।
नहीं, स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। यह भी ऐसे ही है, रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो, तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहां तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो, पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते। दूसरे सत्संगों में बाबा कहते पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को कोई याद नहीं करते, बल गीता सुनते हैं पढ़ते हैं परंतु याद तो नहीं करते है ना। गीता में जो कहा है मन मना भव, तो याद तो नहीं करते है ना। तो कथनी और करनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है, ये चक्र बड़ा अच्छा है। बाबा कहते ये चक्र बड़ा अच्छा है, ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, पुरुषोत्तम मास एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हम बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बच्चे ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया, ये बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में ये नहीं समझाते हैं। तुम समझते हो हमको यह बनना है, बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने ये पद पाया है, ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के दो रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, तो यह बनेंगे। बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो यह बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है, चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ, यह निश्चय बैठता है कि बरोबर यह सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई है, जब साकार में आए तो भाई बहन बने तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, ये बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड है, सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहां से मिलेगा? सारे फादर हो गए तो वर्षा कहां से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। स्वयं को आत्मा समझने से ही बाप से वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वह सब निकल जाएंगे। बोलो दो बाप है, रूहानी बाप जिससे सर्व की सदगति होनी है वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। सब सुखी हो जाते हैं, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला,
पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। यह है आत्माओं का बेहद का बाप, उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले ये बुद्धि में बिठानी है। ये समझे तब खुशी का पारा चढ़े और कहे कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। ये खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा, ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिले। बेहद का बाप, बाबा कहे, एक तो बुद्धि में निश्चय होगा तो कहेगा कि बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो, ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वह पूछते हैं, तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है? वही वर्षा देंगे, पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर से अशरीरी आई थी ना, कोई भी देह संबंध नहीं था। जब ऊपर से आत्मा नीचे आई इस संसार में तो कोई देह भी नहीं था, तो देह के संबंध भी नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है कि ये तुम्हारा बाबा है, ये फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा अपने आप में तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है, आप मुए मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है। जब तक दूसरा शरीर मिले, माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। बच्चा है जब तक बेसमझ है, तब तक संबंधों को भी नहीं समझ पाता। तो यहां भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप को याद करना, यह है अव्यभिचारी याद। इसको ही योग कहा जाता है। यहां तो मनुष्य को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे, नहीं, विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। विकर्म तब बनेगा जब कोई रॉन्ग कर्म, बेकायदे कर्म करते हैं। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। मानो हमने परमात्मा के बदले देवताओं को याद किया तो उससे कोई विकर्म नहीं बनता है। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा क्योंकि वो यथार्थ याद नहीं है। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, यह युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात है यह, अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं।
ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं? वॉइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं, इसीलिए ऐसे नहीं कि जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन गए। यह है विशेष वर्ल्ड, इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे, तो बाबा कहे समझाने में बहुत सहज होगा, इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते देह के संबंध छोड़, अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत है, ऐसे थोड़ी के पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए। नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं, तो यह बातें अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसको भी जिगरी समझाना है।

दिल से हड्डी समझाना है। बाबा कहते किसको भी हड्डी यानी जिगरी समझाना है, बित बित करने से बदनाम कर देंगे। कुछ इधर की बात उधर की बात फालतू बात, बाबा कहे बित बित करने से तो बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहां मूंझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो। हम दूसरी बहन को भेजते हैं, एक दो से तीखे होते हैं ना, प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं, गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के होते हैं ना, बड़े आदमी को जरूर रिगाड़ देंगे, फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है इन पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है, नहीं। बाबा कहते जो आत्मा जैसी है उसकी जो आंतरिक चाहना है उस अनुसार उसको ज्ञान परोसना होता है। इनको द्वैत नहीं कहा जाता है, समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातरी की जाती है, सर्विसेबल की खातरी करेंगे ना, कोई ने मकान बना कर दिया है तो उनकी खातरी तो जरूर करेंगे ना, तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातरी करेगी ना, कम दर्जे वाले से उच्च दर्जे वाले की खातरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में, भारतवासी जो पहले ऊंच थे वह अब कहां पहुंच गए हैं, एकदम सीढ़ी में नीचे पहुंच गए हैं। तो बाप कहते मैं आया हूं पढ़ाने, मैं भारत में आता हूं तो सबका कल्याण हो जाता है, इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नरक है फिर स्वर्ग बनता है, तो भारत में ही तो जाएंगे ना, और जगह जाकर क्या करेंगे बाबा, और जगह जाकर क्या करेंगे। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था, जैसे चर्च बड़े थे बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है, सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था, मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे, चर्च से क्या लूट सकेंगे। हाँ बाबा कहते चर्च से क्या लूट सकेंगे, मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए वह भी यहां से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए, अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं, ये सब आई वेल मिल रहा है, समय आने पर मिल रहा है। आई वेल माना समय आने पर मिल रहा है, हिसाब न मिले तो आई वेल कैसे चले। बाबा कहते हिसाब न मिले तो आई वेल कैसे चले, यानी समय पर कैसे चले। बाप समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब कैसे है, फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, यह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे मन मना भव, ये सब फिर रिपीट होगा, हर चीज सतो से तमो प्रधान बन जाएगी, दिन में धंधा दोरी आदि करते हो वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है, कईयों की ऐसी सर्विस रहती है सिर्फ सही की खलास, सिग्नेचर किया बस खलास, किसी किसी की ऐसी सर्विस रहती है कि उसकी सिग्नेचर ही महत्वपूर्ण होती है, सिर्फ सही की खलास, ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है, दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह कमाई करो, यह है भविष्य 21 जन्मों के लिए।
कहा जाता है एक घड़ी, आधी की भी पुनः आधी। जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई भी कर्म तो नहीं किया, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है। बाबा कहे ये चार्ट में जरूर लिखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म न हो जो विकर्म बन जाए। दूसरी पॉइंट, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वा अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाग कर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। आज का स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहां सर्व प्राप्ति है वहां प्रसन्नता है। आज का व्यक्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया लिया तो नहीं, देते जाओ। लेना है बाप से, वह तो ले ही लिया, अब देना है। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो कोई भी बातें क्रॉस करना मुश्किल नहीं लगेगा। सब बातें बहुत सहज हो जाएगी, क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। अच्छा, ओम।